FM 102 और 103.6 MHz, साथ ही मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 3 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:59 हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। सुबह के 6 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन अंकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री भी होंगे और वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी।
2: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों

0: की खोज पर भी चर्चा होगी।
1: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
2: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की भूमिका को खारिज कर दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लंबित सीमा विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
2: जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता

0: से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की दो दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक नगर पालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टोंटन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों गुजरात ओडिशा राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली उत्तराखंड पश्चिमी उत्तर प्रदेश सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102 और 103.6 MHz साथ ही मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। सुबह के 6:05 हो रहे हैं। अब श्रोता सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

सुप्रभात, मंगल प्रभात और सभी सुनने वालों को यथा योग्य अभिवादन। आइए आरंभ करते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना इस भक्ति रचना के साथ।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। कष्ट सारे हर लिए, लिया जो हरि का नाम, गजब कृपा है आपकी, जय रघुनंदन जय सियाराम।

ये है आपका अपना चंबल चैनल और इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। जिस तरह थोड़ी सी दवा से रोग शांत हो जाता है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी स्तुति से बहुत सारे कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। अतः हमें दिन प्रतिदिन हर रोज हरि भजन जरूर करना चाहिए।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। नदी नहीं संस्कार है गंगा, देश का श्रृंगार है गंगा, दुखों को दूर करने की आस है गंगा, नदी ये बहुत खास है गंगा। आइए करते हैं माँ गंगा का यशोगान।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं इस आरती के साथ।

ये था हमारा आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आज आपने सुना लता मंगेशकर, अंजलि जैन, ओम व्यास, साधना सरगम, जसवंत सिंह और साथियों को। इसी के साथ भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्चना को यहीं देते हैं विराम।

अभी श्रोता सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से FM 102 और 103.6 MHz पर। सुबह के 6:35 हो रहे हैं। प्रस्तुत है श्रीरामचरित मानस गान।

अयोध्या की राजसभा में श्री राम लक्ष्मण के पराक्रम की कथा सुनाते हुए राजा जनक के दूत कहते हैं, श्री राम ने बिना प्रयास शिवजी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडियां तोड़ देता है। परशुराम ने जो क्रोध के साक्षात अवतार हैं, बहुत आंखें दिखाई, किंतु श्री राम का प्रताप देख अंत में वे भी नतमस्तक हो गए और जाते हुए अपना धनुष भी दे गए। दोनों भाइयों के तेज तथा प्रताप की गाथा सुन अयोध्या की राजसभा में हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई। सभासदों ने राजा जनक के दूतों को भांति भांति के पुरस्कार दिए। राजा दशरथ ने कुलगुरु वशिष्ठ के यहां जाकर पत्रिका उन्हें दी और दूतों को वहां बुलाकर सारी कथा कह सुनवाई। हर्ष प्रकट करते हुए वशिष्ठ जी ने आशीर्वचन कहे और महाराज को बारात सजाने को कहा। ये शुभ समाचार जब रनिवास में पहुंचा तो वहां भी आनंद का वातावरण छा गया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। प्रमुख कलाकार थे ए हरिहरन और संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। सुबह के 6:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है पर्यावरण चेतना पर आधारित हमारा कार्यक्रम आबोहवा। आज आप सुनेंगे अरुण उपाध्याय की वार्ता कचरा प्रबंधन।
1: आज मैं आप लोगों से कूड़ा कचरा प्रबंधन और इस समस्या से निजात पाने के कुछ तथ्य आपके सामने रखूंगा। आज भारत में हर दिन एक व्यक्ति तकरीबन 200 ग्राम से लेकर 600 ग्राम तक कूड़ा कचरा उत्पन्न करता है, जो मिलकर रोजाना तकरीबन 1,00,000 मैट्रिक टन से ज्यादा कूड़ा पूरे भारत में उत्पन्न होता है। भारत के कुछ बड़े शहर केवल 70-80% कूड़ा ही उठा पाते हैं, वहीं छोटे शहर और कस्बे 50% ही कूड़ा उठा पाते हैं। बाकी कूड़ा उसी तरह सड़क पर और डंप पर बिखरा हुआ रहता है। यह बढ़ता हुआ कूड़ा मानव के लिए कई बीमारियां पैदा कर रहा है, जानवर भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कचरा प्रबंधन में पहचानी गई कुछ कमियों की। लोग कूड़े को कहीं भी फेंक देते हैं, जो इकट्ठा होकर बहुत बुरा दिखता है। दूसरा, कचरे को जला देना। श्रोताओं, हमारे समाज के कुछ लोग कूड़ा कचरे को इकट्ठा देख उसमें आग लगा देते हैं, जो जलने के साथ भयानक गैसों का रिसाव करता है, जो अंततः वायु प्रदूषण का अहम कारक बनता है। तीसरा है कचरे के बड़े ढेरों का खुला होना। खुला हुआ कचरे का डंप बदबू फैलाता है, जो आसपास के इलाकों को भी दूषित करता है। खाली पड़े हुए प्लॉट्स को कचरा डंप बनाना। जी हां श्रोताओं, हमारे मोहल्ले घर के आसपास खड़े हुए खाली प्लॉट्स जगह को कचरा फेंकने का डंप बना लिया जाता है। कई बार हम और आप भी उसमें शामिल होते हैं। जब भी हम हमारे घरों के

0: आसपास कोई प्लॉट्स को खाली देखते हैं और उसमें कचरा फेंकना शुरू कर देते हैं, जो आगे चलकर बिल्कुल भी शोभित नहीं लगता। कचरे की वजह से नालियों का जाम होना, कूड़ा कचरा पॉलिथिन नालियों में फेंकने से नालियां जाम हो जाती हैं और गंदा पानी बाहर बहने लगता है, जो धीरे धीरे गड्ढों में जमा हो जाता है। जमा हुआ वह गंदा पानी मच्छरों के पनपने का कारण बनता है, जिससे भयानक बीमारियां जैसे कि डेंगू मलेरिया फैलता है। आज हमारे बच्चों को अगर कचरा प्रबंधन के विषय में उनकी शिक्षा के अनुरूप पढ़ाया लिखाया जाए तो वो आगे चलकर इन चीजों की महत्वता को समझते हैं। अगर कचरा प्रबंधन एक समस्या है तो इसके उपाय भी हैं, जिसका एहसास हर नागरिक को होना चाहिए। ऐसे ही कुछ उपाय मैं आम नागरिकों व संस्थाओं के लिए देना चाहता हूँ। ज्यादा से ज्यादा कूड़ेदान पब्लिक एरिया में रखे जाने चाहिए। कूड़ेदानों का उपयोग होगा तो हमें भी कूड़े फेंकने में आसानी होगी। प्लास्टिक से बनी थैलियों का प्रयोग किसी भी नागरिक को नहीं करना चाहिए। नगर पालिकाओं एवं नगर निगम को कचरा हर दिन हर जगह से उठाना चाहिए। अगले दिन के लिए कोई भी काम नहीं छोड़ना चाहिए। नागरिक जिस तरह अपना घर साफ सुथरा देखना चाहते हैं, उसी तरह उन्हें अपना पड़ोस भी साफ रखना चाहिए। हर नागरिक को कूड़े की समस्या से निपटारे के लिए जागरूक होना चाहिए। सफाई कर्मचारियों को आधुनिक उपकरणों को चलाने की शिक्षा दी जानी चाहिए। पब्लिक एरिया की सफाई को प्राइवेट कंपनियों को ठेके पर देना चाहिए, जिससे वो उचित समय पर सही तरीके से सफाई कर पाए, और उन पर भी जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए अगर वो काम सफाई से या टाइम पर नहीं करते हैं तो। कूड़ा जलाए जाने पर भारी जुर्माना होना चाहिए। कचरा प्रबंधन को शिक्षा का महत्वपूर्ण पाठ बनाना चाहिए। कचरा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पाठ शिक्षा में जोड़ना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे उसे पढ़ें और आगे जाके खुद समझें कि कचरा प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण विषय है। जो कचरा कूड़ा उठाने वाले ट्रक टेम्पो कंपैक्टर्स ट्रॉलियां पूरी तरह बंद होनी चाहिए। मित्रों श्रोताओं, जब तक हर नागरिक अपने हिस्से की जिम्मेदारी को ठीक से नहीं समझेगा, तब तक इस शहर का इस देश की तरक्की अपने मुकाम पर नहीं पहुंच पाएगी। आइए हम और आप प्रण लेते हैं कि गंदगी ना तो करेंगे और ना किसी को करने देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।
1: अभी आप सुन रहे थे अरुण उपाध्याय की वार्ता कचरा प्रबंधन। इसी के साथ कार्यक्रम आबोहवा अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। सुबह के 6:50 हो रहे हैं और ये समय है आज प्रसारित किए जाने वाले खास कार्यक्रमों की जानकारी आपको देने का, यानी समय है कार्यक्रम विवरण का।

इस सभा में सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्य वाणी। इस कार्यक्रम में आज विषय होगा तेज गर्मी और बदलते मौसम में बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा, और इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर आरिफ शेख। रोजाना की तरह सुबह 7 आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार कोटा। इसमें आपके लिए होगा एक विचार, साथ ही सुनिएगा गीत संगीत और आपको बताएंगे साइकिल चलाने के फायदों के बारे में, और चर्चा होगी जो देखा उसका उजला पक्ष अपनाएं इस विषय पर। बहनों का अपना मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत प्रसारित होगा सुबह 9:30। इसमें चर्चा का विषय होगा बच्चों को बेड टाइम स्टोरी सुनाएं और उनकी रचनात्मकता बढ़ाएं। इसके अलावा आप सुनेंगी भेंटवार्ता श्रीमती इंदिरा अग्रवाल से, विषय होगा महिलाएं और पर्यावरण। फिल्म संगीत में आज आप सुनेंगे शीर्षक गीत, और आज का शीर्षक है बेचैन। फिल्म संगीत एक बार फिर आपकी नजर करेंगे सुबह 9:10 पर। सुबह 10 से श्रोता सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। दोपहर 12 आपके लिए प्रस्तुत करेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। और दोपहर 12:30 से एक बार पुनः आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।

शाम 5 बजे युवाओं की बात होगी युवाओं के साथ। कार्यक्रम होगा युववाणी। इसमें आज का संवाद होगा, किसी में राह में किसी की सहायता करना भी देगा सुखद अनुभव। इसके अलावा रंग रंगीलो राजस्थान में आप जान पाएंगे पटवों की हवेली जैसलमेर के बारे में। आपको सुनवाएंगे भेंटवार्ता, कॉलेज पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली एक परिचय। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर जॉली भंडारी और आपसे बातचीत करेंगे राजेश महावर। नॉलेज कॉर्नर में आपको बताएंगे शिक्षाविद, न्यायाधीश, राजनेता और समाज सुधारक हरविलास शारदा के बारे में। और साथ ही आप सुनेंगे रोजगार सूचनाएं, गीत संगीत और करंट अफेयर्स। किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल शाम 7 बजे। इसमें चर्चा का विषय होगा विश्व साइकिल दिवस। इसके अलावा आप सुनेंगे सजी फोन इन कार्यक्रम, विषय होगा पशु स्वास्थ्य जांच हेतु सुविधाएं। हमारे विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर चंद्र प्रकाश मीणा। इसके अलावा आप सुनेंगे नवीन कृषि सूचनाएं, कल का मौसम और बाजार भाव। लोक संगीत होगा शाम 7:30 बजे और चित्रपट संगीत आप सुन पाएंगे रात्रि 8 बजे। रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। इसमें आज के कलाकार होंगे असद भोपाली। रात्रि 11:10 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला। इसमें आज आप सुनेंगे कड़ी संख्या 3। थीम होगी मध्यम वर्ग कल्याण। ये तो थी जानकारी आज प्रसारित किए जाने वाले खास कार्यक्रमों की। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: युवाओं विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब सशक्त समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
1: भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः न्यायमूर्तिः सूर्यकान्तः गतवासरे सर्वोच्च न्यायालयस्य पञ्च न्यायाधीशेभ्यः पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितवान्। न्यायमूर्तिः शीलनागो, श्रीचन्द्रशेखरः, संजीव सचदेवा, अरुणपल्ली, वरिष्ठाधिवक्त्री वी मोहना च सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशत्वेन शपथवचनं स्वीकृतवन्तः। अवधेयं यत् केन्द्रेण सर्वोच्च न्यायालयीय न्यायविद समितेः अनुशंसाम् आलक्ष्य एव एतेषां नियुक्ति विषयणे स्वीकृतिः दत्ता। राष्ट्रिय पंचायत पुरस्कार समारोहः अद्य नवदिल्ल्याम् आयोजयिष्यते। एते पुरस्काराः देशस्य द्विचत्वारिंशत् संख्याकेभ्यः उत्कृष्ट पंचायतेभ्यः प्रदास्यन्ते। समारोहावसरे दीनदयालोपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कारः इत्यस्यां श्रेण्यां चतुस्त्रिंशत् ग्राम पंचायतेभ्यः, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेण्यां च अष्ट पंचायतेभ्यः पुरस्काराः प्रदास्यन्ते। भारतीयर्थ विभागेन सूचितं यत् अद्य कर्णाटकस्य आभ्यन्तरीणेषु भागेषु, केरल माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कराईकलेषु च तीव्रवृष्टिः भविष्यति। आगामि दिवसद्वय पर्यन्तं हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्रांध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमोत्तर प्रदेशेषु तीव्र झंझावातेन सह गर्जनस्य, तडितपातस्य च संभावना वर्तते। अन्ते क्रीडा वार्तासु, महिलानां अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडा मालिकायां गतरात्रौ इंग्लैंड देशस्य टाउनटन नगरे काउंटी क्रीडांगणे आयोजिते तृतीये अन्तिमे च द्वन्द्वे इंग्लैंडेन भारतं षड्भिः क्रीडकैः पराजितम्। इत्थम् इंग्लैंडेन 2-1 इत्येतेन स्पर्धान्तरालेन श्रृंखला जिता। इति वार्ताः।
2: FM 102 और 103.6 MHz, साथ ही मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। सुबह के 7 बज रहे हैं, अब श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार कोटा।

नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, स्वागत, वंदन और अभिनंदन निवेदित करते हैं आप सभी को। आप सुन रहे हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम नमस्कार कोटा, अपने चंबल चैनल पर अपनी रेडियो साथी अलका के साथ। मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कीजिए अपने नए दिन की शुरुआत। नए दिवस की नई सुबह में हर एक नई किरण लेकर आई है नई उम्मीद, नया उत्साह और नई ऊर्जा। तो उठिए, जागिए और अपने सपनों को सच करने की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि कहते हैं ना, जो सुबह को जीत लेता है वो पूरा दिन भी जीत लेता है। जी हाँ, आज के इस सफर में मधुर गीत होंगे, कुछ जानकारियाँ होंगी, एक सुविचार होगा और आपके साथ होंगी ढेर सारी सकारात्मक बातें जो आपके दिन को बनाएंगी कुछ खास और एनर्जेटिक। तो बने रहिए चंबल चैनल के साथ और सुनते रहिए अपना मनपसंद कार्यक्रम नमस्कार कोटा। इससे पहले कि हम साझा करें आपके साथ आज का विचार, बड़ी सी स्माइल के साथ उठाइए चाय का प्याला और बने रहिए चंबल चैनल के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन विचार के साथ। तो आज का विचार कहता है, हर नई सुबह जीवन की किताब का एक नया पन्ना है। जी हाँ, हर

नई सुबह जीवन की किताब का एक नया पन्ना है। इस पन्ने को हर रोज खूबसूरत शब्दों और विचारों से भरिए। जी हाँ, हर रोज खूबसूरत शब्दों और विचारों से हमें इस जीवन को भरना है, इस जीवन के पन्नों को भरना है। तो इस छोटे से खूबसूरत विचार के बाद बढ़ेंगे आगे और अब कार्यक्रम में लाएंगे एक गीत की बहार।

कार्यक्रम है नमस्कार कोटा और सुन रहे हैं आप अपने चंबल चैनल पर। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और साझा करते हैं आपके साथ कुछ सूचनाएं। सबसे पहले मौसम की बात करेंगे। मौसम में इन दिनों पश्चिमी विक्षोभ का असर बरकरार है और इस कारण रात के तापमान में कुछ गिरावट आ गई है। तो क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण हाड़ोती में कल यानी मंगलवार को भी गर्मी से राहत रही। हालांकि दिन में धूप के कारण तपन महसूस हुई, लेकिन तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। आगामी 3-4 दिनों तक ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। सोमवार रात को बारिश होने के कारण कल यानी मंगलवार रात के तापमान में लगभग 6.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। आपको बता दें कि मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज यानी बुधवार को भी मौसम में बदलाव रहेगा। तेज हवा और आंधी चलने की संभावना व्यक्त की गई है और 6 जून तक बारिश होने की संभावना है। कहीं पर छुटपुट या कहीं पर तेज बारिश होने की संभावना

व्यक्त की गई है। आइए आपको बता दें, कल यानी मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान रहा 37.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 22.6 डिग्री सेल्सियस। और अगली खबर ये है कि बिजली संबंधी समस्या समाधान के लिए आज होगी जनसुनवाई। जी हाँ, शहर में बिजली उपभोक्ताओं की बिल, पावर कट और अन्य समस्याओं के मौके पर निस्तारण करने के लिए KEDL की ओर से आज यानी बुधवार को जन सुनवाई आयोजित की जाएगी। KEDL के प्रवक्ता से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोठरी गुमानपुरा रोड स्थित यश बैंक के ऊपर प्रथम तल पर अपराह्न 3 बजे से शाम 5 बजे तक ये शिविर आयोजित किया जाएगा। इसमें उपभोक्ताओं की शिकायतों पर सुनवाई की जाएगी। यथासंभव शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा। मौके पर निस्तारण संभव नहीं हो पाएगा तो शिकायतों के संबंध में संभावित तिथि शिकायतकर्ता को बताई जाएगी। इस तरह की जन सुनवाई अब हर माह आयोजित की जाएगी। इस दौरान कंपनी के CEO और अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसमें उपभोक्ता के बिल संबंधी तकनीकी, लोड वृद्धि, नए विद्युत कनेक्शन और अन्य समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा।

और अगली सूचना आप तक पहुंचाते हैं। 12th पास करके कॉलेज में जाने वाले विद्यार्थियों को एडमिशन में राहत मिली है। जी हाँ, प्रथम सेमेस्टर में 25% सीटें बढ़ाई गई हैं। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने नए शैक्षणिक सत्र में सरकारी कॉलेजों के यूजी प्रथम सेमेस्टर में 25% सीटें बढ़ा दी हैं। आयुक्तालय ने बढ़ोतरी को लेकर स्पष्ट किया है कि कॉलेज में छात्राओं के लिए आरक्षण के नियमों और अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले आरक्षण के तहत इन संकायों में यूजी प्रथम सेमेस्टर के लिए तय सीटों में से 25% की बढ़ोतरी की गई है। आर्ट्स और कॉमर्स के प्रत्येक सेक्शन में सीटों की संख्या 100 और साइंस संकाय के सेक्शन में सीटों की संख्या 88 कर दी गई है। एडमिशन के समय सभी रिजर्वेशन कैटेगरी के आवेदकों को बढ़ी हुई संख्या के आधार पर नियमानुसार आरक्षण रहेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 6 जून तय की गई है। जी हाँ, आयुक्तालय की गाइडलाइन के अनुसार प्रथम सेमेस्टर में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 6 जून है। 9 जून को अंतिम वरीयता एवं प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी। संबंधित स्टूडेंट्स ऑनलाइन माध्यम से संबंधित कॉलेज में प्रथम सेमेस्टर में आवेदन कर सकते हैं।

कार्यक्रम है नमस्कार कोटा और सुन रहे हैं आप अपने चंबल चैनल पर। चल रहा है सूचनाओं का दौर, तो अगली सूचना आपको देते हैं। कोटा चित्तौड़गढ़ रेल लाइन डबल होगी, अब फाइनल लोकेशन सर्वे हो गया है मंजूर। इसके तहत अब नई सवारी गाड़ियों का संचालन हो सकेगा संभव। जी हाँ, कोटा चित्तौड़गढ़ की 155 किलोमीटर रेल लाइन के दोहरीकरण का प्रोजेक्ट अब गति पकड़ेगा, क्योंकि रेलवे बोर्ड ने इसके लिए फाइनल लोकेशन स्वीकृत कर दी है। इस लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण से राजस्थान के हाड़ौती, मध्य प्रदेश के जबलपुर व भोपाल की तरफ से नई सवारी गाड़ियों का संचालन हो सकेगा। मालगाड़ियों और यात्री ट्रेनों की स्पीड भी अब बढ़ सकेगी। दोहरीकरण व विद्युतीकरण से ट्रेनों की स्पीड बढ़ने से यात्रियों का समय बचेगा। अभी सिंगल लाइन होने से गिनती की सवारी गाड़ियां ही इस रास्ते पर चल पा रही हैं। कोटा मंडल के सीनियर डीसीएम से

प्राप्त जानकारी के अनुसार दोहरीकरण के बाद ट्रेनों की संख्या बढ़ जाएगी। कोटा पहले से ही दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर है। कोटा होकर चलने वाली कई ट्रेनों को चित्तौड़गढ़ तक बढ़ाया जा सकेगा। बिलासपुर से अभी रोजाना कोयले के 8 रैक आते हैं और इतने ही खाली जाते हैं। चित्तौड़गढ़ चंदेरिया से भी मालगाड़ियों का सामान मध्य प्रदेश व दूसरे राज्यों में जाता है। अब ये दोहरीकरण का कार्य सम्पन्न हो जाएगा तो इससे यात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी, रेलों की संख्या भी बढ़ेगी और मालगाड़ियों की संख्या में भी इजाफा होगा।

कार्यक्रम है नमस्कार कोटा और सुन रहे हैं आप अपने चंबल चैनल पर। और चल रहा है अभी सूचनाओं का दौर। रेल संबंधी एक सूचना हमने आपको दी, एक और सूचना इसी संदर्भ में है। पश्चिम मध्य रेलवे में परियोजना प्रबंधन सूचना प्रणाली का हुआ है शुभारंभ। जी हाँ, रेलवे प्रोजेक्ट्स के प्रभावी प्रबंधन, सतत निगरानी और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए पश्चिम मध्य रेलवे ने एक बड़ी पहल की है। भारतीय रेल की पहली पूर्ण विकसित परियोजना प्रबंधन सूचना प्रणाली यानी PMIS का 1 जून को शुभारंभ किया गया है। इस प्रणाली से रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की वास्तविक समय में निगरानी होगी, जिससे निर्णय प्रक्रिया प्रभावी होगी और संसाधन प्रबंधन बेहतर होगा।

विश्व साइकिल दिवस पर आज आयोजित की जा रही है जागरूकता रैली। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के माय भारत और कोटा फन राइडर्स क्लब की ओर से विश्व साइकिल दिवस पर आज जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। यह रैली आज सुबह 6 बजे किशोर सागर तालाब से शुरू हो गई है। इस वर्ष की थीम रखी गई है साइकिल टुडे सस्टेन टुमारो। रैली का मुख्य उद्देश्य है युवाओं और आमजन में साइकिलिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाना, स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना और पर्यावरण संरक्षण का संदेश प्रसारित करना।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: कार्यक्रम है नमस्कार कोटा और सुन रहे हैं आप अपने चंबल चैनल पर। तो बात हो रही थी कि आज कोटा में सुबह 6 बजे से साइकिल रैली किशोर सागर तालाब से शुरू हो गई है। तो श्रोताओं, आज ये रैली इसलिए आयोजित की जा रही है क्योंकि आज है विश्व साइकिल दिवस। हर साल 3 जून को हम मनाते हैं विश्व साइकिल दिवस। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस द्वारा इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी अप्रैल 2018 से। तभी से हर साल 3 जून का दिन विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देना, आम जन को इसके पर्यावरण, स्वास्थ्य और आर्थिक फायदों के बारे में बताना। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं, साइकिल चलाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। पर यह स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, पर्यावरण के लिए और हमारी जेब के लिए भी बहुत लाभदायक है। साइकिल एक सरल, सस्ता और प्रभावी व्यायाम है। इसे चलाने से हमारा शरीर स्वस्थ और चुस्त बना रहता है। जब हम नियमित रूप से साइकिल चलाते हैं तो इससे हमारा हृदय मजबूत होता है और

रोजाना साइकिल चलाने से हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं और साथ में वो सक्रिय होती हैं, और हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट होता है यानी अतिरिक्त चर्बी जो हमारी होती है वो बर्न हो जाती है और हम स्लिम एंड ट्रिम होते हैं। और साइकिल चलाने से हमें कई फायदे होते हैं, हमारी सहन शक्ति भी बढ़ती है। इसके अलावा साइकिल चलाने का बड़ा लाभ ये है कि हम अपने शहर को, पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त करते हैं और पेट्रोल और डीजल का खर्चा बिल्कुल नहीं होता, यानी कि हमारी जेब के लिए बहुत फायदेमंद है। साइकिल चलाने से पेट्रोल डीजल का खर्चा नहीं होता तो प्रदूषण नहीं होता और इससे हमारा वातावरण स्वच्छ बना रहता है। इससे प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के इस दौर में साइकिल एक बहुत ही बेहतर माध्यम है, पर्यावरण अनुकूल है, ये पर्यावरण को सुरक्षित बनाने में मददगार है ये। इसके अलावा साइकिल चलाते रहने से यानी नियमित रूप से साइकिल चलाने से हम तनाव मुक्त होते हैं, या कहें हमारा तनाव कम होता है, मानसिक स्वास्थ्य हमारा बेहतर होता है। बुजुर्ग भी यदि साइकिल चलाएं और बच्चे भी साइकिल चलाएं तो ये उनके लिए भी फायदेमंद होता है, यानी साइकिल बच्चे, बूढ़े और जवान सभी चला सकते हैं, ये सभी के लिए उपयोगी है, फायदेमंद है। छोटी दूरी यदि हमें तय करनी है तो हमें साइकिल का ही उपयोग करना चाहिए, इससे समय भी बचता है और धन की भी बचत होती है। अतः दैनिक हमें साइकिल चलानी चाहिए और अपनी प्रैक्टिस में इसे लाना चाहिए, इससे हम स्वस्थ रहेंगे और हमारा पर्यावरण संरक्षण भी बना रहेगा। और जब हम ये संकल्प लेंगे कि हम रोजाना साइकिल चलाएंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, तभी हमारा ये विश्व साइकिल दिवस मनाना सार्थक होगा। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, इस बार की जो थीम है वो है साइकिल टुडे सस्टेन टुमारो। तो आइए इसके बाद हम सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम है नमस्कार कोटा और सुन रहे हैं आप अपने चंबल चैनल पर। श्रोताओं आपको बता दें आज सुबह 8:15 बजे सजी फोन इन कार्यक्रम आरोग्य वाणी प्रसारित होगा। इसमें आज का विषय होगा तेज गर्मी और बदलते मौसम में बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित होंगे डॉक्टर आरिफ शेख। विषय से संबंधित आपकी कोई भी समस्या है तो आप कार्यक्रम के दौरान फोन कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। फोन नंबर है 2941142 और कोटा का एसटीडी कोड है 0744। तो प्रसारण समय एक बार फिर आपको बता दें, सुबह 8:15 बजे से 9 बजे तक ये कार्यक्रम प्रसारित होगा। श्रोताओं हम जीवन में हर रोज कोई न कोई ऐसी घटना या परिस्थिति देखते हैं जिसे देखने से ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है। यानी बहुत सारी ऐसी घटनाएं या ऐसे लोग देखने को मिलते हैं और हर घटना का या हर चीज का या हर बात का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होता है और एक नेगेटिव भी। यानी एक उसका उजला पक्ष भी होता है और एक उसका अंधेरा पक्ष भी होता है। समझदारी हमारी इसी बात में है कि हम जो कुछ भी देखें उसमें कोशिश यही करें कि हम सकारात्मक और प्रेरणादायक पहलू को अपनाएं। यदि हम किसी की कमियां या नकारात्मक बातों को ही देखेंगे तो इससे हमारे मन में निराशा आएगी और हम नेगेटिविटी की ओर बढ़ेंगे। और इसके विपरीत यदि हम अच्छाई पर ध्यान देंगे, सकारात्मक पहलू को देखेंगे, तो हमारा विचार और हमारा व्यवहार भी बदलेगा और वो पॉजिटिव बनेगा। देखिए प्रकृति भी तो हमें यही शिक्षा देती है। हम गुलाब के पेड़ को देखें, उसके पौधे को देखें, तो उसमें ढेर सारे कांटे होते हैं, लेकिन फिर भी हम उस गुलाब को देखते हैं, उस सुंदर से फूल को देखते हैं, उसकी खुशबू को महसूस करते हैं और कांटों के बीच में से भी हम उस फूल को तोड़ लेते हैं। इसी तरह कीचड़ में कमल खिलता है, हम कीचड़ को नहीं देखते, हम उस खूबसूरत कमल को देखते हैं और उसकी सुंदरता को देखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हम कीचड़ के ऊपर से उस कमल को तोड़ लेते हैं। तो कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति आए, हमें उजले पक्ष को अपनाना है। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, मन में आशा का संचार होता है और जीवन के प्रति हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। और जो ऐसे लोग होते हैं वो कठिन परिस्थितियों में भी अवसर को खोज लेते हैं और निरंतर आगे बढ़ते हैं। इसलिए जैसे हम गुलाब की सुगंध और उसकी सुंदरता को देखते हैं, वैसे ही हमें पॉजिटिविटी को देखना है हर व्यक्ति में, हर घटना में, हर एक परिस्थिति में। इसलिए अपने आप से वादा कीजिए कि परिस्थिति कैसी भी हो, हम अच्छाई को देखेंगे, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखेंगे और अपने जीवन को सुखद और सफल बनाएंगे। और श्रोताओं बातें करते करते कार्यक्रम का समय समापन की ओर आ चुका है। चलते चलते आपसे यही कहेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इसके लिए साइकिलिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, योग और प्राणायाम का सहारा भी आप ले सकते हैं। तनाव मुक्त रहिए और इसके लिए खिलखिलाकर हंसिए, आभार व्यक्त कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए। ट्रैफिक नियमों का जरूर पालन कीजिए, हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल समय समय पर कीजिए जब आप टू व्हीलर पर हैं और फोर व्हीलर पर। इसके अलावा बिजली और पानी बचाना है क्योंकि हमें पर्यावरण को सुरक्षित बनाना है। चलते चलते आपको बता दें इस कार्यक्रम का संयोजन किया तेजरा मीना ने और प्रस्तुति थी राजेश महावर की। ये कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत किया अलका ने। अब दीजिए अनुमति, नमस्कार कोटा।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार कोटा। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से FM 102 और 103.6 MHz पर। सुबह के 7:30 हो चुके हैं। अब श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत।

श्रोताओं, हाजिर हैं हम लेकर के फिल्म संगीत। प्रत्येक बुधवार को आप सुनते हैं शीर्षक गीत। तो आज का शीर्षक है बेचैन। तो बेचैन मत होइए, जल्द ही हम आपको पहला गाना सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है एक हसीना थी एक दीवाना था। आइए इस फिल्म का गीत सुनिए और आनंद लीजिए।

एक हसीना थी एक दीवाना था। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना यसर देसाई और पलक मुच्छाल की मिलीजुली आवाजों में।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: शीर्षक गीत आप सुन रहे हैं अपने चंबल चैनल पर। आइए सुनवाते हैं आपको अगला गीत फिल्म यास्मीन से। आवाज है तलत महमूद की।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी।
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है? क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही।
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
2: वो कहाँ है?
3: मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: शीर्षक गीत आप सुन रहे हैं अपने चंबल चैनल पर। आइए सुनवाते हैं आपको अगला गाना। फिल्म का नाम है माशूका। आवाजें हैं अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की। गीत रचना जालीस शेरवानी की और संगीत साजिद वाजिद का।

शीर्षक गीत आप सुन रहे हैं अपने चंबल चैनल पर। श्रोताओं सुनिए कार्यक्रम संबंधी सूचना। आज सुबह 8:15 बजे आप सुनेंगे सजी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यवाणी। इस कार्यक्रम में आज विषय है तेज गर्मी और बदलते मौसम में बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा। इस विषय पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित होंगे डॉक्टर आरिफ शेख। विषय से संबंधित आपकी

कोई समस्या है या आपका कोई सवाल है तो आप कार्यक्रम के दौरान हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 2941142। कोटा का एसटीडी कोड है 0744। तो सुनना न भूलें सुबह 8:15 से 9 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यवाणी। शीर्षक गीत आप सुन रहे हैं अपने चंबल चैनल पर और हमारा आज का शीर्षक है बेचैन। आइए सुनवाते हैं आपको अगला गीत फिल्म राजकुमार से। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की। आनंद बख्शी का गीत है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

फिल्म नगीना से ये गाना हमने चुना है। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी, क्षमा करें मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की, आनंद बख्शी का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

फिल्म नगीना के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त हो रहा है। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, आज सुबह 8:15 आप सुनेंगे कार्यक्रम आरोग्यवाणी। इसमें विषय होगा तेज गर्मी और बदलते मौसम में बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा। हमारे विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर आरिफ शेख। तो सुनना न भूले सुबह 8:15 से 9 बजे तक ये कार्यक्रम, और फोन करने के लिए हमारा नंबर है 2941142। ये तो थी कार्यक्रम संबंधी सूचना। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। सुबह के 8 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात का आज का अंक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
4: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डी के शिवकुमार

0: बेंगलुरु के लोक भवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं है। नवन्नों में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक, नगर पालिकाएं और कलकत्ता

0: लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं है। नवान्न में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक नगर पालिकाएं और कलकत्ता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
3: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
2: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
4: दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का भी सलाह है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
2: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति

0: न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद विशाल। CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई, आज के सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, CBSE चेयरमैन और सचिव हटाए गए, OSM टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, 1 महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, CBSE ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ता

0: कार्यकर्ताओं को आज आत्ममंथन की जरूरत है। सत्ता जाते ही उन्हें ना विचारधारा की चिंता रहती है और ना ही अनुशासन की। बीते 15 वर्ष में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस में अब जो कुछ हो रहा है वो खुली बगावत की तरह है। दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2 मिसाइल। अमर उजाला के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना। पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। और जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 102 और 103.6 MHz साथ ही मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। सुबह के 8:15 हो रहे हैं। अब श्रोता सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्य वाणी।
3: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं मित्तल हॉस्पिटल स्टोन एंड लेजर सर्जरी सेंटर कोटा। किडनी स्टोन या प्रोस्टेट, न्यूनतम चीरा, अधिकतम आराम। अब यूरोलॉजी समस्याओं का स्थायी समाधान पाएं। अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जयेश मित्तल गुर्दा पथरी प्रोस्टेट एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ के साथ दूरबीन पद्धति से प्रोस्टेट का ऑपरेशन, बिना छेद बिना चीरे के गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध। आयुष्मान योजना एवं इंश्योरेंस सुविधा के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा। संपर्क करें फोन नंबर 7976192795। मित्तल हॉस्पिटल 368 राजीव गांधी नगर स्पेशल, कॉमर्स कॉलेज चौराहा कोटा।
2: सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यवाणी में। इस कार्यक्रम में आज विषय है तेज गर्मी और बदलते मौसम में बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर आरिफ शेख। श्रोताओं, विषय से संबंधित आपकी कोई समस्या है, किसी तरह का कोई सवाल है आपका, तो आप कार्यक्रम के दौरान हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 2941142 और कोटा का एसटीडी कोड है 0744। तो अब से लेकर 9 बजे तक डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। बहुत सारे सवाल हमारे होंगे, कुछ समस्याएं आपकी होंगी, कुछ सवाल आपके भी होंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार।
4: नमस्कार मैडम,
2: और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में।
4: थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: थैंक यू। तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम का विषय है तेज गर्मी और बदलते मौसम में स्वास्थ्य सुरक्षा, तो गर्मी पिछले दिनों इतनी तेज रही कि बच्चे, बूढ़े और जवान सभी परेशान हो गए। तो बड़े तो अपनी बात को कह पाते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो अपनी बात को नहीं कह पाते, वो अबोध हैं और परेशान हो जाते हैं और सिर्फ रोने लगते हैं। जब बच्चे रोते हैं तब पता चलता है कोई प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे कि बदलते मौसम में या तेज गर्मी में बच्चों को किस तरह की समस्याएं होती हैं।
4: जी मैम, मैम गर्मी के मौसम में या बदलते वाले मौसम में या नौतपा में
2: जी
4: बच्चों को मेनली जो प्रॉब्लम होती है वो होती है डिहाइड्रेशन की
2: जी।
4: क्योंकि बच्चे जो हमारे होते हैं वो पानी बहुत कम मात्रा में पीते हैं, एक तो वो। सेकंड होता है कि उनको मौसम बदलने के बाद सर्दी, खांसी, जुकाम बहुत ज्यादा हो जाता है
2: जी।
4: गर्मी के मौसम में खाने के खराब होने की फ्रिक्वेंसी थोड़ी बढ़ जाती है, इसलिए उनको उल्टी, दस्त होना बहुत कॉमन है
2: जी।
4: तो आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। कई बार हम क्या होता है कि कोई बच्चा अगर पैदा हुआ है, न्यूबॉर्न बच्चा है, हम कई बार उसको ज्यादा कपड़े पहना देते हैं
2: जी।
4: चाहे बच्चों को कितनी भी गर्मी लग रही हो हम उसको वैसे ही रखते हैं, तो किस तरह के कपड़े पहनाने हैं बच्चों को, कई प्रॉब्लम्स होती हैं
2: जी, ये भी ध्यान रखना जरूरी।
4: बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा आगे।
2: हाँ, तो हम बात नवजात शिशु से ही शुरू करते हैं। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया, बहुत ज्यादा कपड़े पहना देते हैं, सर्दी है तो कोई बात नहीं, मौसम गर्मी का है तो फिर क्या ध्यान रखना है।
4: बिल्कुल मैम, मैम देखिए अगर बच्चा अगर न्यूबॉर्न बच्चा है, जस्ट अभी पैदा हुआ है, तो मदर्स को ये आइडिया नहीं होता कि कितना बच्चों को कवर करना है, बच्चों को, बच्चों गर्मी कैसे लग रही है
2: जी।
4: इस पे आपको 3-4 बातों का ध्यान रखना है।
2: जैसे
4: अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है तो एसी का जो टेम्परेचर रहेगा वो 24 से 27 के बीच में ही रहेगा।

0: किसी का जो फ्लैप जो स्विंग करता है उसका डायरेक्शन बच्चे के सामने नहीं आएगा, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। अगर बच्चे ने, मदर ने अगर एक कपड़ा पहना है तो बच्चा दो कपड़े पहनेगा, मतलब एक लेयर एक्स्ट्रा पहनेगा बच्चा, और ट्राई करेंगे कॉटन वाले कपड़े ही पहनाए बच्चे को। अगर एसी आपका बहुत पुराना है तो एसी की सर्विसिंग करवा लें। कई बार क्या होता है एसी में जो डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, जो फिल्टर्स जो होते हैं, कई बार उससे बच्चों को इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। एसी का मैम मेन प्रॉब्लम होता है कि एसी से रूम की उमस थोड़ी कम हो जाती है।
1: हाँ।
0: इसलिए आप चाहे तो ह्यूमिडिफायर यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ह्यूमिडिफायर नहीं है तो आप एक भगोने में पानी भर के रख सकते हैं रूम में, जिससे रूम की उमस जो है बनी रहे करके। ये तो मैम एसी के लिए
1: ये जरूरी है, ये उमस होना जरूरी
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल मैम, बिल्कुल। इसकी जो नाक का जो ड्राई हो जाएगी, ड्राइनेस से बच्चों को खांसी जुकाम होने की संभावना बच्चों की बढ़ जाती है।
1: जी जी जी।
0: अगर आप फैन यूज करते हैं तो फैन के जो ब्लेड्स होते हैं उसके, वो आपको क्लीन करने को लेस लाइक कभी हम क्लीन करते हैं उसको कभी। अगर आपके पास कूलर है तो कूलर के जो पैड होते हैं वो क्लीन करने हैं, अंदर के जो सामान है वो क्लीन करने हैं, उसकी जो स्पीड है वो आपको देखते रहने की बच्चों को ठंड तो नहीं लग रही है, गर्मी तो नहीं लग रही है।
1: जी। और आपने कहा कि मदर से एक लेयर बच्चे को ज्यादा पहननी है, इसके अलावा चद्दर वगैरह उड़ा के रखना है।
0: मैम देखिए, चद्दर हमारे बच्चे उड़ते नहीं है
1: जी,
0: वो उड़ेंगे फिर थोड़ी देर में निकाल देंगे।
1: हाँ।
0: इसलिए आप ट्राई करेंगे बच्चों को, अगर मदर ने एक लेयर पहना है, बच्चा दो कपड़े पहन ले, आप स्टार्टिंग में ट्राई करेंगे फुल स्लीव के कपड़े पहनाएं। बच्चों को अगर गर्मी लग रही है, उसको स्वेटिंग हो रही है उसको, तो उसको आप हाफ स्लीव कर सकते हैं
1: जी,
0: तो उससे बच्चों को एडजस्ट कर सकते हैं
1: जी। और ये नवजात शिशु है, इसकी बात हम कर रहे हैं तो फीट तो बराबर मदर कराती रहे,
0: बिल्कुल,
1: तो यही उनके स्वस्थ रहने का राज है,
0: बिल्कुल,
1: है ना।
0: बिल्कुल।
1: अब बात करते हैं, यदि थोड़े बड़े बच्चे हैं, चलने फिरने लगे हैं, उनको किस तरह की समस्याएं आती हैं?
0: जो चलने फिरने लगते हैं बच्चे, उनका मेन प्रॉब्लम होता है कि बच्चे बाहर से खेल के आते हैं और गर्मी के मौसम में सडनली,
1: मतलब ऐसे बच्चे जो 1.5 से 2 साल के बीच में है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बोल भी नहीं पाते अपनी बात को,
0: बिल्कुल,
1: और परेशान भी होते हैं
0: उन बच्चों को। मैम मेन प्रॉब्लम क्या होता है, जो टेम्परेचर वेरिएशन जो आता है, जैसे अगर वो बाहर गए हैं अगर खेलने के लिए, फिर बाहर से अंदर आते हैं तो या तो वो खुद पानी पी लेते हैं या हम उन्हें पानी पिला देते हैं, ठंडा पानी पिला देते हैं, या जो टेम्परेचर वेरिएशन जो आता है मैम, वो ट्राई करें कम से कम रहे। जब बच्चा बाहर से खेल के आए तो गर्मी रहती है बच्चे की बॉडी में हीट रहती है, वो नॉर्मल हो जाए उसके बाद आप बच्चों को पानी दे सकते हैं, उसके बाद आप बच्चों को एसी वाले रूम में लें। इस टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से ही बेसिकली बच्चों को खांसी जुकाम होने की संभावना बढ़ जाती है
1: जी। और इस उम्र में ज्यादातर ये खांसी जुकाम की समस्या ही ज्यादा देखने को मिलती है कि जुकाम खांसी हुई, थोड़े दिन ठीक रहे और 10-15 दिन बाद फिर से रिपीट हो गया।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: ये क्यों होता है?
0: मैम एक्चुअली होता क्या है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बीमार पड़ने की, वो ज्यादा होती है। वो इसलिए होती है मैम कि बच्चों की जो लड़ने की क्षमता होती है, जो उनकी इम्यूनिटी पावर होती है, वो थोड़ी कम होती है, इसलिए कई बार मल्टीपल टाइम बीमार पड़ते हैं। और इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी काम करते हैं, जैसे आजकल हमारे बच्चे जो है वो घर का खाना कम खाते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, तो उनकी लड़ने की क्षमता और कम हो जाती है। आपके और हमारे जमाने में हम लोग बाहर खेला करते थे, आजकल के बच्चों का जो आउटडोर एक्टिविटी है वो थोड़ा कम हो गया है।
1: हाँ।
0: तो इसलिए उस कई चीजों का फैक्टर पड़ता है बच्चों के बीमार होने पे। हाँ, मौसम भी एक रोल प्ले करता है, बदलते मौसम में वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है कि बच्चे बाहर से खेल के आए, अपने हाथ वाथ नहीं धोया उन्होंने।
1: हाँ, हाँ।
0: और उन्होंने डायरेक्टली पानी पी लिया, खाना खा लिया।
1: जी जी। तो जो ऐसे बच्चे हैं थोड़े 1.5-2 साल के हैं इसके, तो माओं को इनका ध्यान रखना है कि वो खेल के आए तो हैंड वॉश करवाना है, पैर भी धुलवाने हैं ठीक से, और समय समय पर इन्हें पानी भी पिलाते
0: हैं,
1: अपने आप पिलाएं इन बच्चों को पानी,
0: बिल्कुल, बिल्कुल,
1: क्योंकि वो नहीं कह पाएंगे,
0: वो बोलते नहीं है।
1: जी। इसके अलावा जो बहुत तेज गर्मी जो इन दिनों पड़ी थी पिछले दिनों, उसमें और किस तरह की समस्या जैसे ऐसे बच्चों को देखने को मिलती है? आपने उल्टी और दस्त का जिक्र किया, डायरिया का।
0: बिल्कुल मैम,
1: जी
0: मैम, ये जो गर्मी का जो मौसम जो अभी हुआ था थोड़ी देर पहले, उसमें डिहाइड्रेशन की संभावना बहुत बढ़ जाती है कि बच्चे पानी नहीं पीते हैं। सेकंड ये है कि बच्चे कुछ भी खा लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे जंक फूड जो खाते हैं बच्चे हमारे, वो कैसा है, उसकी वो क्वालिटी कैसी है, कब बना है, कब है करके, क्योंकि गर्मी के मौसम में खाना खराब होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है,
1: या बहुत देर पहले कटा हुआ फल वो खा लेते
0: वो हैं। भी बहुत रिस्की है मैम, अगर बहुत पहले कटा हुआ है तो उससे बेटर रहता है कि आप फ्रेश फूड काटें, फ्रेश फूड ही काटने के बाद ही बच्चों को दे दें, उससे उनमें उल्टी दस्त होने की संभावना कम हो जाती है।
1: और बहुत कॉमन समस्या है जैसे बहुत तेज धूप में रैशेस हो जाते हैं, थोड़े थोड़े दाने निकल आते हैं चेहरे पर, उसके बारे में बताइए।
0: मैम वो दो हैं, एक तो हीट रैश कहते हैं उसको, जिसको हम अपनी भाषा में घमोरियां कहते हैं उसको हम लोग, वो एक्चुअली होता मैम इसलिए है कि बच्चे जब बाहर से खेल के आता है तो अपने हाथ मोचे से वॉश नहीं करते हैं, ये कपड़े जो है कई बार चेंज नहीं करते हैं, तो ट्राई करें कि बच्चों को कॉटन वाले जो कपड़े होते हैं वही पहनाएं, कॉटन वाले कपड़े जो होते हैं बच्चों के वो स्वेट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। एक तो आप ये कर सकते हैं, जब बच्चा अगर बाहर खेल के आ रहा है बहुत ज्यादा थक रहा है तो दिन में आप उसको 2 बार भी नहला सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो बच्चों को पाउडर लगा सकते हैं और जो कि टेल फ्री हो
1: जी, टैल्क फ्री
0: टैल्क फ्री हो। एक्चुअली क्या टेलकम बच्चों में नहीं लगाना चाहिए पाउडर।

0: टेल फ्री पाउडर्स भी आते हैं, तो वो भी लगा सकते हैं बच्चों को।
1: इसके अलावा आजकल बहुत कॉमन है डायपर्स का यूज किया जाता है और इस कारण भी रैशेस हो जाते हैं, इसको किस तरह से दूर किया जाए या क्या समाधान है इसका?
0: मैम बिल्कुल, एक्चुअली मैम ये मिथ है कि डायपर रैश जो है वो डायपर्स की वजह से होता है, एक्चुअली वो उसकी वजह से होता नहीं है। एक्चुअली जो बच्चे होते हैं जो दस्त करते हैं हमारे या उल्टी करते हैं, तो दस्त बेसिकली मैम जो पोटियम करते हैं वो इसलिए एसिडिक होता है, वो तेजाब होता है। तो बहुत लॉन्ग समय से बेसिकली बच्चों के वहां पे रहता है तो वो उसको एरिया को बर्न कर देता है, इसकी वजह से वो डायपर रैश होता है
1: या कहें गीलापन बहुत देर तक बना रहता है।
0: बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके बच्चे को डायपर अगर दस्त कर रहा है तो फ्रिक्वेंटली आपको डायपर चेंज करना है ताकि उसको डायपर रैश नहीं हो। और अगर उसको डायपर रैश हो जाता है तो कई क्रीम्स आती हैं जो पेडियाट्रिशियन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो आप डॉक्टर की सलाह से वो ले सकते हैं।
1: और एकदम से जैसे कोई क्रीम हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो कोकोनट ऑयल,
0: बिल्कुल मैम वो तो बिल्कुल रामबाण है हमारा वो।
1: जी जी, तो ये तो बात हुई घमौरियों की, रैशेस की। आजकल जैसे क्योंकि माएँ कुछ ऐसी हैं बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, तो जब उनके बच्चे खेलने जाते हैं वो कहती हैं क्या हम उन्हें सनस्क्रीन लगाएं?
0: बिल्कुल मैम,
1: तो ये मैं आपसे सवाल कर रही हूँ उन माओं की तरफ से, क्या ऐसे छोटे बच्चों को सनस्क्रीन लगाना चाहिए?
0: बिल्कुल मैम, मैम देखिए बच्चे की उम्र कितना है, उसका एज कितना है, उसके अकॉर्डिंगली हम बच्चों को सनस्क्रीन लगाते हैं। जैसे जो बच्चे बाहर खेलने जाते हैं, जो बच्चे अगर, तो हमारा मानना होता है कि बाहर खेलने जाने से पहले बच्चों को 10-15 मिनट पहले आप उसको सनस्क्रीन लगाएं। कितना सनस्क्रीन लगाते हैं वो या तो मैम उसके पीछे लिखा रहता है
1: पीएच उसका,
0: हाँ पीएच पे लिखा रहता है, कितना एक्चुअली होता क्या मैम कि कितना लेना है वो मैटर करता है। तो उसको पूरे फिंगर्स पे लेना है करके, उसकी पूरी बॉडी पे लगाना है करके, और उसका SPF कितना है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि कितना देर तक वो काम करेगा बच्चों के वो
1: जी।
0: और अगर बच्चा नहीं लगाता सनस्क्रीन या वो छोटा बच्चा है तो आप उसको फुल स्लीव्स के कपड़े पहना सकते हैं बच्चे को, कैप पहना सकते हैं बच्चे को, हमारे मिटन्स पहना सकते हैं बच्चे को, ताकि सन से प्रोटेक्शन रहे बच्चों को।
1: जी जी, अपने श्रोताओं को यहाँ मैं याद दिला दूं, सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्य वाणी आप सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम में आज विषय है तेज गर्मी और बदलते मौसम में बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर आरिफ शेख। तो श्रोताओं, कोई समस्या है आपकी, कोई सवाल है आपका, तो अब से लेकर 9 बजे तक डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, आप अपने सवाल को पूछ सकते हैं और इसके लिए आपको करना होगा फोन। फोन नंबर है 2941142 यानी 2941142 और कोटा का एसटीडी कोड है 0744। तो डॉक्टर साहब सनस्क्रीन की बात हुई, अब बात करते हैं पैक्ड फूड की, यानी जो पैकेट फूड आजकल बच्चे खाने लगे हैं, जरा सी भूख लगी है उन्हें घर का खाना नहीं समझ में आता, उन्हें कुछ पैकेट चाहिए और मैं कहती हूँ माएँ भी फटाफट से देती हैं, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक नुकसानदायक है या इससे कैसे बचा जाए?
0: मैम एक्चुअली पैकेट वाले जो फूड हैं वो आजकल बहुत इजीली अवेलेबल हो गए हैं, वो अपने घर से बाहर निकली एक दो घर छोड़ के ही आपको पैकेट वाले फूड मिल जाएंगे,
1: इवन माए उन्हें इकट्ठा करके रखती हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल मैम, इसका प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि आजकल जैसे डायबिटीज बढ़ रहा है बच्चों में, ओबेसिटी बढ़ रही है बच्चों में, तो मेनली इसका कारण वही है। हम बच्चों को जितना अर्ली स्टेज से उनको जंक फूड देते हैं या नमक देना शुरू करते हैं, शुगर देते हैं, तो इससे बच्चों की आगे जाके प्रॉब्लम हो जाती है। तब ट्राई करें बच्चों को घर का बना हुआ खाना खिलाएं, जो पैक्ड फूड में मैम मैदा होता है। अब देखें
1: डॉक्टर साहब रोकते हुए एक कॉलर को ले लें।
0: जी मैम बिल्कुल।
1: हेलो।
2: हेलो
1: जी, नमस्कार।
2: हाँ नमस्ते, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं बिना कराचा।
1: जी योगेश जी, क्या सवाल है आपका?
2: हमारा जो घर का स्थिति है, जो रूम वगैरह है
1: जी,
2: तो इनकी स्थिति को किस तरह से रखे, जैसे कई जगह पे धूप ज्यादा आता है, तो थोड़ा सा इस रख रखाव के बारे में बताएं
1: बच्चे के लिए।
2: हाँ जी
0: ठीक है। देखिए अगर आपका जो रूम कितना बड़ा है, मतलब क्या कितने कमरे हैं उसमें, कहाँ धूप ज्यादा आता है?
1: हेलो
2: हेलो,
1: मुझे लग रहा है आप ये जानना चाह रहे हैं जैसे तेज धूप आ रही है तो पर्दा वगैरह लगाएं, हाँ। बच्चे को उस धूप से बचाएं।
2: जी जी
1: जी डॉक्टर साहब
0: जी, आप बच्चे को धूप में रख सकते हैं। कितना बड़ा बच्चा है आपका?
2: अब दो बच्चे हैं, एक तो 4 साल का है, एक 6 साल का है।
0: बिल्कुल, देखिए घर में अगर धूप आ रही है आपकी, सब डरने वाली बात होती नहीं है, क्योंकि आप अगर कांच लगा रखा है आपने, अगर विंडो भी लगा रखा है आपने करके,
2: हाँ।
0: तो उसमें वो सेफ रहते हैं बच्चे हमारे। अगर उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ही धूप आ रही है आपके घर में, तो आप ध्यान रखेंगे बच्चों को उतना गर्मी ना लगे या बच्चे बहुत लंबे समय तक धूप में ना रहें, वरना फिर उनको हीट रैश होने की संभावना बढ़ जाती है या फिर बच्चों को डिहाइड्रेशन होने की संभावना बढ़ जाएंगी अगर वो पानी नहीं पिएंगे कई बार तो। बाकी आप चाहें तो आपके रूम में अगर एसी है, कूलर है या पंखा है तो वो भी आप उसको चला सकते हैं, ताकि रूम का जो टेम्परेचर है वो बना रहे और बच्चों को से तकलीफ नहीं हो।
1: और जब बहुत ज्यादा दोपहर के समय धूप हो तो पर्दा वगैरह लगा दें।
0: बिल्कुल मैम।

0: जी योगेश जी
1: जी धन्यवाद
0: धन्यवाद कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, पैक्ड फूड की बात हम कर रहे थे और आप कह रहे थे आजकल नमक और शक्कर, ये पॉइंट आया, ये मैंने भी सुना है कि आजकल नमक और चीनी नवजात शिशु को देने से मना करते हैं।
2: बिल्कुल मैम,
0: क्या वजह है इसकी?
2: मैम एक्चुअली पहले जो ट्रेंड था, पहले तो दादी नानी जो है हमारी, वो बच्चों को पैदा होते शहद खिला दिया बच्चों को, शहद चटा दिया बच्चे को, वो मैम कई साइड इफेक्ट होते हैं। पहली बात तो साइड इफेक्ट ये होता है कि अगर आप शहद चटाएंगे बच्चे को तो उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो बच्चों को आगे जाके बच्चों को प्रॉब्लम कर सकती है। फर्स्ट, सेकेंड आपको याद होगा हमारे
0: डॉक्टर साहब यहाँ ये पूछना चाहूंगी कि कहते हैं शहद तो बहुत फायदेमंद होता है।
2: बिल्कुल मैम फायदेमंद होता है, लेकिन आप उसको एक पर्टिकुलर एज के बाद दें
0: जी।
2: इसकी कोई भी खाना अगर आप देते हैं बच्चों को, आप बच्चों को खाना खिलाना है तो इसकी एज लिमिट है उसकी
0: जी जी, तब उसको शुरू, मतलब नवजात शिशु को एकदम से शहद नहीं देना
2: चाहिए, उसको एक साल के बाद ही आप शहद दें बच्चे को हमारे।
0: नमक और जो मीठा शक्कर है उसका क्या कंसेप्ट है?
2: मैं तो यही मानता हूँ जितना आप लेट कर सकते हैं उतना लेट करिए, क्योंकि आजकल जो डायबिटीज है, जो हाइपरटेंशन है, जो बाकी जो मरीज जो बढ़ रहे हैं मैम, बहुत कॉमनली बढ़ रहे हैं। आप जितना अवॉइड कर सकते हैं बच्चों को इन चीजों से उतना ही बेटर है। क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे कि हमारे पापा दादा लोगों को शुगर बीपी होता था, अब हमारे लोगों को हो रहा है
0: जी, जी।
2: अब आगे आने वाली जनरेशन को और जल्दी शुगर बीपी होगा
0: जी, जी।
2: जिससे ओबेसिटी बढ़ रही है आज आप देख रहे हैं करके, इसलिए
0: तो जैसे कहते हैं ना कि नमक में आयोडीन होता है, तो यदि बच्चे को वो आयोडीन नहीं मिल रहा है तो क्या दूसरे विकास प्रभावित होंगे?
2: नहीं मैम, दूसरे विकास नहीं होते। बाकी जो आयोडीन है बच्चा जो, बाकी अगर जनरल बैलेंस डाइट अगर लेता है बच्चा हमारा, तो उसको उससे सब कुछ मिल जाता है, बस बैलेंस डाइट रहे। मतलब उसके प्लेट में फल भी है, फ्रूट्स भी है, वेजिटेबल्स भी है, डाइटी फाइबर्स भी है, कार्ब भी ले रहा है वो, प्रोटीन भी ले रहा है, फैट भी ले रहा है, तो फिर उसको इतना टेंशन की बात नहीं है
0: जी। डॉक्टर साहब एक ब्रेक हम यहाँ पर लेते हैं और उसके बाद हम अपनी बातचीत को कंटिन्यू करेंगे।
2: बिल्कुल।
3: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे मित्तल हॉस्पिटल स्टोन एंड लेजर सर्जरी सेंटर कोटा, किडनी स्टोन या प्रोस्टेट, न्यूनतम चीरा अधिकतम आराम। अब यूरोलॉजी समस्याओं का स्थायी समाधान पाएं, अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जयेश मित्तल गुर्दा पथरी प्रोस्टेट एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ के साथ दूरबीन पद्धति से प्रोस्टेट का ऑपरेशन, बिना छेद बिना चीरे के गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध, आयुष्मान योजना एवं इंश्योरेंस सुविधा के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा। संपर्क करें फोन नंबर 7976192795। मित्तल हॉस्पिटल 368 राजीव गांधी नगर स्पेशल, कॉमर्स कॉलेज चौराहा कोटा।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्य वाणी आप सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में आज विषय है तेज गर्मी और बदलते मौसम में बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर आरिफ शेख। तो श्रोताओं, विषय से संबंधित आपकी कोई समस्या है, कोई सवाल है आपका, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 2941142 और कोटा का STD कोड है 0744। तो डॉक्टर साहब, हमने बात करी पैक्ड फूड के बारे में। आपने बताया कि नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे बीपी शुगर की समस्या आने में हेल्प हो सकती है, बढ़ जल्दी आ सकती है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। तो माए किस तरह का जैसे ताज़ा खाना बना करके खिलाएं, क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है बच्चे तुरंत मुंह को मोड़ लेते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं, टाइटली लेते ही नहीं है।
3: बिल्कुल।
2: तो क्या करना चाहिए?
3: बिल्कुल मैम, एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग जो बच्चों को खाना खिलाते हैं, हम फोर्स फीडिंग करते हैं
2: जी।
3: हमको नहीं पता कि बच्चों को कितनी रोटी खानी है, कितना निवाला खाना है। बच्चों को एक्चुअली जितना उनको खाना है वो इतना ही खाएंगे।
2: अच्छा।
3: तो आप ट्राई करें कि बच्चों को एनर्जी डेंस खाना देने का ट्राई करें। एनर्जी डेंस का मतलब मेरा ये है कि अगर आप दाल लेते हैं तो उसमें चावल डाल सकते हैं, अगर आप अंडा खाते हैं तो उसमें अंडे को बॉईल करके जो येलो वाला जो पोर्शन है, जो व्हाइट वाला जो पोर्शन है वो डाल सकते हैं, आप उसमें घी मिला सकते हैं। तो बच्चों को सब कुछ मिल गया, उसमें फैट मिल गया, उसमें फाइबर्स मिल गए, उसको प्रोटीन मिल गया।
2: आपने जिक्र किया दाल में थोड़ा चावल मिला दी, दाल चावल हो गया,
3: दाल चावल हो गया।
2: कितना, हाफ कटोरी हो या पूरा कटोरी हो, कैसे?
3: मैम डिपेंड करता है कि बच्चा कितना ले पाता है। अगर मान लो बच्चा बड़ा है आपका तो बड़ा बॉल कर सकते हैं, अगर आप बच्चा छोटा है, बच्चा अगर आपका जैसे हम बोलते हैं एक साल के बाद भी आप बच्चों को दे सकते हैं।
2: हाँ।
3: जैसे कई बार क्या होता है, हम सुबह सो के उठते हैं, कई मदर्स बच्चों को दूध और चाय दे देती हैं, दूध बिस्किट दे देती हैं, उसके बदले आप मॉर्निंग में अगर ये अगर मिक्सचर बना के रखें मॉर्निंग में।
2: हाँ।

0: वो बच्चों को एक चम्मच देते हैं, दो चम्मच भी अगर दे देते हैं बच्चे को, तो बच्चे के लिए सफिशियंट है।
1: अच्छा।
0: तो बच्चा उसके बाद खाना नहीं भी खाएगा तो चलेगा हमको, इसलिए
1: एक बहुत कॉमन समस्या है लैक्टोज इनहेरिटेंस, है ना, ये क्या है कि दूध से एलर्जी होने लगी है?
0: मैम एक्चुअली लैक्टोज इंटॉलरेंस पहले भी होता होगा, हमको इतना अवेयर नहीं थे हम उस चीज़ के बारे में, अभी हम थोड़े अवेयर हो गए उस चीज़ के बारे में, लेकिन डरने वाली बात होती नहीं है। कई प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंस होने के बावजूद भी हम उनको ले सकते हैं।
1: जैसे किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है ऐसे दूध से या दूध से बने पदार्थों से,
0: बिल्कुल,
1: तो क्या उन्हें बिल्कुल नहीं देना है?
0: मैम उनको बच्चों का रिस्क हो जाता है बच्चों का, मगर बच्चा अगर लेता है वो मैम डिपेंड करता है कि सीवियरिटी कितनी है, वो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। अगर बच्चा माइल्ड कैटेगरी में है तो कुछ कुछ चीज़ें बच्चा ले सकता है, अगर मॉडरेट और सीवियर है तो हम कुछ चीज़ों को अवॉइड करने का हम ट्राई करते हैं। उसके अलावा जो हमारे अल्टरनेटिव हैं जो उसके ले सकते हैं बच्चे, वो हम प्रेफर करते हैं, वो ले सकते हैं उसके बदले, तो वो हम डॉक्टर
1: के सलाह से। माइल्ड है या मॉडरेट है क्या, इसकी भी जांच करवानी पड़ती है?
0: मैम बिल्कुल, इसकी जांच होती है, जिस पे डाइटिशियन को आप दिखा रहे हैं वो आपको बताएगा इसके बारे में कि लैक्टोज इंटॉलरेंस है बच्चे को, आप अगर देना चाहें तो कितना दे सकते हैं बच्चे को, कितने अमाउंट में दे सकते हैं, कब तक दे सकते हैं, कब तक अवॉइड करना है, कितना अवॉइड करना है, वो आपको डाइटिशियन बताएगा।
1: एक और जो कॉमन समस्या है वो जैसे छोटी मोटी कोई सर्दी खांसी जुकाम होता है तो माएं कुछ दवाएं घर पे रखती हैं और वो दे देती हैं छोटे बच्चों को,
0: बिल्कुल,
1: तो क्या ये ठीक है?
0: मैम ये दोनों बातें हैं मैम, एक्चुअली जो दवा की जो डोज है बच्चों की वो बच्चों के वजन से दी जाती है। अगर बच्चे का जो वजन है अगर बढ़ रहा है, अगर बच्चे का वजन पिछले महीने 6 किलो था अभी 7 किलो हो गया है, तो आपको डोज नहीं पता, फर्स्ट। सेकंड मैम ये है कि जो दवा जो अगर ओपन हो जाती है तो ओपन होने के आप उसको 1 महीने तक उसको दवा को यूज कर सकते हैं
1: जी।
0: और अगर वो एंटीबायोटिक है तो आप उसको 3 दिन या 5 दिन ही यूज कर सकते हैं
1: जी।
0: उसके बाद उस दवा की जो असर है, जो इफिशियंसी होती है वो कम हो जाती है। तो इसलिए दवा कब ली गई है, कब दी गई है, वो मैटर करती है। और हमारा सलाह होता है कि जो दवा देते हैं बच्चों को, वो बच्चों को डॉक्टर की सलाह से ही आप दवा दें
1: जी। हाँ बहुत ही इमरजेंसी है तो एक अलग
0: तो
1: बात है,
0: अलग बात,
1: अदरवाइज दिखाकर ही दवाई दें। अब बात करते हैं जैसे बच्चों को जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम जो होता है तो बहुत से लोग फ्लू वैक्सीन लगवाते हैं, क्या ये लगवाना चाहिए?
0: मैम ये बिल्कुल लगवाना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है मैम कि अगर आप देखें तो गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में 5 ऐसी वैक्सीन है जो गवर्नमेंट नहीं लगाती वो हम लगाते हैं
1: जी। जी
0: प्राइवेट सेक्टर जैसे फ्लू वैक्सीन है, टाइफाइड वैक्सीन है, हेपेटाइटिस ए वाली वैक्सीन जो होती है, MMR वैक्सीन जो है, ये वो वैक्सीन है जो गवर्नमेंट नहीं लगाती। गवर्नमेंट के भी कुछ अलग अपने प्रोटोकॉल्स हैं जो नहीं लगाते, इस वजह से नहीं लगाती। उसमें एक फ्लू वैक्सीन भी है। फ्लू वैक्सीन मैम एक्चुअली होता क्या है कि जो मौसम जो बदलाव हो रहा है, मौसम जो बदलता है, तो उसमें वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और वायरल भी बेसिकली बहुत कई तरह के होते हैं, जैसे कि मोस्ट कॉमनली जो हम मान के चलते हैं वो RSV होता है, रेस्पिरेटरी सिंसेशियल वायरस होता है। ये जो वैक्सीन जो होती हैं बेसिकली बच्चों को उसको ठीक करने में, उसके जो फ्रीक्वेंसी है बेसिकली वो कम करने, बीमार की फ्रीक्वेंसी कम करने में उसको हेल्प करती है। तो आपको बच्चे की उम्र के अकॉर्डिंगली वैक्सीन लगवा देनी चाहिए
1: जी। तो जैसे छोटा बच्चा है तो क्या एक डोज ही होती है या एक से ज्यादा होती है इसकी?
0: मैम अगर बच्चा 5 साल या 6 साल से छोटा है तो 2 डोज लगती है, उसके ऊपर वाले बच्चों को 1 डोज लगती है, इवन एडल्ट भी लगवा सकते हैं उसको
1: जी। अब छोटे बच्चों की ही अभी हम बात कर रहे हैं, बड़ों तक तो हम पहुंचे ही नहीं है। छोटे बच्चे जो बोल नहीं पाते, समझने बहुत कुछ लगते हैं, वो आजकल बहुत कॉमन समस्या है, मोबाइल बहुत देखते हैं।
0: बिल्कुल मैम,
1: क्या है, क्यों ये सब हो रहा है और कैसे इससे बच्चे को दूर रखा जाए, माओ को क्या करना चाहिए?
0: मैम इसका मोस्ट कॉमनली वजह यही है जैसे हमने पहले डिस्कस करा कि हम लोग के जमाने में हम बाहर जाते थे खेलने के लिए, उसमें कुछ सोशल मीडिया का कुछ था नहीं क्रेज। अभी बाहर जाना उतना सेफ नहीं है, हर जगह पॉसिबल हो नहीं पाता, कई लोग फ्लैट्स में रहते हैं तो वहां पर गार्डन नहीं है, तो उस कंडीशन में अगर बच्चा बाहर नहीं जा पा रहा है, आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं बच्चे को, तो फोन के बदले में कई गेम्स आते हैं, आप वो बच्चों को खिला सकते हैं। जैसे बच्चा आप अगर बड़ा है, समझदार है, आप डांस कर सकते हैं साथ में उसके, मतलब बहुत मुझे लगता है इसमें कुछ भी साथ में नहीं लगेगा आपको। डांस करना है, गाना चलाइए, डांस कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं, कुछ एक्टिविटी होती है जो फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं आप, कई ऑप्शन है बच्चों को ट्राई कर सकते हैं जिससे बच्चा इंगेज रहे उन चीज़ों में और फोन ना चलाए, टीवी ना देखे
1: जी। जी
0: इसलिए बच्चों में, आजकल के बच्चों में हमारा वर्चुअल ऑटिज्म बहुत बढ़ रहा है। वर्चुअल ऑटिज्म बेसिकली मैम लास्ट में डिस्कस हमारा टॉपिक भी हुआ था हमारे यहाँ पे अपने आकाशवाणी में, इसमें यह है कि जो बच्चे स्टार्टिंग से फोन बहुत चलाते हैं, टीवी बहुत देखते हैं, वो बहुत लेट बोलना सीखते हैं, वो बच्चे अपने में ही रहते हैं, गुमसुम से रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, इंटरेक्शन नहीं लेते करके, बहुत फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है इनकी।
1: तो चाहे जैसे घर के जो लोग हैं, पेरेंट्स हैं या अन्य, उनसे बार बार बात करें, बोलें, उन्हें बुलवाएं, तब बच्चे बोलेंगे,
0: तब बच्चे बोलेंगे मैम,
1: और उनका माइंड डाइवर्ट करके रखें,
0: बिल्कुल मैम,
1: है ना, उन्हें खिलाएं, एंगेज रखें, तब जाकर के वो मोबाइल से दूर हटेंगे। तो ये तो हुई जो छोटे बच्चे, और मुझे लगता है 3-4 साल तक के बच्चों की ये समस्याएं हैं। अब जैसे जो स्कूल गोइंग बच्चे हो जाते हैं, उनमें क्या कुछ

0: अलग तरह की और समस्या देखने में आती है, बहुत से बच्चे जाकर के मिक्सअप नहीं हो पाते, बहुत गुमसुम रहते हैं।
1: बिल्कुल, एक्चुअली मैम होता क्या है कि जैसे आजकल बच्चे जो बाहर खेलने नहीं जाते, घर में ही रहते हैं मोस्टली, स्टार्टिंग से उनकी जो परवरिश होती है वो सिंगल की तरह ही होती है, तो बच्चों को इतना हैबिट नहीं होता है हमें कैसे बात करना है क्या नहीं करना करके। और आजकल ये जो बुलिंग जो सिस्टम जो मैम चल रहा है आजकल, जो स्कूल में बुलिंग करते हैं भाई ये प्रॉब्लम कर रहे हैं उसको छेड़ रहे हैं, बच्चा पतला बहुत है या बच्चा ठीक है, बच्चा हैवी है बच्चा करके, जो भी कई चीजें होती हैं, तो वो थोड़े चीजें बढ़ रही हैं करके आजकल, उसके लिए
0: और करने वाले भी वही उसी उम्र के बच्चे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो कई बार इसलिए मैम मैटर करता है कि बच्चे जो है उसको अगर कहीं।
0: डॉक्टर साहब एक कॉलर है।
1: जी मैम बिल्कुल।
0: हेलो।
2: हेलो नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
2: मैं महेश कोटा से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब को नमस्कार।
1: जी नमस्कार।
2: डॉक्टर साहब ऐसा है कि जो इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगता है
1: जी जी,
2: तो इसमें बच्चे की एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए? क्योंकि मेरे जो मतलब नमस्ते हैं दोनों, एक 7 साल का एक 14 साल का 15 साल का भी है।
1: जी जी
2: है ना, तो 12 का 7 का है ना, तो इन्फ्लुएंजा जो इंजेक्शन आता है
1: बिल्कुल,
2: तो वो सर कब लगाना चाहिए और उसकी क्या डोज होनी चाहिए?
1: देखिए डोज के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि डोज ये पब्लिकली बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो एज जो लिमिट है बेसिकली उसका, वो हम ऐसा मानते हैं कि अगर 8 साल से छोटा बच्चा है तो हम उसको 2 डोज लगाते हैं, एक अभी लगाएंगे एक एक महीने के बाद लगाते हैं, और 8 साल के बाद के जो बच्चे होते हैं उसको सिंगल डोज लगाते हैं उसको, और ईयरली हम उसको बूस्टर डोज लगाते हैं।
0: ठीक, धन्यवाद महेश जी कॉल किया आपने। आप कह रहे थे ईयरली बूस्टर डोज लगती है, तो क्या हर साल लगती है ये?
1: बिल्कुल मैम, एक्चुअली होता क्या है कि बेसिकली जो वैक्सीन जो हम लगाते हैं बच्चों को उसकी इफिशियंसी होती है, जो मान लीजिए हमने कल मैंने अगर वैक्सीन लगवाई है वो तो वैक्सीन 1 साल तक ही मोस्टली काम करेगी, उसके बाद मेरी बॉडी में दोबारा उसके इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए हम उसके बूस्टर डोज लेते हैं।
0: तो मेरा मतलब है जानने का, क्या लाइफ में हर साल ये बूस्टर डोज लगेगी?
1: लगा सकते हैं अगर आप, अगर आप उसमें कैटेगरी में आते हैं कि आप बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं या आप,
0: या जब नॉर्मल हो जाए तो फिर छोड़ भी सकते हैं।
1: बिल्कुल, जैसे हम बिल्कुल मैम बिल्कुल बिल्कुल।
0: बुलिंग की बात हो रही थी स्कूल में, आजकल बुलिंग का चल पड़ा है
1: जी मैम,
0: और हम उम्र के ही बच्चे ये करते हैं।
1: बिल्कुल मैम, तो उसके लिए मैम ये सलाह दूंगा कि आपको कहीं पे कोई बुली करता है तो आप पहले पेरेंट्स को बताएं, टीचर्स को बताएं, या क्लास में कोई आपका कोई क्लोज फ्रेंड है या क्लास में कोई टीचर है करके, जो भी आपको पॉसिबल हो सके, क्योंकि बच्चे ये बात बताते नहीं है, बच्चे अपने में ही बात रख लेते हैं कि भाई हमको घर वाले क्या बोलेंगे, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, या उस तब से।
0: और इसके लिए पेरेंट्स पहले उन्हें ये बताएं कि बच्चों आपके साथ कोई भी बात होती है आप सब कुछ हमें बताएं।
1: बिल्कुल मैम बिल्कुल
0: जी। अब थोड़े जो बड़े बच्चे होते हैं जहाँ प्यूबर्टी आने लगती है उनकी बात करते हैं, बॉयज में काफी कुछ चेंज आते हैं, गर्ल्स में भी आते हैं, थोड़ा उनका जिक्र कीजिए, उस टाइम किस तरह की समस्याएं और आती हैं?
1: बिल्कुल मैम, मैम लड़कों में जो बदलाव आने शुरू होते हैं, लड़के थोड़े से मस्कुलर होने लगते हैं, लड़कों को लगता है कि मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अकेले काम कर सकता हूँ काम, या उनमें जो कॉन्फिडेंस लेवल जो है थोड़ा बूस्टअप हो जाता है। कुछ बच्चे जो हैं वो मुझे लगता है कि मैम मेन एज ग्रुप होती है कि किस डायरेक्शन में जाते हैं, अगर आपको सही सलाह मिलती है, सही गाइडेंस अगर आपको मिलती है तो आप सही ट्रैक पे चलते हैं। कई बच्चे जो होते हैं कई बार कुछ और एक्टिविटीज में ड्रग है अपना, सिगरेट्स हैं करके अपना, स्मोकिंग, उसको बहुत एंगेजिंग समझते हैं, बहुत फैसिनेटिंग लगता है उनको। तो
0: एक कॉलर
1: जी मैम बिल्कुल।
0: हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। हेलो, चलिए डॉक्टर साहब अपनी बात को हम आगे बढ़ाते हैं।
1: जी मैम, जो बच्चे जो हैं बेसिकली एडोलेसेंस एज ग्रुप वाले बच्चे, तो मेनली जो लड़के होते हैं, मेनली अब तो लड़कियां भी है, मुझे लगता है आपको सही गाइडेंस नहीं मिले, सही ट्रैक नहीं मिले, तो आप ट्रैक से बदल भटक सकते हैं,
0: उसको फैशन समझते हैं बच्चे।
1: बिल्कुल मैम बिल्कुल, उनको लगता है कि यही करना आज का ट्रेंड है, जो नहीं करता वो मतलब अच्छा नहीं है करके उसको, तो आपको समझ होनी चाहिए, तो पेरेंट्स को इस चीज के लिए अवेयर होना चाहिए कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इवन टीचर्स को मालूम होना चाहिए कि बच्चा किस एक्टिविटी में एंगेज है, अगर आप अर्ली ही इस चीज को रोक देंगे तो आगे फिर बच्चा फिर समझ जाएगा बच्चा हमारा।
0: और एक और जो प्रॉब्लम इस एज में आती है, हम ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं।
1: बिल्कुल मैम बिल्कुल, ये बहुत कॉमनली देखा जाता है मैम करके, कि एक्चुअली होता क्या है मैम, जैसे हम एडल्ट उसमें आते हैं, एडोलेसेंस एज ग्रुप में आते हैं, तो हमारे जो हॉर्मोन्स जो है हमारे वो थोड़े ज्यादा थोड़े कम होने शुरू होते हैं इस चक्कर में, तो इसलिए अट्रैक्शन या बॉन्डिंग होती है
0: जी। लेकिन प्रॉपर गाइडेंस बच्चों को देना
1: बिल्कुल,
0: और मुझे लगता है ये पहली जिसे पाठशाला कहते हैं घर है, और पेरेंट्स सबसे बड़े टीचर हैं।
1: बिल्कुल मैम बिल्कुल, अब घर से ही सिखाएं बच्चों को क्या करना है क्या नहीं,
0: क्या नहीं करना है, और कोई भी बात होती है तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताएं।
1: बिल्कुल मैम
0: जी। हेलो
3: हाँ जी नमस्कार मैडम।

0: जी नमस्कार,
1: लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ उज्जैन से।
0: जी लोकेंद्र जी नमस्कार, स्वागत आपका।
1: जी धन्यवाद, अभी आपका मैं प्रोग्राम सुन रहा हूँ
0: जी
1: ऐप के माध्यम से।
0: जी
1: जी मैडम जी, मेरा प्रश्न ये है कि अधिकतर ये गर्मी के दिनों में जो छोटे बच्चे रहते हैं 0 से लेके 5-6 वर्ष तक, इनमें दस्त और डायरिया, जी मचलाना, इस प्रकार की परेशानियां ज्यादा रहती है, तो कभी कभी ये परेशानियां बहुत ही ज्यादा हो जाती है।
0: जी
1: तो इस पे मतलब घर में जैसे बच्चे के खान पान में गर्मी के दिनों में कैसा लिक्विड प्रदान कर, जैसे ORS रहता है WHO के अनुसार, तो ये ORS भी दे सकते हैं क्या?
2: बिल्कुल जी सर, एक्चुअली होता क्या है सर कि गर्मी के मौसम में खाना जो है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो अब ऐसा नहीं कि आपने सुबह खाना बनाया और रात को आप खाना खा रहे हैं, अब ट्राई करें कि फ्रेश खाना ही बच्चे को देने की कोशिश करें, एक तो आप ये बदलाव करें। सेकंड, बच्चा अगर बाहर का कोई जंक फूड खाता है बाहर से, तो वो ट्राई करें उसको अवॉइड करें, क्योंकि जंक फूड कब का बना हुआ है कब नहीं बना हुआ हमको नहीं पता उस चीज़ का। थर्ड ये होता है कि जो आपने एज ग्रुप बताया टिल 5 ईयर्स तक के बच्चे, वो बच्चे गर्मी के मौसम में आते हैं बिना अपने हाथ वाथ धोए कुछ पानी पी लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं करके, तो वो आपको सफाई का ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, आप घर पे बना हुआ ORS बच्चों को पिला सकते हैं, लेकिन ORS कितना पानी में मिलाया है वो मैटर करता है। आप अगर देखेंगे ORS को, 2 पैकेट आते हैं ORS के, एक बड़ा वाला आता है एक छोटा वाला आता है। जो बड़ा वाला जो पैकेट है वो आपको 1 लीटर पानी में पूरा मिक्स करना है और बच्चे को जितना हो सके बच्चे को पिलाने का ट्राई करना है। छोटा वाला पैकेट जो है आपको 1 गिलास पानी में मिलाना है और जितना हो सके उतना पिलाना है। कई बच्चे हमारे ORS नहीं ले पाते हैं, तो ORS के टेट्रा पैक भी आने लगे हैं आजकल। अब ध्यान रखें कि वो बिल्कुल बिल्कुल ऑरेंज है, मैंगो है, लेमन है, उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखें कि ORS ही पिलाएं, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक भी आजकल आने लगी है ये। उसके अलावा बच्चा अगर नहीं ले पाता है ORS, अब नारियल पानी दे सकते हैं बच्चे को, लस्सी है, छाछ है, दही है, मतलब
0: नींबू
2: शिकंजी बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल मैम दे सकते हैं। होममेड ORS भी आप ट्राई कर सकते हैं, कितना शुगर मिलाना है कितना नमक मिलाना है वो आप देखना है करके उसमें।
1: जी
0: धन्यवाद लोकेंद्र जी। जी डॉक्टर साहब, हमारी बात हो रही थी जो बड़ी एज के बच्चे हैं उनको अपना ध्यान रखना है, और पेरेंट्स जो है घर पहली पाठशाला है, पेरेंट्स सबसे बड़े शिक्षक हैं, उन्हें समझाना चाहिए और है ना अपने बच्चों को गाइड करना चाहिए। इसके अलावा इस एज में जो टीन एज होती है इसमें भी क्या कोई टीकाकरण, कोई वैक्सीन होती है बच्चों के लिए?
2: मैम बिल्कुल, एडोलेसेंस में भी होती है, एडल्ट में भी वैक्सीनेशन होती है। वो बच्चों की एज के अकॉर्डिंगली, बच्चा क्या एज है बच्चे की, वो लड़का है या लड़की है, जैसे आजकल HPV वैक्सीन का बहुत ट्रेंड चल रहा
0: HPV,
2: है आजकल बिल्कुल
0: जी,
2: सरकार जी, बहुत प्रमोट कर रही है वैक्सीन लगवाने के लिए, बिल्कुल वो लड़कियों को भी लगवानी चाहिए, लड़कों को भी लगवानी
0: चाहिए। ये क्लियर कीजिए, लोगों को ये गलत फहमी है कि ये सिर्फ लड़कियों को लगवाना है।
2: बिल्कुल मैम नहीं, एक्चुअली दोनों को ही लगाना है। एक्चुअली HPV जो होता है मैम वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है, ठीक है, मेनली गर्ल्स में बीमारी देखी जाती है लेकिन लड़कों के अंदर भी वो बीमारियां होती हैं। तो आपको वैक्सीन जरूर लगवानी है जहां से आपको पॉसिबल हो, अपने नियरेस्ट पेडियाट्रिशियन से बात करें, आपके डाउट्स क्लियर करें, क्योंकि सोसाइटी में डाउट्स बहुत हैं चीज को लेके, तो सारे डाउट्स
0: क्या इसकी भी स्क्रीनिंग होती है कि किस तरह के बच्चे को लगाए जा सकते हैं, यदि कोई और प्रॉब्लम पहले से है तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये वाला टीका नहीं लगता?
2: मैम एक तो अगर फैमिली हिस्ट्री है आपकी, अगर फैमिली में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आपको बिल्कुल लगवाना चाहिए इस चीज को टीका। अगर आपको लगता है कि आप जिस एरिया में रहते हैं, जैसे सोसाइटी में रहते हैं, अगर वहाँ पे वो प्रेवलेंट है तो आप वो लगा सकते हैं, टीका लगा सकते हैं। और हमें लगता है कि अभी ये चीज लगवानी चाहिए क्योंकि आजकल जैसे कैंसर बढ़ रहा है, जितने कैंसर के हम देख रहे हैं, तो आपको बेटर है कि लगवानी चाहिए। अगर हमारे पास फैसिलिटी है तो बाद में रिग्रेट होने से बेटर है कि हम पहले
0: पहले लगवाएं। तो लड़कों में खासतौर से इसमें किस तरह का बचाव होता है, किस तरह की?
2: बिल्कुल मैम, लड़कों में एक्चुअली होता क्या है कि जो पेनाइल कैंसर है बेसिकली, एनोरेक्टल कैंसर जो होता है वो कॉमन होता है। आप उस चीज का ध्यान रखें कि आप नीचे का सफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज हैं तो आप प्रोटेक्शन यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उन बातों का आपको ध्यान रखना होता है चीजों के अंदर।
0: और गर्ल्स में जहां तक मेरी जानकारी है, ब्रेस्ट कैंसर के सिवा सारे कैंसर्स इससे
2: बिल्कुल वो कवर हो जाते हैं,
0: कवर हो जाते हैं।
2: सर्वाइकल कैंसर जो सेकंड मोस्ट कैंसर है फीमेल्स के अंदर, वो मोस्टली से कवर हो जाता है।
0: जी जी, तो ये जरूर HPV वायरस का जो कैंसर का टीका है जरूर लगवाना चाहिए सभी को। तो ये तो बात हुई टीका की, बड़े होते बच्चों के लिए हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा अब जो बच्चे हैं, जैसा आपने पहले भी जिक्र किया कि आउटडोर एक्टिविटीज कम हो गई हैं, तो फिट रहने के लिए ओबेसिटी ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए?
2: बिल्कुल मैम, मैम ओबेसिटी का आजकल जो मेनली कारण जो देखा जाता है वो जंक फूड देखा जाता है
0: जी।
2: तो आप ट्राई करें बच्चों को स्टार्टिंग से ही जंक फूड अवॉइड करें जितना आप अवॉइड कर सकते हैं। आई नो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है, पेरेंट्स तो मना करते हैं लेकिन जो आसपास जो दादी हैं, बाकी जो भी कई लोग रिलेटिव लोग जो होते हैं, वो एक बिस्किट भी खा लेगा
0: जी,
2: या एक अगर टोस्ट भी खा लेगा
0: तो क्या बिस्किट और टोस्ट भी

0: फूड में शामिल है?
1: बिल्कुल मैम, एक्चुअली वो मैदे का बना होता है। कई कंपनियां इसको वो करती हैं कि हमें हमारा आटे का बना है, वो आटे का बना है, मैदा नहीं है। लेकिन अगर आप उसको लेबल पढ़ेंगे, उसका कंपोजिशन अगर आप पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा रहेगा कि मेनली जो है वो मैदा ही है
0: जी,
1: आटे की मात्रा बहुत कम है उसमें। और मेरा ऐसा मानना है मैम, आप घर पे खाना बनाएं, घर पे कई फैसिलिटी।
0: तो डॉक्टर साहब एक बार थोड़ा सा क्लियर करेंगे, जब बिस्किट और टोस्ट आप कह रहे हैं ये जंक फूड है, तो क्या ये जो नमकीन है,
1: बिल्कुल
0: बनाना चिप्स,
1: बिल्कुल
0: सब कुछ ये जंक फूड में आता है?
1: मैम उसमें ऑयल है, ऑयल कब का बना हुआ है मैं नहीं पता। बाकी जो हम बाहर का जो जंक फूड है कब बना है, कब उसकी एक्सपायरी, कब पैकिंग नहीं पता करके, उसमें क्या किस तरीके से बनाया है हमें नहीं पता। मैं हर कंपनी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन वो जनरलाइज वे में अगर देखें करके अपना, तो अगर वो चीजें बढ़ रही है इंसिडेंस, क्योंकि आप चिप्स की बात करेंगे तो नमकीन सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है, जो क्रेविंग होती है बच्चों को
0: जी, तो ये सब जंक फूड में है। तो भुना चना, भुना मूंगफली, ये जो हमारे देसी उसमें भाड़ में भुना हुआ है,
1: हाँ,
0: ये ओके है,
1: वो घर में घर का बना चलेगा मैम।
0: जी जी जी, तो इस बात का ध्यान रखना है कि जंक फूड ना खाएं, आउटडोर एक्टिविटीज करें,
1: बिल्कुल करें,
0: जिससे ओबेसिटी ना आए,
1: ना आए बच्चों,
0: एक्सरसाइज करें, है ना।
1: बिल्कुल मैम।
0: और आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए, क्या बताना चाहेंगे, कोई ऐसा पॉइंट जो हम अभी तक नहीं कवर कर पाए हैं, और उनकी जानकारी के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए ये लाभदायक है, वो भी जिक्र कीजिए आप।
1: मैम आप कपड़ों का ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि आजकल होता क्या है कि हम बच्चों को गर्मी के मौसम में किस तरह के कपड़े पहनाएं, हम कोशिश करें बच्चों को कॉटन वाले कपड़े ही पहनाने का ट्राई करें, क्योंकि कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो स्वेट को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। हम सिंथेटिक वाले कपड़े या पॉलिस्टर वाले जो कपड़े होते हैं वो ना पहनाएं, उससे हीट रैश होने की संभावना बच्चों में बढ़ जाती है
0: जी। तो एक तो बात हो गई कपड़ों का ध्यान रखें, खाने पीने की बात हो गई, एक्सरसाइज की हो गई, आउटडोर एक्टिविटीज करनी चाहिए। इसके अलावा बच्चे किस तरह से अपनी स्टडीज में कॉन्सेंट्रेट कर पाएं, इसके लिए आप क्या कहेंगे, ये बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए दोनों के लिए होगा?
1: बिल्कुल मैम, एक्चुअली हो क्या क्या मैम, एक्चुअली अगर आप बच्चों के एक्चुअली लोड बहुत हो गया मैम पढ़ाई का, बच्चा स्कूल से आता है फिर कोचिंग जाता है, उसको सेल्फ स्टडी करने का समय नहीं मिल पाता। आप ट्राई करें कि अगर आप हाउस, अगर आप घर पे रहते हैं, आप जॉब नहीं करते, अगर जॉब भी करते हैं, आप शाम को बच्चों को जो पढ़ाया गया है स्कूल में, उसको बच्चों को समझ जिस लैंग्वेज में आ जाए उसमें समझाने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल वो चीज़ को याद करना, उस चीज़ को वो देखना, क्योंकि आजकल प्रैक्टिकली अप्लाई करना नहीं रहा, बच्चे समझ नहीं पाते कि मैंने कुछ पढ़ा, मैंने वो क्या सिग्निफिकेंस है, क्या यूज है करके उसका। तो आपको उसका यूज बताएं बच्चों को, और कहां डे टू डे लाइफ में उसको यूज कर सकता है वो समझाएंगे, तो बच्चों को इजीली वो चीज याद हो जाएगी
0: जी। वैसे बच्चे रट लेते हैं।
1: एग्जैक्टली मैम,
0: रटाफिकेशन समझाना ज्यादा जरूरी
1: है। बिल्कुल मैम
0: जी जी। तो ये तो बात हुई किस तरह से पढ़ाई में उनके साथ इन्वॉल्व हो, इसके अलावा और बच्चों के विकास में क्या पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए?
1: मैम खाने पीने का ध्यान रखें, बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी करवाएं, बच्चों को फोन टीवी नहीं दिखाएं, बच्चों को अपना अगर पॉसिबल है तो घर में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करवाते रहें बच्चों को, ताकि माइंड्स की आजकल बहुत हो गया कि पर्टिकुलर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग हम बात करें तो बच्चों को जो ग्रिप्स होती हैं बच्चों की माइंड को शार्प करने के लिए जो चीजें होती हैं, आजकल कई चीजें अवेलेबल हो गई हैं, और जहां भी रहते हैं, जिस डेटिशन के पास में रहते हैं, जो एज है बच्चे का अपना।
0: एक कॉलर है, हेलो
2: हेलो बेटा जी, पंजाब से बोलते हैं बेटा जी।
0: जी नमस्कार, स्वागत आपका।
2: धन्यवाद बेटा जी, धन्यवाद जी, प्यार से सत्कार से सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी, क्या सवाल है आपका?
2: बेटा जी मैं पहली बार कॉल लगाया है जी, मुझे लखेंद्र वर्मा ने जोड़ा है आपके साथ
0: जी।
2: ते मुझे जी पहले तो ये दसो जी, कोटा आकाशवाणी रेडियो कोटा है जी?
0: जी कोटा आकाशवाणी है बिल्कुल।
2: हेलो फरमाइश चलता है प्रोग्राम, क्या चलता है जी?
0: ये स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम है आरोग्यवाणी, इसमें डॉक्टर साहब बच्चों के डॉक्टर साहब हैं और वो उसके संबंध में जानकारी दे रहे हैं। कोई ऐसा सवाल आपका हो तो बताइए
2: बेटा जी। सवाल तो ये है जी, हम आप यही पूछते थे जी, एक बच्चे है जी 7-8 साल के जी, उसमें नजला नहीं आता, रेशा आता है जी नाक में
0: जी, नजला हो जाता है जी।
2: हाँ जी, एक खांसी हो, दो चीजें ही एक खांसी हो जाती है जी।
0: जल्दी जल्दी होती है?
2: हाँ जी हाँ जी, दो समस्या है जी।
0: जी आप डॉक्टर साहब की बात सुनिए अपने मोबाइल फोन पे या रेडियो पे, है ना?
2: हाँ जी ठीक
0: जी
2: है।
0: शुक्रिया आपने कॉल किया,
2: सत श्री अकाल बेटा।
0: सत श्री अकाल जी।
1: जी मैम, इन अंकल का डाउट था कि बच्चा जो है 7-8 साल का बच्चा है हमारा, तो बहुत जल्दी खांसी और जुकाम हो जाता है। मैम इसमें कई चीज फैक्टर प्ले करती है। आजकल जैसे मैंने आपको बताया कि जो जंक फूड है उससे बच्चों की जो इम्यूनिटी पावर है वो कम हो जाती है, बच्चे जो खाना नहीं खा रहे हैं, जो बैलेंस डाइट हमें लेनी चाहिए बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, आउटडोर एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो अगर इम्यूनिटी पावर हमारी कम रहेगी तो बच्चा फ्रिक्वेंटली बीमार पड़ेगा। तो इसलिए उसको लगता है कि इस टाइम पे जहां भी वो रहते हैं अपने नियरेस्ट डाइटिशियन से बात करें, भाई बच्चे का वर्कअप करवाएं, बच्चे का कि भाई बच्चे में क्या कमी है, क्यों वजह हो रही करके अपना। इसलिए

0: और कुछ ज्यादा नहीं हो पा रहा है तो आपने वैक्सीन बताया, फ्लू का वैक्सीन लगता है, वो लगवाएं। अच्छा, कई बार ऐसे हिडन रीजंस होते हैं, जैसे कमरे में सीलन है, फंगस है, ये बहुत बड़ा रीजन होता है बार बार सर्दी जुकाम निमोनिया होने का।
1: बिल्कुल मैम, बिल्कुल, हम उसको अवॉइड कर देते हैं, मिस कर देते हैं,
0: ध्यान ही नहीं देते उसको।
1: बिल्कुल मैम,
0: तो आप इसको थोड़ा सा और श्रोताओं को बताइए कि इसका ध्यान रखें।
1: आप अगर आपके घर में नॉर्मली मालूम पड़ जाता है कि कहीं सीलन है, कहीं पे है करके, लेकिन अगर आपके रूम में अगर कुछ सोफा है आपके रूम में, या अगर बेड है करके आपने, उसके पीछे का सीलन लगती भी है करके, और भी कुछ जगह, जैसे मैंने आपको बताया मैम कि फैन के जो आपको ब्लेड्स हैं वो आपको क्लीन रखने हैं, कई बार हम चीजों को मिस कर देते हैं, कई बार हम क्लीन नहीं करते, या एसी का जो फिल्टर है वो क्लीन नहीं करते फ्रिक्वेंटली, इसकी वजह से बच्चों को खांसी जुकाम होने की संभावना या इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है।
0: और ये ओवरऑल सभी के स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि डीप क्लीनिंग मंथ में एक बार जरूर होनी चाहिए, तभी सारी डस्ट हटती है। जी, बात हो रही थी बच्चों को एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना चाहिए, तो आजकल बहुत सारी जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी है, कोई स्विमिंग में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, ये बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट में भी कितना फायदा देती है,
1: बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। अगर आप कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करते हैं पढ़ाई के अलावा, तो बच्चा उसमें एंगेज रहता है, बच्चा देखता है, उसको एक्सप्लोर करने का ट्राई करता है, बच्चे की जो पूरी बॉडी है उसमें एंगेज रहती है, बच्चे की बॉडी फिट रहती है। आप स्विमिंग की अगर बात करें तो स्विमिंग में हमारा पूरा बॉडी का पार्ट मूवमेंट होता है, तो आपको डाइट अच्छी करनी पड़ेगी उसके लिए, आपको तो आपको ओवरऑल आपको बेटर ही रहता है उसके अंदर, आपका मन फ्रेश रहेगा, मूड फ्रेश रहेगा।
0: और कहते हैं ना, डांस और यदि सिंगिंग यदि हमारी हॉबी है तो वो अपने आप में एक मेडिटेशन है।
1: बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अगर आप डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं, कोई भी अगर आप एक्टिविटी इसमें लिखते हैं, जैसे मैं पहले खेलता था, पहले क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं करके, जितना आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट लेंगे, और मेरा ये मानना होता है कि आप समर वेकेशन का वेट नहीं करें, आप डेली आधा घंटा एक घंटा निकालें, उसमें बच्चों को डेली कुछ ना कुछ खिलाएं बच्चों को, जैसे स्विमिंग है करके, कुछ भी हो,
0: और इस तरह की कोई ना कोई हॉबी अपने साथ जरूर होनी चाहिए। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि पढ़ाई के साथ साथ हमारी एक रुचि भी डेवलप होती है, और प्लस कभी भी तनाव नहीं होता, क्योंकि कोई भी परेशानी आए वो उससे निकल पड़ते हैं, अपनी एक्टिविटी में, हॉबी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और तनाव उनके ऊपर आ ही नहीं पाता।
1: जैसे पहले के जमाने में आपको याद होगा मैम कि हम लोग चंपक पढ़ते थे, हमारे टाइम में बहुत सारी बुक्स आती थी करके पढ़ने वाली, तो हम वो भी पढ़ते थे। तो अगर पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा आपको कुछ कहानियां सुनने में है, तो आप ऐसी बुक्स अभी भी आती हैं, कई जो अखबार हैं, न्यूज़पेपर हैं, कई बुक्स देते हैं बच्चों की उस कहानियों के लिए, आप वो लेके बच्चों को सुना सकते हैं, उससे बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है बच्चों का वो कम होगा, आपको अपना जो फ्लैशबैक है आपको वो याद आएगा, और बच्चा उसमें एंगेज रहेगा, बच्चा उसे कुछ बच्चे की रीडिंग हैबिट बच्चे की इंप्रूव होगी, उसकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी बच्चे की अपनी।
0: जी बिल्कुल, पढ़ने से बोलने से वो बहुत
1: बोलना सीखेगा। बिल्कुल
0: जी जी, और इसी तरह से जो एक्टिविटीज होती हैं, डिबेट्स होते हैं, इसमें भी बच्चों को पार्ट लेने के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए कि इसमें वो पार्ट लें,
1: क्योंकि मैम एक्चुअली स्टेज फोबिया बहुत हो गया है बच्चों में, जैसे मैंने बताया मैम कि फोन यूज करते हैं अगर बच्चे, कुछ भी बच्चे करते हैं, फोबिया होता है, स्टेज फोबिया है, या कहीं भी जाके कुछ बोलना है करके, अगर आप अर्ली स्टेज में ही बच्चों को हर चीज़ों में एक्सपोज कर देंगे आप, तो बच्चा उसमें एक्टिव रहता है कि नहीं मैं बोल सकता हूँ, उसमें कॉन्फिडेंस रहता है, वो मैं कर सकता हूँ करके, उस चीज़ को लेके क्या बोलना है, कितना बोलना है, वो उसको पता होता है।
0: जी, और भी कोई ऐसा पॉइंट हो जो हम नहीं, जिसे अभी तक टच कर पाए हो और बच्चों के विकास के लिए या उनके पेरेंट्स की जानकारी के लिए जरूरी है, तो प्लीज बताइए।
1: मैं इसमें आप मॉस्किटो के ऊपर बात कर सकते हैं हम लोग, जैसे अभी बारिश का मौसम भी गया करके, अभी बारिश का मौसम अभी आएगा, मच्छर हो भी गए करके, मच्छर को हम ध्यान ही रखना है कि बच्चों आजकल कई चीजें आ गई हैं जो हमको तो पहले नहीं पता थी। अगर बच्चा हमारा 6 महीने से बड़ा है तो मॉस्किटो पैच आते हैं, मॉस्किटो रेपेलेंट्स आती हैं जो बच्चों के आप बॉडी पर लगा सकते हैं डॉक्टर की सलाह से, तो उससे क्या होगा, मॉस्किटो जो है बच्चे को मॉस्किटो बाइट नहीं होगा। अगर बच्चा बाहर जा रहा है खेलने के लिए, आपके पास अगर गार्डन है, कोई पार्क अगर है जहाँ पे मॉस्किटो के होने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो बच्चों का फुल स्लीव के कपड़े पहना सकते हैं बच्चों को। अगर आपके बाहर वाले किसी एरिया में आपको लग रहा है कि पानी स्टोर हो सकता है, तो अभी जैसे पानी स्टोर नहीं हुआ है तो उस एरिया को कवर कर सकते हैं आप, अगर हो गया है तो उस पर जो रेपेलेंट्स आते हैं, जो बाकी जो स्प्रे आते हैं, वो कर सकते हैं करके अपना, उसे मॉस्किटो बाइट होने की, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया होने की संभावना कम हो जाती है बच्चों में।
0: और बेस्ट तो है यदि मच्छरदानी आप लगा सकते हैं, तो द बेस्ट है,
1: वो तो बेस्ट है मैम, वो तो बिल्कुल।
0: बहुत कम समय हालांकि कार्यक्रम में रह गया, यदि कोई बच्चा अर्ली एज में ही किसी क्रॉनिक डिजीज से है, तो ऐसे पेरेंट्स को उनका क्या ध्यान रखना चाहिए?
1: मैम क्रॉनिक डिजीज में अगर कोई बच्चा अगर आता है, अगर बच्चा है किसी का, तो मेरा ये मानना होता है कि वो रेगुलर फॉलोअप करवाए बच्चे का। जैसे कोई भी अगर मैं कोई एग्जांपल अगर लेके बात करूं, अगर बच्चों को हमारे डाउन सिंड्रोम है बच्चे को मेरे, तो उसमें बच्चों की हमारी आंखों की जांचें हैं, कानों की जांचें हैं, उसके दिल की जांचें हैं, बाकी कई जांचें जो होती हैं, वो आपको रेगुलरली विजिट पे करवाते रहनी चाहिए, ताकि बच्चा हमारा किस तरीके में जा रहा है, हम उसको क्या और अच्छा कर सकते हैं, हमें फिजियोथेरेपी करवाने की नीड है क्या, हमें कुछ और टेस्ट करवाने की नीड है क्या, उसके ब्लड टेस्ट करवाने की

0: है क्या उसका, उससे हम बच्चों का जो विकास है हम उसको और अच्छा कर सकते हैं, ताकि बच्चों को अच्छी लाइफ दे सकते हैं बच्चों को हम लोग।
1: और जैसे बच्चा हमारा छोटा है, बोलने और सुनने की जो उम्र शुरू हुई है, बच्चा नहीं वो कर पा रहा है, इसके लिए जो बच्चे मूक बधिर होते हैं उनको किस तरह का फॉलोअप होना चाहिए?
0: मैं मूक बधिर वाले बच्चों को मोस्टली में ध्यान रखना चाहिए इस बातों का कि भाई बच्चा की क्या वो बोलने की कोशिश कर रहा है करके अपना वो मतलब,
1: और फॉलोअप जैसे डॉक्टर से संपर्क करके करते रहें। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप कार्यक्रम में आए, बहुत सारी बातें आपसे जानी और टॉपिक से हटकर हमने बहुत कुछ कवर किया, थैंक यू सो मच। अपने श्रोताओं को मैं बता दूं कि इस कार्यक्रम में कंट्रोल रूम से हमारे सहयोगी रहे घनेन्द्र कुमार जी और विनीत कुमार जी, और इस कार्यक्रम का संयोजन किया हिमांशु नामा ने, और ये कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत किया अलका ने। अब दीजिए अनुमति, नमस्कार। अभी श्रोता सुन रहे थे सजी फोनिन कार्यक्रम आरोग्य वाणी, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। सुबह के 9 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास परियोजनाओं के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। केंद्र सरकार ने CBSE की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, नीलाम खानों को जल्द शुरू करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। और प्रदेश में आए मौसम के बदलाव से दिन और रात के तापमान में गिरावट, गर्मी से मामूली राहत। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन, और अब समाचार विस्तार से। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और परियोजनाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। यह आयोजित हो रहा है राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। इस बीच बोर्ड ने कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। वहीं भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। प्रदेश भर में वंदे गंगाजल संरक्षण जन अभियान के तहत जल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज विभिन्न जिलों में विशेष नवाचार और अभिनव कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही ऊर्जा विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर्स के आसपास साफ सफाई के काम किए जा रहे हैं। वहीं सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों का सम्मान किया जाएगा। इससे पहले कल जल स्रोतों का पूजन किया गया, साथ ही इनकी साफ सफाई के काम भी किए गए। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कुम्हेर स्थित कच्चा कुंडा पर जल पूजन किया। कार्यक्रम को

0: संबोधित करते हुए श्री रावत ने कहा कि वंदे गंगाजल संरक्षण जन अभियान पूरे देश में एक मिसाल बन रहा है। उन्होंने कहा कि जल स्रोतों की साफ सफाई सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत सभी नगर पालिकाओं में लोक कल्याण मेले लगाए जा रहे हैं। इन मेलों में स्ट्रीट वेंडर्स को योजना से जोड़ने सहित ऋण सुविधा, डिजिटल भुगतान और अन्य सरकारी लाभों की जानकारी दी जा रही है। हमारे जैसलमेर संवाददाता ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में लगाए गए इस मेले में रेहड़ी, ठेला संचालक, फेरी वाले और छोटे व्यापारियों को योजना से जोड़ने के लिए गतिविधियां चलाई जा रही हैं।
1: लोक कल्याण मेले के दौरान पथ विक्रेताओं, रेहड़ी ठेला संचालकों, फेरी वालों, छोटे व्यापारी एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को योजना से जोड़ने के लिए गतिविधियां संचालित की जा रही है। अभियान के तहत लंबित आवेदनों का निस्तारण, डिजिटल ऑनबोर्डिंग, भुगतान को बढ़ावा संबंधी कार्य

0: मेलों में स्ट्रीट वेंडर्स को योजना से जोड़ने सहित ऋण सुविधा, डिजिटल भुगतान और अन्य सरकारी लाभों की जानकारी दी जा रही है। हमारे जैसलमेर संवाददाता ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में लगाए गए इस मेले में रेहड़ी, ठेला संचालक, फेरी वाले और छोटे व्यापारियों को योजना से जोड़ने के लिए गतिविधियां चलाई जा रही है।
1: लोकलैंड मेले के दौरान पथ विक्रेताओं, रेहड़ी ठेला संचालकों, फेरी वालों, छोटे व्यापारी एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को योजना से जोड़ने के लिए गतिविधियां संचालित की जा रही है। अभियान के तहत लंबित आवेदनों का निस्तारण, डिजिटल ऑन बोर्डिंग, भुगतान को बढ़ावा संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। देश भर में आयोजित इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 3 चरण में 90,000 का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न सरकारी योजना से जोड़कर आर्थिक संबल प्रदान किया जा रहा है। स्वर्ण नगरी में इस आयोजन को लेकर विशेष उत्साह नजर आ रहा है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
0: राज्य में अब नई आवंटन नीति के तहत दुग्ध सहकार समितियां और दुग्ध संकलन केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। कल शासन सचिवालय में डेयरी विभाग की बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक में पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि डेयरी नेटवर्क में पारदर्शिता लाने के लिए ये कदम उठाया गया है। उन्होंने बताया कि अब सहकारी समितियों का आवंटन भी ऑनलाइन किया जाएगा। श्री कुमावत ने कहा कि किसानों और पशुपालकों को सशक्त बनाकर उन्हें अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि प्रदेश में नीलाम खानों को जल्द शुरू करना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। वे कल अंतर विभागीय समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने संबंधित विभागों को आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियां तय समय में जारी करने को कहा, साथ ही इससे जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान मेजर और माइनर खनिज ब्लॉकों की नीलामी के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। प्रदेश में अब तक 101 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी की जा चुकी है। राज्य में इन दिनों पुलिस की ओर से बाल मजदूरी के खिलाफ उमंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य बाल श्रम और बाल तस्करी जैसी गंभीर सामाजिक बुराइयों पर प्रभावी नियंत्रण बनाना और पीड़ित बच्चों का पुनर्वास सुनिश्चित करना है। 30 जून तक चलने वाले इस अभियान के लिए हर जिले में थानेवार विशेष रेस्क्यू टीमें बनाई गई हैं। इन टीमों में महिला और बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, बाल कल्याण समिति और एनजीओ के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। पाली पुलिस अधीक्षक मोनिका सिंह ने कल एक बैठक कर अधिक से अधिक लोगों को बाल तस्करी और मजदूरों के विरुद्ध जागरूक करने के निर्देश दिए, साथ ही इन कार्यों में लिप्त लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को कहा। आज विश्व साइकिल दिवस है। वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने हर साल 3 जून को यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य किफायती, बिना ईंधन वाले, पर्यावरण और स्वास्थ्य हितैषी एवं परिवहन के माध्यम साइकिल को लोकप्रिय बनाना है। इस वर्ष की थीम हरियाली भरे भविष्य के लिए साइकिल चलाना रखी गई है। केंद्र सरकार के फिट इंडिया अभियान के तहत आयोजित संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके जरिए साइकिल के उपयोग को लगातार बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। विश्व साइकिल दिवस के मौके पर आज अजमेर में साइकिल रैली रखी गई। ये रैली आनासागर चौपाटी में शुरू हुई। हमारे करौली संवाददाता ने बताया कि जिले के कई नागरिक नियमित रूप से साइकिल का उपयोग कर स्वस्थ जीवन शैली और स्वच्छ पर्यावरण का संदेश दे रहे हैं। और अब मौसम। प्रदेश में मौसम में आए बदलाव से कई स्थानों पर कल भी आंधी और बारिश की गतिविधियां जारी रही। इससे दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कई स्थानों पर दिन का पारा 3 से 4 डिग्री तक गिर गया। भीलवाड़ा में पिछले 24 घंटों में लगभग 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रिकॉर्ड हुई। 42 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ फलौदी सबसे गर्म स्थान रहा। ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहा। वहीं माउंट आबू में रात का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज और कल सभी संभागों में आंधी और बारिश की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान कहीं कहीं 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज अंधड़ आने की आशंका है। बीकानेर, चूरू, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा और टोंक के लिए आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि प्रदेश में नीलाम खानों को जल्द शुरू करना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। वे कल अंतर विभागीय समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने संबंधित विभागों को आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियां तय समय में जारी करने को कहा, साथ ही इससे जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के निर्देश दिए। शिव ने कहा कि राजस्थान में

0: में जनजातीय विकास परियोजनाओं के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। केंद्र सरकार ने CBSE की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, नीलाम खानों को जल्द शुरू करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। और प्रदेश में आए मौसम के बदलाव से दिन और रात के तापमान में गिरावट, गर्मी से मामूली राहत मिली। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 102 और 103.6 MHz, साथ ही मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:10 हो रहे हैं। अब श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत।

हाजिर हैं हम लेकर के फिल्म संगीत और ये है पहला नजराना आप सभी के लिए फिल्म आशिकी से। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की, समीर का गीत और नदीम श्रवण का संगीत।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। आइए सुनवाते हैं आपको अगला गाना। फिल्म का नाम है 1942 अ लव स्टोरी। गीत को अपनी आवाज दी है कुमार सानू ने। गीत रचना जावेद अख्तर की और संगीत आरडी बर्मन का।

0: खो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: RBI कहता है,
1: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
3: फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं अपने चंबल चैनल पर, और आइए अब सुनवाते हैं आपको अगला गाना। फिल्म का नाम है अनाड़ी, आवाज है उदित नारायण की, गीत समीर का और संगीत आनंद मिलिंद का।

शाम 7:30 बजे आप सुनेंगे आज शाम 7 बजे आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम चौपाल। इसमें विषय होगा पशु स्वास्थ्य जांच हेतु सुविधाएं और इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर चंद्र प्रकाश मीणा। इस सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप फोन करके डॉक्टर साहब से सीधे बात कर सकते हैं और इसके लिए नंबर है 2941142 और कोटा का एसटीडी कोड है 0744। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हो रहे हैं। अब बहनें सुनेंगी उनका अपना मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत।

मोबाइल की चमक पल भर का उजाला देती है और कहानी की लो उम्र भर का उजाला देती है। जो बच्चे किस्सों की छांव में सोया करते हैं वे अक्सर सपनों को सच करने का हौसला रखते हैं। इन्हीं खूबसूरत भावों के साथ मैं हूं आपकी अपनी सखी तेज मोहन। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत आप सभी का आप ही के मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत में। सखियों, दिन भर की भागदौड़, जिम्मेदारियों और व्यस्तता के बीच में जब रात का सन्नाटा उतरता है, तब जब हम सोने की तैयारी करते हैं, तब हम सबके हाथ में होता है मोबाइल, खासतौर पर हमारे बच्चों के हाथ में, जिसमें बच्चे कार्टून्स देखते हैं। और सखियों, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि किस्से और कहानियां कहीं पीछे छूट गए हैं। सखियों, हमारे माता पिता ने हमारे साथ शारीरिक खेल भी खेले और मानसिक खेल भी खेले। सबको याद आ गया होगा, यहां तक कि ये भी याद आया होगा कि हमारी दादी नानी हमसे पहेलियां पूछकर हमारा ज्ञान बढ़ाती थी। और कहानियों को, किस्सों को आप कैसे भूल जाएंगे जो सुन सुनकर हम बड़े हुए। और आपने ये भी समझा होगा, ये भी आपको याद आया होगा कि कैसे उन कहानियों का जब हमें अंत नहीं मिलता था तो हम खुद उसको बनाना शुरू कर देते थे। पर आज सवाल ये है कि हमारे बच्चों के जीवन से ये सब गायब हो गया है। आज हमारी चर्चा का विषय है अपने बच्चों को बेड टाइम स्टोरी सुनाएं और उनकी रचनात्मकता बढ़ाएं। सखियों, कहानी किसी भी तरह की हो सकती है और कोई भी सुना सकता है। कहानी सच्ची भी हो सकती है, परियों की भी हो सकती है, काल्पनिक की भी हो सकती है। कभी आप अपने बच्चों को अपने ही जीवन का कोई छोटा सा किस्सा भी कहानी बनाकर सुना सकते हैं। अपने बच्चों को बताएं कि आप क्या खेल खेलते थे, कौन सी शरारतें करते थे और किस बात पर आपको डांट पड़ती थी। ऐसी कहानियां सखियों हमारे बच्चों को ये एहसास करवाती हैं कि हम भी बच्चे थे और इन कहानियों से उनके मन में सकारात्मकता का संचार होता है। सखियों, ये जो किस्से और कहानी है, इनकी वजह से बच्चों का परिवार से जुड़ाव होता है, वो मजबूत हो जाता है। बच्चे अपने बड़ों को और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। हो सकता है सखियों हमारे बचपन का किस्सा साधारण सा हो, लेकिन शायद हमारे बच्चों के लिए अनमोल याद बन जाए। सखियों, सोने से पहले सुनाई गई कहानियां बच्चों के भाषा ज्ञान, सोचने की क्षमता में विकास करती हैं, क्योंकि कहानी सुनते सुनते बच्चा जब सवाल पूछता है ना, फिर क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ था, ये सवाल उसकी सोच को नए आयाम देते हैं। सखियों, कहानी अगर अधूरी रह जाती है तो बच्चे उसका अंत अपने तरीके से खोजते हैं और ऐसा करने से उनके मन में नए सवाल पैदा होते हैं। और यही प्रक्रिया सखियों उनके अंदर के लेखक, कलाकार, वैज्ञानिक और विचारक को नया जीवन देती है। मोबाइल का स्क्रीन सखियों केवल मनोरंजन करता है, जबकि कहानी सोचने की शक्ति देती है। सखियों, कार्टून या डरावने दृश्य देखकर सोने वाला बच्चा अक्सर सपनों में घबरा कर उठता है, डरता है। और दूसरी जगह अगर वो किसी अपने से कहानी सुनकर सोता है तो उसके मन में सुरक्षा और अपनेपन का भाव होता है, क्योंकि उस समय उस बच्चे को इस बात का एहसास होता है कि कोई अपना उसके साथ है जो उसकी परवाह करता है। इसलिए सखियों, अपने बच्चों को मोबाइल की रोशनी नहीं, अपनी आवाज की गर्माहट देकर सुनाइए। हो सकता है आप जो कहानी सुनाएं वो छोटी सी हो, लेकिन प्रभाव जरूर बड़ा होगा। क्योंकि याद रखिए, कहानी और नींद का रिश्ता केवल मनोरंजन का नहीं, सुकून और विश्वास का होता है। सखियों, बात बच्चों की हो रही है, किस्से कहानियों की हो रही है, तो पीछे तो मैं भी नहीं रहना चाहूंगी। मैं भी यहाँ आपसे एक किस्सा बांटना चाहूंगी। सखियों, हमारे बचपन के समय में ना तो मोबाइल फोन थे और ना ही ऑनलाइन गेम्स,

अब हमारे पापा के पास थी मोटरसाइकिल। और बचपन में मन चंचल, और चंचल बोलते ही आप सब समझ गए होंगे कि खेलने की ओर। तो सखियो हम लोग क्या करते थे कि कॉपी किताब खोल देते थे और उस पर पेन या पेंसिल रख देते और कई बार तो एक आधी लाइन भी लिख देते थे और फिर शुरू होती थी हमारी मस्ती। और जैसे ही हमें मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई देती हम अपनी किताबों के पास, और हमें बड़ी खुशी होती थी कि पापा को तो कुछ पता ही नहीं चला। पर पापा पापा हैं, एक दिन उन्होंने हमें पकड़ लिया। अब आपको लग रहा होगा कि हम उस दिन खूब पिटे होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ सखियो। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात से परेशानी नहीं है कि तुम खेलती हो, पर याद रखो पढ़ाई भी तो जरूरी है। इसके बाद उनका जो हम पर भरोसा था वही हमारी सीख बना। हम खूब खेले, खूब मस्ती की और मन से पढ़ाई भी की। कुछ किस्से उम्र भर साथ निभाते हैं, कुछ शब्द दिल में घर बना जाते हैं। बचपन को बस इतना सा उपहार दीजिए, सोने से पहले थोड़ा सा समय और एक कहानी दीजिए, क्योंकि उनसे बनी यादें और रिश्ते कभी खत्म नहीं होते।

0: प्रकृति और नारी दोनों ही सृजन का प्रतीक हैं। जिस तरह धरती हमें जीवन देती है, उसी तरह महिलाएं जो हैं वो परिवार और समाज को संवारती हैं। आज के दौर में पर्यावरण का संरक्षण एक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा कर्तव्य है। इसी विषय पर प्रस्तुत है ये भेंटवार्ता। और सखियों, ये भेंटवार्ता पुनः प्रसारित भेंटवार्ता है और बातचीत के लिए इसमें हमारी ही सखी जुड़ी हैं। नाम है इंदिरा अग्रवाल जी। आइए सुनते हैं ये पुनः प्रसारित भेंटवार्ता। सखियों, कहते हैं कि सृष्टि में कोई भी बड़ा परिवर्तन होता है तो उसमें स्त्री की भूमिका अहम होती है। प्रकृति व मानव का रिश्ता वैसा ही है जैसा माँ और बच्चे का। प्रकृति माँ की तरह ही प्रेम करती है, अपना सारा खजाना खोल देती है और जरूरत अपने भविष्य के लिए सहेजने की है, उसी प्रकार जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को सहेजते हैं। प्रकृति के साथ इस रिश्ते को महिलाएं संवारती हैं और इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में आमंत्रित हैं श्रीमती इंदिरा अग्रवाल जी। स्वागत है इंदिरा जी आपका हमारे कार्यक्रम महिला जगत में।
1: थैंक यू, नमस्कार।
0: इंदिरा जी, महिला और पर्यावरण दोनों का घनिष्ठ संबंध है, इस बारे में आपके क्या विचार हैं?
1: जी, पर्यावरण, अगर हम पर्यावरण का विच्छेद करें तो ये होता है परिआवरण।

0: हमारे आसपास का वातावरण
1: जी,
0: जिसमें पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, पेड़ पौधे ये सब आते हैं, यही सब मिलकर हमारा वातावरण बनाते हैं। जिस तरह से हमें आरामदायक कपड़े अच्छे लगते हैं, उसी तरह से हमें आरामदायक घर अच्छा लगता है। ये धरती हमारा घर है और ये हरी भरी धरती, निर्मल जल, शुद्ध वायु, स्वच्छ आकाश किसे नहीं भाता, महिला हो या पुरुष,
1: बिल्कुल
0: सभी इससे संबंधित हैं। प्रकृति ने हमको ये सब स्वाभाविक रूप से दिया है, परंतु अपने ही क्रियाकलापों से हमने अपने घर को ही दूषित कर दिया है और ये प्रदूषित वातावरण आज ग्लोबल चिंता का विषय बन गया है। आपने गीत सुना होगा, पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। तो हमारी कोई भी एक एक्टिविटी पृथ्वी के एक छोर पर होती है, वो दूसरे छोर तक उसको वातावरण को प्रभावित करती है, और विकास के नाम पर हम इस प्रकृति का अनावश्यक दोहन कर रहे हैं, इससे असंतुलन पैदा होता है और फिर प्रकृति द्रोह करती है। इसके बारे में मैंने कविता लिखी थी, वो तो इंसान की फितरत को लेकर थी, पर उसमें एक कुछ लाइनें थी मैं कहना चाहूंगी। छीन के सारे जीवों के घर, बोए हैं कंक्रीट के जंगल, अब ऋतुएं रूठी, धरती सूखी, बाढ़ कहीं भूचाल है, इंसान तू तो कमाल है।
1: इंदिरा जी, हम में से कुछ महिलाएं अक्सर घर में छोटा सा बगीचा बना लेती हैं, और कुछ महिलाओं का सपना आंगन में फूल देखने का होता है, पर कई बार या घर में जगह की कमी भी बोल सकते हैं। तो ऐसी महिलाओं को क्या करना चाहिए कि उनके घर में भी मिट्टी की सौंधी सौंधी महक हो और फूल हो?
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने, हरी भरी बगिया सबकी चाहत होती है
1: जी,
0: पर यह भी एक सच्चाई है कि सबकी सारी चाहतें पूरी नहीं होती हैं। बहुत ही खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनके पास जगह भी होती है, साधन भी होते हैं, और वो अपने घर में एक बड़ा सा बगीचा बना सकते हैं। पर अगर इच्छा हो तो सीमित साधनों में भी हम अपना शौक पूरा कर सकते हैं
1: जी।
0: हमारे पास बालकनी हो, नहीं तो छत होती है, उसमें हम गमलों में पौधे लगा सकते हैं, कम वजन के गमले, कम रखरखाव वाले पौधे, सब्जियां, बोनसाई, फूल, ये सब चीजें हम लगा सकते हैं। और अगर उतना भी नहीं कर सकते, इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं या फिर घर के बाहर पौधा लगा सकते हैं, कम से कम एक पौधा तो हम लगा ही सकते हैं। वो पौधा हमें फूल वाला हो तो फूल भी देगा, नहीं तो ऑक्सीजन, हरियाली, छांव देगा ही सही, और साथ में जगह का स्वरूप भी बदल सकता है। और हम किसी सामाजिक संस्था से जुड़कर भी अपने शहर को हरा भरा भी बना सकते हैं, उसमें योगदान दे सकते हैं, शहर को सुंदर बनाने में अपने योगदान करने का एहसास कुछ अनूठा ही हो सकता है।
1: और सपना तो किसी भी तरीके से पूरा,
0: सपना तो पूरा हो सकता है,
1: पूरा होना से मतलब। इंदिरा जी, अभी आज जो चल रहा है समय, उसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई हैं, छोटे छोटे फ्लैट्स हैं उनके अंदर, ऐसी जगह पर इंसान अपना बगीचा कैसे बना सकता?
0: मैंने अभी बात की जैसे कि बालकनी में गमले रखे जा सकते हैं, फ्लैट्स में बालकनी होती है अक्सर
1: जी,
0: उसमें कम रखरखाव के पौधे जिनको बहुत कम रखरखाव मांगते हैं, जिनको हम हर मौसम में उगा सकते हैं। कुछ ऐसे भी गमले आते हैं जो बिल्कुल कम वजनदार होते हैं, खाद ऐसी आती है जो पौधों को गमलों में अच्छे से फ्लरिश करती है, उस तरह की चीजें हम लगा सकते हैं
1: जी। इंदिरा जी, बच्चे जो हैं ये हमारा भविष्य है, और इन्हें हम पर्यावरण के प्रति इनके अंदर किस प्रकार से लगाव पैदा कर सकते हैं, इन्हें पर्यावरण से कैसे जोड़ सकते हैं?
0: हाँ जी, देखिए महिलाएं हैं वो बच्चों की संरक्षक होती हैं
1: जी,
0: साथ में वो पर्यावरण के भी संरक्षक हैं, और ये दोनों ही किरदार बहुत अच्छे से निभा सकती हैं
1: जी।
0: बच्चों को आरंभ से ही अपने पर्यावरण के बारे में जागरूक करके उन्हें स्वच्छता का महत्व, दैनिक दिनचर्या में बिजली पानी की दुरुपयोग ना करना, उनको बल्कि उनकी किफायत करना, उनको पेपर का महत्व समझाना, पेपर कैसे बनता है, उसके लिए पेड़ क्यों काटे जाते हैं, ये सब चीजें उनको समझाना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कचरे को रिसाइकल करना, रीयूज करना, कचरा कम से कम निकालने के लिए प्रेरित करना, ऐसी अनेक बातें हैं जो हम अपने व्यवहार से उनको सिखा सकते हैं। इसके लिए हमें स्वयं को जागरूक और संवेदनशील होने की जरूरत है
1: जी,
0: और व्यवहारिक रूप से हमें उन्हें आदर्श प्रस्तुत करना पड़ेगा। जैसे हम हमारे घर में कार है, गाड़ी है, उसको साफ करते हैं तो उसमें धोने के लिए पानी पाइप से ना यूज करके बाल्टी में पानी लेकर पोछे से साफ कर सकते हैं, पानी को गंदा ना करें, पॉलीथीन का कम से कम प्रयोग करें। पॉलीथीन के बारे में तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि पॉलीथीन एक ऐसी बीमारी है आज हमारी सोसाइटी में जो बहुत बड़े बड़े डिजास्टर्स के लिए भी, डिजास्टर्स उसके कारण हो सकते हैं। जैसे अगर हम पॉलीथीन कचरा बाहर डालते हैं तो गाय खा सकती है उसको, उस गाय को हम बीमारी दे सकते हैं, गाय की मृत्यु के लिए हम इनडायरेक्टली जिम्मेदार हो सकते हैं उसकी तकलीफ के लिए। उसी पॉलीथीन को अगर हम नाले में बहा देते हैं तो वो बाढ़ का कारण बनती है, त्रासदी को हम निमंत्रित करते हैं
1: जी।
0: तो पॉलीथीन का कम से कम उपयोग करना बच्चों को सिखाना है, खुद करना है, बच्चों को सिखाना है, और उसकी जगह कपड़े के बैग का इस्तेमाल के

0: हमको उसको प्रेरित करना है। तो बच्चों को इस तरह बहुत सारी छोटी छोटी बातें, पेड़ पौधों के प्रति उनको लगाव दे सकते हैं, उनको अगर घर में बगीचा है तो पेड़ पौधों के लिए मैं पानी देने का काम उनसे करें, उनको प्रकृति के बारे में समझाएं, ऑक्सीजन का महत्व समझाएं, वो सब चीज़ें वो आराम से समझ सकते हैं
1: जी। यहाँ पर हम अपनी सखियों से ये भी कहना चाहेंगे कि पर्यावरण का ध्यान रखने के लिए, जैसा कि अभी इंदिरा जी ने कहा कि आपको पहले उनके लिए एक उदाहरण बनना पड़ेगा, तो वैसा उदाहरण बने। अगर आप सफर कर रहे हैं, अपने खुद के वाहन से कर रहे हैं या आप सरकारी वाहन से कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि अगर आप कुछ भी खाना खा रहे हैं तो वो चीजें आप सड़क पर फेंके नहीं। बच्चों को यहीं से जागरूकता का संदेश मिलेगा कि हमारे माता पिताओं से इकट्ठा करके रखते हैं और किस तरीके से घर जाकर या कहीं भी डस्टबिन मिलने पर उसे डाल रहे हैं। इंदिरा जी, जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो उसमें नदियां और हमारे पर्यटन स्थल आते हैं, और वर्तमान समय में पर्यटन स्थलों की क्या स्थिति है ये हम सभी जानते हैं। इनकी सुरक्षा में महिलाएं किस तरीके से मदद कर रही हैं और कर सकती हैं?
0: चलिए, आपने नदी और पर्यटन स्थल दोनों की बात की है, तो मैं पहले नदी से शुरुआत करती हूँ
1: जी।
0: नदियाँ हमारी जीवन रेखा होती हैं, जल का स्रोत होती है।
1: बिल्कुल,
0: और हमें लंबी लहराती जीवन रेखा ही चाहिए सबको। वो मैली हो, संकीर्ण हो, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। और इनके लिए बहुत सारी महिलाएं भी हैं जो सामाजिक तौर पर काम कर रही हैं, मेधा पाटकर का नाम उसमें बहुत है। नदियों और तालाबों को बचाने के लिए महिलाएं जो काम कर सकती हैं वो ये है, हमारी जो संस्कृति है बहुत सारे पूजा क्रियाकलापों से जुड़ी है। हमारी पूजा में जो विधि है उसमें इस तरह से होता है कि बहुत सारा कचरा निकलता है, ऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है, फूल पत्ते इत्यादि बहुत सी चीजें निकलती हैं, और हमारे यहाँ ये परंपरा है कि सब नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, तो वो नदियाँ उससे मैली होती हैं, तालाब उससे मैले होते हैं। तो सबसे पहले हमको इस परंपरा को रोकना होगा। हम विसर्जन करें, अपनी विधि को अपनाएं पूरा, लेकिन हम वो विसर्जन घर में ही करें
1: जी,
0: छोटे तौर पर। बहुत सारे त्योहार हैं, आप सब जानते हैं, दुर्गा पूजा है, गणेश चतुर्थी है, जिसमें बड़ी बड़ी मूर्तियां बनती हैं, और वो बड़ी बड़ी मूर्तियां जिसमें केमिकल पेंट्स भी होते हैं वो सब हम नदी में प्रवाहित करते हैं। वो ना केवल जल को गंदा करते हैं बल्कि नदी में जो जीवन है उसको भी प्रभावित करते हैं
1: जी। तो आप सब सखियों, यहाँ पर आप ड्राई फ्रूट्स के या आप दालों के या आप फूलों के गणेश जी बना सकते हैं, दुर्गा जी बना सकते हैं, तो इससे पर्यावरण आपका जो होगा एक सुरक्षित
0: बना सकते हैं, घर में विसर्जन कर सकते हैं,
1: उसे घर पे आप विसर्जित कर सकते हैं। और अगर आप बीजों से बनाएंगी तो जब उसे आप विसर्जित करेंगी अपने ही घर के आंगन में, तो उसी आंगन में वो बीज पनपेंगे और आने वाले समय में शायद पौधे भी बन जाएं।
0: हाँ जी, बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हो गई हैं आजकल, ऑर्गेनिक गणेश जी बनते हैं, ऑर्गेनिक मूर्तियां बनती हैं, वो सब चीजें हम उसको फॉलो कर सकते हैं
1: जी।
0: और मंदिरों में जो कचरा निकलता है उसको नदी और पानी में डालने के स्थान पर हम उसे अपने घर के बगीचे में डाल सकते हैं। और ना हो तो मंदिरों में एक बहुत बड़ा एक सुझाव है मेरा कि जो महिलाएं हैं वो वर्मी कंपोस्टिंग पिट मंदिरों में बनाने की पहल कर सकती हैं। वर्मी कंपोस्टिंग पिट से हमको खाद भी मिलेगा और उनके एक प्रबंधन बहुत अच्छे से हो जाएगा
1: जी।
0: अब दूसरी बात पर्यटन स्थल की थी, तो पर्यटन स्थल पर भी मैंने देखा है, मैं खुद कई बार कई जगह जाती हूँ, तो वहाँ बहुत सारे लोग कुछ भी खा के पॉलीथीन फेंक देते हैं, कचरा फेंक देते हैं, उसको बहुत गंदा करते हैं। हम लोग गार्डन में जाते हैं पिकनिक मनाने तो हम झूठे थालियां प्लेट डिस्पोजेबल्स वो सब चीजें वहाँ फेंक देते हैं, उनको गंदा करते हैं। तो
1: और एक नया चलन है जो हमारे नौजवान पीढ़ी में नाम लिखने का,
0: हाँ वो सब चीजें भी हमको नहीं करनी होती हैं। बिल्कुल, नाम लिख के भी हम उसकी दीवार को खो देते हैं, हमारा नाम शायद हम ही जानते हैं उस समय, उस जगह हम कहीं भी पहुंचेगा तो कोई नहीं जानेगा कि किसने लिखा है। हमको ऐतिहासिक वो ऐसी हस्ती नहीं है कि हमें दूर दूर तक लोग जानेंगे, इसलिए नाम वाम लिखना, पर्यटन स्थलों से छेड़छाड़ करना वो सब हमें नहीं करना चाहिए
1: जी। सबसे बड़ी बात है कि धरोहर जो है हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए वो नष्ट हो रही है।
0: बिल्कुल नष्ट हो रही है, और हम अपने असंवेदनशीलता से उसको नष्ट कर रहे हैं। तो मैंने जैसे कहा कि हमें संवेदनशील होने की जरूरत है, वो सिर्फ न केवल महिलाओं को, महिलाएं खुद हो सकती हैं और साथ में पूरे परिवार को, बच्चों को समझा सकती हैं
1: जी। तो सखियों, पर्यटन स्थलों पर या नदियों पर आप जब भी भ्रमण के लिए जाएं, यात्रा के लिए जाएं, आप कहीं भी कचरा ना फैलाएं, और अगर फैला हो तो थोड़ा सा समेट दें और आसपास वालों को भी समझाएं, इस चीज के लिए आप जागरूक कर सकती हैं। ये एक छोटा सा संदेश है आकाशवाणी परिवार की ओर से आपके लिए। इंदिरा जी, क्योंकि आप कविताएं भी लिखती हैं, तो कोई एक कविता पर्यावरण से संबंधित आप हमें सुना दें, और हमारी सखियां बहुत उत्सुक हैं इसे सुनने के लिए।
0: स्त्रियों से लेकर जो मैंने कविता लिखी है, सबसे पहले तो मैं उसी को कहना चाहूंगी, वो मेरा संदेश है। मान लीजिए, स्त्रियां पूजती हैं पेड़ ताकि हरा भरा रहे उनका संसार, लगा के रोली पेड़ों को वो मांग लेती हैं अमर सुहाग, पेड़ों के आगे जला के दिया मांग लेती हैं घर का चिराग, पेड़ों को श्रद्धा से लपेट कर धागे खींच लाती हैं खुशियां अपने घर। स्त्रियां पूजती हैं पेड़ ताकि हरा भरा रहे उनका संसार, धरती माँ की गोद जब रहेगी हरी तब होगी उनके

0: की हर बात पूरी। ये बात वो सदा से ही जानती हैं, इसीलिए तो पेड़ों को इतना मानती हैं। यूं ही नहीं करती वो सारी पूजा, संदेश छुपा है इसमें भी एक दूजा। पेड़ लगाओ और करो उनका रक्षण, तभी बचेगा हमारा पर्यावरण। स्त्रियां सींचती हैं पेड़ ताकि हरा भरा रहे उनका संसार। ये तो स्त्रियों का और पर्यावरण का संबंध है जो सनातन काल से चला आ रहा है।
1: बिल्कुल। और हमारे बुजुर्गों ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है ये। हाँ, कि पेड़ को रोली मोली बांधो।
0: संस्कृति में शामिल है पेड़ों को
1: जी। और इसी चीज को लेकर अगर आज भी हम देखें तो इंदिरा जी, हमने कितनी बार ऐसा देखा है कि कई पेड़ ऐसे होते हैं जो रस्ते में उनपे रोली मोली बांधी होती है, दिया जल रहा होता है।
0: मान्यता होती
1: है कहीं भी हो वो, भले ही रेलवे लाइन के बीच में आ गया हो या मस्जिद के बीच में आ गया, कहीं भी आ गया हो या बड़ी बिल्डिंग पे आ गया हो, तब भी उसको काटा नहीं जाता।
0: नहीं जाता।
1: तो ये एक सुरक्षा चक्र है हमारे लिए भी। और
0: बहुत सारे पेड़ हमारे लिए संस्कृति में धार्मिक रूप से पूज्य बना दिए गए हैं। बड़ है, पीपल है, तुलसी है, आंवला है, नीम है, ये सब चीजें वो इसीलिए है कि हम इन पेड़ों का संरक्षण करें। इनकी अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं और उनको संभाल के रखना हमारी जिम्मेदारी होती है।
1: और जो लोग इन चीजों को अपना रहे हैं तो वो आने वाले समय में शायद कहीं ना कहीं पर्यावरण को सुरक्षित कर रहे हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी को ये पेड़ जो हैं ये बहुत देखने को मिलेंगे। ये हमारी एक इच्छा है और उम्मीद करते हैं कि हमारी सखियां जो हैं इस इच्छा का मान रखेंगी और पर्यावरण को बचाने में बहुत ज्यादा सहयोग देंगे।
0: जी, मैं ये इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगी। महिलाओं में बहुत शक्ति है हर चीज को करने की, और उस शक्ति का वो सकारात्मक उपयोग करें। वो ये ना सोचें कि सिर्फ मेरा घर मेरा है। अपने घर का कचरा अपनी बाउंड्री से बाहर डालकर घर की सफाई नहीं होती है। ये पूरी धरती हमारा घर है, तो उसको ऐसा ना करें। अपने आसपास का मोहल्ला भी साफ रखने में योगदान दें। और कभी ये ना सोचें कि केवल मेरे अकेले करने से क्या होगा। हमको अपनी सोच बदलनी होगी कि मेरे करने से क्या होगा, सब तो ऐसा ही करते हैं। आप पहला कदम उठाएं, कर्म अपने आप बन जाएगा।
1: इंदिरा जी, कोई एक किस्सा जो आप हमारी सखियों से बांटना चाहें जहां आपको ये लगा हो कि आज भी पर्यावरण के लिए जागरूक होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है।
0: हाँ जी, पर्यावरण में स्वच्छता को लेकर मैं बात करूंगी, क्योंकि स्वच्छ वातावरण सबको अच्छा लगता है। मैं एक बार एक रेलवे स्टेशन पर बैठी थी, दिल्ली की बात है। सुबह का वक्त था, चाय की जरूरत होती है उस समय सबको
1: जी।
0: वहां पे कुछ टोलियां भी बैठी थी, कुछ गांव के लोग भी बैठे हुए थे, उसमें लेडीज जेंट्स सभी थे। वहां चाय वाला आया केटली में चाय लेके, डिस्पोजेबल ग्लास लेके। उन लोगों ने चाय पी और चाय पीकर सब अपने ग्लासेस फेंक दिए प्लेटफॉर्म पर ही, और ट्रेन आई और सब भाग के ट्रेन में चढ़ गए। ये देख के मुझे बड़ी तकलीफ हुई
1: जी।
0: तो वो तो चले गए थे, आसपास लोग खड़े थे। मैंने कहा देखो कैसे कर दिया इन्होंने सारा, यहाँ कहीं चाय लुढ़क रही है कुछ है, अब इसी को देख के हम नाक मुचड़ाएंगे, गंदा हमने ही किया है ये। अगर डस्टबिन पास में रखा था, उस पे डाल देते तो क्या हो जाता। तो मुझसे किसी ने कहा कि अरे मैडम ये तो सब अनपढ़ गंवार लोग हैं। मैंने कहा नहीं, ये गंवार लोग नहीं है, ये अपने घर में भी सब ऐसा ही रहते हैं। कोई भी अपने घर में चाय के कप्स ऐसे नहीं फेंकता है।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: ये चीज मुझे नहीं समझ में आती कि अनपढ़ गंवार हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ये इस जगह को अपना घर नहीं मानते, ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं
1: जी।
0: मैंने उनसे कहा, तो मैंने अपने हस्बैंड से भी बात की, तो उन्होंने कहा तुम क्या करोगी कैसे। मैंने कहा नहीं, मैं तो बोलूंगी इस चीज के लिए। तो मैंने आसपास लोगों को बोला, और फिर दूसरा एक ग्रुप था, फिर से चाय आई तो उन्होंने चाय पी। मैंने कुली से रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा आप इनसे कहो कि ये कप्स इसमें डालें
1: जी,
0: डस्टबिन में डालें। कुली ने उनको कहा, मेरी बात वो लोग भी सुन रहे थे, कुली ने भी कहा, तो उन्होंने फिर वो कप उठा के डस्टबिन में डाले। वो देखकर मेरे मन को तसल्ली हुई कि शायद थोड़ा सा एक कोई चीज किसी को बहुत सिंपल से तरीके से समझाई जा सकती है। हम भी कुछ थोड़ा सा ये सोचे कि अरे हमारी बात का क्या है, कोई बात नहीं, कर रहे हैं करने दो। हम अगर जो जागरूक लोग हैं, अगर थोड़ा सा पहल करके किसी को आगे कह सकते हैं, तो वो जो लोग इस चीज का जानते हैं पर उसका महत्व नहीं समझते हैं, या उसको हम ये कहें कि उस पब्लिक प्लेस को अपना घर नहीं मानते हैं, वो भी इस चीज को फॉलो करेंगे तो हमारा देश अपने आप स्वच्छ लगने लगेगा।
1: बिल्कुल सही कहा इंदिरा जी आपने, कि हम हमेशा यही सोचते हैं हमें क्या करना, हमें क्या करना।
0: इसीलिए मैं कह रही थी कि जो हम एक जने का प्रयास क्या होता है, एक एक जना करके बहुत कुछ कर सकता है, बदल सकता है।
1: तो सखियों, यहाँ पर एक चीज हम कहना चाहेंगे, ये तो इन्होंने रेलवे प्लेटफॉर्म की बात की, लेकिन हम लोग आपसे जो बात करना चाह रहे हैं वो है सार्वजनिक स्थानों की, उनकी सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उसे जब तक आप अपने परिवार जैसा नहीं मानेंगी, जब तक उसकी साफ सफाई की व्यवस्था चाक चौबंद नहीं होगी, सरकार के प्रयास तभी सफल होंगे जब हम उनका साथ देंगे।
0: बिल्कुल, मैं ये कहती हूँ कि जो भी फॉरेनर्स आते हैं, सबसे पहला जो विजिट होती है या उनको जो निगाह पड़ती है, वो सार्वजनिक स्थल पर ही पड़ती है। रेलवे स्टेशन से लेकर के कहीं कुछ भी हो उसको देख कर ही वो घूमने जाते हैं, पर्यटन स्थल होते हैं, उन पर अगर गंदगी पड़ी रहेगी तो वो हमारे देश के बारे में कैसे इमेज बनाते हैं, ये कहते हैं।

0: इंडिया इज अ वास्ट लैटरिन, ये वाक्य इंडिया के बारे में सुनना किसको अच्छा लगेगा और कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो ये चीज हमको समझनी चाहिए कि हम अपने देश की स्वच्छता में क्या योगदान दे रहे हैं। वातावरण को हम ही बना सकते हैं, हम ही बिगाड़ने वाले, हम ही बनाने वाले हैं। तो वो हमें करना होगा, जागरूक होना होगा, संवेदनशील होना होगा और अपने फर्ज को, अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा।
1: तो चलते चलते आप हमारी सखियों को कोई संदेश दें।
0: हाँ जी, संदेश तो मैंने अभी कहा जैसे कि अपना योगदान दें, पहला कदम बढ़ाएं। और कविता सुनाना चाहती हूँ, अधीर धरा
1: जी,
0: ये मैंने लिखी है, पर्यावरण को लेकर ही है। धीर धरे ये धरती माता, सदा ही सब कुछ सहती है। ओ मनुज, मान रखना तू उसका, वो तुझसे अब कुछ कहती है। शांत सौम्य माता का तूने किया सदा ही चीर हरण, अब प्राण वायु को तरसा है तू, वो तूने न्योता है अपना मरण। हिम शिखरों से सागर तक तू करता रहा है अपनी मनमानी, सब कुछ दूषित करता आया, फिर कैसे पाएगा निर्मल पानी। तू प्रकृति अन्वेषण को निकला, थाम हाथ में विज्ञान की लाठी, धीर मना माने दामन से तुझको अनगिन खुशियां बांटी। पर विकास के नाम पे तूने जब उस पर अत्याचार किए, तो प्रकृति दोहन के उसने तब तेरे सारे ज्ञान नकार दिए। अब मिटा रही वो दंभ तेरा कि तू बहुत बड़ा विज्ञानी है, जो सबक न ले अपनी भूलों से वो निपट निरा अज्ञानी है।
1: आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया इंदिरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सखियां इससे प्रेरणा लेंगी और पर्यावरण के साथ जो उनका संबंध है उसे और मजबूत करेंगी, और आने वाले समय में जब हमारी पीढ़ियां आगे आएंगी तो उन्हें भी पर्यावरण से ऐसे ही लगाव हो, यही हमारी कामना है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत
0: धन्यवाद, बहुत बहुत।
2: सखियों, अभी आप सुन रही थी पुनः प्रसारित भेंटवार्ता, विषय था महिलाएं और पर्यावरण। धरती की हरियाली में जीवन का संगीत है, नारी के संकल्प में बदलाव की जीत है, मिलकर करें प्रकृति का सम्मान हम सभी, इसी में आने वाले कल की नई उम्मीद है।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तीनों कॉलेज में
3: डोंट वरी
2: फीस तो देखो
4: क्या हाल है क्या हुआ
3: फीस की टेंशन
4: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही रास्ता क्लियर बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक नो कोलैटरल वो कहाँ है मिठाई
5: RBI कहता है
6: तरों से ही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
7: सखियों जहां बच्चों के लिए कहानियां जरूरी हैं वहां ये भी जरूरी है कि उन्हें पर्यावरण के लिए जागरूक करें और सखियों अब हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं वो है वन स्टॉप सेंटर की जो संकट ग्रस्त महिलाओं को एक ही छत के नीचे सभी समाधान देती हैं इसे हम सखी केंद्र भी कहते हैं अब सुविधाएं क्या मिलेंगी चिकित्सा सहायता मिलती है घायल होने पर पुलिस की सहायता मिलती है अगर आपको FIR दर्ज कराने में दिक्कत आती है कानूनी सहायता मिलती है जिसमें वकील की सुविधा मिलती है और अस्थायी आश्रय दिया जाता है पात्र कौन है अगर आप घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं तब भी आप पात्र हैं दहेज उत्पीड़ित हैं तब भी आप पात्र हैं छेड़छाड़ या यौन उत्पीड़न से आप ग्रस्त हैं तब भी आप इसकी सुविधा ले सकती हैं और किसी भी प्रकार की अगर आपके साथ हिंसा होती है तो आप ये सखी केंद्र में बात कर सकती हैं महिला हेल्पलाइन नंबर जो आपको याद होना चाहिए वो है 181-181 महिला पुलिस हेल्पलाइन नंबर है 1091-1091 और आपातकालीन सेवा नंबर है 112-112 तुरंत सलाह और मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है आपको पुलिस या संबंधित विभाग से संपर्क प्राप्त होता है जरूरत पड़ने पर वन स्टॉप सेंटर तक पहुंचाने में भी आपको मदद मिलती है बस आपको ये याद रखना है कि अगर आप मुश्किल में हैं तो आप अकेली बिल्कुल नहीं हैं एक कॉल या एक कदम बढ़ाते ही सखी केंद्र आपकी मदद कर देगा और तब तक करेगा जब तक आप सुरक्षित नहीं हो जाती आपको भेजने हैं हमें संदेश आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 9530012020 और आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं हमारा ईमेल एड्रेस है engoyaircota@gmail.com आज का सबसे

0: बड़ा संकट यह नहीं है कि लोग बोलते कम हैं, बल्कि यह है कि लोग सुनते कम हैं। सबको वो सुनना पसंद है जो उनके मन का होता है। आज थोड़ा सा अपने आप को बदल लें। आपके घर पर या आसपास यदि कोई चुप है, कोई शांत है, तो उससे सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि तुम ठीक तो हो। कई बार समाज को और अपने आप को बदलने के लिए इतनी सी शुरुआत ही काफी होती है। आप अपने अपनों का रखिए ख्याल। इसके साथ दीजिए अपनी सखी तेजमोहन को अनुमति। नमस्कार।
1: अभी बहनें सुन रही थी उनका अपना मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। सुबह के 10 बज रहे हैं। अब श्रोता सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में गूंजेगी बांसुरी की तान। फिल्मी गानों में बांसुरी के टुकड़े होते हैं जो हमें अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। एक ऐसे कलाकार हैं जो फिल्म संगीत, गजलें, फ्यूजन और शास्त्रीय संगीत सभी मंचों पर अपनी बांसुरी की तान से सबको मोहित किए हुए हैं। उन्होंने जब वी मेट फिल्म के इस गाने में बांसुरी बजाई। फिल्म दम लगा के हईशा। फिल्म ओ माई गॉड। बांसुरी की इस मीठी तान को सुनकर आपको लग रहा होगा कि आज के सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आखिर कौन से बांसुरी वादक आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ। ये है पारसनाथ से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। तो चलिए विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत करते हैं बनारस घराने के जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ जी का। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर?
1: मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने संगीतमय माहौल में आपने मुझे याद किया। इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ।
0: दिल्ली में जब तक आप रहे तो कितने ऐसे कलाकार थे, बड़े कलाकार, जिनके साथ आपकी बहुत यादगार मुलाकातें रहीं संगीत की दुनिया के?
1: ईश्वर के आशीर्वाद से जितने भी दिल्ली के जितने बड़े कलाकार हैं उन सभी के साथ मुझे मौका मिला कि मैंने सबसे आशीर्वाद लिया, सभी के साथ संगत भी की और सबके साथ ट्रैवल भी किया, टूर भी किया, रिकॉर्डिंग्स भी की। चाहे आप म्यूजिक डायरेक्टर्स के नाम ले लीजिए, चाहे दिल्ली में क्लासिकल म्यूजिक रिकॉर्डिंग, डिवोशनल फोक म्यूजिक के साथ साथ बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है वो है क्लासिकल डांस का। जहाँ बहुत बड़े बड़े जैसे उमा शर्मा जी हैं और शोभना नारायण जी हैं, सोनल मानसिंह जी हैं और बिरजू महाराज जी का पूरा इंस्टीट्यूट है वहाँ और बहुत सारे, इनके बैलेज में बजाना, इनके प्रोग्राम में बजाना। और जब बैलेज में रिकॉर्डिंग होती थी तो हमारे पास 20-20 पेज का, 30-30 पेज का नोटेशन आता था बैले का, तो वो पढ़ के बजाना लाइव रिकॉर्डिंग में, और दैट वाज अ चैलेंजिंग जॉब।
0: बिल्कुल।
1: और उसके बाद फिर दिल्ली रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री में, जैसे जो फोक इंडस्ट्री है पंजाब की, यूपी की और गढ़वाल की, वहां पे बहुत सारे, लद्दाख से लोग आते हैं,

0: अच्छा,
1: आसाम से लोग आते हैं, कजाकिस्तान से लोग आते हैं अपने तरीके के रिकॉर्डिंग करवाने के लिए। वहाँ हमने कितनी रिकॉर्डिंग्स की है वहाँ पे।
0: वाह वाह।
1: और दिल्ली इंडस्ट्री में जो नामचीन म्यूजिक डायरेक्टर का आप बोल लीजिए, स्टूडियोज बोल लीजिए, जैसे कि चरणजी जहूजा जी और मेरे चाचा जी दिनेश कुमार जी,
0: जी।
1: और जसपाल मोनी जी, हरि ओम जी, और पंडित ज्वाला प्रसाद जी, और बहुत गुणी म्यूजिक डायरेक्टर मेरे

0: बहुत बड़े बड़े जितने भी संगीतज्ञ रहे हैं, और मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं, तो पिताजी का भी अपना एक अलग
1: दर्जा
0: वर्चस्व रहा है दिल्ली
1: जी।
0: में। पिताजी का जब समय रिकॉर्डिंग में ऐसा होता था कि उनसे पूछ के स्टूडियो बुक किया जाता था। आप सोचिए कि आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सब हैं, बट एक आर्टिस्ट का एक इतना प्यार, इतना सम्मान, और इतने आर्टिस्ट की, उनके प्लेइंग की, उनके इमोशन की इतनी कदर है, इतना प्रेम है उनको मिल रहा है कि उनसे पूछ के स्टूडियो बुक हो रहा है, एक बहुत बड़े सम्मान की बात है।
1: वाह।
0: फिर पिताजी ने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर भी बहुत सारा काम किया, और फिर वो सब होते होते कमर्शियल मुझे भी शौक चढ़ा अरेंजमेंट का।
1: अच्छा।
0: हाँ, पिताजी को देख के, मेरे चाचा जी को देख के, मेरे चाचा जी श्री दिनेश कुमार जी,
1: जी जी
0: वो भी बांसुरी वादक हैं और म्यूजिक डायरेक्टर, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने दिल्ली में, पंजाब में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं।
1: जी जी
0: सो ये सब माहौल पूरा देख के वो फिर मुझे भी शौक चढ़ा कि मुझे भी अरेंजमेंट करना है। तो फिर धीरे धीरे मैंने भी कोशिश की फोक म्यूजिक में और डिवोशनल म्यूजिक में, और कुछ कुछ गजल वगैरह भी मैंने कुछ अरेंज किया, कंपोज किया, दिल्ली में रिलीज किया। तो ये इस तरीके का रहा सफर
1: ये सफर इस तरह से चलता
0: जी
1: रहा।
0: दिल्ली में।
1: हमारी बातचीत के सफर में अब एक गाने की जगह बनाते हैं,
0: जरूर
1: तो आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाया जाए?
0: आप बताइए आपकी पसंद का कोई गाना।
1: अच्छा देखिए, आप ही का पसंदीदा गाना मैं बता रहा हूं,
0: जी
1: और वो है तुम्हें देखती हूं तो लगता है ऐसे। ये आप बांसुरी पर काफी बजाते रहे हैं,
0: जी जी जी
1: है ना?
0: जी जो मैं आपको बांसुरी सुना रहा हूँ ना,
1: जी
0: ये बांसुरी भी मेरी ही बनाई हुई है
1: क्या
0: और
1: बात
0: पिताजी
1: है,
0: के साथ।
1: वाह।
0: और ये बांसुरी कम से कम नहीं तो मैं बचपन से इस बांसुरी पर रियाज कर रहा हूँ।
1: वाह
0: आप देख रहे होंगे इस पे ये निशान,
1: जी जी जी जी
0: और ये आप जब रियाज करते हैं तो ये भी निशान पड़ जाते हैं।
1: हाँ हाँ हाँ उंगलियों के।
0: ये बहुत पुरानी बांसुरी मेरी।
1: वाह।
0: और ये जो थ्रेडिंग है
1: जी
0: ये देख रहे हैं, ये वैकुंठ वेणु की थ्रेडिंग है।
1: अच्छा।
0: तो वैकुंठ वेणु जो है, लॉकडाउन के समय पे पिताजी, मेरे भाई और हमने सोचा कि अपने घराने को, अपने बुजुर्गों को, अपने दादा गुरु को, और अपने संगीत को, और अपने सास को एक इनिशिएटिव डेडिकेट करना चाहिए। तो तब एक बहुत बड़ा ये इनिशिएटिव लिया था हमने, जिसके नाम से चैनल रिलीज किया वैकुंठ वेणु। तो वैकुंठ तो हम सब जानते हैं,
1: बिल्कुल
0: जहाँ से ना वापस आने का मन होता है, ना अगर उस तरफ मन और दृष्टि चली जाए और आपको एहसास हो जाए कि वो क्या है, तो फिर आप वापस नहीं आते वहां से। तो जब मैं बांसुरी बजाता हूँ तो मुझे वो जो होना है, जो प्रेजेंट टाइम पे वो जो सेंस है, जो इमोशन है, वो जो जुड़ाव है संगीत और सुर के और सांस के साथ,
1: जी
0: तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे वापस नहीं आना है मुझे।
1: क्या बात है,
0: इसके लिए उसका नाम रखा वैकुंठ
1: वेणु।
0: और वेणु, क्योंकि मांसरी को वेणु भी बोलते हैं,
1: जी जी
0: तो इसलिए वैकुंठ वेणु नाम रखा हमारे इनिशिएटिव का। वो था धरोवर का, तो हमारे हमने यूट्यूब चैनल रिलीज किया, उसमें अपने संगीत जगत के, मुंबई के इंडस्ट्री के जितने भी बड़े दिग्गज कलाकार, चाहे श्री अनूप जलोटा जी हों, चाहे हरिहरन जी हों, चाहे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हों,
1: जी
0: और श्रेया घोषाल जी से लेके, सलीम सुलेमान जी से लेके, विशाल शेखर जी से लेके, सब सब सभी ने बहुत आशीर्वाद दिया
1: वाह
0: और इस बात की, इस इनिशिएटिव की तारीफ की,
1: जी
0: और उन सभी ने अपने अपने तरीके से सपोर्ट किया। और इस दौरान जब इस इनिशिएटिव का शुरुआत किया था, तो हम सबकी ये प्रार्थना थी कि जितने बांसुरी वादक और शहनाई वादक हैं, कोशिश करूं कि मैं इस इनिशिएटिव में, क्योंकि ये एक पूजा जैसी है।
1: बिल्कुल
0: जब आप घर पे पूजा कर रहे हैं, अपने मंदिर में पूजा कर रहे हैं, आप चाहेंगे कि उस पूजा की आरती सब लोग लें और उसमें जो बना कड़ा प्रसाद है वो सबको मिले,
1: सबको मिले,
0: ये आप चाहेंगे। क्योंकि पूजा आप कर रहे हैं, ये आपकी आत्मा से कर रहे हैं, आपका शरीर नहीं कर रहा, आपकी सोच कर रही है, आपकी आत्मा कर रही है, और वो आत्मा आपको ईश्वर से जोड़ रही है,
1: बिल्कुल
0: और वो ईश्वर का जो आशीर्वाद है वो सबको मिलना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: तो उसी सोच से

0: फिर मैंने कोशिश की कि जितने भी बांसुरी वादक जुड़ सकें, अब उसमें पंडित प्रवीण गुरखिंडे जी ने बड़ा अच्छा योगदान दिया, उन्होंने आशीर्वाद दिया मुझे, उन्होंने बड़े प्यार से एक्सेप्ट किया। पंडित अजय प्रसन्ना जी ने किया
1: जी,
0: और अश्विन श्रीनिवासन जी ने किया
1: जी,
0: एंड नवीन अन्ना जी ने किया। ये सब बड़े इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं
1: जी, जी
0: हिंदुस्तान के बड़े नाम हैं। और राकेश जी ने अपना एक इमोशन व्यक्त किया था, वो बजा नहीं पाए थे।
1: अच्छा,
0: हाँ, रोनू जी भी बजा नहीं पाए थे, पर उन्होंने अपना भावना प्रकट की थी, अभिव्यक्त किया था। और फिर उसके बाद मेरे भाई हैं, कजन ब्रदर्स हैं, शहनाई बजाते हैं
1: जी, जी।
0: संजीव कुमार जी, श्री संजीव कुमार जी, अश्विनी कुमार जी, और तीन भाई हैं, वो एक तबला बजाते हैं, दो शहनाई बजाते हैं
1: जी, जी।
0: और फिर और भी काफी आर्टिस्ट जुड़े थे, काफी देवप्रिया जी जो हरि जी की शिष्या हैं वो जुड़ी थी, और भी काफी आर्टिस्ट जुड़े थे। फिर मेरे पिताजी ने खुद हाजिरी दी थी इसमें, उन्होंने राग मालकोस बजाया था
1: जी,
0: मेरे भाई ने राग हंसुदनी बजाया था, और मैंने राग दुर्गा और एक और दो राग बजाए थे। तो ये हमारा वैकुंठ वेणु का बनाया हुआ बांसुरी है।
1: वाह वाह वाह,
0: जो मैं आपको इतनी देर से सुना रहा हूँ
1: जी, जी, जी। क्या बात है।
0: फिर मेरे पास दो और इंस्ट्रूमेंट है
1: जी,
0: जो मैं आपको सुनाऊंगा
1: जरूर,
0: उनके बारे में भी बताऊंगा
1: जी।

0: फारस जी, बहुत आनंद आ रहा है आपकी पूरी जीवन यात्रा के बारे में जानकर और इस जीवन यात्रा के दिलचस्प पहलुओं से आप हमें वाकिफ करवा रहे हैं। दिल्ली से मुंबई तक का जो मामला है, ये किस तरह से जमा और कब आप समंदर वाले शहर की तरफ आए?
1: जी, मैं दिल्ली में जब कुछ साल हो गए काम करते हुए
0: जी,
1: तो कुछ लोग ये प्रस्ताव लेके पिताजी के पास जाते थे। दिल्ली के जो नामचिन काम करने वाले म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, पिताजी के मित्र हैं, कुछ म्यूजिशियंस हैं जो पिताजी के करीबी दोस्त रहे हैं, तो वो प्रस्ताव लेके पिताजी के पास जाते थे कि ये बच्चा केपेबल है आगे बढ़ने के, तो इसको सिर्फ एक लिमिट तक सीमित ना रखा जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए। तो अब ये डिसीजन बहुत बड़ा था पिताजी का और परिवार का कि उस एज में मुझे भेजना। तो फिर हमारे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक दिल्ली के बहुत ही बड़े म्यूजिक डायरेक्टर जसपाल मोनी जी, मैं उनकी रिकॉर्डिंग में ही था, तो जब उनकी रिकॉर्डिंग हुई वो बहुत खुश हुए, बहुत प्यार उन्होंने दिया मुझे। उन्होंने कहा कि चलो मैं आपके साथ चलता हूँ घर पे। तो वो घर मुझे ड्रॉप करने आए, उन्होंने पिताजी के साथ मिले। वो मेरे पिताजी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे पिताजी भी उनको बहुत प्यार देते हैं। सो उन्होंने पहली बार इस तरीके से प्रस्ताव रखा कि पारस को मुंबई आप जरूर भेजिए। वहां से फिर कड़ी बनी मुंबई की आने की।
0: अच्छा, हाँ। तो इस तरह से

0: एक मुंबई आना हुआ
1: जसपाल मोनी जी।
0: हाँ, इतना आसान जिस तरीके से बताया मैंने, इतना आसान था नहीं
1: जी, जी।
0: बट मैं वो इमोशन आपको मैं बताना चाहूँ तो भी नहीं बता सकता
1: जी।
0: बट इट वॉज डिफिकल्ट डिसीजन फॉर फ्रॉम फैमिली साइड, बट वो बोलते ना कि वो अगर कुछ अच्छा पाना है तो कुछ तो
1: त्याग करना पड़ता,
0: त्याग करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी ममता का, प्यार का, अपने उस लगाव का त्याग किया
1: जी
0: उस चीज में मेरे लिए।
1: बिल्कुल। एक चीज जो बहुत मायने रखती है वो है मुंबई और दिल्ली दो अलग अलग दुनियाएं हैं। मुंबई एक बिल्कुल अलग संसार है और दिल्ली एक अलग संसार है।
0: बिल्कुल।
1: मुंबई में आपकी एक लंबी यात्रा रही है और उस यात्रा के विस्तार में हम नहीं जाएंगे, लेकिन किन किन फिल्मों में जिनका आप जिक्र करना चाहें आपने बांसुरी बजाई है उसके बारे में बताइए, और कुछ टेलीविजन सीरियल्स में भी बजाई है उनका भी जिक्र कीजिए।
0: जी, वैसे तो एक समय के बाद अभी वो लिस्ट बनाना छोड़ दिया है।
1: जी,
0: तो अभी चाहे वो दंगल मूवी हो
1: जी, जी,
0: और क्रिश 3 हो, काई पोचे हो, बधाई हो, तलवार हो, ओ माय गॉड हो,
1: ओ माय गॉड के बांसुरी पीस तो बहुत लोकप्रिय हुए
0: जी जी जी,
1: है ना, गानों में भी और बैकग्राउंड के जो भी पीसेस हैं
0: जी,
1: जी जी। और
0: ऊंचाई एक पिक्चर आई थी, ऊंचाई
1: जी जी, राजश्री प्रोडक्शंस की, अमिताभ बच्चन थे।
0: एक मिली पिक्चर आई थी
1: जी,
0: केदारनाथ, नजरअंदाज, धड़क पिक्चर है, मिशन मंगल है,
1: बाबा
0: मुन्ना भाई एमबीबीएस रिटर्न है,
1: क्या बात है,
0: दबंग 3 है, दृश्यम है,
1: ये तो बहुत लंबी फेरिस्त है,
0: सरबजीत है, फितूर पिक्चर है, नोटबुक पिक्चर है, गुडबाय है, मन मर्जियां है,
1: वाह वाह,
0: शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल ज्यादा सावधान,
1: हाँ दोनों पार्ट,
0: हाँ दम लगा के हईशा, जॉली एलएलबी,
1: वाह वाह,
0: बहुत सारी पिक्चर हैं
1: जी, बिल्कुल
0: बहुत सारी हैं। तो इनमें क्या रहा है कि कुछ मूवीज में मैंने सॉन्ग्स में बजाया है,
1: हाँ,
0: और कुछ मूवीज में मैंने बैकग्राउंड स्कोर बजाया है
1: जी जी, बिल्कुल,
0: बट बिकॉज एज आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट सो इट्स माय पार्ट ऑफ जर्नी।

0: एक तरफ फिल्मों में आप बजा रहे हैं, दूसरी तरफ शास्त्रीय महफिलों में आप बजा रहे हैं, तीसरी तरफ फ्यूजन की अपनी एक दुनिया है, तो इन सब के बीच में तालमेल कितना मुश्किल है और सबसे ज्यादा एंजॉय उसमें से किस पहलू को आप करते हैं?
1: एंजॉय तो मैं शास्त्रीय संगीत को ज्यादा करता हूँ
0: जी,
1: और उसके बाद फिर फ्यूजन में ज्यादा करता हूँ, फिर मैं फिल्म संगीत को मैं एंजॉय करता हूँ
0: जी जी।
1: बट क्योंकि शास्त्रीय संगीत में रहते हुए एक सिलसिलेदार जो गाना बजाना होता है उसको उसी तरीके से जीना होता है, उसी तरीके से रियाज करना होता है, वैसे ही आपके संस्कार हो जाते हैं, वैसे ही आप जीने लगते हैं।
0: वो फटाफट संस्कृति नहीं चलती वो,
1: हाँ वो नहीं चलता है वहाँ पे, तो वो आपको एक अनुशासन में लेके आता है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे
0: बिल्कुल।
1: और फिर उसके बाद फ्यूजन में जब एक खास बात यह है कि आप जितना वास्ट सोच सको, मतलब जितना बड़ा सोच सकते हैं आप, आपके पास कोई बंदिश नहीं है। करेक्ट, क्लासिकल में बंदिश है, शास्त्रीय संगीत में बंदिश है, यहाँ बंदिश नहीं है,
0: बहुत एक्सपेरिमेंट है।
1: और फिल्म म्यूजिक में क्या है कि आप, जैसा कि आपको याद है ओ माय गॉड मूवी,
0: जी बिल्कुल,
1: मैंने तो सिर्फ फिल्म का नाम लिया, आपने ही बोला वो कृष्णा थीम,
0: जी जी,
1: तो वो जो लोकप्रियता है, लोगों तक घर घर तक पहुंचना एक आर्टिस्ट का, वो फिल्म म्यूजिक के जादू है।
0: एक और पहलू है आपका और वो है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, फिल्मी गानों की ट्यून्स आपने बजाई हैं और दिलचस्प बात यह है कि हम विविध भारती में बैठे हैं, जहां से जब भी बीच में फिलर्स बजते हैं तो आपकी बांसुरी अक्सर, बल्कि मैं कहूं कि रोज गूंजा करती है।
1: क्या बात है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये जान के कि मेरी बांसुरी, मेरा बजाया हुआ संगीत आपके विविध भारती में रेगुलरली बजता है, तो मैं मतलब यहाँ हमेशा हूँ आपके साथ।
0: हम बिल्कुल बिल्कुल है। अच्छा, फिल्म म्यूजिक में एक जमाने से बांसुरी एक बहुत जरूरी इंस्ट्रूमेंट रहा है
1: जी,
0: तो पुराने फिल्मी गानों में से वो कौन सा गाना है जो आपके दिल के सबसे करीब है, जो बांसुरी का पीस है
1: जी? पुराने में तो हम सब जानते हैं हीरो धुन, वो एक
0: हीरो का एक बहुत ही शानदार पीस है,
1: वो एक वो पीस है। और फिर उसके बाद एक गाना है जाने जा, उसमें फ्लूट का एक बहुत प्यारा पीस है,
0: वाह।
1: और फिर एक जिसमें मनोहरी दा जो हमारे इंडस्ट्री मुंबई इंडस्ट्री के
0: मेटल फ्लूट बजाया करते,
1: मेटल फ्लूट हो नहीं, ये मेटल फ्लूट है सर
0: जी बिल्कुल,
1: दिस इज सिल्वर प्लेटेड,
0: वाह
1: सिल्वर प्लेटेड फ्लूट है ये, मतलब सिल्वर प्लेटेड एज इन सिल्वर हेड है इसका, चांदी का हेड है, बाकी सिल्वर कोटेड है
0: जी जी।
1: सो इसका बजाना और इसका टेक्निक और इसकी साउंड एकदम बैम्बू
0: डिफरेंट है बिल्कुल।
1: सो एज इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, एज पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री,
0: ये भी बजाना होता है,
1: अलग अलग साउंड्स भी मैं बजाता हूँ
0: जी।
1: सो जिसमें

0: तो ये
1: वाह क्या बात है, क्या बात है।
0: ये ओकरेनो है
1: जी जी,
0: ये आप देख रहे होंगे इसका शेप ही कुछ अलग है।
1: हाँ ये तो कुछ अलग ही चीज है।
0: दिस इज ओकेरिनो
1: जी।

0: उसका ऐसा साउंड है।
1: वाह वाह, ये बिल्कुल अलग साउंड
0: है। ये इसकी खास बात है, ये मैं इटली से लेके आया था।
1: अच्छा,
0: ये एक बहुत कमाल के म्यूजिशियन है, उनके पास में यात्रा इटली में
1: जी।
0: वो एक बुजुर्ग से अंकल हैं, तो उनकी शॉप जो है इंस्ट्रूमेंट्स की, इट वाज नॉट ओपन जब मैं था वहां पे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं इंडिया से हूँ और मैं प्रोफेशनल म्यूजिशियन, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक, सो आप प्लीज मेरे लिए एक मुझे दीजिए क्योंकि मैं दो दिन बाद जा रहा हूँ वापस। तो उन्होंने स्पेशली मेरे लिए शॉप अपनी ओपन की एंड आई ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम फ्लोरेंस टू हिज सिटी एंड आई बॉट couple of more instruments, जिसमें से एक ये था।
1: वाह वाह, अच्छा हुआ आप ये हमारे लिए लेकर आए, बहुत ही सुंदर था।
0: और ये आप देख रहे हैं सर, this is called kazoo।
1: जी जी,
0: ये इसमें हम गाते हैं।
1: हाँ, ये kazoo तो बिल्कुल बिल्कुल
0: इसमें हम गाते हैं, ये तो पता ही आपको।
1: जी जी जी जी।
0: तो अब जैसे पता ही है, फिर भी मैं आपको एक लाइन गाऊं।
1: जरूर, बिल्कुल, बहुत जरूरी है।
0: अब जैसे एक म्यूजिक है जो इसमें बड़ा अच्छा साउंड करता है।
1: हाँ हाँ,
0: रहमान साहब के गाने का है।
1: हाँ हाँ हाँ,

ピピピピピピパサニピピパニダピリリ。

0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है।
1: एक ऐसा खुद से ही जुगलबंदी निकल लेता
0: ये एक अलग वाद्य यंत्र हो गया।
1: सर, एक मैंने जब मैं फ्लूट, मेरा बहुत बड़ा पैशन रहा है हमेशा
0: जी
1: इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करना।
0: जी जी,
1: मैं बहुत घूमा हूँ, मतलब अकेले अमेरिका घूमा हूँ, लंदन घूमा हूँ, यूरोप घूमा हूँ, जैसा मैंने कहा इटली में था, इटली स्पेशली एक जगह, जब मेरा फ्लोरेंस में एक प्रोग्राम खत्म हो गया तो मैं एक जगह से एक जगह गया सिर्फ इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करने, तो मैं ऐसे दुनिया भर में सब जगह घूमा हूँ। सो अच्छा, आप जब अकेले घूमते हैं ना तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है जिंदगी का।
0: बिल्कुल,
1: उसके बारे में फिर हम कभी विस्तार से बात करेंगे, वो बहुत अलग अलग मेरे एक्सपीरियंसेस हैं और बहुत अलग अलग चीजें मैंने इंजॉय किए जिंदगी में।
0: क्या बात है।
1: सो अब जैसे ये बांसुरी है एक, तो एक
0: ये तो बहुत बड़ी सी बांसुरी है,
1: बड़ी बांसुरी, ये बांसुरी ही है। ये प्योर अपनी जो शास्त्रीय संगीत की जो कृष्णा बांसुरी है, बांसुरी ही है।
0: कहां से लाए?
1: नॉर्मल, जहां से मैं, ये तो मेरे खुद बनाई हुई है।
0: अच्छा अच्छा।
1: सो अब ये जो बांसुरी है, मैंने जब एक चाइनीज फ्लूट खरीदी, जब मैं दूसरे साउंड्स कलेक्ट कर रहा था, तो उसमें ऑप्शंस या स्केल्स अलग अलग नहीं मिल पा रहे थे मुझे। तो मैंने बहुत साल पहले एक, मेरा एल्बम भी आया था जिसका नाम है इटालियन

0: विंड्स, उस एल्बम में मैंने वो ये साउंड बहुत पहले रिकॉर्ड करके रिलीज किया है 2011 में
1: जी।
0: हालांकि ये साउंड उससे पहले ही बना लिया था क्योंकि रिलीज करने में तो और 2 साल लगे थे
1: जी जी।
0: तो इसका साउंड देखिए, नॉर्मल जो बांसुरी का साउंड है वो आपने सुना है
1: बिल्कुल,
0: इसका साउंड में सुनाता हूं आपको
1: जरूर।

0: क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अब ये साउंड जो है मैंने 2009 में क्रिएट कर दिया था। अब कई लोग इसको डीजी फ्लूट बोल के समझ के बना के वो अपना स्टैंप लगा के उसको फिर इंडस्ट्री में फिर यूज कर रहे हैं और कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मुझे खुशी उस बात की। बट अगर आप क्रिएशन की बात करते हैं, अगर आप सही बात करते हैं और सही होने की बात करते हैं, तो इस क्रिएशन का जो कि चाइनीज फ्लूट से एडॉप्ट किया हुआ है, तो अगर हिंदुस्तानी फ्लूट में एक्सपेरिमेंट अगर किया है ना इंडिया में, तो वो मैंने किया है। आई एम द फर्स्ट वन इन इंडिया
1: जी जी
0: हु क्रिएटेड इन हिंदुस्तानी बांसुरी इनटू डीजी फ्लूट और चाइनीज फ्लूट, दैट इज क्रिएटेड बाय मी
1: जी।
0: अब ये एक है, और इसका एक दूसरा जो हाई स्केल में ऐसा साउंड है,

0: ये इसका बाज नहीं है। हर साउंड का अपना बाज होता है,
1: बिल्कुल,
0: हर इंस्ट्रूमेंट का अपना बाज होता है, वो बाज समझना चाहिए। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा के उठा के भोपाली नहीं बजा सकते उसमें,
1: बिल्कुल।
0: साउंड जब उठा रहे कोई, उसकी नॉलेज भी तो जरूरी है ना। अब मैंने आपको इंग्लिश फ्लूट सुनाया, अब इसमें अगर मैं, हालांकि इंडियन भी बहुत अच्छा बजता है इसमें,
1: जी बिल्कुल,
0: इसमें मैंने एक इंडियन कंपोजिशन रिलीज किया था, तो मेरे जहन में क्या था कि इंडियन कंपोजिशन इंग्लिश फ्लूट में कैसे साउंड करेगी। अब देखिए, एक ये इसका जो स्टाइल है,

0: पूरा साउंड चेंज हो गया,
1: पूरा प्लेइंग चेंज हो गया ना.
0: जी जी.
1: अब वैसे ही जो ये जो साउंड है, अब इसका जो प्लेइंग स्टाइल है,
0: हाँ, क्या बात है.

0: ये स्टाइल है इसका।
1: वाह,
0: इस साउंड के स्टाइल के हिसाब से भी एक कंपोजिशन बनाई थी मैंने,
1: और ये फिल्म म्यूजिक में बहुत सुनाई दे रही है।
0: बहुत बजाया मैंने इसको
1: जी,
0: म्यूजिक में, मैंने अपने एल्बम में भी बजाया
1: जी।
0: एल्बम में जो कंपोजिशन था,

0: ये कंपोजिशन उसमें बजाई।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: तो हर इंस्ट्रूमेंट का अपना रोल है, उसका अपना साउंड है, उसकी अपनी स्टाइल ऑफ प्लेइंग है।
1: बिल्कुल,
0: वो पता होना जरूरी है। और वो पता कैसे चलेगा? वो पता ऐसे चलेगा जब आप म्यूजिक सुनेंगे और स्टूडेंट बन के सुनेंगे।
1: बिल्कुल,
0: उस्ताद बन के नहीं।
1: बहुत जरूरी है।
0: आजकल क्या है, सुनने से पहले उस्ताद बन जाते हैं। सीखने से पहले। अब ये देखिए, ये बांसुरी भी मैंने बनाई है,
1: ये छोटी वाली जी।

0: वाह वाह वाह वाह, इसकी शार्पनेस बिल्कुल अलग है।
1: क्योंकि सर आप जब एक म्यूजिशियन बनते हैं ना
0: जी,
1: तो मैंने शुरुआत में आपसे एक बात कही थी कि आर्टिस्ट, या आप आर्टिस्ट हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको अपने काम से ईमानदारी रखनी चाहिए
0: जी।
1: और ईमानदारी आप तभी रख पाएंगे जब आप उसके धरोहर से, उसकी धरती से जुड़े हुए होंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसका बेसिक पता होगा आपको,
0: समर्पण कितना गहरा है।
1: अब जैसे कि अगर मैं सिर्फ ये सोचूं कि मुझे बांसुरी बजानी है, बांस तो जंगल से आ जाएगा, बनाने वाला कोई और होगा, मैं तो सिर्फ बजाऊंगा, तो मेरा प्रेम दिखाई नहीं देगा उसमें। प्रेम तो तभी होगा जब आप जानते हो बांसुरी बनती कैसे है।
0: वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बात बोली आपने।
1: आप जो चीज बजा रहे हैं वो आप खुद बना सकते हैं क्या
0: जी?
1: अगर मैं बांसुरी किसी से ले रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर वो बांसुरी बनाना बंद कर देगा मेरी बांसुरी छूट जाएगी। मैं डिपेंडेंट नहीं हूं, मेरा प्रेम है उनके साथ, मेरा रिश्ता है उनके साथ। मैं जिनसे बांसुरी ले रहा हूं या जो भी मुझे अपना इंस्ट्रूमेंट, अभी बड़ी प्यार से किसी ने भेजा, मैंने खोला भी नहीं अभी तक
0: जी, जी जी।
1: अब मैं खोलूंगा इसको, बांसुरी को सुनूंगा, देखूंगा, प्रेम करूंगा, मेरा नाता जुड़ गया अगर,
0: हाँ तो रख लेंगे,
1: रख लेंगे, बजाएंगे।
0: वाह।
1: पर अगर किसी ने प्रेम से भेजा है और वो इंस्ट्रूमेंट जो दिया है वो मेरे भाग्य है, वो बड़े भाग्य से कोई मिलता है आपको, अगर इंस्ट्रूमेंट अगर आपको कोई अच्छा दे रहा है और आपके पास अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, ये आप समझिए कि आपका बहुत बड़ा भाग्य है।
0: क्या प्यारी बात है जी।
1: गुरु मिलना सबसे बड़ा भाग्य है
0: जी।
1: उसके बाद दूसरा भाग्य है कि आपको इंस्ट्रूमेंट सही मिले
0: जी। जी,
1: अब इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है, हम बात करते रहेंगे तो 4 घंटे तक चलता रहेगा। पर सही इंस्ट्रूमेंट मिलना सबसे बड़ा भाग्य है गुरु मिलने के बाद। फिर आपको इंस्ट्रूमेंट से प्यार होना, उससे जुड़ना, तभी आपका साउंड 100 लोगों से अलग सुनाई देगा।
0: बिल्कुल, एक अलग पहचान।
1: सारे गामा पादा निसा आप सेम बजा रहे हैं। अभी मैं आपको एक चीज, एक दो उदाहरण देता हूं
0: जी।
1: सपोज कीजिए सुबह का राग तोड़ी है
0: जी। जी,
1: अब सारे गामा ऐसे भी बजता है थोड़ी, पर सिर्फ सारे ही गामा ही है, सिर्फ सरगम ही है।
0: वाह,

0: ये भी सारे काम है,
1: जज्बात आ गए,
0: पर इसमें प्यार है।
1: हाँ बिल्कुल,
0: ये जो प्यार है ये सर लेके पैदा होता है आदमी
1: जी,
0: या अगर बताया जाता है संस्कार से बताया जाता है, अगर लेके नहीं आया होता तो, तो जो लेके आया होता है उसकी लेयर जो होती है वो होती नहीं है, मतलब जो एक दुनियादारी की लेयर होती है ना, जो इनसेंसिटिविटी की लेयर है
1: जी, जी
0: वो नहीं होती है, तो उसका हिस्सा क्लियर है आत्मा का, तो वो ऑलरेडी महसूस कर रहा है। अब जो लेके नहीं आया संसार में, अब उसको अगर कोई सिखा रहा है, बता रहा है, पढ़ा रहा है, अब चार लोग हैं रूम में, एक को समझ में आ रहा है, एक को ज्यादा आ रहा है, एक को बहुत आ रहा है, एक को आ ही नहीं रहा, तो जिसको आ ही नहीं रहा उसे तब तक मेहनत करती रहनी पड़ेगी जब तक वो लेयर हटे ना उसके ऊपर से, जब तक वो सेंस नहीं कर पाए
1: जी,
0: तो वो प्रैक्टिस जब तक उसकी तब तक ही चलेगी जब तक वो सेंस नहीं कर पाएगा।
1: यस,
0: तो ये संगीत का ये एक आधार है।
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर बातें हो रही हैं। और पारस जी, सबसे अच्छी बातें वो होती हैं जहां और ज्यादा बातों की गुंजाइश आगे के लिए छोड़ दी जाए।
0: क्या बात है,
1: तो आपके साथ जो महफिल है वो कभी खत्म होती नहीं है इस महफिल को यहाँ रोकते हुए,
0: आपका आपका और इस, अच्छा। इस जगह का जादू ऐसा है जी, मेरा खुद का मन नहीं करता जाने का, पर क्योंकि समय का भाव ऐसा रहता है।
1: मैं समझ सकता,
0: आपका भी कार्यक्रम है आगे और मुझे भी कुछ कार्यक्रम में है जाना, सो मुझे दिल से एक बार फिर मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ
1: जी,
0: कि मुझे आपने इतनी प्रेम से और इतने सम्मान से याद किया और आमंत्रण किया यहाँ पे। ये मेरे लिए तो जैसा मैंने हमने शुरुआत की, दिस इज होम कमिंग बैक फॉर मी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इतनी आसानी से नहीं जाने,
0: नहीं जाने।
1: एक बहुत अच्छा सा पीस बजाइए
0: तो, मैं
1: गाने की फरमाइश कीजिए।
0: हीरो,
1: देखिए फरमाइश भी आ गई,
0: ये तो फरमाइश नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट है।
1: अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, हीरो के गाने की फरमाइश।
0: हाँ हीरो, मैं तो हीरो जैसा लग रहा हूँ उनको शायद।
1: अच्छा क्या बात है, क्या बात, कॉम्प्लीमेंट आया,
0: कॉम्प्लीमेंट है
1: जी जी जी जी। तो हमारी टीम ने हीरो के गाने की फरमाइश की
0: जी,
1: और आपको भी हीरो कह दिया है,
0: मुझे निशब्द कर दिया आपने
1: जी।
0: सो ये हीरो धुन
1: जी
0: स्पेशली डेडिकेशन टू यू,
1: शुक्रिया,
0: एंड टू जिन टीम की आप बात कर रहे हैं उन सबको एक दिल से मेरी तरफ से आप सबको डेडिकेशन है।

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार।
1: थैंक यू सर। क्या आपको, मेरे दिल से मैं आपको सुनाना चाहता हूँ।
0: जी जी जरूर।
1: वो है ओ माई गॉड का थीम,
0: कृष्णा थीम,
1: कृष्णा थीम
0: जरूर।
1: सो दिस अगेन, वंस अगेन, दिस डेडिकेशन डेडिकेशन टू ऑल द लिसनर्स जो हमें इतनी प्यार से सुन रहे हैं
0: जी,
1: और इतना प्रेम हमेशा देते आ रहे हैं
0: जी,
1: हमारे आकाशवाणी के विविध भारती को,
0: बिल्कुल
1: आए सारे आप सब टीम को, यहाँ आए सारे आर्टिस्टों को, जो ये सारी बुनियाद है, ये उन प्यारे लिसनर्स, ऑडियंस और संगीत प्रेमियों पे निर्भर है जो हमें इतना सारा प्यार देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: सो दिस स्पेशल डेडिकेशन टू देम।
0: बिल्कुल, शुक्रिया।
1: एक हमारे बड़े अच्छे भैया हैं, उनका नाम है संजय विद्यार्थी जी।
0: जी।
1: सो बहुत गुणी आदमी हो, तो बहुत पुरानी बात है, तो उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया था। ही वॉज रिकॉर्डिंग वन सॉन्ग सम अनदर फ्लोटिस्ट, एक किसी बांसुरी वादक के साथ रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो वो रिकॉर्ड करते करते, रिकॉर्डिंग हो गई, सब हो गया उनका, फिर जब मिक्सिंग कर रहे थे ना, तो उनको एक अलग साउंड सुनाई दे रहा था गाने के बीच में, तो उन्होंने परेशान हो गए वो। फिर ना उस वक्त तो ये सॉफ्टवेयर वाला काम थी ना, डिजिटल था रहा था, तो वो ना एक एक चैनल मिक्सर में देख रहे हैं कि कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है। सो फिर फाइनली उनको एक फ्लूट चैनल पे वो साउंड सुनाई दिया। तो वो क्या साउंड था मैं आपको बताता हूँ
0: जी।
1: जैसे सपोज, हो रहा है ना ये कंपन जो हो रहा है,
0: बिल्कुल,
1: इसको हम विब्राटो कहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अब जो उनको विब्राटो जैसे सुनाई दे रहा था, वो साउंड गाने में कैसे दे रहा था मैं बताता हूँ आपको
0: जी।
1: तो विब्राटो इतना दिल से आ रहा था,
0: ये दिल से आ रहा था कि ये झटके से आ रहा था।
1: ये बड़ा कॉमेडी सीन था वो
0: जी।
1: जब उन्होंने सुनाया तो मैं पागल हो गया था।
0: अरे बाप।
1: खैर, ओ माय गॉड कृष्णा थीम फॉर
0: जरूर
1: एवरीवन।

0: शानदार, क्या बात है।
1: अच्छा क्या है, दो तीन पीस है
0: जी,
1: कुछ
0: जी।
1: फेमस जिसको लोग बोलते हैं कि मैं, मतलब कुछ अलग आर्टिस्ट बोलते हैं कि शायद कुछ कंफ्यूजन हो सकती है
0: जी।
1: कभी कभी इंडस्ट्री में क्या होता है कि एक ही गाने को दो सिंगर गा जाते हैं, तीन सिंगर गा जाते हैं, ऐसी कई बार मैंने भी कुछ कुछ गाने ऐसे बजाए हैं जो ऑलरेडी कोई बजा के गया है।
0: अच्छा अच्छा।
1: फिर उसको फाइनल मैंने बजाया, फिर उसको रखा है
0: जी।
1: अब जैसे एक वो है कलर्स चैनल का जो थीम है, तो मैंने स्पेशली रिकन्फर्म किया जिसके साथ मैंने रिकॉर्डिंग किया था, जिस स्टूडियो में मैंने रिकॉर्डिंग किया था उनके पास आज भी सेशन रखा है, उसमें मेरा नाम है।
0: ओके।
1: तो ये एक थीम है, और दूसरा फिर इस गाने में भी मैंने बजाया है मोमो के धागे वाले का।
0: वाह, बहुत शानदार पीस है ये
1: आपके लिए स्पेशली, मोमो के धागे।

0: क्या बात, अद्भुत।
1: थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू,
0: बहुत बहुत शुक्रिया पारसजी विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए।
1: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच,
0: बहुत शुक्रिया।

जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध

दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग।

0: जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में।

हम सुन रहे थे हिंदुस्तानी गजल एल्बम से निर्मला देवी की आवाज में, शकीक बदायूनी ने इसे लिखा और खान साहिब अब्दुल रहमान ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं अगली नज्म, जो कि है उर्दू गजल एल्बम से, बेगम अख्तर की आवाज में है और जिगर मुरादाबाद ने इसे संगीतबद्ध किया है।

हम सुन रहे थे मुकेश गजल्स एल्बम से, मुकेश की आवाज़ में जान निसार अख्तर के बोल और खयाम के संगीत से सजी हुई इस नगमे को। आइए सुनते हैं अगली गजल जो होगी हिंदुस्तानी क्लासिकल गजल एल्बम से, तलत महमूद की आवाज़ में एहसान मिर्ती के बोलों के साथ चित्ता रॉय का संगीत है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा, जो कि हिंदुस्तानी गजल्स एल्बम से लिया गया है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। सबा अफगानी ने इसे लिखा और इकबाल ने संगीतबद्ध किया है।

0: हम सुन रहे थे मिराजे गज़ल एल्बम से आशा भोसले गुलाम अली की आवाज़ में। नासिर काज़मी ने इसे लिखा और गुलाम अली ने संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं संदेश।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं उर्दू मॉडर्न गजल एल्बम से लता मंगेशकर की आवाज में गालिब के द्वारा लिखे गए इस नगमे को।

हम थे खामोश एल्बम से सुन रहे थे उत्कर्ष शर्मा की आवाज में सिया सचदेव के बोलों से सजे हुए देव बसक ने इसे संगीतबद्ध किया है। ये है एक प्यारा सा नगमा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा जो कि पृथ्वी गंधार की आवाज में है।

आज के कार्यक्रम रंग तरंग की अंतिम नज्म एहसास एल्बम से तलत अजीज की आवाज में सूरज सनीम के बोलो ललित सेन के संगीत के साथ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: FM 102 और 103.6 MHz, साथ ही मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बज रहे हैं, लीजिए अब प्रस्तुत है।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र राधेनगर से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं और यही मानव संबंध की विडंबना है।
1: बहुत सुंदर संदेश राजेश पी कारिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
2: महाराष्ट्र से प्रशांत रमेश पाटिल।
1: और धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
1: और साथ ही साथ हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रसिद्ध शीत मरुस्थलों की।
2: इस क्रम में कल हमने चर्चा की थी अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल की और जाना था इससे जुड़ी रोचक बातों को। आज हम चर्चा करेंगे एक और अनोखे शीत मरुस्थल की और वो है गोभी का मरुस्थल। तो अजीत जी चर्चा को विस्तार दीजिए।
1: जी विमलेश जी, आइए चर्चा को विस्तार देते हैं। तो श्रोताओं, आपको हम बताना चाहते हैं कि अंटार्कटिक का शीत मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है
2: जी।
1: लेकिन यदि एशिया महादेश की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोभी। इसका क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। विमलेश जी अब आपकी बारी।
2: जी श्रोताओं, ये मरुस्थल मुख्य रूप से मंगोलिया और चीन के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। स्थानीय भाषा में गोभी को गोब कहते हैं जिसका अर्थ है निर्जल स्थान। एक बात और आपको बता दें कि ये रेत का नहीं लेकिन पत्थरों का मरुस्थल है क्योंकि इसका अधिकांश भाग चट्टानी और पथरीला है, केवल 5% भाग ही रेतीला है।
1: तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इस मरुस्थल के तापमान की। जहाँ तक तापमान का प्रश्न है, यहाँ तापमान बहुत कम होता है
2: जी।
1: सर्दियों में ये -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है जबकि गर्मी के मौसम में यहाँ का तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है।
2: यानी एक ही मरुस्थल में कड़कती ठंड भी और झुलसाने वाली गर्मी भी
1: जी।
2: लेकिन इसे शीत मरुस्थल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ अधिकांश समय सर्दियों का ही होता है। अजीत जी, एक बड़ी विशेष घटना हुई है जिसके कारण गोभी का मरुस्थल बहुत प्रसिद्ध हुआ है। क्या थी वो घटना?
1: विमलेश जी, वो घटना थी जब वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में डायनासोर के अंडे और जीवाश्म मिले
2: जी।
1: यहाँ और भी कई दुर्लभ प्राणियों के जीवाश्म मिले हैं जिसके कारण वैज्ञानिकों और संचार माध्यमों ने इसे प्राचीन जीव जगत के खजाने की संज्ञा दी है।
2: अजीत जी, अब श्रोताओं को जरा यहाँ रहने वाले लोगों की जानकारी दे दें।
1: जी हाँ जरूर
2: श्रोताओं, गोभी मरुस्थल में रहने वाले अधिकांश लोग आज भी घुमंतू जीवन यानी नोमेडिक लाइफ जीते हैं। मंगोल परिवारों का पारंपरिक घर गोलाकार का होता है जिन्हें यर्ट कहते हैं। इन घरों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि आसानी से खोले और दूसरी जगहों पर ले जाए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग यहाँ मौसम को देखते हुए जगह बदलते हैं। वैसे गोभी मरुस्थल के बाहरी इलाकों में आधुनिक शहर भी हैं।
1: तो श्रोताओं, आपको ये भी बता दें कि आज के आधुनिक वाहन यहाँ बहुत कम मिलते हैं। यहाँ के ऊंट 2 कुबड़ वाले होते हैं
2: जी।
1: जो अत्यधिक ठंड और गर्मी दोनों सह सकते हैं। एक बात और आपको बता दें कि ठंड के समय ये ऊंट बर्फ खाकर अपनी पानी की जरूरत को पूरा करते हैं
2: जी।
1: घुड़सवारी यहाँ के प्रतिदिन के लोक जीवन का हिस्सा है और घुड़दौड़ है यहाँ का प्रिय खेल और मनोरंजन का माध्यम
2: जी। अजीत जी, क्योंकि उमंग रेडियो कार्यक्रम है तो ये बताना तो बहुत ही प्रासंगिक होगा कि गोभी मरुस्थल के दूर दराज के इलाकों में भी आज भी टेलीविजन की पहुंच बहुत कम या नहीं के बराबर है
1: जी।
2: यहाँ लोग रेडियो सुनकर ही मौसम का हाल जानते हैं, समाचार सुनते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। अब आधुनिकता के दौर में पर्यटन बढ़ गया है, सैलानी देश विदेश से आते हैं और यहाँ के घुमंतू परिवारों के साथ

0: होम स्टे करते हैं।
1: श्रोताओं, यहाँ की दिनचर्या भी बहुत मजेदार और गतिविधियों से भरी हुई है। सुबह उठकर दूध दुहना महिलाओं का काम है, जबकि पुरुष मवेशी चराने का काम करते हैं।
0: जी।
1: दिन भर की मेहनत के बाद शाम को पूरा परिवार एक साथ भोजन करता है और कहानियों और गीतों के द्वारा मनोरंजन करता है। ये गाते हैं, बजाते हैं।
0: बजाने के लिए इनके खास वाद्य यंत्र हैं, जैसे मोरिन खोर।
1: ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है?
0: ये दो तारों वाला वाद्य यंत्र है। एक और बहुत लोकप्रिय वाद्य यंत्र है लिम्बे। ये बांसुरी जैसा वायु वाद्य यंत्र है। एक रोचक बात यह है कि यहाँ लोग अपने संगीत को ऊंट, घोड़े और प्रकृति से जोड़ते हैं। कई धुनें यहाँ ऐसी होती हैं जो जानवरों को बुलाने और शांत करने के लिए बनाई गई हैं।
1: बहुत सुंदर जानकारी विमलेश जी। सचमुच गोवी का शीत मरुस्थल जीवन की कठिनाइयों और उसे सुंदर ढंग से जीने का अनूठा उदाहरण है।
0: तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी गोवी के शीत मरुस्थल की।
1: अब आज का प्रश्न सुनिए आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, गोवी मरुस्थल के उन घरों को

0: सुंदर जानकारी विमलेश जी। सचमुच गोवी का शीत मरुस्थल जीवन की कठिनाइयों और उसे सुंदर ढंग से जीने का अनूठा उदाहरण है।
1: तो श्रोताओं, ये थी रोचक जानकारी गोवी के शीत मरुस्थल की।
0: अब आज का प्रश्न सुनिए आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, गोवी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: गोवी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं।
0: श्रोताओं, आप प्रश्नों के उत्तर और संदेश हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर या हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं
1: जी।
0: हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। और हाँ, NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें यानी ऑडियो बुक्स आप दीक्षा या NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है दोस्त की पहचान।
1: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में बताया गया है कि एक सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाती है। संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय काम आए।
2: एक जंगल से दो दोस्त गुजर रहे थे।
3: कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ तो।
4: हाँ, बहुत बड़े पेड़ हैं।
3: अरे देखो देखो, कितने अच्छे पक्षी हैं यहाँ पर।
5: अरे वो देखो चिड़िया।
6: अरे वो देखो बंदर।
7: ओ, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है।
8: मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है।
9: हाँ, ये तो सही कह रहे हो।
10: अरे कोई जानवर आ गया तो क्या करेंगे हम?
11: क्या करेंगे?
12: देखेंगे, जब जानवर आएगा तब।
2: अचानक
10: ओ, ये तो रीछ की आवाज है।
13: अरे अरे, मुझे तो लगता है रीछ आ रहा है।
10: ओ, अब हम अपनी जान कैसे बचाएंगे?
14: क्या करे क्या करे, जल्दी सोचो क्या करे।
10: मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
15: अरे मुझे तो पेड़ पर चढ़ना आता है।
2: रीच को देखकर उनमें से एक दोस्त झट से दरख्त पर चढ़ गया।
15: ओ, ऐसा करता हूँ, पेड़ पर चढ़ जाता हूँ।
2: और दरख्त की टहनियों में छुपकर बैठ गया। दूसरा दोस्त नीचे अकेला रह गया।
10: ओ, अब मैं क्या करूं? मैं
2: जब उसको कुछ नहीं सूझा,
10: मैं ऐसा करता हूँ, जमीन पर लेट जाता हूँ और अपनी सांस रोक लेता हूँ, तभी जान बचेगी।
2: तो वो सांस रोककर चुपचाप जमीन पर लेट गया। रीच उसके करीब आया, उसने उसे सूंघा।
10: रीच तो मुझे सूंघ ले। मैं ऐसा करता हूँ, सांस रोक के लेटा रहता हूँ, तभी जान बच पाएगी।
2: मुर्दा समझकर छोड़ दिया।
10: बच गए, लगता है रीच चला गया।
2: रीच जब चला गया तो दूसरा दोस्त,
15: अरे रीच तो चला गया, अब मैं पेड़ से नीचे उतर सकता हूँ।
2: और अपने साथी से जाकर पूछा,
15: एक बात तो बताओ, रीच ने तुम्हारे कान में क्या कहा?
2: पहले दोस्त ने जवाब दिया,
10: मेरे कान में कहा, ऐसे दोस्त से दोस्ती मत करो जो मुसीबत के समय काम न आए और तुम्हारा साथ छोड़ दे।
2: पंचतंत्र की कहानी मश्क। सोचिए और बताइए,
0: महफूज तरीके से जंगली जानवरों को कैसे देखा जा सकता है? जंगलों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, उनकी फेहरिस्त बनाइए। अगर आप उन दोस्तों में होते तो दोस्त की मदद कैसे करते? दोस्त की पहचान। अभी आप सुन रहे थे ये प्रोग्राम। अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, रिकॉर्डिंग मंजू कुमारी, फनकार फरहान अली नकवी, बाल कलाकार सोहम और वान्या, हिदायतकार विमलेश चौधरी, पेशकश कुसुमलता। ये प्रोग्राम CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश किया गया।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गौरा देवी।
2: इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाट्य प्रस्तुति के द्वारा चिपको आंदोलन की जानी मानी नायिका गौरा देवी के जीवन और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है।
3: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
4: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
3: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
5: मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
6: अरे इंसान की नहीं लगी। अरे
5: नहीं लगा ना? लाओ लाओ, रुको रुको रुको। अरे मैं
7: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो।
5: हा?
7: अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
5: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो।
7: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
6: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
7: मैं तो टोकूंगी और

0: बार बार रोकूंगी।
1: बढ़िया ही रोकने वाली।
2: हाँ, वही करेंगे।
3: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
4: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
3: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
4: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
5: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
6: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
5: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
0: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
5: आप तो काम करती है ना?
0: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
5: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
3: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है, चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
4: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
3: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांवों के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
4: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
3: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थी। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
4: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।

0: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहाँ से आ रही हो?
1: गौरा माँ, वो लोग आ रहे हैं।
0: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहाँ आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
1: गौरा माँ,
0: हाँ,
1: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
0: क्या?
1: हाँ गौरा माँ, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके, उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
0: अच्छा, तो ये बात है। बहनों,
2: हाँ गौरा माँ, हाँ गौरा माँ,
0: चलो हम सब तैयार हो जाएं।
3: बिल्कुल,
0: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
2: हाँ गौरा, सब तैयार हैं,
4: किसी भी हाल में जंगल कटने
3: नहीं कटने देंगे।
1: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
5: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।
0: ये है जंगल के उपकार,
2: मिट्टी पानी और बया,
0: मिट्टी पानी और बया,
2: जिंदा रहने के आधार।
6: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
0: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे, जिस जंगल ने तुझे पाला, पोसा, बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
7: आगे बढ़ो।
3: अरे कहाँ से?
7: दो मिनट की बात तुम्हें बताओ, मैंने तुम्हें पेश की थी है पेश की इस काम के लिए।
0: आगे बढ़कर तो दिखाओ, तुम एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, आज
1: नहीं लगाने देंगे।
0: बहनों, आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
7: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
5: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
6: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
7: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
5: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
6: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया।

0: और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
1: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
0: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
2: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहाँ से हमें फल, फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
1: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, और इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी श्रोता सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से FM 102 और 103.6 MHz पर। दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। अब श्रोता सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।

0: हम सुन रहे थे चुपके चुपके चल रही पुरबैया। ये गीत हमने लिया लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोलों के साथ, सचिन देव वर्मन के संगीत से सजा हुआ फिल्म चुपके चुपके से।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आज हमने सजाई है सचिन देव बर्मन के गीतों के साथ। आइए सुनते हैं सचिन देव बर्मन की आवाज में आराधना फिल्म का यह गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया है सचिन देव बर्मन ने ही।

अभिमान फिल्म से सुन रहे थे ये गीत हम, जिसे गाया लता मंगेशकर ने, मजरूर सुल्तानपुरी के हैं बोल और सचिन देवबर्मन के संगीत से सजा हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। यादों की महफिल में हम सजा कर लाए हैं सचिन देवबर्मन के संगीतबद्ध किए गए और कुछ उनके गाए गए गीतों को। तो अब हम चलते हैं उनके ही द्वारा गाए गए इस गीत की ओर, जिसे लिया है गाइड फिल्म से, जिसे सचिन देवबर्मन ने गाया भी है और संगीतबद्ध भी किया है।

0: डार्लिंग।
1: हम सुन रहे थे बड़ा सकारात्मक सा गीत बाजी फिल्म से, गीता दत्त की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल और सचिन देव वर्मन के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम में सचिन देव वर्मन के ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए इस अगले गीत को, जिसे लिखा है साहिल लुधियानवी ने, किशोर कुमार ने गाया है और मुनीम जी फिल्म से इस गीत को लिया गया है।

आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम यादों की महफिल का अंतिम गीत। प्यासा फिल्म से गीता दत्त मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, साहिर लुधियानवी के बोल और सचिन देवर्मन के संगीत से सजा हुआ है। सुनते हैं इसके कुछ अंश।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में आज एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग से 21 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग बुझाने के लिए घटनास्थल पर 10 दमकल गाड़ियां मौजूद हैं। आग बुझाते हुए दमकल कर्मियों के भी झुलसने के समाचार हैं। ताजा जानकारी मिलने तक लगभग 40 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है और सभी घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी सोशल

0: मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। उत्तराखंड के टिहरी इलाके में कल एक हादसे में राजस्थान के 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 1 बच्चा घायल हो गया। बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। ये दुर्घटना एक निजी वाहन के बेकाबू होकर अलकनंदा नदी में गिर जाने से हुई। कार में सवार शेष 4 लोग लापता हैं। इनकी तलाश में रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। ये सभी लोग जैसलमेर जिले के दरियानाथ बावड़ी के रहने वाले थे और हरिद्वार की ओर जा रहे थे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ईश्वर से मृतकों की पुण्यात्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास के लिए आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और इसे आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने चिंता व्यक्त की कि अभी भी कुछ जनजातीय वर्गों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है। गौरतलब है कि यह सम्मेलन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के तहत आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन के दौरान देशभर में जनजातीय विकास के लिए जिम्मेदार संस्थागत प्रणालियों को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अरावली पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण से संबंधित प्रमुख मुद्दों के समाधान के लिए निष्पक्ष और वैज्ञानिक मूल्यांकन आवश्यक है। इससे पहले न्यायालय ने पिछले वर्ष अक्टूबर में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी और विशेषज्ञों द्वारा नए सिरे से समीक्षा करने के निर्देश दिए थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने कहा कि साइकिल को नियमित आदत बनाने से संतुलित और अनुशासित जीवन शैली को बढ़ावा मिलता है, साथ ही पर्यावरण स्थिरता और स्वच्छ परिवहन को भी समर्थन मिलता है। इस बीच विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर साइकिल रैलियों के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया जा रहा है। भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से शुरू हुई साइकिल रैली विश्व प्रसिद्ध शांति पार्क में जाकर सम्पन्न हुई। इस दौरान पौधे रोपकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया। देश की पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप कल से अहमदाबाद में होने जा रही है। ये चैंपियनशिप 8 जून तक आयोजित की जाएगी। इसमें अमेरिका से भी योगा एथलीट का दल शामिल होगा। अमेरिकी योगा एसोसिएशन और USISF के संस्थापक और अध्यक्ष बलविंदर सिंह 11 सदस्यीय अमेरिकी दल का नेतृत्व करेंगे। प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जनअभियान के तहत जल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज विभिन्न जिलों में विशेष नवाचार और अभिनव कार्यक्रम रखे गए हैं। इसके साथ ही ऊर्जा विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर्स के आसपास साफ सफाई के काम किए जा रहे हैं। वहीं सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों का सम्मान किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: उधर से भी कोई मेरी तरह से सोच रहा है, पर अगर कोई इशारा ना मिला तो क्या होगा? मेरी तरफ से पहल ठीक रहेगी? हमारे गौर श्रोता लिखते हैं, आज का कार्यक्रम बहुत ही स्पेशल होने वाला है, जिसमें प्यार मोहब्बत की बातें होंगी, इशारे भी होंगे, छेड़छाड़ भी होगा, खत किताबत भी होगी और फिर मिलन के गीतों की लंबी फहरिस्त भी होगी और बस सुनने में मजा आएगा। बिल्कुल सही। अब हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि आज की जो इबारत है आप सही समझे हैं, बस उतने ही समय की है जितने समय में इस राहें

मोहब्बत होती है, बस उससे कहने की देर होती है। पर कहने के पहले जो जो कुछ होता है वो सब कुछ आज की बातों में है। तो पहला प्रश्न है, क्या आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, बात तो अंदर की है जो हम आपसे पूछ रहे हैं। हो सकता है ये बात आपकी अपनी पत्नी, आपके पति के साथ हुई हो, या फिर कोई और हो जो आपकी प्रेयसी या आपका प्रेमी रहा हो, या ये बात आपने किसी और के लिए भी महसूस की हो, तो बताइएगा ज़रूर।

जो आपकी प्रेयसी या आपका प्रेमी रहा हो, या ये बात आपने किसी और के लिए भी महसूस की हो, तो बताइएगा ज़रूर ये बात क्या है आपके दिल की। कभी कभी तो कोई अभिनेता अभिनेत्री गायक गायिकाओं के लिए भी इस तरह के मन में विचार रख लेते हैं, कभी कोई खेल खिलाड़ी के लिए। तो अगर ऐसा कोई विचार मन में है तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये जो दिल है ना, बड़ा बड़ा खतरनाक है, जाने किस पे कब आ जाए। तो चलिए सुनते हैं आज के इस कार्यक्रम का पहला गीत, और इस गीत के साथ हमारा एक प्रश्न आपसे जो हमेशा जुड़ा होता है। पहला प्रश्न तो हमने आपको दे दिया कि बताइए कि आपके साथ ऐसा कुछ हादसा हुआ है, अगर हुआ है तो बता दीजिए, बताने में शर्म कैसी। और बस इतना बता दीजिए, ये जो गीत आप सुन रहे हैं इसमें ये मीठी सी सुरीली सी आवाज किसकी है।

बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कुछ कुछ प्रेम कहानियों का आगाज झगड़े से भी होता है। हाँ, ये मैंने भी देखा है कि कई लोग झगड़ते रहते हैं और फिर बाद में प्यार करने लगते हैं। ये भी बड़ा रोमानियत भरा एहसास है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत हम बुजुर्गों को जवां बना दिया है, कुछ गुलाबी जख्मों को हल्के से सहला गया। अब देखिए इस बात को अगर आप ये समझें कि जीवन जो है वो शरीर बड़ा होता है, मन और आत्मा तो वही रहती है, तो उसी मन के लिए, सहलाने के लिए और उसी मन की प्यारी बातों के लिए आज का यह कार्यक्रम हमने इन जज्बातों से संजोया है। तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से लिखा कि करोड़ों लोगों की पसंदी आवाज अनमोल रत्न रफी साहब की है। बिल्कुल सही है। हमारे श्रोता ने लिखा है हमारे हुआ तो हमारे साथ भी खुल के बता दे ना, मत डरिए, बताना है तो बता दीजिए, अब तो समय निकल चुका है, अब क्या क्या ही फर्क पड़ने वाला है। बट पर हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे जमाने में प्रेम विवाह तो कोई सपना भी नहीं दिखता था। हाँ, अरेंज मैरिज में बगल में बैठी पत्नी के पैर की अंगुलियां बस दिखाई पड़ती थी, वह भी साथ में बैठी नाई की पत्नी झट से ढक देती थी, तो इशारे भिसारे क्या करते। जी, शायद आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने विवाह के बाद एक दूसरे को देखा होगा। यानी कितनी आरजू होगी ना कि जिसके साथ विवाह हो रहा है कम से कम उसका चेहरा तो देख ले, पर वह भी एक समय के बाद इतनी कितनी अच्छी एक अलग ही अनुभूति होगी। ऐसे ही हमारे श्रोता लिख रहे हैं मोहब्बत का इजहार उनके सामने करना कोई उतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन सामने से अगर कोई इनकार आ जाए तो बस इस बात का डर रहता है, इसीलिए कई लोग इजहार नहीं कर पाते। हमारे श्रोता लिख रहे हैं दिल धड़कने का सबब याद आया, लेकिन राजे दिल कहने की दोपहर नहीं है, कहीं डंडे खिलवाने का इरादा तो नहीं है। देखिए, अब अगर वही है तो फिर कह सकते हैं, अगर दूसरी है तो कहना बनता नहीं है। जी चलिए आज, हाँ जी बिल्कुल, हमारे श्रोता ने लिखा है आज सबके ये छुपे हुए राज रहस्य जानने आई हैं। जी, जानना बनता है, क्योंकि हम आपको बताएं कि ऐसा नहीं है कि ये जो प्रेम है ये केवल किसी एक तरह का ही हो। हमें भी एक बार वो बड़ा सुंदर सा एक कार्यक्रम आता था, उसमें एक संचालक हुआ करते थे, वो गायक हैं सोनू निगम, उनको देखकर हमें भी मन करता था कि इनको एक हम पत्र लिखें। और एक बार हमने लिखा भी और बाकायदा लिखा, सोनू भैया आप ऐसा ऐसा कुछ कुछ जो भी लिखना था वो लिख के उनको भेजा। एक लंबे अरसे के बाद उस चिट्ठी के बारे में जिक्र भी हुआ। तो ये प्रेम किसी भी तरह का हो सकता है, ये प्यार, ये पहला खत कैसा भी हो सकता है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं हमें वो मिले हैं पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो सच में हमें भी प्यार करते हैं या नहीं, पर हमने सोच लिया कि वो हमें प्यार करें या ना करें, बाकी आगे देखो क्या होता है। जी बस, हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी वो उम्र जब मेरी जॉब लग चुकी थी, शादी से पहले मैं सोचता था कि मेरे सपनों की रानी कैसी होगी, वाकई में मेरे आंखों के सामने बरबस ही अक्स उभर आते थे, फिर माता रानी का चमत्कार हुआ, पता नहीं कैसे मेरी पूज्य सासू माँ ने मुझे लायक समझा, मुझे पसंद किया और सपनों की रानी से मुझे मिला दिया, जिसके लिए मैं अपनी पूज्य सासू माँ का ता उम्र एहसानमंद रहूंगा। रहना ही चाहिए, उन्होंने अपनी बेटी आपको दी है और इतनी प्यारी बेटी, लाजवाब बेटी आपके साथ है उनकी। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें लिखी हैं और उनमें से लिखा बहुत प्यारी बात के लिए है कि हाँ, ये बहुत अच्छी इबारत है कि हे साइकिल अपनी इनायत आपके कर्म कैसे भूलेंगे हम, आज विश्व साइकिल दिवस है तो उससे जुड़ा हुआ ये हमारे बीच में एक संदेश आया है कि ये साइकिल आपकी इनायत आपके कर्म कैसे भूलेंगे हम, अगर उस जमाने में ना होती तुम तो हमारे फूट जाते कर्म, खतों के इंतजार में रहते हरदम, जब बजती पोस्टमैन की साइकिल की घंटी, दरवाजे दौड़े दौड़े चले जाते थे हम, खत पाकर हाथों में खुश हो जाते थे हम, बोल उठते थे शुक्रिया शुक्रिया हम, अगर हमारा खत ना होता तब हो जाते थे बेदम। बहुत बढ़िया बात है, और ये खत कितने काम की चीज रही है उस समय, ये बात तो हम भी जानते हैं। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से इस बात को बताया कि कई सारे जो प्रेम हैं उस प्रेम के बारे में, जैसे इबारत रूपी दो दिलों की रूहानी मोहब्बत, नजाकत इनायत और तड़प का जिक्र है, जहां दिलों पर हुकूमत करने वाली मोहब्बत अगर रुस्मा हुई तो कयामत ही कयामत है, खतों और इशारों की दलीलों से दिल को सहलाने वाले प्रेमी युगल के प्रयास दो दिलों की विरह बेसब्री और वेदना को चित्रित करता है, रूहानियत भरी इश्क में एहसान की गुंजाइश नहीं, ये जज्बा एक दरिया है जहां दो दिल अक्सर बह जाते हैं, आज के सात्विक सुरीले प्रेम सफर का आनंद का इंतजार।

अब दिल जो ना कह सका वो कहने की रात आई है, और ये गीत हमने लिया भीगी रात से, मजरूर सुल्तानपुरी के बोल और संगीत है रोशन का। हमने आपसे पूछा कि ये मीठी सुरीली सी आवाज़ कौन सी है, तो ऐसा कौन होगा जो ये आवाज़ नहीं पहचान पाएगा। हमारे सभी श्रोताओं ने बहुत अच्छे से पहचाना इस बात को, और बताया कि आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है। अभी इज़राहे मोहब्बत जो है, आप सबको प्यार हुआ ही होगा कभी ना कभी, किसी ना किसी समय। तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से इस बात के उत्तर देना शुरू किए। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, रफ़ी की भी आवाज़ भीगी रात, प्रदीप कुमार, मीना कुमारी, अशोक कुमार नजर आते हैं।

है। तो चलिए हम चलते हैं अगले गीत की तरफ, और इस बार भी बड़ा सरल सा प्रश्न है। जैसे मैंने अपनी पहली खत के बारे में बता दिया जिसके लिए लिखा था, दिल किया था, शायद आपका भी कोई खत हो जो आपने पहली बार लिखा था, बता दीजिए, डरिए मत, कोई पिटाई नहीं करने वाला। और आप ये बता दीजिए बस, अगला गीत जो हम आपको सौंप रहे हैं ये किस फिल्म का है, बताइएगा जरूर।

ये खूबसूरत सा गीत हम सुन रहे थे मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने। हमने आपसे पूछा था कि इस फिल्म का नाम क्या है, तो आप सब बहुत समझदार और बहुत ज्ञानी हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बड़ी जल्दी लिख देते हैं, और आपने लिखा कि ये फिल्म अनजाना है, और मैंने इस बात को स्वीकार किया। हमारे श्रोताओं से हम बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, उसमें से हमारे एक श्रोता ने लिखा है, मेरी लव मैरिज है, कुछ 56 साल पहले मैंने शादी की थी, घर वालों से मंजूरी नहीं मिली क्योंकि ये जमाना था जिसमें प्यार शब्द बोलना भी गुनाह माना जाता था, लेकिन मैं तो आज भी मानती हूँ प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती, प्रेम एक शुद्ध भावनात्मक अनुभव है जो किसी भी उम्र में हो सकता है। इन्होंने जवानी या बुढ़ापा दोनों का जिक्र किया है। यह दिल से दिल का जुड़ाव है जो समय या सामाजिक बंधनों से नहीं बंधा है। प्यार जीवन के किसी भी पड़ाव पर हो सकता है। असली प्यार वह है जहाँ इंसान बिना किसी डर या दिखावे के स्वीकार कर सके। बिल्कुल सही है। हमारे श्रोता लिखते हैं, नहीं बताएंगे विधि जी आपको और सभी को, पर बहुत सारी बातें हैं, पर दिल में रहे तो ज्यादा अच्छी है। बस इतना कहेंगे कि कभी किसी को परेशान नहीं किया। हाँ, हमारे नटकट से कान्हा जी से भी प्यार का इजहार एक माँ के रूप से भी कुछ कम नहीं है। उसमें कभी कान्हा जी को डांटना, कभी नजर उतारना, और कभी कभी उनको क्या खाना है, इस बात का भी एहसास, कितना सच्चा प्यार है ना ये। हाँ, सच बात है, ये बहुत खूबसूरत एहसास है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इसी बीच पर हमारी बहन ने लिखा है कि उसे वापस लिख रहा हूँ कि उम्मीद और डर के बीच झूलता हुआ एहसास ही मोहब्बत है, और यही हाल पहले लिखे खत में नजर आता है, और वो खत चाहे किसी को भी लिखा हो। सही बात है। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारी जो सगाई होने पर पत्नी रानी को खत लिखा, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के, तो उन्होंने जवाब दिया, तुम्हें पाके हमने पा लिया है। क्या बढ़िया खूबसूरत, आप तो गीतों के साथ बात कर रहे थे। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हमने खत स्कूल टाइम में लिखा था, स्कूल को ट्यूशन क्लास लगने जाते थे तो हमने लिखा था, उसके बाद फिर कभी नहीं लिखा। इन्होंने बड़ी अच्छी पंक्तियां लिखी हैं कि चर्चा हमारे प्यार का हर आमो खास में था, पर वो न समझ सके जो दिल के पास था, हमने तो अपनी हर दुआ उनके नाम कर दी, शायद उनकी तकदीर में कोई और ही खास था। क्या बात है, बढ़िया शेर है। ऐसे ही हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिया कि वैसे तो प्रेम की परिभाषा अलग अलग होती है, पर मुझे जॉय मुखर्जी बहुत पसंद आती हैं। शादी वाला प्यार नहीं था लेकिन बहुत पसंद थे, इसलिए मैंने अपने बेटे का नाम जॉय ही रखा ताकि मैं जॉय मुखर्जी को हमेशा अपनी यादों में जिंदा रख सकूं। टीवी का एक कार्यक्रम आता था सुरभि, जिसमें रेणुका शाणी जी की हंसी भी मुझे बहुत पसंद थी। ये भी तो एक प्रेम का रूप है ना। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं, हमारी भी सगाई के 2 साल बाद शादी हुई, इस बीच हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं था, शादी भी घूंघट में हुई, सीधा रूम में दीदार हुआ, लेकिन हम एक दूसरे को खत लिखते रहे। उस समय फोन से ही बातें होती नहीं थी, मात्र एक मात्र सहारा खत हुआ करते थे, उसके

बावजूद भी इतना प्यार कि प्यार इतना प्रकार की आज तक मजबूत डोर बंधी हुई है, यह होती है दिल से दिल का मिलन। लेकिन आज वह बात नहीं है जो राजा न रानी, दुनिया हो गई बड़ी सयानी, कब रिश्ते टूट जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैंने जब शादी की तो शादी के पहले मैंने अपने जीवन साथी को देखा नहीं था। माँ पापा ने रिश्ता पसंद करके तय कर दिया था, हमने केवल फोटो देखा था। और 1990 से लेकर आज तक रिश्ता बहुत अच्छे से चल रहा है, ये सदा चलता रही है, प्रार्थना हमारे ईश्वर से है। हमारे श्रोता ने लिखा, गांव की एक लड़की के दो छोटे भाई, लड़की को दो छोटे भाई के जरिए लेटर लिखा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब भाई ने उसके हाथ में खत दिया तो गुस्सा हो गई, बोली आगे से ऐसे खत लिखा तो खैर नहीं है, वैसे मुझे देखने के लिए हमारे घर टीवी देखने आती थी। ये बात 1992 की है। बढ़िया है, हमारे श्रोताओं ने बहुत, एक और बात मेरी जो मैंने बात कही थी उसके लिए भी उन्होंने सराहा है कि हाँ ऐसा सबके साथ हुआ है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि इश्क की उस नाजुक दहलीज को दिखाती है जहाँ एक बेइंतहा उम्मीद है, दूसरी तरफ कोने का उतना बड़ा डर। दिल पूरी तरह उस इंसान के फैसले पर निर्भर हो जाता है, जहाँ उसका हाँ जिंदगी को जन्नत बना सकता है और ना कयामत ला सकता है। सही बात है, हमारे श्रोता लिखते हैं किसी पर दिल आ जाए तो क्या होता है। बहुत बढ़िया है, खुश रहिए, ऐसे ही खुश रहिए। आप लिखते हैं, हमारी श्रोता ने लिखा, आज की जनरेशन का प्यार मोहब्बत का इजहार डिजिटल और क्रिएटिव है तरीकों का इस्तेमाल करती है, इसके लिए सोशल मीडिया, डेटिंग ऐप और पर्सनलाइज्ड जेस्चर बढ़ चला है। बिल्कुल सही है, तो ये बहुत सारी बातें हमारे पास आ रही हैं और इन्हीं बातों के बीच में हमारे श्रोताओं ने हमें और भी संदेश भेजे हैं। उन संदेशों में खत के लिए बात कही है। खत सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि दो दिलों के जोड़ने का एक पुल है और उन्हें गहराई तक पहुंचाने वाला सुकून है या एहसास का जरिया है जो दूरियों को मिटाकर शब्दों के जरिए जज्बातों को हमेशा के लिए अमर कर देता है। खत के शब्द लिखने के लिए रूह को पढ़ने वाले तक पहुंचते हैं, या अनकही बात बयां करने का सबसे अच्छा साधन है। यह बिल्कुल सही बात है, शब्द कभी पूरे नहीं पड़ते जब खत लिखने बैठो, इसलिए दिल इशारों इशारों में बहुत कुछ कहना चाहता है। और एक तो लिखते हैं कि प्यार का पहला खत लिखना आसान नहीं होता, अल्फाज कम, धड़कने ज्यादा शामिल होती हैं, कलम कागज पर चलती है मगर असल में दिल अपनी बात कह रहा होता है। हश लफ्ज के साथ यह डर भी होता है कहीं भावनाएं अधूरी ना रह जाए, हर पंक्ति में उम्मीद भी कि शायद सामने वाला उन्हें अनकहे जज्बातों को पढ़ ले जिसमें शब्द पूरी तरह बयां नहीं कर पाते। ऐसे ही कई सारे संदेश आए पर ये गीत सुनवाना बनता है आपको, जब आपका जैसे एक जिक्र किया गया कि वो फिल्म देखने हमारे घर आती थी, तो ऐसा ही कुछ भी हो सकता है ना, कोई बड़ा करीबी सा। बताइए ये किस फिल्म का गीत है।

लता मंगेशकर की आवाज, राजा मेहदी अली खान के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ ये गीत हम सुन रहे थे अभी। और हमने आपसे पूछा था बस इस फिल्म का नाम बता दीजिए, तो आप सबने सही बताया, अनीता फिल्म का ये गीत हम सुन रहे हैं। और हम बात कर रहे थे प्यार के इजहार की या फिर खत लिखने की, प्यार किसी से भी हो सकता है। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा कि जब मेरे बीए का एग्जाम था तो देकर अभी निकला ही था तो तुरंत विविध भारती से जुड़ गया, और ये भी तो एक प्रेम का रूप है श्रोताओं के लिए, विविध भारती के लिए। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छे से ये सारे उत्तर देते देते एक और बात लिखी कि मैंने एक नाटक देखा था डोली तेरे अग्नि जिसमें सच्चा प्यार करते हो, सच्चा मान लेते हो, मिल जाता है, पर मुझे लगता है कि सच्चे आशिक को सजा मिलती है, पाई हुई मंजिल भी छूट जाती है। हो सकता है, देखिए हर किसी का अलग अलग बात होती है। अच्छा, हमारे श्रोता लिखते हैं कि दूसरा खत प्रेमिका को लिखा था जो आज सरकार होम मिनिस्टर बनकर हम दोनों का जीवन जिस पथ पर सुगम करने में तुला हुआ है। क्या बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं मैंने पहला प्यार अगर किसी से किया तो रफ़ी साहब की आवाज़ के साथ में किया, उनको सुनकर मुझे कुछ मुझे होने लगता था। और एक शशि कपूर मुझे बेहद पसंद थे, मैं उन्हें अपने बड़े भैया की तरह मानती थी और जब वो उनको देखती तो खुशी होती थी। पर खत तो मैंने कभी किसी को नहीं लिखा। अभी कुछ साल पहले आनंद जी नाइट में मैं गई थी कोलकाता, आनंद जी भाई आए थे अपनी पत्नी के साथ, तो हम शशि कपूर को एक खत लिखकर उनको दिया था, पता नहीं उन तक पहुंचा या नहीं। उसके बाद शशि कपूर साहब चले जाने की खबर भी आई थी। जी, हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि खत तो हमने बहुत लिखे अनगिनत, लेकिन 77 में घर से बेघर हो गए थे तो पत्र के संवाद का माध्यम था। बिल्कुल सही बात है, घर जब छूट जाता है तो फिर हम अपने परिवार वालों से भी ऐसे ही बात करते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा कि आज का प्यार तो कुछ इस तरह से हो गया कि पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरे को दिया और मिलना बिछड़ना बड़ी आम बात हो गई है। जी, पहले ऐसा भी होता था ना कि गांव के मोहल्ले के किसी बच्चे को चिट्ठी दे देते थे और वो जाकर दे आता था, है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं पोस्टकार्ड इनलैंड और लिफाफे के एक जमाने में खूब लिखे हैं और आज भी संभाल कर रखे हैं। हमारे

ने लिखा, खत पहले हमने विविध भारती के प्रोग्राम को लिखा, प्रेरणा जीजा जी थे जो मुंबई विविध भारती ऑफिस में टेक्निकल विभाग में काम करते थे। तो ऐसे ही खत आप लिखते जाइए ना, अभी तो आपके लिए खत वाला कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है और आपके खत के साथ आपके पसंदीदा गीतों को भी हम सुनाया करते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, कॉलेज में एक लड़की को खत लिखा था मगर उसने फर्स्ट ईयर के बाद ही कॉलेज छोड़ दिया। ऐसा कैसा खत लिख दिया आपने? हमारे श्रोता लिखते हैं, लव मैरिज हुआ था और अभी 38 साल मना रहे हैं, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। हमारे श्रोता लिखते हैं, कभी प्यार का खत नहीं लिखा, मोबाइल आ चुके हैं, दिल की बात कागज पर नहीं मैसेज में होती है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग होने लगी है। बिल्कुल सही बात है। अब हमारे श्रोता लिखते हैं कि सिर्फ तुम में जो स्टोरी थी वैसे भी कहानियां बनती हैं, असलियत में बिना देखे बिना मिले वाला प्यार। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, वो प्यार कितना सुंदर होता है ना जिसमें देखा ही नहीं। शादी 58 साल पहले हुई थी, तब हम पढ़ते थे, विदाई 3 साल बाद होकर पत्नी घर आई तो हम बलिहारी जाऊँ उन्हें खूब प्यार करते, 6 महीने बाद वह चली गई तो हम भी परेशान वो भी, लेकिन उनकी सहेली पढ़ती थी वो कॉलेज का नाम पूछकर एक खत डाल दिया। एक दिन एक छात्र ने एक खत दिया और कहा, ये तुम्हारा ही है ना, आज मेल बॉक्स में पड़ा मिला, जहां डाक किया सब चिट्ठियां डालकर जाता है, हमने पढ़ा सब जितने दो ही और शायरी उसे आते थे, उसने लिखा था नीचे आपकी रानी लिखा था, फिर हमने उनके गांव में खत भेजे, खूब शायरी लिखते थे, वो सहेली उन्हें सुनाती थी, फिर 6 महीने बाद वो आ गई, फिर ऐसे खत नहीं लिखे। कितना अच्छा, कितनी अच्छी याद होती है ना ये सारी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में हमारे मेरे घर के सामने मेरी उम्र की लड़की रहती थी, मैं उसे देखता था, उसके पीछे करता था, बाद में विवाद हुआ परिवारों में और उसके बाद इन्होंने ये काम छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, बेटियां भी परेशान हो जाती हैं। और इसके साथ ही हम आपको अगला गीत सौंप रहे हैं और अगला गीत बस वही है खत के बारे में, लेकिन कई लोग हैं जो खुद खत लिखते हैं और पहले का जमाना ऐसा था जब खत लिखवाए जाते थे किसी और से। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि खत उन्होंने लिखा था माता पिता और बड़ी बहन जी जी जीजा जी भांजे भांजी के लिए, तब हमने मुंबई में नेवी ज्वाइन किया था। अच्छी बात है, जब दूर रहते हैं घर से तो हम लिखते ही हैं खत, ऐसी ही बहुत सारा प्रेम बहुत सारी चीजें हम एक दूसरे के लिए भेजते हैं। तो अब देखिए ये वाला गीत आप सुनिए और बताइए इसकी गायिका कौन है, और साथ में संगीतकार भी बता देंगे तो अच्छा रहेगा। और इसके साथ एक बात और बताइएगा, खत तो लिखा लेकिन पहले खत का जवाब क्या आया था, जरूर से साझा कीजिएगा।

ये खत दूसरे से लिखवाना कितना कठिन होता होगा ना, कि आप अपने जज्बात उसे बता रहे हैं। यही बात तो आखिर अंतरे में आशा भोसले गागा के बता रही थी, जिसे आनंद बख्शी ने लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया। फिल्म आए दिन बाहर के हमने वही प्रश्न पूछा था कि गायिका कौन है, तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। आशा भोसले गा रही है, आशा पारेख अभिनय कर रही है, आनंद बख्शी के गीत है, लक्ष्मी प्यारे का संगीत है और बहुत खूबसूरत गीत है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सच में बिना देखे वाला प्यार भी बड़ा प्यारा होता है। ऐसा भी होता है कभी किसी की अच्छी बातों से प्यार हो, कभी किसी की आवाज़ से प्यार हो, कभी किसी की बात ना करने से प्यार हुआ हो, तो बात बहुत सारी हो सकती है। बस प्यार में सच्चाई, अपनापन हो, ना तो कोई दिखावा हो ना कोई गलत बात। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि हाँ, इस गीत में बाबू बार बार बोला जा रहा है या डाक बाबू के लिए ही बोला जा रहा है। हाँ, आजकल ये बाबू शब्द का प्रयोग भी प्रेमी या के लिए किया जाता है, पर यहाँ पर डाक बाबू के लिए ही कहा जा रहा है। बिल्कुल सही बात कही आपने, हमारे श्रोता ने लिखा, गाने की खूबसूरती यही है, पर्दे पर भी आशा जी हैं और आवाज में भी आशा है, यानी आशा भोसले और आशा पारेख। बिल्कुल सही हमारे श्रोता लिखते हैं, मगर इतना जरूर जाना है कि प्यार एक बहुत गहरा एहसास है, कि पालेना ही प्यार है, प्यार महसूस

0: किया जाता है, इसलिए प्यार किया नहीं जाता। अगर हम प्यार करते हैं तो खुशी में हमारी खुशी होती है, मर्जी में दुख। जी बिल्कुल सही बात आप कहते जा रहे हैं। इसके साथ हमारे श्रोताओं ने इस बात के लिए लिखा कि शादी के बाद जब पत्नी पीहर चली जाती थी तो उनके लेटर पैड पर पत्र लिखता था और लिफाफे को पोस्ट कर देता था उसके पास रहने वाले पड़ोसी के पते पर। पड़ोसी के पते पर क्यों, उनके पते पर क्यों नहीं, ये प्रश्न हम आपसे पूछते हैं। हमारे एक श्रोता ने हमारे लिए बहुत अच्छा संदेश भेजा है। जब पहला खत 2008 में विविध भारती को लिखा था, जब रेडियो पर अपना नाम सुना तो पल भर के लिए अविस्मरणीय बन गया। तभी से मैं विविध भारती मेरे जीवन का प्रिय साथी बन गई। लगभग 18 वर्षों से मैं नियमित रूप से विविध भारती सुन रहा हूँ। इसके कार्यक्रम उद्घोषकों की सभी कलाकारों की मधुर आवाजों से एक आत्मीय रिश्ता बन गया है। ऐसा लगता है विविध भारती केवल रेडियो सेवा नहीं बल्कि परिवार का एक हिस्सा है। इसकी हर आवाज मुझे अपनापन और स्नेह मिला है और यही कारण है कि मेरा लगाव दिन प्रतिदिन और गहरा होता गया है। छोटी पंक्ति, विविध भारती से मेरा रिश्ता श्रोता का नहीं बल्कि दिल का है। इसकी हर आवाज में मुझे अपनापन और प्यार महसूस होता है। हमें भी यही होता है। हमारे एक श्रोता ने बड़े अच्छे से अंग्रेजी में लिखा है, मैं उसका हिंदी में अनुवाद करके आपसे बात करती हूँ कि उनकी अरेंज मैरिज थी, यानी विवाह माता पिता ने तय किया था और दोनों गांवों के बीच में 40 किलोमीटर का अंतर था। दोनों बैंक में काम करते थे और इनके जो होने वाले सैया थे वो बड़े शर्मीले थे, इसलिए मिलने नहीं आते थे। पर इन्होंने ही एक दिन आगे रहकर बात करी तो उन्होंने जन्मदिन पर बुलाया। फिर वो एक होटल में खाने के लिए गए, बीच पर बैठे, बातें की और साथ में एक बहुत सुंदर सी रिश्ता इनके बीच में कायम हुआ। बहुत बढ़िया बात है। अब हम चल रहे हैं एक और जज्बात की ओर, एक और गीत की ओर, और उस गीत को सौंपने के पहले हम चाहते हैं कि ये संदेश हम सुन लें।
1: कहिए, सुनिए एक खुशखबरी।
2: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
0: बस यही प्यारे आपका और हमारे बीच में। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है सुरीला सफर और इसी सफर में एक इबारत हमारे श्रोता ने लिखकर भेजी कि इशारे शब्द पर हमारे दिल में कुछ यूं कहा, कुछ बातें लफ्जों में नहीं कही जाती, बस इशारों में दिल अपना हाल व्यक्त कर देता है। एक नजर, एक मुस्कान, एक छोटी सी खामोशी, कभी कभी इतना ही काफी होता है समझने के लिए कि सामने वाले की अहमियत हमारे लिए कितनी है। इशारे वही समझ पाते हैं जिनके दिलों में अपनापन और एहसास जिंदा होते हैं। इशारे अक्सर वो कह जाते हैं जो जुबान कहने की हिम्मत नहीं करती। बिल्कुल सही बात है। और इशारे से मुझे याद आया कि हम लोग कई सारे इशारे किया भी करते थे पहले, जैसे बोलते बोलते प प ब भ कुछ एक शब्द का प्रयोग हमारे उसके साथ कर लेते थे, या उल्टा बोलना या सीधा बोलना, और ऐसे हम सबके बीच में भी अपने दिल की बात कर लेते थे। ऐसा कुछ आपने किया है क्या, उल्टा सीधा बोल के या किसी एक शब्द को जोड़ के अपने दोस्तों से बात की है? फर जोड़ते थे, बर जोड़ते थे और लोगों से बात करते थे। आपने अगर ऐसा किया है तो जल्दी से बताइए। और एक और चीज बता दीजिए, ये जो गीत है उसके गीतकार कौन है, गीतकार का नाम बताइए, और आपने हमारे जैसी कोई हरकत की है सीक्रेटली बात करने की तो जरूर बताइएगा। सुनिए ये गीत।

हम सुन रहे थे कश्मीर की कली फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाज में ओपी नैयर के संगीत के साथ. और हमने आपसे पूछा कि इसके गीतकार कौन हैं, तो आप सबने बिल्कुल सही उत्तर दिया, SH बिहारी इस गीत के गीतकार हैं. अब इसके साथ मुझे एक चीज और, एक बड़ा प्यारा सा शेर याद आ रहा है जो जोश मलिहाबादी ने कहा था शायद, कि एक दिन कह लीजिए जो कुछ है दिल में आपके, एक दिन सुन लीजिए जो कुछ हमारे दिल में है. और ऐसी ही बात अगर हो जाती है तो फिर बात क्या कहनी है. और इसके साथ ही हमारे श्रोता ने लिखा कि 21 से 23 तक बहुत गहरा प्यार था, ये अपने दिल की बयां कह रहे हैं, और लंबे समय तक परिस्थितियां बदल गई. देखिए, कई बार प्यार हमें मिलता है, कई बार नहीं मिलता, पर ठीक है, कोई बात नहीं, खुश रहिए. और आज हम आपसे, अच्छा, हमारे श्रोता ने लिखा है, उल्टे शब्द तो आज भी कभी कभी फन के लिए बोल लेते हैं, जलेबी को जबेली कह लेते हैं. जी, बढ़िया है, कहना चाहिए. और इशारों में बात थी. अच्छा, मैं भी बता दूं अपना? नहीं, हमने इशारों में उनसे ही बात की जिनके लिए हमारे माता पिता ने हमारे लिए चुना. उसके बाद तो चिट्ठी पत्री.

खत तो सब लिखना बनता ही है, आपने भी लिखे हमने भी लिखे। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बड़े प्यार से कि ये बहुत सुंदर सा गीत है, कश्मीर की कली का पंजाबी टेका तबले में और संतूर पियानो सितार वायलिन का बेहतरीन इस्तेमाल शारो इशारों में। रफीक साहब लाजवाब, बहुत बढ़िया। और हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बाबू बच्चों के लिए उपयोग किया जाता है हमारे मालवा में, या लाड़ प्यार दर्शाता है, लेकिन आज का पत्नियां अपने पति को लाड़ से बाबू कहाँ हो, बाबू इधर आओ, बाबू मेरे लिए आइसक्रीम ले आओ, ऐसा कहती हैं। तो ठीक है, ये प्रेम जताने वाली बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं जब हम फोन पर बात करते थे तो घर वाले सामने ऐसे बात करते थे, चोरी छुपे फोन नीचे रख के कॉल चल रही है, मैं बोलती थी सहेली का नाम लेकर कि उससे बात करी, फिर कॉल पर बोलती थी और फिर सो नहीं पाती थी और फोन कट जाता था। जी कई बार ऐसा होता था ना कि हमारी बातें ऐसी होती थी किसी को पता ही नहीं पड़ता था। और चलिए अब हम आपको अगला गीत जल्दी से सौंपना चाहते हैं क्योंकि कार्यक्रम बस समाप्ति की ओर है और आपके साथ में जो समय बिताया वो बहुत सुंदर था। आपसे आखिरी बात कहकर मैं जा रही हूँ और बात कुछ ऐसी कहकर जा रही हूँ कि जो ये गीत है, अगर किसी का प्यार हमें मिल जाए तो बस वो एहसान की तरह होता है और उस एहसान के लिए लोग कई दिनों तक इंतज़ार करते हैं। तो ये कहना उनसे मोहब्बत है मुझको, ये कहने में मुझको जमाने लगे हैं, ये लिखते हैं कुमार बारा बंकवी। और चलते हैं इस अंतिम गीत की तरफ, आके दीजिएगा इस गीत के साथ।

0: मुझ पर।
1: और ऐसा एहसान हो जाए तो जिंदगी बड़ी अच्छी होती है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि कुछ और फर्ज जोड़कर उनकी माँ और मौसी बातें करते थे, तो इस शब्दों पर आप जरूर बात कीजिएगा अपने लोगों से, कुछ नई तरीका सीख लीजिएगा अपने जीवन में। और आज के इस कार्यक्रम में सुरीला सफर में बस इतना ही, आज्ञा दीजिएगा, नमस्कार।

बिना तेल के चलती हूँ, बिना पैरों के चलती हूँ, दो पहियों पर सवारी मेरी, सबको सैर कराती हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? पहचाना? हाँ सही पहचाना, मैं हूँ साइकिल। और यही साइकिल एक जमाने से हमेशा के लिए उपयोगी रही है, सबसे सस्ता और पर्यावरण के लिए अनुकूल वाहन है, दो पहियों पर चलने वाला साधन है और पैडल की सहायता से चलाया जा सकता है। गांव से लेकर शहरों तक प्रत्येक जगह साइकिल का उपयोग किया जा सकता है, यहां तक कि किया जाता है। विद्यार्थी, डाकिया, मजदूर और कई लोग अपने दैनिक कार्यों के लिए साइकिल का ही प्रयोग करते हैं। ये साइकिल इस दुनिया का सबसे प्यारा आविष्कार है, जिसमें

0: शारीरिक ऊर्जा लगती है, ना कि कोई और तकनीकी रूप से ऊर्जा।
1: चांदी की साई।

साइकिल का आविष्कार 1817 में जर्मनी के वैज्ञानिक कार्ल डर्सी ने किया था। उन्होंने सबसे पहले ऐसी दो पहियों वाली गाड़ी बनाई जिसे पैरों से धक्का देकर चलाया जा सकता था। बाद में पैडल, चैन और ब्रेक लगाए गए और धीरे धीरे आधुनिक साइकिल का रूप तैयार हुआ। आज दुनिया भर में अलग अलग प्रकार की साइकिल बनाई जाती हैं, जैसे रेसिंग साइकिल, माउंटेन साइकिल, बच्चों की साइकिल। और ये जो साइकिल है ना, इससे नाता सबका बड़ा गहरा है। हम भारत के थोड़े से पुराने काल में जाते हैं और जब हम जाते हैं तो हम पाते हैं यहाँ पर साइकिल घर की लग्जरी हुआ करता है। यानी घर में अगर साइकिल है और रेडियो है तो आप बड़े रईस हैं और लोग उस साइकिल को बहुत सम्मान देते हैं। ये साइकिल बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि अगर इसी साइकिल में पीछे आटा चक्की लगा दी जाए और साइकिल को घुमाया जाए तो चक्की भी चलने लगती है, आटा भी पिसने लगता है और शारीरिक व्यायाम भी होने लगता है। नए आधुनिक उपकरणों में साइकिल को घरों में रख लिया गया है। ये साइकिल बहुत काम की चीज है, क्योंकि साइकिल इस दुनिया का सबसे प्यारा उपकरण है जो बच्चा सबसे पहले चलाता है। और जब वह दो पैरों पर उस साइकिल को चला लेता है तो खुश हो जाता है। हालांकि माता पिता को वो जो चार पहिए, जो दो एक्स्ट्रा पहिए सुरक्षा के लिए होते हैं, उन्हें हटाने में डर लगता है, लेकिन जैसे ही हटता है बच्चा पंछी की तरह उड़ जाता है।

साइकिल बहुत अच्छी चीज है, इस वाक्य का प्रयोग कई बार किया गया। इसका कारण है इसके दो उपयोग हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सकते हैं। ये ट्रैफिक नहीं करती क्योंकि बड़ी पतली सी, बड़ी सकरी सी होती है और बड़ी सरलता से किसी भी गली मोहल्ले से निकल जाती है, घर के एक छोटे से कोने में बड़ी सरलता से रख जाती है। और धीरे धीरे यह साइकिल अगर हम चलाते जाते हैं तो इससे बढ़िया व्यायाम हो जाता है। ये साइकिल बच्चों का बचपन है, जिसमें अपने पिता के आगे वाले डंडे पर बैठकर मेला देखने जाना ये भी तो बड़ा ख्वाब है ना। और उसी ख्वाब को, उसी सपने को जो पहले ही जी चुके हैं, फिर से जीने का आनंद ही अलग है। साइकिल, अगर इस सारी दुनिया में साइकिल का प्रयोग होने लगे तो प्रकृति भी मुस्कुराने लगेगी, है ना। कितने सुंदर फूल आ जाएंगे और कितनी सुंदर बयार होगी, क्योंकि प्रदूषण होगा ही नहीं। नियमित साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, शरीर को मजबूत करता है, हृदय और फेफड़े अच्छे से काम करते हैं, मोटापा भी कम हो जाता है, और कोई धुआं नहीं निकलता तो प्रदूषण नहीं है, पेट्रोल और डीजल की बचत होती है, इससे अपने देश का पैसा भी बचता है। आज के समय में प्रदूषण, ट्रैफिक, इस सबसे बचने के लिए साइकिल का महत्व अपने आप में बढ़ चुका है। कई लोग स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी साइकिल का प्रयोग करते हैं। तो बताइए कौन कौन उपयोग करेगा साइकिल का अपने जीवन में। करिए साइकिल का प्रयोग, क्योंकि ये आपके लिए, आपके पर्यावरण के लिए, आपकी प्रकृति माँ के लिए और आपकी भारत माँ के लिए, सबके लिए सुरक्षित है। लड़के

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 60 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला के परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह करीब 9 बजे एक होटल में भीषण आग लग गई। इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कैट, एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार अब तक 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है। 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई

0: की जाएगी।
1: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा, एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल के हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये तथा घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति और साहस प्रदान करने की भी कामना की। गृहमंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गाँव और व्यक्ति तक विकास पहुँचना चाहिए।
2: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तले इलाकों में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
0: सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को सरकार साकार करने में योगदान करने का आह्वान किया है। राज्य के कोलाबिस जिले में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newson.aiar.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिंद्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें बनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से विधायक अखरुजमान को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटाली से संदीपन साहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा योजना का आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। शहरी विकास, महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने नबन्ना में इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पहले चरण में लाभार्थियों को आज से उनके बैंक खातों में 3,000 रूपए मिलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों से ही योजना का संचालन तुरंत शुरू करना संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून से पहले चलाए जा रहे नियमित सफाई अभियान के दौरान कल शाम कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में नोटों के बंडल बरामद किए गए। एक बंद कमरे में 2 पुराने सूटकेसों में रखे गए ये नोट बुरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। भाजपा विधायक सजल घोष ने आरोप लगाया है कि ये कमरा एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था। हालांकि पार्टी सदस्यों ने इन दावों को निराधार बताया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री

0: मंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजदूर, लेखक, अभिनेता, प्रमुख व्यवसायी तथा उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली एक खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि ये लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता और मूल्यवर्धन लद्दाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जैसी प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहली नीति के अंतर्गत एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है, क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए RBI ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांचाई इकाई ने कहा कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सूचित किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत मतदाताओं की पूर्व मैपिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर 7 जून को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब तक राज्य में 90% से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 84.62% पूर्व SIR मैपिंग हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलता

0: पूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
1: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
0: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणय आयरलैंड के नहन गुवेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंगयांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओमबाम रुंगफान को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंगकांग और आरोई ताई ने 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों ओडिशा, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंधी आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 58 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे समाधि फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर, अमीर बाई और साथियों की आवाज में राजेंद्र कृष्ण के बोल और सी रामचंद्र के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। और आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अगला गीत जो कि है श्री 420 फिल्म से। मन्ना डे और साथियों की आवाजें हैं, शैलेंद्र के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत।

भगवान ने चश्मे से देखा, आगे से देखा, पीछे से देखा, ऊपर से देखा, नीचे से देखा, बोले ये क्या कर बैठे घोटाला, आइए क्या कर बैठे घोटाला, ये तो है थानेदार का साला।

मगर ये किसी से न कहना, तिनके गले के सहारा न बहना, बिन मौसम मल हार न गाना, आधी रात को मत चिल्लाना वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला।

0: बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली कलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत,
4: तुम्हारी याद सताती है,
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों ना
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं न्यू दिल्ली फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। शैलेंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन का है संगीत।
1: मिलते ही नजर, मिलते ही नजर।

हम सुन रहे थे सीआईडी फिल्म का यकीन गीता दत्त की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अगला गीत जो कि है फिल्म साथी से। लता मंगेशकर की आवाज है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल है और नौशाद का है संगीत।

हम सुन रहे थे बिरादरी फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। कुमार ने इसे लिखा और शौकत दिलवी नौशाद ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं अगला गीत। आज के कार्यक्रम का यह अंतिम गीत होगा और जो गीत है फिल्म अनुभव से, गीता दत्त की आवाज़ है, गुलजार के बोल हैं, करुण रॉय का संगीत है। इसके साथ ही आज्ञा दीजिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे से मुझे यानी विधि जैन को नमस्कार।

0: सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मेरा यानी चंचल वर्मा का
1: प्यार भरा नमस्कार। क्या बात है चंचल, आज

0: बड़ी महक रही हो और खूब कपड़े भी हरे भरे पहने हुए, और जब मैं तुम्हारा लंच बॉक्स देख रही थी तो काफी हरी हरी सब्जी लेकर आई थी, क्या बात है।
1: वैसे तो हरी सब्जियां भाई इस मौसम में मिलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर कभी मिल जाए ना तो अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए जरूर खा लेनी चाहिए। और बात हुई हरे भरे की, तो थोड़ी सी हरियाली आप में भी है। और ये जो उत्सव का सा माहौल है ना, कल से ही जो चल रहा है, आज भी जब हम आए स्टूडियो में तो वो सजावट देख कर लगा कि कल के उत्सव की जो रौनक महक है
0: वो आज भी है, खुशबू है ना आज भी हमारे बीच में महसूस हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि हर उत्सव को जब हम खुशी के साथ मनाते हैं तो वो कई दिनों तक हमारे दिलो दिमाग पर असर करता है।
1: तो चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे सभी सुनने वालों को बताते हैं कि आज हमारे सखी सहेली के पिटारे में कौन कौन सी जानकारी है या मनोरंजन है और किस चीज पर हम चर्चा करने वाले।
0: तो बताइए आज क्या क्या विषय लेकर आई हैं आप।
1: तो देखिए, सखी सहेली का रिश्ता यानी कि 22 साल पुराना रिश्ता, और कोई भी रिश्ता मजबूत कब बनता है, जब वहां पर प्यार हो, खुशियां हो,
0: विश्वास हो, सम्मान हो।
1: तो रिश्तों की जो मजबूती है उसका आधार क्या है, इस पर हम बात करेंगे।
0: बिल्कुल।
1: और आज बुधवार का दिन है तो साड़ियों की भी कुछ बात होती है। जब उत्सव का समय होता है ना तो भाई जो महिलाएं हैं वो बड़ी सजी धजी नजर आती है, और साड़ियों के बिना कहाँ श्रृंगार पूरा होता है।
0: तो भाई हम अपनी अलमारी खोलते हैं ना जब उत्सव के दिन की आज हमें खास साड़ी पहननी है, तो चंचल लगता है जैसे हमारे पास कुछ है ही नहीं। बहुत कुछ होते हुए भी लगता है कुछ नहीं है, क्या पहना जाए क्या पहना जाए। तो लगभग ये सभी महिलाओं की कमजोरी होती है ना।
1: तो आज जो साड़ी है वो है घर चोला साड़ी, जिसके बारे में बात होगी। और शब्द हमारा विचार आपके, तो हमारे सुनने वालों को जिस शब्द के बारे में अपने विचार भेजने हैं वो शब्द है नियोजन।
0: अरे वाह, बहुत सुंदर शब्द है ये नियोजन जी। तो इस पर हमारे श्रोता जो हैं अपने विचार लिखें कि नियोजन का अर्थ क्या है और आपने इसको किस तरह से किस अर्थ में अपने जीवन में उतारा है।
1: और 3 जून का दिन होता है विश्व साइकिल दिवस, तो साइकिल से जुड़ी हुई अपनी यादें भी आप साझा कर सकते हैं।
0: हाँ, ये बता सकते हैं कि जब आपको पहली साइकिल मिली आपकी जिंदगी में, जो पहली साइकिल थी, चाहे वो छोटी सी थी, चाहे वो बड़ी थी या वो उससे बड़ी थी, तो आप उसका जिक्र कर सकते हैं कि वो साइकिल हमारे लिए कितना मायने रखती थी उस जमाने में, है ना।
1: और आज कई घरों में हमने देखा है कि चाहे दोपहिया वाहन है या चौपहिया वाहन है, उनके घर में बड़े बड़े वाहन खड़े हैं लेकिन एक साइकिल जरूर रखते हैं, क्योंकि लोग अपने स्वास्थ्य को लेते हुए बहुत जागरूक हो रहे हैं। तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक जाने की बजाय वो साइकिल लेके
0: नजर आते हैं
1: ताकि उनकी सेहत पर कोई बुरा असर ना पड़े। तो साइकिल एक घर का परिवार के सदस्य की तरह वो हिस्सा होती है।
0: बिल्कुल सही कहा। और आजकल इसका प्रचलन जो थोड़ा कम हुआ है ना, उससे हमारी सेहत में बहुत बुरा असर भी पड़ा है, क्योंकि हमने हर जगह दोपहिया वाहन या चार पहिए के वाहन को कार को लेकर जाना सीख लिया। थोड़ी सी दूर पर हम सामान लेने जाते हैं और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके ले जाते हैं, तो हम हिलना डुलना ही नहीं चाहते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य पर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आपने साइकिल चलानी नहीं छोड़ी है तो यकीनन आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा।
1: तो साइकिल चलाने के क्या फायदे हैं, इस पर भी आप हमें लिख कर बता सकते हैं। और गर्मियों की बात हो रही है तो गर्मियों में जैसे हमने शुरू में ही कहा ना कि हरी सब्जियां बड़ी मुश्किल से देखने को मिलती हैं, और सिर्फ हरी सब्जियां नहीं, बाकी सब्जियां भी बाजार में बड़ी कम दिखती हैं।
0: हाँ।
1: ले देखे कुछ गिनी चुनी सब्जियां हैं, तोरी है, टिंडे हैं, भिंडी है, कद्दू है,
0: लौकी है,
1: जिसमें से बहुत सारी सब्जियां तो बच्चे पसंद नहीं करते खाना, तो महिलाओं के सामने बड़ी समस्या की बनाए क्या।
0: सुनो चंचल, बहुत सारी सब्जियां बनाने पर जो पतिदेव है ना हमारी सखियों के, वो मुंह फुला लेते हैं, ये क्या बना दिया आज मैं नहीं खाता हूँ।
1: तो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है बिना सब्जी के सब्जी बनाने के लिए बेसन। और बेसन से जाने कितनी तरह की सब्जियां बनाई जा सकती है। तो हमारी सखियां बेसन से कौन कौन सी सब्जी बनाती हैं, जैसे अगर मुझे कुछ याद है तो कड़ी बन जाती है, गट्टे बन जाते हैं, पितौड़ की सब्जी।
0: अरे सारा मत बताओ।
1: और इसके अलावा कौन सी सब्जियां हैं और उनकी रेसिपीज भी हमारी सखियां साझा करें, तब तक ये गीत सुन लेते हैं सखियों के।
0: बिल्कुल सुन लेते हैं। तो अपनी सखियों से हम कहते हैं कि फटाफट तैयार हो जाइए और बेसन की इन गर्मियों के दिनों में आप क्या सब्जी बनाती हैं हमें भी बताइए
1: जी।

0: हाँ तो चंचल, जब हम बेकरार होते हैं कब होते हैं बताओ? जब हम किसी के साथ मजबूती से किसी रिश्ते में बंधे होते हैं, है ना?
1: और पता है, जब किसी से रिश्ता बहुत मजबूत होता है, कई बार हम उनके साथ ना हो तो भी उनका जो एहसास है वो हमारे साथ होता है।
0: बिल्कुल सही।
1: और ये उसी रिश्ते की मजबूती को दिखाता है।
0: बिल्कुल। तो रिश्तों की मजबूती के लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, वही हमारे सफल जीवन का आधार है। अगर इस बात को हम जान लेंगे तो हमारे रिश्ते मजबूत होंगे, वरना स्वार्थी रिश्ते तो हर जगह मिलते ही हैं।
1: बिल्कुल। मतलब ही रिश्तों का तो कहते हैं ना कि हर जगह लोग अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं, लेकिन जीवन में रिश्तों की कीमत को साधारणतया बहुत कम लोग समझ पाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन जो इस बात को समझ आते हैं कि रिश्ते हमारी ताकत होते हैं, और इसलिए जरूरी है कि जो भी रिश्ते हमारे साथ हैं और वो हमें मजबूती दे रहे हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि रिश्तों की जो नींव है वो प्यार और त्याग पर ही टिकी होती है। प्यार के धागे में ही रिश्ते पिरोए जाते हैं और त्याग से उन्हें हम प्रगाढ़ता देते हैं, मजबूती देते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और अपने से बड़ों के साथ अगर हमारे रिश्ते हैं तो विनम्र होने चाहिए, और विनम्रता ही हमारे जीवन पथ पर आगे हमें ले जाती है।
1: जी।
0: अहंकार और अक्कड़ से भरा जो व्यक्तित्व होता है वो कभी भी रिश्तों को सही ढंग से नहीं निभा पाता चंचल।
1: हाँ।
0: और इसलिए ऐसे व्यक्ति के साथ कोई रहना भी नहीं चाहता, और क्या होता है, धीरे धीरे वो व्यक्ति अकेला रह जाता है।
1: लेकिन हम अपने लिए अगर मान सम्मान चाहते हैं ना मंदाकिनी जी, तो सभी जो भी हमें मिलते हैं, बड़े हैं छोटे हैं, सबके साथ सरल सहज रहने की कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए। जो जैसा है बस उसे वैसे ही अगर हम स्वीकार कर लें, उसके साथ अपना तालमेल बिठा लेते हैं, तो अगर विपरीत स्वभाव वाला भी कोई व्यक्ति है उसके साथ भी हम सामंजस्य बिठा सकते हैं, और ऐसा जब होगा तो कभी भी मुश्किलें आएंगी ही नहीं हमारे जीवन में।
0: बिल्कुल सही कहा। परिवार के साथ हम जिन रिश्तों से जुड़े होते हैं वो तो हमें जन्मजात मिलते हैं, मतलब वो भगवान की देन है, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है। और उनमें कोई बदलाव भी नहीं हो सकता। भाई माता पिता है, भाई बहन है, ये हमारे रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं। बदलाव लाना है तो अपने स्वभाव में लाना होता है, और प्रेमपूर्ण होकर संबंधों को निभाने का जो प्रयास है वही आपके जीवन को खुशियों से भरता है।
1: बिल्कुल। और एक सफल और संतुष्टिदायक जीवन अगर जीना है तो रिश्तों को मजबूत बनाना भी जरूरी हो जाता है हम सबके लिए। विश्वास, संवाद, सम्मान, सहानुभूति, प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देकर हम सार्थक संबंध बना सकते हैं और उनको हमेशा के लिए कायम भी रख सकते हैं, और यही व्यवहार हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को समृद्ध करने में भी मंदाकिनी जी बहुत मदद होता है।
0: बिल्कुल।
1: दोस्त बनाने की कोशिश हम जरूर करें, लेकिन अच्छे दोस्त बनाने पर ध्यान दें, क्योंकि दोस्त हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं और वो हमारे बहुत बड़े राजदार भी होते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन ऐसे दोस्त चंचल बहुत कम मिलते हैं। ज्यादातर लोग दोस्ती करते थे वे कहते हैं भी हमारा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन जब आप उनसे दोस्ती करते हैं तो वही आपके साथ क्या करते हैं ये हमें हम कह नहीं सकते हैं। रिश्ते जो होते हैं हमारे अंदर की अच्छाई या बुराई को उजागर करके हमें बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, और इसीलिए किसी भी नए रिश्ते में कदम रखते समय बस थोड़ा सा सावधानी जरूरी होती है।
1: बिल्कुल। हमारे आसपास परिवार के लोग जो भी होते हैं, ये इनके साथ हमारे रिश्ते बहुत भावनात्मक होते हैं, और ऐसी दुनिया में सच्चे संबंध से लेकर तेजी से ये जो रिश्ते हैं मूल्यवान होते जा रहे हैं। मजबूत रिश्ते बनाने की कला में जो महारत हासिल

0: करनी है अगर आपको तो भैया आपके अंदर प्यार होना बहुत जरूरी है।
1: सबसे बड़ी बात है कि आप प्यार दें, सम्मान दें, विश्वास दें, है ना। और इसके अलावा मजबूत रिश्ते सुखी और संतुष्टिपूर्ण जीवन की आधारशिला माने जाते हैं। चाहे अगर हम व्यक्तिगत बात करें जैसा कि आपने कहा, या व्यवसायिक स्तर पर बात करें, अगर हमारे व्यवहार में कड़वाहट है तो कोई भी हमें पसंद नहीं करेगा।
0: अब देखो ना, हमारे सुनने वालों का एक संदेश मैं पढ़कर सुनाती हूँ। ये लिखते हैं कि रिश्तों की मजबूती सफल और संतुष्ट जीवन का वास्तविक आधार है। मजबूत रिश्ते जीवन में भावनात्मक सुरक्षा, मानसिक शांति, कठिन परिस्थितियों में संबल प्रदान करते हैं। अकेले कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। सार्थक और गहरे संबंध ही जीवन को सही मायने में खुशहाल बनाते हैं। सफल जीवन में मजबूत रिश्तों की मानसिक चुनौतियां और उतार चढ़ाव के समय परिवार, दोस्तों के साथ तनाव करने में मदद करता है। अच्छे रिश्ते आपको नई सीख, दृष्टिकोण और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं और आपके व्यक्तिगत रूप से आपको बेहतर बनाते हैं।
1: बिल्कुल। वही एक श्रोता ये भी लिखते हैं चंचल, कि रिश्ते जो है जीवन की सबसे अनमोल पूंजी होते हैं। धन, पद और प्रतिष्ठा जीवन को सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन सच्ची खुशी और मानसिक संतोष रिश्तों की मजबूती से ही प्राप्त होता है। परिवार हो, मित्र हो, समाज हो, इनसे जुड़े जो रिश्ते हैं वो हमारे जीवन को प्रेम देते हैं, विश्वास देते हैं और अपनत्व से भर भी देते हैं। तो ये जो रिश्ते हैं हमें कठिन समय में संबल देते हैं और सफलता के क्षणों को और अधिक आनंदमय बना देते हैं। इसलिए रिश्तों को समय दें, उन्हें सम्मान दें, प्रेम से सींचे, क्योंकि रिश्तों की मजबूती ही सफल और सुखी जीवन का सच्चा आधार होती है।
0: और भाई बातें तो भी बहुत सारी करनी है, संदेश भी पढ़ने, लेकिन साथ में गीत सुनते हुए आगे बढ़ते हैं।
1: चलिए

0: तो देखा आपने कितनी इल्तिजा कर रही थी कि दूरी मत होना, दूर नहीं होना, और ये रिश्ते हमें निभाने हैं, है ना।
1: और रिश्तों में ही तो कई बार हम प्यार से सोना
0: वही मैं कहने वाली थी, कितना प्यार से हम किसी को कहते हैं ओ मेरे सोना रे, है ना, ये प्यार है। और ये रिश्ता बना रहे उसके लिए हम इस तरह का भाव रखते हैं मन में। तो एक श्रोता लिखते हैं चंचल की, रिश्तों की मजबूती किसी इमारत की नींव की तरह होती है, जो दिखती तो नहीं है पर सब कुछ उसी पर टिका होता है। रिश्तों में संवाद के दौरान बोलने से ज्यादा सुनने पर फोकस करना पड़ता है, तर्क वितर्क करने पर बहस की स्थिति बन जाती है। जबरन अपनी बात मनवा लेना किसी रिश्ते की जीत नहीं होती, वो बात अपनी पसंद दूसरे पर थोपना भी नहीं होता। रिश्तों में बहुत सी गलतफहमियां बन जाती हैं जो चुप्पी से लंबे समय तक रह सकती हैं, उन्हें आपसी बातचीत और सहमति से हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। किसी में सामने वाले की अच्छाइयों के साथ कुछ छोटी छोटी कमियां भी होती है, उसे स्वीकार करें, माफी मांग लेना, माफ कर देना वो ज्यादा अच्छा होता है।
1: और यही बात हमारे एक श्रोता ने पहले भी लिखी थी, जो जैसा है वैसे अगर उसे स्वीकार कर लिया जाए तो रिश्तों में कहीं कोई बनावट नहीं होती या कहते हैं कि तनाव नहीं रहता, ये चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। इसी तरह से हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भाई मेरे जीवन का आधार मेरी धर्मपत्नी है और उनके आने से दो कलियां मेरे जीवन में खिली, और पैरालिसिस होने पर भी उन्होंने मेरा सारा साथ दिया और सहारा बनकर पूरे परिवार को संभाल लिया। आज उसी वजह से मैं स्वस्थ हो सका हूं, और इसीलिए कहते हैं कि सही समय में जीवन साथी बनी वो मेरी और जीवन का वो आधार है।
0: क्या, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसके लिए हम अपनी जो आपकी धर्मपत्नी उन्हें सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मजबूत रिश्ते एक सुखी और सफल जीवन गहरे में और आत्मीय संबंध जीवन के तनाव को कम करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। जहां एक और अकेला व्यक्ति संघर्षों में टूट जाता है, वहीं मजबूत पारिवारिक और सामाजिक संबंध उसे चट्टान जैसा सहारा देते हैं।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये चट्टान और मजबूत होगी अगर आप उसे प्यार से हमेशा सींचते रहेंगे।
0: बिल्कुल।
1: इसी तरह से हमारे एक अन्य श्रोता का संदेश है कि रिश्तों की मजबूती हमारे लापरवाह होने पर कमजोर पड़ जाती है। मैं स्वयं के अनुभव से ये बता रहा हूँ कि नौकरी में रहते हुए हम कभी बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे पाए, माँ के संरक्षण में ही रहे तो सब अपने मन के हो गए। जब घर आते तो सब सामान्य दिखते थे लेकिन करते वो अपने मन की थे। एक ने तो बीए तक कर लिया, जूनियर हाई स्कूल खत्म कर दिया है उसने, दूसरे ने, और आज बुढ़ापे में घर में पड़े उन दिनों की ढिलाई का परिणाम हम भुगत रहे हैं। अनुशासन जब सिखाना चाहिए था जब सिखाया नहीं गया, और अब वो सब अपने अपने परिवार में मस्त हैं। पत्नी रही नहीं तो अब सब होते हुए भी सारे रिश्ते बेमानी से लगते हैं और बस मुश्किल के दिन उनके गुजर रहे हैं। तो कई बार हमने जब अगर रिश्तों पर हम ध्यान नहीं दे पाते तो सिर्फ ये अफसोस और काश हमारे जीवन में रह जाते हैं। इसीलिए समय पर वो बच्चों को जो हम कहते हैं संस्कार देना, या बच्चे जो है ना हमारे व्यवहार से ही सीखते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो सबसे अच्छा तरीका यही है, आप अपने व्यवहार में वो सारी अच्छाई या
0: बच्चों को दें।
1: जी
0: बिल्कुल, ताकि बच्चे भी बड़े होकर वही आपको दें, है ना। ये तो है कि टिट फॉर टैट होता ही, अगर आपने अपने माता पिता को दुख दिया है तो आपके बच्चे भी फिर आपको बड़े होकर दुखी देंगे, ऐसा माना जाता है। क्योंकि उन्होंने जो देखा है वही उनके मन में, उनके जो बीज है भीतर वही तो उत्पन्न हुआ है ना, वही फलता फूलता है। इसलिए हमेशा खुद को, जब तक हम एक प्रेरणा का स्रोत नहीं बनाएंगे, बच्चों के लिए आइडियल नहीं बनेंगे, बच्चे भी नहीं बन पाएंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि रिश्तों की मजबूती सफल जीवन का सबसे प्रमुख आधार है।

0: भरोसा सम्मान और त्याग के धागों से बंधा होता है, जो न केवल व्यक्तिगत खुशी लाता है बल्कि कड़े समय में भावनात्मक संबल भी प्रदान करता है। गहरा और सच्चा रिश्ता ही सफलता का सफर है, असली प्रेरणा है। समर्पण और प्रेम से सींचा जाना चाहिए सफल जीवन के रिश्तों का महत्व। भावनात्मक स्थिरता, मजबूत रिश्ते तनाव कम करते हैं और मानसिक शांति हमें प्रदान करते हैं। वहीं वो कहते हैं साथी के रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कुछ सूत्र है, विश्वास, ईमानदारी, जिससे कि हमारे रिश्ते जो है टिके रहते हैं। संवाद मधुर संवाद होने चाहिए, त्याग और स्वीकृति की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे को समय देना चाहिए, समय निकालना चाहिए। अहंकार और अक्कड़ रिश्तों के लिए सबसे बड़े बाधक होते हैं, जो व्यक्ति को अकेला कर देते हैं। और सच्चा वैवाहिक जो जीवन है तभी सफल होता है जब आप दोनों मिलकर रहते हैं।
1: एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिश्ते अगर मजबूत हैं तो जीवन सफल होता है। अगर हमारे जीवन में रिश्ते हमने नहीं कमाए तो समझिए कि काम जीवन कुछ भी काम नहीं आया और वो रिश्ते सफल नहीं होंगे। इसीलिए अपने रिश्ते अगर हम मजबूत रखेंगे तो किसी भी ज़रूरत के समय वो हमें उनसे मदद मिलेगी और वो आपके अगर साथ होंगे तो यही आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। और आगे छोटा सा संदेश है हमारे श्रोता का, हम भी रिश्ते निभाते हैं और बनाते भी हैं और ये हमें बहुत अच्छा लगता है, हम परिवार में ही रहते हैं।
0: बिल्कुल, तो अब एक गीत सुन लिया जाए।

0: और ऐसे में जब महिलाएं खासतौर से खूबसूरत साड़ियां पहनती हैं तो फिर उनको तो देखते मन ही भरता नहीं है कि क्या बात है।
1: और आपने बात की भाई किसी खास मौके की, तो शादी एक ऐसा मौका होता है ना जब हमें अपना कल्चर उसे दिखाने का और उसमें लुत्फ उठाने का कोई जब मौका मिलता है तो उसे महिलाएं खासतौर पर बिल्कुल गंवाना नहीं चाहती। शादियों में रीति रिवाज के अलावा सबसे ज्यादा खास होता है पारंपरिक खाना और पारंपरिक पहनावा।
0: और शादी किसी भी लड़की के लिए उसके जीवन के सबसे खास मौकों में से तो एक होता ही है। दूल्हा दुल्हन के कल्चर और रीति रिवाज शादी के मौके को और भी खास बना देते हैं। हर जगह का अपना कल्चर होता है, अपने नियम होते हैं और उनका अपना खास महत्व भी होता है।
1: तो आज हम गुजरात के कल्चर की एक खास साड़ी के बारे में बात कर रहे हैं मंदाकिनी जी, और जिसे कोई लड़की शादी में पहनकर अपने जो भी उसके लुक्स हैं उसे वो और भी ज्यादा निखार सकती है, यानी कि हम बात कर रहे हैं घटचोला साड़ी की।
0: क्या बात है, घटचोला साड़ी इतनी सुंदर लगती है जी कि पूछो मत। तो घटचोला साड़ियां गुजराती शादियों का बहुत खास हिस्सा है और इन्हें जो खास दुल्हन की साड़ी के रूप में चुना जाता है। घटचोला साड़ी के चेकर्ड ग्रिड में प्रत्येक वर्ग दुल्हन और उसके वैवाहिक घर के लिए आशीर्वाद का प्रतिनिधित्व करता है ऐसा माना जाता है।
1: और ये दुल्हन की सुंदरता में चार चांद लगा देती है, तो वहीं इस साड़ी की जो खूबसूरती है और इसकी तरह ही इसका मतलब भी बड़ा खास होता है। घटचोला यानी कि नाम में दो गुजराती शब्दों को मिलाया गया है, घर जिसका मतलब होता है
0: घर
1: और चोला इसका मतलब है कि पोशाक। और दुल्हन अपने पैतृक घर से यानी कि पिता के घर से वैवाहिक घर में जाने को इस चीज के बारे में दर्शाया जाता है। इसका मतलब होता है कि दुल्हन का नया घर और उस चोले को पहनकर ये लड़की उस नए घर में प्रवेश
0: करती है। बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से इस बात को रखा गया है। और वैसे तो घटचोला एक साड़ी होती है लेकिन आजकल शादियों में इसके दुपट्टे का भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है।
1: और देखिए ना, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि एक छोटे से अंतराल का समय हो गया है। बातें हम जारी रखेंगे, लेते हैं अंतराल।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूँ आपके साथ चंचल वर्मा।
1: और मैं हूँ आपके साथ मंदाकिनी।
0: बात कर रहे थे हम साड़ी की।
1: बिल्कुल, साड़ियों की बात हो और हम भूल जाएं, ऐसा कभी होता है चंचल? तो हम बात कर रहे थे कि आजकल शादियों में इसके दुपट्टे का भी खूब इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिसे दुल्हन अपने सिर पर ओढ़ती है। और ये कॉटन या सिल्क से बना होता है, जिस पर जरी का काम किया जाता है। घटचोला साड़ियों में पारंपरिक रूप से जरी की बुनाई के साथ चेकर्ड ग्रिड डिजाइन होता है और अक्सर मोर, कमल, फूल पत्तियां जैसे शुभ चिन्ह भरे होते हैं।
0: जब आपने दुपट्टे का जिक्र किया तो मुझे याद आया, सिर्फ महिलाएं ही नहीं पहन कर सचती समर्थी, जब कुर्ता पायजामा मर्द पहनते हैं तो जो हमारे पुरुष साथी है ना, वो भी घटचोला का दुपट्टा लेना बड़ा पसंद करते
1: हैं, रख लेते हैं वो
0: जी।
1: भी, हाँ।
0: और हम बात कर रहे थे साड़ी की, जो आपने बताया चेकर डिजाइन होते हैं, फूल पत्तियों के चिन्ह होते हैं इस पर। और क्योंकि ये एक पारंपरिक विवाह में पहने जाने वाली साड़ी है, तो इसमें वर्गों की जो संख्या है अनुष्ठानिक रूप से वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। वर्गों की संख्या 9, 12, 92 के गुणांक में होती है। और ये पहले कपास से बनी होती थी, लेकिन अब रेशम का भी इसमें उपयोग किया जाने लगा है।
1: हालांकि घटचोला साड़ी में क्या है कि बांधनी साड़ियों की जैसा मिश्रण होता है चंचल, जिसमें घटचोला के जरी ग्रिड पैटर्न के भीतर बांधनी टाई डाई को शामिल भी किया गया है।
0: घटचोला बनाने की शुरुआत गुजरात के खंबात जिले में हुई थी और तब से लेकर आज तक गुजरात में साड़ियों, ये जो साड़ी है वो शादियों में बहुत अहम हिस्सा मानी जाती है। इस साड़ी की सबसे खास पहचान है ग्रिड पैटर्न, और ये साड़ियां पारंपरिक रूप से विवाह जैसे खास अवसरों पर ही पहनी जाती हैं। इन साड़ियों में गुजरात की पारंपरिक खास साड़ी है ये, खास तौर पर जामनगर, राजकोट इलाकों में इनका बहुत ही ज्यादा चलन देखने मिलता है।
1: बिल्कुल, और सास की तरफ से बहू को जब आशीर्वाद दिया जाता है ना, तो घटचोला दूल्हे के परिवार की तरफ से दिया जाता है, जिसे ओढ़कर दुल्हन अपने नए घर में प्रवेश करती है। और ये नए परिवार की स्वीकृति और आशीर्वाद का प्रतीक भी होता है। और जब दुल्हन अपने नए घर में स्वागत के लिए पानेत्र साड़ी

0: के ऊपर जो है घटचोला साड़ी डालती है, तो इस बात का प्रतीक माना जाता है कि शादी के बाद दूल्हा और उसका परिवार दुल्हन का हमेशा ख्याल रखेंगे।
1: इनमें से बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं ने भी हम तक लिखकर पहुंचाई हैं, उन्हें हम धन्यवाद कहते हैं। और घट चोला जो है वो दुल्हन को अपने सिर और कंधे दोनों पर वो ओढ़ कर आती है, जिसे फेरों के समय दूल्हे को के दुपट्टे के साथ में बांध दिया जाता है। ये पति पत्नी के अटूट संबंध और इस जोड़े के बीच के पवित्र रिश्ते और उसकी मजबूती को दर्शाता है। इसलिए भी शादी में इस साड़ी का बहुत महत्व
0: होता है। बिल्कुल, और घट चोला साड़ी एक सदाबहार फैशन है जो कभी फैशन से बाहर नहीं जाता। इसे शादी के अलावा आप दूसरे फंक्शंस में भी पहन सकते हैं। देखा है बहुत सारी महिलाओं को चाव से पहनकर जाती हैं। ज्यादातर लाल है, गुलाबी है, हरा है, पीला है, ये रंग इसमें बेहद खास लुक देता है। और इसके दुपट्टे को लहंगे के साथ भी अलग अलग स्टाइल तरीके से, स्टाइलिश तरीके से हम पहन सकते हैं, जो खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं।
1: तो भाई कुछ गाने भी सदाबहार होते हैं साड़ियों की तरह, सुन ले।
0: बिल्कुल, जो हमारे कार्यक्रम में चार चांद लगा देते हैं।

0: कुछ तुम कहो और कुछ हम कहें, यानी बात हम करेंगे अब विश्व साइकिल दिवस की। कुछ हम कहेंगे, कुछ हमारे श्रोता तो कह रहे, कुछ नहीं बहुत कुछ कहेंगे।
1: बिल्कुल, ही इतना प्यारा विषय है साइकिल, हमारा इतना प्यारा एक ऐसा
0: याद है,
1: याद हमारा अभिन्न मित्र हुआ करता था एक जमाने में, जब हमें पहली साइकिल मिली थी तो आज भी भुलाई नहीं भूलती।
0: और 3 जून को ये दिन हम मनाते हैं और इसका उद्देश्य है लोगों को साइकिल चलाने से जो लाभ होते हैं उसके बारे में जागरूक करना। और ये दिन इसलिए भी खास है मंदाकिनी जी, क्योंकि साइकिल एक ऐसा परिवहन साधन है जो वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद करता है और पर्यावरण को भी बचाने में मदद करता है।
1: बहुत बड़ी बात। और ये परिवहन का एक सबसे सस्ता

0: सरल और टिकाऊ और सुलभ साधन है चंचल। इसे हर वर्ग के लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और इन दिनों साइकिलिंग को एक स्वस्थ और किफायती परिवहन विकल्प के रूप में भी प्रस्तुत किया जा रहा है। साइकिल चलाना सामाजिक समावेशन और शांति की संस्कृति को बढ़ावा भी देता है।
1: विश्व साइकिल दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अप्रैल 2018 में मनाने की घोषणा की थी और ये दिन साइकिल के महत्व पर बहुत सारी बातें हमें बताता है और हम सब भली भांति इस बात को समझते हैं कि साइकिल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है और पर्यावरण के नजरिए से भी अच्छा कदम है, ये हम बता ही चुके हैं।
0: बिल्कुल सही बात है और इस दिन का समर्थन करने वाले भी मानते हैं कि साइकिल का उपयोग विकास को बढ़ावा देना, बच्चों और युवाओं के लिए शरीर को मजबूत करना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और बीमारियों की रोकथाम करने के साधन का एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
1: अब देखो ना, हमारे जो साथी हैं वो क्या लिख रहे हैं। साइकिल कभी मध्यम वर्गीय परिवार की आन बान शान हुआ करती थी। जो साइकिल चलाता था या जिसके दरवाजे पर साइकिल होती थी, समझिए कि वो समाज में एक सम्मानित व्यक्ति हुआ करता था। और इसी तरह कहानी में कोर्स की किताब भी पढ़ी है हमने। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा साइकिल की सवारी के लेखक सुदर्शन हैं पंडित बद्रीनाथ भट्ट। इन प्रेरणादायक कहानी में आदर्शवादी संदेश होता था और ये कहानी हास्य से भरपूर है, जिसमें लेखक साइकिल सीखने की प्रबल इच्छा और इसके दौरान उनके द्वारा किए गए मजेदार प्रयासों के बारे में वर्णन करता है। तो अगर किसी ने ये कहानी नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़नी चाहिए।
0: बहुत सुंदर जिक्र किया है इन्होंने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब मैंने पहली बार साइकिल पर कदम रखा तो मेरे मन में धुकधुकी थी, कहीं मैं गिर न जाऊं। संतुलन बनाने की कोशिश में शुरुआती कुछ पलों में हैंडल कांप रहा था और मुझे पैडल मारने में डर लग रहा था। कुछ बार लड़खड़ाने और गिरने के बाद मैंने संतुलन बनाना सीखा। हवा का एहसास जैसे ही मैंने पैडल पर पूरी ताकत लगाई और साइकिल आगे बढ़ी तो चेहरे पर ठंडी हवा का सुखद एहसास था।
1: और हमारे एक अन्य श्रोता का संदेश है कि जब मैंने पहली बार पापा को साइकिल के लिए कहा तो उसके 2 साल बाद मेरी साइकिल आई। यानी कि पहले के माता पिता भी ऐसे होते थे कि तुरंत आपकी फरमाइशें पूरी नहीं करते थे, सही समय आने पर ही वो ला कर देते थे। आगे इन्होंने लिखा है कि जब भी पापा से पूछो कब आएगी तो वो कहते एक टायर बन रहा है, फिर कहते हैंडल बन रहा है, फिर कभी कहते कि सीट बन रही है, और इस तरह उन्होंने 2 साल निकाल दिए।
0: कितनी अच्छी बात है। और वही आजकल के माता पिता 2 मिनट भी नहीं लगाते, अगर बच्चे ने कह दिया मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, तो 2 मिनट में आ जाता है। एक श्रोता लिखते हैं कि साइकिल की बात चली है तो आपको बता दूं, 1999 में कक्षा 10वीं पास करने पर मेरे को मिली थी, उसकी खुशी मैं बयान नहीं कर सकता। और आज 2-2 दुपहिया वाहन है, किंतु साइकिल की बात कुछ और ही है। मेरी वो साइकिल आज भी मैंने संभाल कर रखी है। मैं चली देखो प्यार की गली, ऐसा ये गाना भी सुनना चाहते थे।
1: और भाई ये गाना नहीं सुना, ये गाना कोई दूसरा सुनवा देंगे, गाने सभी अच्छे हैं। और संदेश बताइए क्या है।
0: ये लिखते हैं कि एक अन्य श्रोता कि दोपहिया वाहन यानी मोटरसाइकिल तब चला सकते हो जब आप साइकिल चलाना सीख गए हो। मतलब दोपहिया वाहन चलाने से पहले साइकिल चलाना आना जरूरी है। भाई वो तो बेस है आपका, है ना, वो तो सबसे पहले आप नहीं सीखेंगे तो उसके बाद दूसरी चीजों पर जब आप हाथ साफ करेंगे तो आपको डर लगेगा, आप सीख ही नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, ये बात भी होती है चंचल कि साइकिल चलाने के साथ घुटने टूटने का जो है ना, घुटनों में चोट लगने का जो एक सबसे बड़ा नजर आता है, वो उसके लिए तैयार रहना चाहिए।
1: एक और बात बहुत सारे श्रोताओं ने लिखकर भेजी है कि नियमित साइकिल चलाने से हृदय, फेफड़े, मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद मिलती है और इसी वजह से हृदय संबंधी बीमारियां, मोटापा, गठिया, मधुमेह, कैंसर, बहुत सारी बीमारियों के खतरे को हम कम कर सकते हैं। साइकिलिंग तनाव को भी कम करती है और मानसिक कल्याण को भी बढ़ावा देने में ये सहायक है। तो चले अब गाना सुन ले।
0: नहीं, एक मेरे पास बहुत अच्छा मैसेज आया है,
1: तो पढ़िए ना।
0: हाँ, ये लिखते हैं कि मेरे लड़के ने पूरी पढ़ाई साइकिल कॉलेज लेकर जाकर की है और इस साल फाइनल पढ़ाई होगी, अभी भी वो साइकिल चलाता है।
1: क्या बात है।

0: हाँ तो चंचल वक्त तो तब गुजरेगा ना जब आप वक्त का ध्यान रखेंगे, और कैसे ध्यान रखेंगे कि आपके पास घड़ी होगी। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि हम लोग जब हाई स्कूल पास करते थे तो लड़कियों को हाथ की घड़ी दिया करते थे हमारे माता पिता, और हम लड़कों को साइकिल मिला करती थी।
1: तो भाई ये भी एक तरह का नियोजन है, यानी कि प्लानिंग है कि लड़कियों को क्या देना है, लड़कों को क्या देना है। उस समय पहले की अगर बात जब चल रही है ना, तो लड़कियों को भाई वाहन चलाते समय कहीं गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, उन्हें थोड़ा नाजुक समझ कर इस तरह के उपहार नहीं दिए जाते थे। और लड़कों को क्योंकि बाहर जाकर ही सारे काम करने हैं,
0: इसलिए
1: और
0: साइकिल दे दी जाती थी, लेकिन
1: दुपहिया वाहन या मोटरसाइकिल का इतना फैशन नहीं था।
0: आज उल्टा है चंचल, आज लड़कियों को कमजोर नहीं मानते हमारे माता पिता भी, और उन्हें यहाँ तक कि चार पहियों वाली गाड़ी भी दिलाने में कोई परहेज नहीं करते हैं।
1: और बिल्कुल इस बात का नियोजन भी अब सब माँ बाप करते हैं। और नियोजन पर ही बात हो रही है, नियोजन का मतलब होता है योजना बनाना या फिर प्लानिंग करना। और दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया है शब्द, मतलब बहुत सारे शब्द है इसमें, इसके जो अन्य शब्द हैं योजना, आयोजन, प्रबंध, व्यवस्था, रूपरेखा या फिर रणनीति,
0: इस अर्थों में भी इनको समझा जा सकता है इन शब्दों से भी। और नियोजन एक प्रबंधन प्रक्रिया है जिसमें भविष्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक यानी जरूरी कार्यों और संसाधनों का निर्धारण किया जाता है, और ये प्रक्रिया लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी काम करती है।
1: बिल्कुल, नियोजन में की जो प्रक्रिया है बहुत सारे चरण शामिल होते हैं, जिसमें विकल्पों का मूल्यांकन, योजना का चयन, उसका क्रियान्वयन, और नियोजन में भविष्य में आने वाले जो भी जोखिम है या अनिश्चितताएं हैं उनका पहले से ही एक अनुमान निकालकर क्या समाधान हो सकता है, इसकी तैयारी की जाती है।
0: बिल्कुल, और नियोजन में किसी भी पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य की एक रूपरेखा तैयार की जाती है। इसे हम यूं भी समझ सकते हैं कि ये निर्णय लेने की एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो तय करती है कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है।
1: इसीलिए हमारे श्रोता लिखकर हमें बता रहे हैं कि नियोजन प्लानिंग का सामान्य अर्थ योजना बनाना है। ये किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने की बौद्धिक प्रक्रिया होती है। इसमें यह तय किया जाता है कि काम कब करें, कैसे करें, कहां करें, किसके द्वारा किया जाएगा, और उपलब्ध साधन का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित कर लेना ताकि जो लक्ष्य है उस तक आसानी से पहुंचा जा सके। ये सब वैसा ही है जैसे हम अपने घर का बजट बनाया करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, और अगर सरल शब्दों में हम इसे समझें तो वर्तमान और भविष्य के बीच की खाई को कम करना भी नियोजन है, और ये तय करना कि आने वाले समय में हमें किस दिशा में काम करना है। किसी स्पष्ट लक्ष्य को ध्यान में रखकर जो योजना बनाई जाती है वही नियोजन है, और ये योजना वर्तमान परिस्थितियों और भविष्य के अनुमानों के आधार पर बनाई जाती है।
1: और बिल्कुल मंदाकिनी जी, समय, धन, उपलब्ध

0: साधन, इन सब का बेहतर उपयोग भी जिस तरह से किया जाएगा ये नियोजन ही बताता है हमें। जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं तो उनमें से किसी सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना भी नियोजन का मुख्य हिस्सा होता है।
1: और नियोजन का यानी जो है विभिन्न तरीकों में से जो सबसे उपयुक्त और प्रभावी मार्ग का चयन करना वही नियोजन कहलाता है।
0: तो ये भी एक नियोजन है ना कि बातों के बाद गाना सुनवाना है।

0: बहुत सुंदर गीत था,
1: बहुत सुंदर गीत था, और सुनने के बाद एक मन में अलग सा
0: जी
1: नशा आ गया है
0: जी।
1: और चंचल हम बात कर रहे थे ना कि भाई आजकल गर्मी का मौसम है, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या सब्जी बनाएं, क्योंकि महिलाओं की खास तौर से ये सबसे बड़ी परेशानी होती है।
0: तो हमारी इसलिए होती है क्योंकि बच्चे बड़े चूजी होते हैं, वो बहुत सारी सब्जियां खाने के लिए मना कर देते हैं। जब भी उन्हें बोलो टिंडे की सब्जी बनेगी तो उनका मुंह बन जाता है, लौकी बनाओ तो उसे वो खाना पसंद नहीं करते। तो कितने कितने जतन करती है महिलाएं कि वो सब्जियां उनको
1: खिला दी जाए किसी भी तरह,
0: ताकि उनका पोषण मिले।
1: लेकिन तुम मुझे माफ करना, बच्चों को तुम बहुत ज्यादा बदनाम कर रही हो, है ना। देखा जाए तो हमारी सखियों में से भी कुछ सखियां ऐसी हैं जो हर तरह की सब्जी खाना पसंद नहीं करती हैं।
0: तो भाई ऐसे में बहुत अच्छा आपके पास एक विकल्प है कि बेसन की तरह तरह की सब्जियां आप बना सकती हैं। उसके लिए बेसन, सिंधी बेसन की टिक्कियों की सब्जी, इसके बारे में हमारे श्रोता ने लिखकर बताया है कि इसके लिए सबसे पहले बेसन को कम पानी से टिक्कियां बनाना है। इसमें अनारदाना और हरा धनिया भी डालते हैं। फिर तवे पर बहुत कम तेल में इनको सेका जाता है। प्याज लहसुन अपनी इच्छा के अनुसार, अदरक हरी मिर्च, इन सबको डालकर आप पेस्ट बना लीजिए। एक अच्छी स्वादिष्ट सी ग्रेवी बनाना है, उसमें नमक लाल मिर्च स्वाद के अनुसार डाल लीजिए, आप अन्य मसाले भी स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। थोड़ा गरम मसाला डालकर बेसन की टिक्कियों को डालकर थोड़ी सी आंच पर इसे पकाना है और सिंधी बेसन की टिक्कियों वाली सब्जी तैयार हो जाती है।
1: बहुत स्वादिष्ट सब्जी होती है ये। हमारी एक सहेली थी, वो सिंधी थी, उनके यहाँ मैंने सब्जी खाई हुई है
0: जी।
1: वही एक श्रोता लिखती है कि बेसन की चीले वाली सब्जी, क्या बात है। बेसन को नमक हल्दी अदरक मिर्ची का पेस्ट के साथ की तरह घोल लें और

0: तवा पर चिली को सेक लें, मतलब चिली को सेक लें, इस दोनों तरफ से फोल्ड कर लें, फिर इन्हें चाकू से काट के टुकड़े के रूप में बना लें। ग्रेवी के लिए धनिया पाउडर पिसा हुआ, पीला सरसों, लहसुन, जीरा, मिर्च, इन सभी को बारीक पीस लें। कढ़ाई में तेल डालें, राई का तड़का दें, बारीक कटा प्याज भून लें, पिसे हुए टमाटर डाल दें, मतलब अगर आपने टमाटर को भी पीस लिया है। साथ ही मसाले, जो भुने हुए मसाले हैं, उनकी ग्रेवी तैयार होने पर बेसन के टुकड़ों को डाल दें, 5 मिनट तक इसे पकाएं। स्वादिष्ट जो है सब्जी आपकी तैयार है, और बहुत सारे लोग इसे शाकाहारी मछली भी बोलते हैं।
1: क्या बात है। तो चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।

0: हम यूं ही महकते रहेंगे और ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा। और अब ये सखी सहेली से हमें इजाजत लेनी होगी क्योंकि वक्त हमें और इजाजत नहीं दे रहा है
1: जी।
0: तो कार्यक्रम समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी और
1: चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर गायत्री आहूजा को, जो अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांग जन संस्थान की विभागाध्यक्ष है, यानी कि अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज। ये संस्था देश भर के दिव्यांग जनों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है। ऐसे छात्र जो श्रवण बाधित है और बोलने में समर्थ नहीं है, उन बच्चों को शिक्षा देना, उन्हें सिखाना कितना मुश्किल होता है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है, ये सब कुछ बताएंगे डॉक्टर गायत्री आहूजा। विविध भारती के स्टूडियो में डॉक्टर गायत्री, हम आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और विविध भारती से जुड़ना मुझे लगता है काफी सम्मान की बात होती है, सो थैंक यू सो मच। और ये इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आपने मुझे बुलाया है, सो थैंक यू सो मच।
0: और ये एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं होती है, तो इस संस्था के बारे में आप जानकारी दीजिए सबसे पहले, और उसके बाद बताइए कि श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा बाकी बच्चों से किस तरह से अलग होती है। तो मेरे ख्याल से एक साथ दो सवाल हो गए।
1: कोई नहीं। अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, और जहाँ पे मैं वहाँ पे काम करती हूँ, ये हेडक्वार्टर्स है। और हेडक्वार्टर्स से जुड़े हुए रीजनल सेंटर्स भी हैं, जैसे सिकंदराबाद है, कोलकाता है, नोएडा है। हमारे अंतर्गत कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर्स भी हैं, जैसे कि अहमदाबाद, गोवा एंड छतरपुर, नागपुर एज वेल। हम सारी संस्था जो हैं स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज पे काम करती हैं। पीडियाट्रिक से लेके जेरियाट्रिक पॉपुलेशन तक हम डील करते हैं। मतलब आप अगर हमारी संस्था में आएंगे तो आप बिल्कुल छोटे से छोटा बच्चा देखेंगे, एज वेल एज

0: 80 ईयर अबाव लोग भी देखेंगे, तो उन सब की हम श्रवण की जांच, स्पीच की जांच, जो हेडक्वार्टर्स है मुंबई, सिकंदराबाद, नोएडा एंड कोलकाता में, स्पीच एंड हियरिंग से जुड़ी हुई करते हैं। पर जो सीआरसीज हैं, जैसे अहमदाबाद हो गया या नागपुर हुआ या छतरपुर हुआ, वहां पे हम सारे डिसेबिलिटीज के साथ डील करते हैं। तो ये बेसिक हमारा काम है, जहाँ पे हम आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं, इंटरवेंशन भी करते हैं। सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी करते हैं। हमारे अंतर्गत डिप्लोमा के कोर्सेज, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी प्रोग्राम्स, साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलते हैं। पेरेंट्स के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाते हैं, जिससे वो खुद एम्पावर हो सके। एंड पेरेंट्स के लिए जो प्रोग्राम्स हम करते हैं वो मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। बहुत बार हम इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज के लिए भी कार्यक्रम करते हैं कि बैंकिंग किस तरीके से करना चाहिए या इंग्लिश स्पीकिंग किस तरीके से करना चाहिए। वॉट एवर स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हम चलाते हैं, वो भी हम बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट चलाते हैं। तो रेंज बहुत सारी है कि जहाँ पे हम बच्चे से लेके सीनियर सिटीजन तक के लिए हम काम करते हैं।
1: जी,
0: ये हो गया पहला सवाल।
1: हाँ, राइट। फिर कितना अंतर है एक सामान्य बच्चे को पढ़ाना, शिक्षा देना, और श्रवण बाधित जो बोलने में समर्थ नहीं है उनको सिखाना, कितना कठिन होता है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है?
0: ओके, अब जो बच्चा एडुकेशन के लिए स्कूलिंग सिस्टम में जाता है, एक सामान्य बच्चा, ठीक है, सामान्य बच्चे के जो गोल्स होते हैं एडुकेशन के, वो सेम गोल्स हियरिंग इम्पेयर्ड या श्रवण बाधित बच्चों के भी होते हैं। ओके, जनरल गोल्स सेम रहते हैं। बट आप ऐसा सोचिए कि एक बच्चा है जिसको सुनाई नहीं देता है, ठीक है, अब उसको सुनाई नहीं देता है हियरिंग लॉस की वजह से, उसके तीन चीजें बेसिकली इम्पैक्ट होती हैं, स्पीच वाचा में प्रॉब्लम, लैंग्वेज में इश्यूज एंड कम्युनिकेशन में इश्यूज। ओके, तो एक चीज तीन चीज से जुड़ी हुई है। अब ऐसे बच्चों को जब हम एडुकेट करते हैं तो अगेन इसके अंदर दो पहलू आ जाते हैं। एक ग्रुप जहाँ पे हम हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट, लिसनिंग डिवाइसेस से हम सिखाते हैं, जहाँ पे हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चा सुने और बात करे। फिर एक ग्रुप है जहाँ पे हम साइन लैंग्वेज के माध्यम से हम पढ़ाते हैं। तो जनरल गोल्स तो आपके हो गए कि नॉलेज का डेवलपमेंट करना है, स्किल्स को डेवलप करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। ओवरऑल डेवलपमेंट बेसिकली मतलब आपका बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट तो हो गए जनरल गोल। पर जब मैं स्पेसिफिक गोल की बात करती हूँ तो स्पेसिफिक गोल में आ गया मेरा इस बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट करना, स्पीच डेवलपमेंट करना, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट करना। अब कम्युनिकेशन भी कितनी चीजों से जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम साथ में बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, पर मेरी उंगलियां भी चल रही है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन भी हो रहे हैं, मेरे आंख वाक भी, यू नो, इट्स गोइंग अप एंड डाउन, एंड बहुत सारा बॉडी लैंग्वेज है एंड स्माइल है, और जो मैं महसूस कर रही हूँ वो मैं बता सकती हूँ, ठीक है। नाउ यू इमेजिन अ चाइल्ड जिसको, जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास भाषा नहीं है। तो कम्युनिकेशन इज सच अ वेरी बिग इम्पॉर्टेंट रोल। कम्युनिकेशन करने के लिए भाषा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाषा नहीं है तो वो समाज में किस तरीके से उठेगा बैठेगा, वो समाज में इंटरैक्ट कैसे करेगा और पार्टिसिपेट कैसे करेगा, वो जो महसूस करता है या करती है वो किस तरीके से व्यक्त करेगा। तो जो एडुकेशन है, जो हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए जो एडुकेशन है, वो ये सारी पहलुओं को देखकर हम उसका एडुकेशन का विकास करते हैं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एडुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट इज पेरेंट्स का एम्पावरमेंट करना। तो पेरेंट्स के लिए हम बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं कि बच्चे को हियरिंग एड किस तरीके से लगाना है, या कॉकलियर इम्प्लांट है तो किस तरीके से लगाना है, अगर हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट में कुछ भी रिपेयर्स हुए तो उसको सिंपल रिपेयर्स किस तरीके से करने हैं, और अगर बच्चा हियरिंग एड और कॉकलियर इम्प्लांट नहीं लगाता है, सांकेतिक भाषा से बात करता है, इशारों में बात करता है, इशारे इज अ वेरी सिंपल टर्म, हम उसको सांकेतिक भाषा बोलते हैं, और सांकेतिक भाषा में अगर बात करता है या करती है तो पेरेंट्स को भी आनी चाहिए सांकेतिक भाषा, तब तो कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट होगी। तो बहुत सारे एडिशनल गोल्स आ जाते हैं जब हम एडुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की बात करते हैं। तो
1: यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, फिर और बातें करते हैं। कौन सा गाना सुनवाए?
0: मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, ये गाना बहुत पसंद है,
1: ये धरती ये नदियाँ
0: और विविध भारती और अलियावर जंग।
1: क्या बात है, सुनते हैं।

0: इस गाने के पहले आप जिक्र कर रही थी कि किस तरह से आप शिक्षा देती हैं और पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल काम होता होगा पेरेंट्स को सिखाना। कौन सी प्रणाली होती है, कैसे आप सिखाती हैं, कैसे ट्रीट करते हैं उनको
1: पेरेंट्स के लिए? नाउ यू इमेजिन अ फीमेल हु इज प्रेग्नेंट, एंड हर फीमेल को लगता है या हर माँ बाप को लगता है या हर फैमिली को लगता है कि जो बच्चा होगा वो काफी हेल्दी होगा। ओके, इट्स नॉर्मल, बट जब चाइल्ड इज बॉर्न एंड यू कम टू नो कि नहीं बच्चे को हियरिंग लॉस है, तो सबसे पहले जो चीज है वो है एक्सेप्टेंस, कि उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि ओके आई हैव अ चाइल्ड, आई हैव अ हेल्दी चाइल्ड, बट द चाइल्ड इज हैविंग दिस एज अ कंसर्न। ओके, दूसरी चीज ये है कि या तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं या तो बिल्कुल भी प्रोटेक्टिव नहीं होते हैं, बैलेंस्ड अप्रोच कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिसिंग हो जाता है, तो वो भी उनको बताना होता है कि किस तरीके से एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना है, ना कि यू नो ओवर हो या अंडर हो। यू हैव टू कंसिडर योर चाइल्ड, एक्सेप्ट द चाइल्ड, उसको उतनी ही रेस्पेक्ट दें जितनी बाकी बच्चों को दी जाती है। उसे ऐसा नहीं लगे कि हाँ मैं कुछ अलग हूँ इसलिए मम्मी पापा मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो उसे भी अपनापन लगना चाहिए और मैं इस ही घर का एक हिस्सा हूँ ये उसे समझना बहुत जरूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पेरेंट्स को एडुकेशन के प्रोसेस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर इन्वॉल्व हुए तो यस द चाइल्ड कैन प्रोसीड या प्रोग्रेस आराम से। इसलिए हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कोर्सेज करने के लिए, चाहे डिप्लोमा हो या बैचलर्स हो, जिनके खुद के बच्चों को या तो हियरिंग लॉस हो या कोई कंसर्न हो, वो खुद भी आते हैं। क्योंकि जब तक पेरेंट्स को नहीं पता चलेगा कि इन बच्चों में क्या कंसर्न्स हैं, तो वो बच्चों की डेवलपमेंट में कैसे भागीदारी ले सकते हैं। स्कूल्स के साथ

0: जुड़े रहें, लगातार या फॉलो अप ऑडियोलॉजिस्ट या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के साथ करते रहें। टीचर्स के साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपका बच्चा सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करता है तो आप खुद भी सीखें सांकेतिक भाषा, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत बार ये देखा गया है कि क्या होता है कि पता तो चल जाता है कि बच्चे को हियरिंग लॉस है, ओके, बट माँ या फादर बाकी फैमिली मेंबर्स को बताते ही नहीं है कि बच्चे को कुछ इशू है,
1: रिश्तेदारों को
0: और बाकी लोगों को बताते ही नहीं है, डर के मारे शर्म के मारे कुछ बताते ही नहीं है। अब इससे क्या होता है, पहचान तो हो गई कि मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ तो इश्यूज है, कंसर्न्स है, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बट इंटरवेंशन बहुत टाइम के बाद होता है, 4 साल 5 साल के बाद हो जाता है। तो ये जो गैप है आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन का, ये बढ़ते जाता है, ये कहीं ना कहीं कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो उनका माइंडसेट कैसा है पेरेंट्स का, दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे तो यस द चाइल्ड कैन प्रोग्रेस। ऐसा नहीं है कि चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट आगे प्रोग्रेस नहीं करते हैं। मेरा खुद का एक स्टूडेंट है जो PhD कर रहा है, सुनील सहस्रबुद्धे, वो खुद PhD कर रहा है। शिवाजी पांडा सर हैं, काफी बड़े रोल मॉडल हैं, उनकी तो PhD हो भी चुकी, उन्होंने खुद का अपना एक स्कूल सेटअप बनाया है उड़ीसा में। सो देर आर मैनी हु आर हैविंग हियरिंग लॉस और एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं। हम हियरिंग लॉस के क्षेत्र में डॉक्टर मदन वशिष्ठ का नाम लेते हैं हमेशा, वो खुद भी हियरिंग इम्पेयरमेंट है उनको है, एंड गैलाडेट यूनिवर्सिटी में डीन रह चुके हैं। सो इट इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट टाइमली और एप्रोप्रिएट सपोर्ट सिस्टम लेके अगर हम काम करें तो थिंग्स आर पॉसिबल।
1: तो किन किन क्षेत्रों में ये बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, ज्यादातर कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर इनके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है?
0: देखिए, अभी जैसे मैंने कहा कि हियरिंग लॉस की वजह से लैंग्वेज, स्पीच और कम्युनिकेशन अफेक्टेड है, ओके, सो अगर ये तीन चीज आपने सही टाइमली एप्रोप्रिएटली डेवलप कर दी तो बच्चे को कोई कंसर्न्स इश्यूज नहीं आएंगे। हमारे पास ऐसे भी चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयर्ड हैं जो BSLP जिन्होंने कर चुके हैं, ओके, ऑडियोलॉजी का कोर्स कर चुके हैं, ऑडियोलॉजिस्ट हैं अभी, ओके। एजुकेशन के क्षेत्र में तो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत जगह पे यू विल फाइंड जो डेफ टीचर्स बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं बच्चों के साथ। टीचर के क्षेत्र में मैंने बहुत सारे देखे हैं, प्लस यू विल फाइंड मेनी पीपल इन IIMs IITs ऑल्सो यू विल फाइंड। तो अगेन एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू आइडेंटिफिकेशन, इंटरवेंशन का गैप कम करना है, एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर हम काम करें तो यस थिंग्स आर पॉसिबल। प्लस टीम अप्रोच में काम करना बहुत जरूरी है। टीम अप्रोच का मतलब पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, जो भी उनके थेरेपिस्ट होंगे या साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हो गए, इन सबको साथ में लेकर अगर वो आगे बढ़ेंगे तो यस थिंग्स आर पॉसिबल।
1: बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर गायत्री, हमें बताइए कि कैसे पहचाने कि किसी बच्चे को हियरिंग लॉस है, मतलब वो सुनने में असमर्थ है, प्रारंभिक अवस्था में कैसे पहचान होती है?
0: ओके, फॉर सिंपल एग्जांपल, अगर मैं फैमिली सेटअप पे बात करूं तो आप जोर से आवाज बुला रहे हैं बच्चे का, राहुल राहुल राहुल, बच्चा प्रतिसाद नहीं करता है। आपने चिल्ला के बात किया तभी भी प्रतिसाद नहीं कर रहा है, देयर इज नो चेंजेस इन एक्सप्रेशन। हमें जब आवाज आती है तो हम उस तरफ देखते हैं, ओके, जहां से आवाज आती है हम उस तरफ देखते हैं, तो बच्चा वहां पे रेस्पॉन्ड नहीं करता है। अगर बहुत जोर से कोई आवाज आती है तो हम नॉर्मली दचकते हैं, वी स्टार्टल, ओके। अगर बच्चा स्टार्टल नहीं करता है या दचकता नहीं है, तो दीज आर सर्टन साइंस जहां पे बच्चा रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। अगेन घर की घंटी बजी है एंड द चाइल्ड इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि देयर इज अ डोरबेल। तो एनवायरमेंटल साउंड्स को अगर वो रेस्पॉन्ड नहीं करता है या फाइन साउंड्स जैसे स्पीच साउंड्स को वो रेस्पॉन्ड नहीं करता है, तो यस द चाइल्ड कैन हैव इश्यूज। बहुत बार क्या होता है कि हियरिंग लॉस उतनी मात्रा पे नहीं है, माइल्ड मॉडरेट या मॉडरेटली सीवियर है, तो उन बच्चों को पहचाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे है, पर उसके लिए जांच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको रेगुलर स्कूल्स में मिल जाएंगे, जनरल स्कूल्स में मिल जाएंगे, ठीक है, जहां पे बच्चे को लॉस तो है बट आप अगर थोड़ा जोर से बोलते हो तो बच्चा रिस्पॉन्ड कर लेता है। बट व्हेन यू से टर्न पेज नंबर दिस, तो पेज नंबर ये टर्न करना है, ये पूरा वाक्य समझना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगेन ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत ऊंचा बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं कंसर्न्स है। तो ये सब एक बिहेवियर रिस्पॉन्सेज है जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। और अगर ऐसा कोई बिहेवियर रिस्पॉन्स आप देखते हो तो तुरंत ENT ऑडियोलॉजिस्ट को मिलने, ताकि हमें पता चले कि हियरिंग लॉस है तो कितना हियरिंग लॉस है, और अगर हियरिंग

0: लॉस है, क्या वो दवाई से या सर्जरी से ठीक हो सकता है? तो फाइन, नहीं ठीक हो सकता है तो व्हाट आर द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, चाहे वो हियरिंग एड लगा दें या कॉकलियर इम्प्लांट लगे या हमको साइन लैंग्वेज का है सपोर्ट चाहिए, क्या करना है तो हम प्लान ऑफ एक्शन बना सकते हैं. तो दिस इज द बेसिक.
1: और शुरुआत में कोई चीज पता चल जाती है तो उसका इलाज भी संभव है.
0: एग्जैक्टली.
1: छोटी मोटी तकलीफें, छोटी मोटी समस्या है तो उसका इलाज भी संभव है. यहाँ पर एक गाना सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना?
0: पल पल दिल के पास
1: तुम रहती हो.
0: हाँ जी, किशोर कुमार जी.
1: जी सुनते हैं ये गाना.

0: डॉक्टर गायत्री, हमारे श्रोताओं को बताइए कि सुनना और बोलना एक साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या जिनको सुनने में समस्या होती है निश्चित रूप से उनको बोलने में भी समस्या होती है? ऐसा भी होता है कि बोलना बहुत स्मूथ होता है और सुनने में प्रॉब्लम होती है, ये इसके बारे में हमारे श्रोताओं को जरा विस्तार से बताइए।
1: स्पीच इम्पेयरमेंट और हियरिंग इम्पेयरमेंट दो अलग अलग डिसेबिलिटी है, ठीक है। अब पहले हम चलते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के क्षेत्र में। मुझे सुनाई नहीं देता है, अगेन आई रिपीट, इसलिए मुझे भाषा वाचा और संप्रेक्षण में तकलीफ होगी, ठीक है। पर ये डिपेंड करता है कि मुझे कितना हियरिंग लॉस है, ओके, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि मेरा वाचा भाषा और संप्रेक्षण कितना अफेक्टेड रहेगा। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से मुझे बात करने में प्रॉब्लम आएगी और भाषा वाचा और संप्रेक्षण में प्रॉब्लम आएगी। स्पीच इम्पेयरमेंट बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, जिस बच्चे को स्पीच इम्पेयरमेंट हो उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, बिल्कुल नहीं। स्पीच इम्पेयरमेंट टोटली डिफरेंट थिंग है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आप जब बात करते हैं तो बात करने के लिए जो जो ऑर्गन्स या इन्वॉल्व हैं, ओके, जो भी आर्टिकुलेटर्स इन्वॉल्व हैं या जो वोकल फोल्ड्स हैं या जो भी इन्वॉल्व हैं, ओके, वो एक टोटली डिफरेंट क्षेत्र है, ओके। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से मुझे बात करने में तकलीफ हो सकती है, पर मैं बात नहीं कर सकती हूँ या मुझे स्टटरिंग है या स्टैमरिंग है या मुझे कोई भी स्पीच रिलेटेड कंसर्न्स है, बट दैट डजंट मीन कि मुझे हियरिंग लॉस भी है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, पर बहुत बार लोग उसको मिक्स कर लेते हैं। तो पहले जब हमारे पास पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट था, तब वी हैड डेफ की डेफिनेशन थी हमारे पास, एंड डेफ एक प्रॉपर एक डिसेबिलिटी था। RPWD एक्ट जब आया 2016, तो दो अलग डिसेबिलिटी बना दी, स्पीच इम्पेयरमेंट अलग, हियरिंग इम्पेयरमेंट अलग, एंड दोनों के टेक्निक्स, मेथड्स, सिखाने के तरीके एंड थेरेपी सेशंस काफी अलग हैं। तो ये दोनों चीजें अलग हैं,
0: बिल्कुल। और कुछ बच्चे जो बोल तो सकते हैं लेकिन ठीक से नहीं बोल पाते हैं, जिनको हकलाना कहते हैं,
1: राइट राइट राइट, हाँ,
0: तो उनके लिए भी
1: उनके लिए भी थेरेपीज होती हैं। एंड जैसे आपने खुद ने पहले कहा, जितना जल्दी आप जानोगे उतना जल्दी आप उसका निवारण कर सकते हैं, उतना जल्दी इंटरवेंशन प्रोग्राम शुरू हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा हकलाता है तो आप उसको प्लीज एक इंटरवेंशन प्रोग्राम में लेके जाएं या थेरेपिस्ट के पास लेके जाएं। टू एड वन थिंग कि जैसे जनरल स्कूल्स में, रेगुलर स्कूल्स में यू विल फाइंड कि कुछ बच्चे हैं जिनको हियरिंग इश्यूज हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको स्पीच इश्यूज हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक प्रशस्त ऐप बनाया है, ओके, तो वो ऐप से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये बच्चे को रेड फ्लैग है कि ग्रीन फ्लैग है, ओके, तो वो स्क्रीनिंग करने में काफी आसानी होती है कि हाँ वो बच्चा कौन से ग्रुप में फिट होता है, ताकि आपका इंटरवेंशन प्रोग्राम या थेरेपी प्रोग्राम उस तरीके से बढ़ते जाएगा।
0: तो जो बच्चे सामान्य स्कूल में, सामान्य विद्यालय में पढ़ते हैं, तो टीचर्स का, शिक्षक का किस तरह का सहयोग होना चाहिए, क्या भूमिका होती है फिर?
1: जो जनरल टीचर्स हैं, जो रेगुलर टीचर्स हैं, उनके क्लास में यू विल फाइंड कि बहुत सारे अलग अलग यू नो डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं उनके क्लास में भी। तो उनके लिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आपको मालूम है कि आपके क्लास में ऐसा बच्चा है जिनको सुनने में तकलीफ है, तो उस बच्चे का आप सिटिंग अरेंजमेंट सही करें, मतलब उसको ठीक सामने बिठाएं, ताकि उसका हियरिंग एड जो एम्पलीफाई करता है साउंड, या वो कॉकलियर इम्प्लांट यूज करता होगा, या जो आपको स्पीच रीड करता होगा, आपकी तरफ देख के यू नो वो समझता होगा, तो उसमें काफी मदद हो जाती है। तो सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से रखें, क्लासरूम नॉइज को जितना कम कर सकते हो उतना अच्छा है, ताकि आप जो बात कर रहे हैं या जो उसका पीयर ग्रुप है, जो उसके फ्रेंड सर्कल है, जो वो बात कर रहे हैं, उनको वो ध्यान लेके समझ सके और सुन सके। दूसरी, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं तो कहूंगी कि अगर आप पेरेंट्स को बुलाएं क्लास में और उनको बोलें आप बैठो और ऑब्जर्व करो कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है, तो दैट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल। तो पेरेंट एम्पावरमेंट अगेन मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, पेरेंट का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब उनको लगे कि यस इसमें मुझे पढ़ाने में ये तकलीफ हो रही है तो मैं इसको किस तरीके से पढ़ाऊं, तो सपोर्ट लेना और स्पेशल एडुकेटर्स विल रियली हेल्प, बिकॉज स्पेशल एडुकेटर्स जिस तरीके से पढ़ाते हैं उनका मेथड

0: और टेक्निक्स काफी अलग होता है, तो वो बहुत हेल्प कर सकते हैं जनरल एडुकेटर्स को कि हम किस तरीके से आगे पढ़ा सकते हैं। चौथी चीज इज जो वो हियरिंग एड पहनते हैं, जो वो यहाँ तो कॉकलियर इम्प्लांट लगाते होंगे, आपने बहुत बार देखा होगा कान के पीछे एक मशीन होती है, ठीक है, और कान के पीछे और कान के ऊपर तक एक मशीन लगती होगी, तो हियरिंग एड हो या कॉकलियर इम्प्लांट बहुत कॉमन हो गई है, तो वो चल रही है कि नहीं चल रही है उसको भी जांचना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है बच्चे ने लगा तो दिया मशीन पर बैटरी खत्म हो गई है, आवाज जा भी नहीं रही है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं कि आवाज जा तो रही है, बच्चा सुन तो रहा है, अगर मशीन खराब हो गई है तो अगर आप ठीक नहीं भी कर सकते हो तो पेरेंट्स को बोल दो कि हाँ बाबा ये मशीन चल नहीं रही है तो आप ठीक करो, या माइनर रिपेयर्स करने आपको आने चाहिए। अगेन जैसे मैंने लास्ट कहा कि टीम अप्रोच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि इफ देयर इज एनी कंसर्न आप उसको ऑडियोलॉजिस्ट के पास भेजें, ईएनटी के पास भेजें और स्पेशल एडुकेटर्स की सपोर्ट आप लें, तब जाके सक्सेसफुल होगी चीजें, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट।
1: तो क्या ऐसे बच्चों को कुछ मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट की भी जरूरत होती है, क्योंकि एक सामान्य स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और सारे बच्चे, उसको तो पता है कि वो सुनने में असमर्थ है, हियरिंग एड लगा रहा है तो पता है बोलने में असमर्थ है, तो वो जो हीन भावना के शिकार होते हैं तो उसमें किस तरह से मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट होता है या नहीं होता है?
0: इट ऑल डिपेंड्स ऑन चाइल्ड टू चाइल्ड एंड फैमिली टू फैमिली। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन हूँ और मेरी फैमिली ऐसी है जो बहुत पॉजिटिव है, ओके, एंड उनका माइंडसेट ऐसा है कि इट्स ओके, मतलब कि ठीक है, और उनका काफी रीइन्फोर्समेंट हो रहे हैं, उन बच्चों को ज्यादा इश्यूज और कंसर्न्स नहीं आते हैं। पर जहाँ पे पेरेंट्स ने खुद ने एक्सेप्ट नहीं किया है कि मेरे बच्चे को ये कंसर्न है, एंड पेरेंट और बच्चे के बीच का जो संबंध है वो सही नहीं है, तो बच्चों को कंसर्न्स आएंगे ही आएंगे। इट कैन भी उनको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो कि मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है, मेरे से कोई क्यों नहीं बात कर रहा है, मुझे लोग अलग तरीके से क्यों ट्रीट कर रहे हैं, तो दैट कॉम्प्लेक्सिटी विल कम। तो ये तो हमारे साथ भी होता है कि समझो अगर हम कोई ग्रुप में गए और हमें लगा कि हाँ मुझे ये इंग्लिश भाषा बात करने नहीं आती और सबके सब इंग्लिश में बात करते हैं, तो वो तो हमको भी लगता है, ये एक स्वाभाविक चीज है। तो ये कंसर्न्स जहां पे एक्सेप्टेंस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वहां मैंने ये कंसर्न्स बहुत ज्यादा देखे हैं। एक दूसरा जो बहुत ज्यादा देखा है मैंने वो है कि क्या होता है कि पहले समझो बच्चा स्पेशल स्कूल में गया या थेरेपी सेंटर में गया, वहां पे पेरेंट्स को लगा और टीचर्स को लगा कि हाँ बाबा मेरा बच्चा अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, वो सब कुछ अच्छे से कर रहा है, उसको स्पेशल स्कूल सेटअप में जहां पे सब स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल टीचर हैं, एंड उसको वहां से पिक करके उन्होंने प्लेस कर दिया एक रेगुलर स्कूल में। अब वो रेगुलर स्कूल में बाकी सब एक सामान्य बच्चे, एक जनरल टीचर, उन्होंने कभी ऐसा बच्चा देखा नहीं, उसके पढ़ाने का तरीका जिस तरीके से वो दिखता है, दिखता तो बिल्कुल सेम है, ओके, बट वो हियरिंग एड है और मोस्टली कभी वो इशारे करता है तो वो थोड़ा अलग हो जाता है। तो वहां पे अगर वो कोप अप नहीं करता है, ओके, बाकी वो एनवायरमेंट और सराउंडिंग से, देन देयर कैन बी अ साइकोलॉजिकल कंसर्न्स आल्सो। फिर क्या होता है, वहां से हम वापस उसको स्पेशल स्कूल में लेकर आते हैं, रिवर्स इंटीग्रेशन करते हैं, इस प्रोसेस में द चाइल्ड फेसेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम। थर्ड, अगर उसकी लैंग्वेज उतनी डेवलप नहीं है, चाहे वो मौखिक भाषा हो या सांकेतिक भाषा हो, अगर उसकी लैंग्वेज डेवलप नहीं है एंड द चाइल्ड इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट, ओके, अगर मेरा कम्युनिकेशन अफेक्टेड है तो यस आई माइट हैव साइकोलॉजिकल कंसर्न्स आल्सो।
1: बिल्कुल।
0: सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा सिनेरियो है, कौन सा सिचुएशन है, दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। एंड समटाइम्स आई फील कि जो बिहेवियर्स है ना हम सबके, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर सिंपल एग्जाम्पल, अगर बच्चा स्कूल जाता है तो उसके सिक्योरिटी गार्ड उसको कैसे डील करते हैं, आया जो है आया किस तरीके से उसको डील करती है, और ये सब छोटे बच्चों में बहुत, बिकॉज दे आर मोर ऑफ विजुअल लर्नर्स, ओके, आपका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा होगा कि यू नो यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, बट आप मुंह से तो बोल रहे हैं हेलो गुड मॉर्निंग, बट फेशियल एक्सप्रेशन इज नॉट गोइंग विद योर स्पीच, ओके, तो वो भी कहीं ना कहीं उसको फील होता है। तो बिहेवियर्स plays an important role because जो hearing impaired होते हैं वो mostly visual learners होते हैं, they are more of visuals, okay? तो आपका बर्ताव, आपका attitude, आपका body language, ये सब बहुत important role play करता है। यहाँ कहीं ना कहीं कमतरता हुई तो that means that will affect the child।
1: बिल्कुल सही बात है. इन बच्चों की ऐसी कौन सी प्रमुख शैक्षणिक आवश्यकताएं हैं जिन्हें हर माता पिता और शिक्षक को समझना चाहिए, ये बताइए हमारे श्रोताओं को.
0: ओके, अभी जैसे मैंने कहा चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट या वो बच्चे जिनको हियरिंग लॉसेस हैं वो दो ग्रुप में होते हैं बेसिकली. एक ग्रुप जो हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट यूज करता है एंड उसका वर्बल

0: कम्युनिकेशन डेवलप होता है, हम मोस्टली उनके इसमें मौखिक भाषा किस तरीके से विकास हो उसके ऊपर हम स्टेप्स लेते हैं। दूसरा ग्रुप है जहाँ पे हम साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, इशारों की भाषा बोलते हैं या विजुअल स्पेशल मैनुअल कम्युनिकेशन हम जिसको बोलते हैं, ये एक ग्रुप होता है। ठीक है, अब इन दोनों ग्रुप में बेसिक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट या जो जरूरत है या लर्निंग नीड्स है बेसिकली कम्युनिकेशन और लैंग्वेज की जरूरत है। ठीक है, अब नॉर्मली लोगों को क्या लगता है कि आपने हियरिंग एड लगा दिया तो मेरा बच्चा बात करेगा, या कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी कर दी तो मेरा बच्चा बात करेगा, पर इसमें और चश्मे के बीच में बहुत फर्क है। मुझे अगर दिखाई नहीं देता है और मैं ऑप्थेल के पास जाती हूँ, ऑप्थेल मुझे चश्मा देगा और मुझे तुरंत दिखाई देगा और वो आपका तभी का तभी टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता है ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो अलग अलग श्रवण यंत्र ट्राई करते हैं, फिर वो गेन देखते हैं और उसके बाद आपको एक हियरिंग एड दिया जाएगा। हियरिंग एड लगाने के बाद तुरंत बच्चा बात नहीं करता है, उसके बहुत सारे थेरेपी सेशंस होते हैं, श्रवण प्रशिक्षण के बहुत सारे थेरेपी के सेशंस होते हैं, उसको सिखाया जाता है कि ये आवाज कौन सी है, इस आवाज का मतलब क्या है, आवाज आ कहाँ से रही है। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ओके, एंड अ टीडियस प्रोसेस जहाँ पे बहुत ज्यादा सिंसियरिटी से आपको काम करना होता है। तो ये एक लर्निंग नीड है जहाँ पे अगर लगता है कि हाँ बच्चे ने श्रवण यंत्र पहना है तो उसका ऑडिटरी ट्रेनिंग या श्रवण प्रशिक्षण आपको लगातार करना होगा। हियरिंग एड आपको लगातार पहनना होगा, एंड चाहे वो कॉकलियर इम्प्लांट हो या हियरिंग एड हो, आपको कंटिन्यूसली पहनना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है, आप जिस वातावरण में हैं वो भाषिक वातावरण होना चाहिए। जितना ज्यादा आप लैंग्वेज इनपुट दोगे उतना ज्यादा आप लैंग्वेज आउटपुट होगा, जितना लैंग्वेज इनपुट नहीं है उतना आउटपुट इज अफेक्टेड। सोशल इंटरेक्शंस बहुत ज्यादा कराएं ताकि बच्चे को भी लगे कि हाँ मैं इस समाज का एक हिस्सा हूँ, एंड मुझे हर जगह एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, एंड प्लस एक सोशल आइडेंटिटी भी डेवलप होती है। मैं जितना ज्यादा समाज में इन्वॉल्व होंगी मेरी उतनी अच्छी आइडेंटिटी भी बनेगी। नीड्स है बेसिकली एक चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट की। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब देखिए जब हम भाषा की बात करते हैं तो अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल दूं मैथमेटिक्स का, अगर मैं लिखूंगी 26 प्लस 24 कितना होता है इन अ डिजिटल फॉर्मेट, वो बच्चा कर पाएगा। ओके, पर अगर यही चीज मैं भाषिक रूपांतर में दूं मैथमेटिकल सम्स, वो डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज अब जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ और जब मैं वो लिखती हूँ भाषा, ओके, टिपिकल मैथमेटिकल कंसेप्ट में जो भाषा का इस्तेमाल होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चे को भाषा सीखने में। नेक्स्ट व्हाट आई फील इज, हम कभी भी जो भी कंटेंट सिखाते हैं या चाहे वो टीचर्स हो या चाहे वो पेरेंट्स हो, जो भी हम कंटेंट सिखाते हैं उस कंटेंट के अंदर जितने भी कंसेप्ट होते हैं, ओके, वो जितने भी संकल्पनाएं हैं वो संकल्पना संदर्भ के अकॉर्डिंगली सीखना बहुत जरूरी है। अब एग्जांपल, अगर मैं आपको एक शब्द बोलूं खोलना, ओके, ये शब्द है अगर खोलना, तो हम तो कितनी चारी अलग अलग चीजें खोलते हैं। ओके, क्लास में आप जाते हो और बोलते हो कि आप बुक्स खोलो, तो यू अंडरस्टैंड कि बुक मुझे खोलना है। ओके, बुक इस तरीके से खुलती है। ओके, अगर मैं कहूँ कि मुझे डोर खोलना है तो दैट क्रिया इज डिफरेंट, ओके, दैट प्रोसेस इज डिफरेंट। तो वन वर्ड बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, तो हेंस द कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर संकल्पना में अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती है तो इसके लिए बच्चों को आगे एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम्स होती है, नहीं तो फिर बच्चे फिर रट्टा मार के वो वैसे आंसर लिखते हैं। कि बहुत बार आप देखोगे कि बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका वो कीवर्ड देखते हैं और उसके हिसाब से आंसर लिखते हैं, क्योंकि उनमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं होती है, और बहुत बार रट्टा मारना करते हैं तो रट्टा मारा हुआ चीज लिखते हैं पर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो अंडरस्टैंडिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अंडरस्टैंडिंग हुई तो बहुत सारी एकेडमिक डिफिकल्टीज तो चली ही जाएंगे। प्लस आई एम अ टीचर, तो मैं लिटरेसी डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ कि जितना ज्यादा आप रीडिंग राइटिंग कराओगे उतना ज्यादा अच्छा प्रोग्रेस होगा।
1: अभ्यास होगा।
0: हाँ, जितना ज्यादा रीडिंग हो, फॉर एग्जाम्पल 6 पूछिए, मैंने कहा अगर बच्चा है आप बोलोगे क्या मैं कराऊँ रीडिंग और राइटिंग एंड क्या ही कराऊँ, बट आप बुक खोल सकते हैं उसके सामने और बुक खोल के पढ़ सकते हैं, तो वो जो विजुअल थिंग्स है ओके दैट गोज इन हिज हेड, ओके बच्चा देख रहा है, उसका रिसेप्टिव लैंग्वेज इज ऑल्सो डेवलपिंग, आप पेज टर्न कर रहे हैं तो ही ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ जब हम रीड करते हैं तो मुझे पेज टर्न करना है, जब मैं रीड करता हूँ तो मैं ऊपर से लेके नीचे तक जाता हूँ।

0: ना कि नीचे से लेके ऊपर तक. तो ये जो स्मॉल स्मॉल थिंग्स है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. दिस ऑल थिंग कंपाइल्स इन द लर्निंग नीड्स ऑफ द चाइल्ड.
1: जी, तो ऐसे बच्चे जो सीख रहे हैं इस तरह जिनमें श्रवण बाधित जो बच्चे हैं, तो इनकी समझदारी में कुछ भी कुछ फर्क होता है सामान्य बच्चों के तुलना में कि नॉर्मल, क्योंकि जो सामान्य बच्चे हैं बहुत कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं आंखों से और बहुत ऐसी जगहों पर ले जा रहे हैं. अमूमन होता होगा पेरेंट्स अवॉइड करते होंगे कि यहाँ नहीं ले जाना है, यहाँ ले जाना है, तो उनकी जो समझ थिंकिंग प्रोसेस है क्या बराबर होती है या कम होती है?
0: See, आपका जब कॉग्निशन की बात करते हो तो कॉग्निशन बहुत हायर लेवल थिंकिंग है, राइट? एंड उसके अंदर एक और चीज आती है जिसको हम मेटा कॉग्निशन बोलते हैं. तो उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं. प्रोसेसेस को समझने के लिए आपको एक यंत्र चाहिए, आपको एक टूल चाहिए जो है भाषा. ओके, कोई भी चीज को समझने के लिए, जैसे आई नो कि जो मैं बात कर रही हूँ ये माइक के माध्यम से, इट इज गोइंग टू मैम, मैम उनको चेंज वेंज करके एंड देन इट इज लाइव ब्रॉडकास्टिंग. एवरीथिंग आई एम अंडरस्टैंडिंग थ्रू लैंग्वेज. ओके, पर अगर मेरे पास लैंग्वेज ही नहीं है, हाउ विल माई अदर प्रोसेसेस विल टेक प्लेस? सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है. बट मैं ये नहीं कह सकती कि जो हियरिंग इम्पेयरमेंट होते हैं उनको कुछ कॉग्निटिव इशूज होते हैं. नहीं, देर आर नो कॉग्निटिव इशूज, नो अंडरलाइंग इशूज एज सच, बट येस लैंग्वेज कॉग्निशन से जुड़ा हुआ है एंड इट हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑल्सो. तो वो काफी अच्छा प्रोग्रेस करते हैं. बट अगेन सेम थिंग बॉयज डाउन टू लैंग्वेज और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट. मेरे पास अगर भाषा ही नहीं है तो मैं आगे किस तरीके से वो प्रोसेस को समझूं या किस तरीके से रिस्पॉन्ड करूं या क्या कैसे करूंगी वो मुझे कैसे पता? जब तक मुझे वो रियल लाइफ सिचुएशंस नहीं पता होंगे या मुझे उस चीज का संदर्भ भी नहीं पता है कि मैं किस तरीके से करूं. वैसे
1: बिल्कुल, जहां हम एक गाना सुनते हैं, कौन सा गाना सुनवाए?
0: ये मुंबई है मेरी जान, ए दिल है मुश्किल.
1: ए दिल है मुश्किल जी, ना ये जी सुनते हैं ये गाना. ए दिल

0: बारे में हम बात कर रहे थे।
1: हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं या लर्निंग की बात करते हैं, एक सिंपल चीज को अगर हम ध्यान में रखें कि हर चीज मुझे एक्सेसिबल होना चाहिए। अगर सारी चीजें आपके पास एक्सेसिबल हैं, तो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी आसान से हो सकता है। नाउ जब मैं एक्सेसिबिलिटी ये शब्द बोलती हूँ, तो इसका अर्थ क्या है? एक्सेसिबिलिटी बेसिकली मींस कि मैं कोई भी चीज को पार्टिसिपेट करूं तो उसमें कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, समझो व्हील चेयर का इस्तेमाल करती हूँ और आपके बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, सो मैं थर्ड फ्लोर तक कैसे जाऊँ? ठीक है, आई हैव टू टेक हेल्प ऑफ समबडी एल्स। ओके, मैं इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो एक्सेसिबल होना हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो हम ये रेडियो शो कर रहे होते और आप फ्रेंच में बात कर रहे होते, तो मुझे तो फ्रेंच आती नहीं है, तो इट वुड हैव बीन वन वे कम्युनिकेशन, क्योंकि मैं कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो लर्निंग सक्सेसफुल करने के लिए आप जो भी चीजें, जो भी मटेरियल आप बच्चों को देते हो या जो भी चीजों का इस्तेमाल करते हो, बच्चे के लेवल के अनुसार होना चाहिए और उसको, उस तक वो पहुंच सके, इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दैट इज एक्सेसिबल होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो हमारे बच्चे होते हैं वो मोर ऑफ विजुअल लर्नर्स होते हैं। ओके, सो आप कोई भी क्लासरूम देखोगे, अगर स्पेशल क्लासरूम देखोगे या अगर आप हमारे CDIC में आओगे, दैट इज क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, उधर भी आप देखोगे बहुत ज्यादा विजुअल चार्ट्स होंगे, विजुअल थिंग्स होंगे, बिकॉज द चाइल्ड इज मोर ऑफ विजुअल। ओके, सो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आपको अलग अलग लेने होंगे एंड अगेन आई रिपीट, एक्सेसिबल होना बहुत जरूरी है। जो भी आप कंसेप्ट कंटेंट दे रहे हैं, क्या वो साइन लैंग्वेज में उपलब्ध है कि नहीं है? ओके, और अगर साइन लैंग्वेज में उपलब्ध नहीं है, जो आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो भाषा मेरे बच्चे को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बहुत बार जो होता है वो टेक्स्ट जो होता है, स्कूल के जो टेक्स्ट होते हैं, उसको हम अडेप्ट करते हैं। अडेप्ट बेसिकली मीन्स वॉट, हम उसको चेंजेस करते हैं, चेंजेस बच्चे के लेवल के अनुसार चेंजेस करते हैं और बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स के माध्यम से सिखाते हैं। अगेन कमिंग टू बेसिक, कंसेप्टुअल क्लैरिटी के लिए, कंसेप्ट क्लियर है तो बच्चे का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी आसान तरीके से होता है। हमारे बच्चों के लिए आप जब असेसमेंट भी करते हो, जो मूल्यांकन करते हो, तो आप समझो आप जब पढ़ा रहे हो तो पढ़ाते समय भी आप मूल्यांकन करते रहते हो। पढ़ाने के पहले भी करते हैं, पढ़ाने के बाद भी करते हैं और पढ़ाते समय बहुत बार हम मूल्यांकन करते हैं। एंड इट प्रोसेस शुड बी बेसिकली दोनों तरफ से इंटरैक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर क्लास में गई और खुद ही खुद बात किए जा रही है। और बहुत बार तो हमने ये देखा है कि जब हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट होना चाहिए, भाषिक वातावरण होना चाहिए, तो माँ ही बोले जा रही है। नहीं, बच्चे को भी मौका दो कि बच्चा भी बात करे, बच्चा भी वो प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। तो जितना ज्यादा आप इन्वॉल्व करोगे बच्चे को हर प्रोसेस में, उतना ज्यादा बच्चा प्रोग्रेस कर सकता है।
0: बिल्कुल। डॉक्टर गायत्री, हमारे श्रोताओं को बताइए कि सरकार की कौन सी नीतियां हैं, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां हैं इन बच्चों को जो शिक्षा में समर्थन देती हैं और बढ़ावा देती हैं?
1: ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऐसे बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे स्कीम्स हैं जहाँ पे वो बच्चों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं या इंडिविजुअल्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। हमारे पास अलग अलग एक्ट्स हैं, चाहे वो RPWD एक्ट हो या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो 2020 की, या सिप्टा स्कीम हो, स्किल डेवलपमेंट के लिए वी हैव PM दक्ष स्कीम ऑल्सो। हमारे पास अलग अलग स्कॉलरशिप के स्कीम्स हैं ताकि बच्चे को ऐसा नहीं लगे कि एजुकेशन काफी डिफिकल्ट है, मैं एजुकेशन कहाँ से लूं और कैसे लूं। एक सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आप अगर हमारे यहाँ पे अगर कोई दिव्यांग है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है और उसको BEd का कोर्स करना है या MEd का कोर्स करना है या डिसेबिलिटी ISL का कोर्स करना है, तो उसके लिए फ्री है एजुकेशन। ओके, दैट इज एज पर द स्कीम, बच्चे के लिए फ्री है। अगर उसको कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करना है या फ्री कोचिंग करना है, तो इट इज टोटली फ्री। तो ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं जहाँ पे उनको हियरिंग एड भी मिलता है कंसेशनल रेट पे। तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पे लॉज आर इन प्लेस, स्कीम्स आर इन प्लेस, जहाँ पे हम एजुकेशन भी देते हैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में। सो ये सारी चीजें तो है इन प्लेस। पर जब हम गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस या लॉज एंड पॉलिसीज की बात करते हैं, वी स्टिल हैव टू डेवलप अवेयरनेस और अवेयरनेस की आवश्यकता है अभी तक हमारे देश में कि अगर ये इशू है, अगर ये कंसर्न है तो मुझे कहाँ जाना है. ओके, ये कहाँ जाना है ये अभी तक एक कंसर्न है. अभी भी हमको अवेयरनेस में बहुत ज्यादा काम करना

डॉक्टर गायत्री हमें बताइए कि श्रवण बाधित बच्चे की सीखने की पूरी प्रक्रिया को किस तरह से प्रभावित करती है, जो सीखने की मतलब लर्निंग प्रोसेस होती है। अभी गाने से पहले भी

0: बहुत ज्यादा जरूरी है. इफ आई कैन कोट अ थिंग इज कोविड के टाइम पे नो दे आर गोइंग टू हॉस्पिटल्स एंड दे वर हैविंग देयर ट्रीटमेंट ऑल्सो. सो यू थिंक ऑफ अ पर्सन जिसको कोविड अफेक्टेड है एंड वो हॉस्पिटल गया है एंड ही इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद द डॉक्टर बिकॉज देयर इज नो इंटरप्रेटर. ओके, तो हमारे देश में अभी भी इंटरप्रेटर्स की संख्या बहुत कम है, उसमें और ज्यादा इनरोल होना जरूरी है. थर्ड इज द एक्सेसिबिलिटी. इस एक्सेसिबिलिटी को भी हमें इम्प्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर हम इन सब अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी, इंटरप्रेटर सर्विसेज एंड सपोर्ट सिस्टम अगर हम और बढ़ाते हैं तो यस, तो गवर्नमेंट लॉज पॉलिसीज जो है इम्प्लीमेंटेशन काफी अच्छे से होगा. हम डॉक्यूमेंट्स में बहुत अच्छे हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत कर रहे हैं, बट फिर भी अगर ये दो तीन चीज पे और लाइनअप हम करें तो यस, द चाइल्ड कैन गो मच मच हायर लेवल पे.
1: जी, आप खुद इस संस्था में पढ़ाती हैं बच्चों को और आपके पास देश भर के बहुत सारे बच्चे आते होंगे. कोई ऐसा निजी यादगार कोई घटना है आपके पास जो शेयर करना चाहती हैं?
0: मैं इस क्षेत्र में आई क्योंकि ऑन माय पर्सनल
1: हेड है, डिपार्टमेंट की हेड है तो बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है.
0: उसके पहले तो फैकल्टी थी एंड उसके पहले बहुत साल तक एनजीओ सेटअप में भी काम करती थी मैं. एंड आई इंटर्ड इन दिस फील्ड बिकॉज मेरी बुआ की डॉटर इज हियरिंग इम्पेयर्ड. ओके, सो जब भी मैं बुआ के घर जाती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि ये इशारों से बात कर रही है और मेरे पापा आराम से कम्युनिकेट कर सकते थे. एंड आई यूज टू फील ये ऐसे, ये कुछ अलग है, ये क्या है. ओके, सो व्हेन आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स आई थॉट कि लेट मी गेट इन टू दिस फील्ड बिकॉज दिस फील्ड आई फेल्ट इज वेरी सैटिस्फैक्ट्री, वेरी क्रिएटिव एंड बहुत कुछ चेंज हम कर सकते हैं. एंड अगर हम सब इकट्ठा होके एज अ टीम काम करें तो आई फील यू कैन मेक वंडर्स. कमिंग टू द पर्सनल नोट, जिस संस्था में मैं काम कर रही हूँ, पहले मैं वहाँ पे फैकल्टी थी एंड उसके बाद मैं अभी 2024 में आई बिकेम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. सो बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, लाइक मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो खुद डेफ हैं, ने कहा कि जो बैचलर्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं और पीएचडी करते हैं, और बहुत सारे सो कॉल्ड यू नो टिपिकली डेवलप्ड स्टूडेंट्स भी हैं. दोनों काफी अलग हैं एंड दोनों का सीखने का तरीका काफी अलग है. बट दीज आर ऑल यू नो लेसन्स, यू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स. और अगर मैं कहूँ कि मैंने इनसे क्या सीखा है, पेशेंस सीखा है काफी ज्यादा, मेरे में पेशेंस लेवल काफी अच्छा हो गया है. एंड यू अंडरस्टैंड कि एक ही पहलू को हम कितने अलग तरीके से देख सकते हैं. जैसे हम रिसर्च में कहते हैं थर्ड व्यू. ओके, थर्ड व्यू बेसिकली मीन्स फ्रॉम रिसर्च एंगल, डिफरेंट तरीके से वही चीज को देखना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो दिस इज द थिंग व्हाट आई हैव अंडरगॉन एज अ रीडर.
1: बिल्कुल, भारत में श्रवण बाधित बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है तो इसे मजबूत करने के लिए और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं भारत सरकार की ओर से?
0: कैपेसिटी बिल्डिंग. कैपेसिटी बिल्डिंग की जब मैं बात करती हूँ तो अगर मैं जनरल स्कूल्स की बात करूँ तो जनरल स्कूल्स में जो टीचिंग स्टाफ है एंड नॉन टीचिंग स्टाफ है उनका कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट है. उनको समझना, उनका एक्सेप्टेंस करना वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ, जैसे मैं आई थिंक स्टार्ट से कह रही हूँ, वी नीड मोर डेवलपमेंट ऑन एक्सेसिबिलिटी. अगर हर चीज उनके पहुंच तक हो तो यस, द थिंग्स आर पॉजिटिव. एट द एंड ऑफ द डे माइंडसेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है.
1: जी, संक्षेप में बताइए चलते चलते कि आपकी संस्था किस तरह से मदद करती है इन बच्चों को, क्योंकि देश भर से बच्चे आते हैं तो क्या क्या, किस तरह की थेरेपी दी जाती है और क्या क्या जांच की जाती है, फिर उनकी मदद कैसे करती है आपकी संस्था?
0: हमारी संस्था में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जिनको सुनने में तकलीफ होती है तो वी हैव एन ऑडियोलॉजी डिपार्टमेंट जहाँ पे उनकी जांच की जाती है कि बच्चे को कितना सुनाई देता है, कितना सुनाई नहीं देता है, उसको कौन सी हियरिंग एड से फायदा होगा, अगर कॉकलियर इम्प्लांट करना है तो कितने हद तक. हमने रिसेंटली वर्टिको थिंग भी बनाया है. वर्टिको एक क्लिनिक थेरेपी सेंटर बनाया है कि जिन बच्चों को, अगर सिंपल तरीके से बोलूं कि बहुत बार लोगों को चक्कर आते हैं, राइट, सम पीपल से ना हैव अ वर्टिगो इश्यूज एंड ऑल. ओके, सो दिस इज अ न्यू थिंग व्हिच इज बीइंग डेवलप्ड इन द डिपार्टमेंट. फिर हमारे पास एक डिपार्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी डिपार्टमेंट. जिन बच्चों को बात करने में, वाचा में प्रॉब्लम आती है, स्टटर करते हैं, स्टैमर करते हैं, कभी कभी सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी

0: कुछ शब्द नहीं बोलते हैं, तो उनकी पूरी थेरेपी वहां पे चलती है, फुल स्पीच थेरेपी लैब है, आइडेंटिफिकेशन से लेके इंटरवेंशन तक. ओके, देन वी हैव साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जहाँ पे पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस होता है, बिहेवियरल मैनेजमेंट करते हैं, बिहेवियरल टेक्निक्स करवाते हैं ताकि उसका भी निवारण हो सके. और जिस डिपार्टमेंट से मैं आती हूँ, हम पूरा एडुकेशन देखते हैं उन बच्चों का, कि समझो अगर बच्चा कोई रेगुलर स्कूल में भी जाता है और उसको वहां पे भी तकलीफ होती है, तो वी गिव देम रेमेडियल टीचिंग एज वेल. सो एडुकेशन डिपार्टमेंट में अगेन अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, डिप्लोमा से लेके पीएचडी तक. एंड हम साइन लैंग्वेज के भी कोर्सेज चलाते हैं, कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन. तो अगर किसी को लगे कि मुझे सांकेतिक भाषा सीखनी है, तो वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. एंड काफी सारी कोर्सेज चलते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में. हम कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करते हैं, ताकि जो हमारे तक नहीं आ सके तो हम वहां तक पहुंच सके, रीच दी अनरीच. तो हम वहां जाके कैंप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं और उनको हियरिंग एड्स या उनको जो जरूरत हो ओके वो हम देते हैं.
1: जी, तो आपके संस्था से कोई संपर्क करना चाहे तो क्या कुछ कर सकता है, मेल के जरिए? और
0: वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, AYJNISHTNIC वेबसाइट है. आप वहां जाके आपको हर डिपार्टमेंटल हेड्स के फोन नंबर्स और ईमेल आईडीज मिलेंगे. यू विल गेट ऑलमोस्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ.
1: बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी है डॉक्टर गायत्री, और मुझे लगता है देश भर के हमारे श्रोता जो सुन रहे होंगे, जिन्हें भी जिनके घर में जिन बच्चों को जिन बड़ों को हियरिंग लॉस है या बोलने में दिक्कत है, तो बहुत अपने तई जहां इलाज संभव करें, नहीं तो आपकी संस्था से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. और चलते चलते कोई गाना सुनवाना चाहेंगे?
0: जगजीत सिंह का कोई भी गाना, आई जस्ट लाइक हिम और लाइक हिज वॉइस अ लॉट. तो एनी सॉन्ग ऑफ जगजीत सिंह इज ओके विद मी.
1: तुमको देखा तो ये ख्याल है,
0: ऑल गुड.
1: तो सुनते हैं ये.
0: ठीक है.

0: और डॉक्टर गायत्री विविध भारती के स्टूडियो में आप आई और इतनी सारी जानकारी थी। और ये एक ऐसा विषय है जो जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, जो लोग इससे पीड़ित होते हैं वही लोग परेशान होते हैं। तो हमारा भी श्रोताओं से बस यही कहना है कि जहां कहीं ऐसे बच्चे हैं उनको सपोर्ट करें, मानसिक रूप से सहयोग दें। आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत
1: थैंक यू टू यू ममता मैम एंड थैंक्स टू विविध भारती द होल टीम। दे आर वेरी कोऑपरेटिव एंड द वे दे आर डीलिंग with everything, so thanks to them.

0: थैंक्स टू ऑल द लिसनर्स कि आप सुने और कहीं पे किसी को भी आवश्यकता हो तो प्लीज संपर्क करें अलिया वर्जन संस्था को. थैंक यू सो मच.
1: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर गायत्री आहूजा से रेडियो सखी ममता सिंह की ये बातचीत. चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान. आज के

FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बज रहे हैं और अब हमारे स्थानीय कार्यक्रम प्रारंभ होने को है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने कार्यक्रम युववाणी में, और आज है आपके साथ आपके दो रेडियो दोस्त, मैं चेष्टा गौतम
1: और मैं खुशी, और हम दोनों आपके रेडियो साथी एक बार फिर हाजिर हैं लेकर जोश, उत्साह और नई सोच से भरपूर कार्यक्रम युववाणी।
0: दोस्तों युववाणी एक ऐसा मंच है जहां हम बात करते हैं आपके विचारों की, आपके सपनों की और उन विषयों की जो हमारे जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। यहां हर मुलाकात में होती है कुछ नई बातें, कुछ नए अनुभव और ढेर सारी पॉजिटिव ऊर्जा वाली बातें।
1: बिल्कुल चेष्टा, और युवा शक्ति किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। नए विचार, नई उम्मीदें और कुछ कर दिखाने का जुनून ही युवाओं को सबसे अलग बनाता है, और जब यही ऊर्जा सही दिशा में आगे बढ़ती है तो बदलाव की नई कहानियां लिखी जाती है।
0: और इसी सोच के साथ युववाणी हमेशा प्रयास करता है कि आपको मिले रोचक जानकारी, प्रेरणादायक विचार और ऐसी सकारात्मक दृष्टिकोण जो आपके दिन को और भी बेहतर बना सके।
1: तो दोस्तों, चाहे आप घर पर हों, पढ़ाई कर रहे हों, अपने काम में व्यस्त हों या फिर सफर का आनंद ले रहे हों, अगले कुछ मिनट हमारे साथ बिताइए। हमें पूरा विश्वास है कि आज की हमारी जो प्रस्तुति है वो आपको जरूर पसंद आएगी।
0: लेकिन किसी भी खुशनुमा शाम की शुरुआत अगर संगीत के साथ हो जाए तो माहौल और भी सुरीला बन जाता है, क्यों खुशी?
1: बिल्कुल चेष्टा,

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: गले में सरस्वती माँ का वरदान कैसा होता है? ऐसा ही तो होता है ना।

तट पे। जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।

0: दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने कार्यक्रम युववाणी में।
1: पता है चेष्टा, अभी कुछ दिन पहले ना मैं बाजार गई थी शॉपिंग वगैरह करने के लिए, तो वहाँ ना एक बुजुर्ग आंटी ना मुझे रोड क्रॉस करने की कोशिश करती हुई दिखी।
0: अच्छा,
1: लेकिन ना ट्रैफिक की वजह से ना उन्हें काफी परेशानी हो रही थी।
0: अच्छा बुझे, फिर तुमने क्या किया?
1: चेष्टा, फिर मैं उनके पास गई और उनसे पूछा कि आंटी क्या आपको कोई हेल्प चाहिए मुझसे, तो ना उन्होंने मुझे स्माइल करते हुए हाँ बोला।
0: अच्छा,
1: फिर मैंने ना उनका हाथ पकड़कर सेफली उन्हें रोड क्रॉस करवाया।
0: खुशी, तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उस छोटी सी मदद के बाद तुम्हें कैसा लगा?
1: चेष्टा, सच कहूँ ना तो मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई। ऐसा लगा जैसे मैंने किसी का दिन थोड़ा आसान बना दिया है।
0: अच्छा, और आज के हमारे सेगमेंट यानी कि आज के संवाद में हम ऐसे ही एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि है कि सहायता करना भी देगा सुखद अनुभव।
1: बिल्कुल चेष्टा, अक्सर हम सोचते हैं कि किसी को मदद करने के लिए बहुत बड़ा काम करना पड़ता है, लेकिन कई बार छोटी छोटी मदद भी ना किसी के लिए बहुत मायने रखती है।
0: बिल्कुल, जैसे कि किसी को रास्ता बता देना, किसी का सामान उठाने में हेल्प करना, या किसी परेशान इंसान की ध्यान से बात सुन लेना, ये छोटी बात ही मतलब किसी के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। हमें तो लगता है कि ये बहुत छोटी बात है, लेकिन किसी के लिए ये बहुत बड़ी चीज हो सकती है।
1: और सबसे खास बात ये है कि जब हम किसी की हेल्प करते हैं ना, तो केवल सामने वाले को ही खुशी नहीं मिलती, बल्कि हमें भी एक अलग तरह का सुकून और सेटिस्फेक्शन फील होता है।
0: हाँ, क्योंकि सहायता केवल एक कार्य नहीं होता, बल्कि ये एक मानवता का परिचय है। ये हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार बनाता है।
1: दोस्तों, इसीलिए महान व्यक्तियों ने भी कहा है कि सच्ची खुशी केवल अपने लिए जीने में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में खुशियां बांटने में है।
0: और कभी कभी हमारी छोटी सी सहायता किसी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी राहत बन सकती है। इसीलिए दोस्तों, हमें कभी भी अगर मौका मिले तो हमें किसी की भी बिना पूछे या सहायता करनी चाहिए। ऐसे झिझकना नहीं चाहिए कि मुझे हेल्प करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको अगर कहीं भी ऐसा दिखता है तो आपको हर किसी की हेल्प करना चाहिए।
1: बिल्कुल, चाहे वो विद्यालय हो, घर हो या रास्ता, हर जगह हम मदद का हाथ बढ़ा सकते हैं ना चेष्टा।
0: बिल्कुल, तो दोस्तों आइए आज हम सभी ये संकल्प लें कि जहाँ भी संभव हो हर जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे और समाज

0: को थोड़ा और बेहतर बनाने में अपना योगदान देंगे। जी दोस्तों,
1: याद रखिए, किसी की मदद करने में केवल कुछ पल लगते हैं, लेकिन उससे मिलने वाली खुशी और संतोष लंबे समय तक हमारे साथ रहते हैं।
0: तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: दोस्तों, अब आप सुनेंगे कॉलेज पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली पर उप कुल सचिव कोटा विश्वविद्यालय डॉक्टर जोली भंडारी से भेंट वार्ता।
2: युवा साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और युवाणी कार्यक्रम में आपका मनोरंजन तो होता ही है, लेकिन साथ में पढ़ाई लिखाई की बात, आपका करियर बनाने की बात भी करते हैं। और आपके करियर बनाने में जब कहीं आपको कोई समस्या आती है तो उसका भी समाधान होता है चंबल चैनल के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है युववाणी। हमारे साथ हैं उप कुल सचिव कोटा विश्वविद्यालय से डॉक्टर जॉली भंडारी जी। आपसे हम नई शिक्षा नीति में जो परेशानियां आप युवा साथियों को आ रही है उसके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो आप राजेश महावर का नमस्कार स्वीकार कीजिए और मिलवाते हैं आपको हमारी आज की अतिथि डॉक्टर जॉली भंडारी से। डॉक्टर साहिबा बहुत नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं।
3: बहुत नमस्कार
2: जी। आप उप कुल सचिव हैं कोटा विश्वविद्यालय में
3: जी।
2: और पढ़ाई इस तरह से होती है, हम उसी कदम पर आगे बढ़ते हैं। अब परिवर्तन जरा ज्यादा हो गया, इसमें आने वाली जो तकलीफें हैं, हम चाहते हैं कि हमारे युवा साथियों को पढ़ाई की इस नई शिक्षा नीति के बारे में आप बताएं। क्योंकि पुरानी जो शिक्षा नीति हुआ करती थी वो ये थी कि उसमें पढ़ाई की, हर साल एग्जाम दिया, लेकिन अब एग्जाम की भी संख्या बढ़ गई है। ऐसे में जब हम परीक्षाएं देते हैं तब ये लगता है कि ओहो, परीक्षा देना जरा कठिन काम होता है, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। अब ऐसा लगेगा युवाओं को कि दो दो बार पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन इसके पीछे दरअसल क्या मंतव्य रहा है उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। पहले आप अपना जो परिचय है हमारे युवा श्रोताओं को कृपया दें।
3: मैं डॉक्टर जॉली भंडारी, कोटा विश्वविद्यालय में उप कुल सचिव पद पर मैं पदस्थापित हूँ और वहां पर मैं यही पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली, किस तरह से स्कीम वगैरह जो है एग्जाम की, ये हम लोग तैयार करते हैं, तैयार करवाते हैं। और अभी भारत सरकार ने ये नई शिक्षा नीति लागू करी और उसके बाद में विश्वविद्यालय के पास में भी चैलेंजेस थे कि इतना वास्ट चेंजेस जो थे वो हम विश्वविद्यालय में किस तरह से लागू करें। पर चूंकि एनकेन प्रक्रियन विश्वविद्यालय जो है छात्र हित के लिए है, छात्रों के लिए है, और इसमें छात्रों को क्या बेनिफिट है पहले हम लोगों ने यह जाना और उसके पश्चात ही हम लोगों ने ये इम्प्लीमेंट हमने कोशिश की
2: जी।
3: पर ये अब नई शिक्षा नीति क्या सबसे मेन चीज है इसमें, सेमेस्टर प्रणाली
2: जी,
3: यानी स्नातक स्तर पर, स्नातकोत्तर स्तर पर सभी में जो है हमें ये सेमेस्टर प्रणाली हमें लागू करनी पड़ी और इसके तहत क्या हुआ, साल में दो बार एग्जाम होने लगे। अब

0: विद्यार्थियों को यही है कि पहले हम साल में एक बार एग्जाम देते थे, एक बार ही पढ़ाई करते थे और हमारे अच्छे नंबर आ जाते थे, अब ये साल में दो बार। पर इसमें है तो विद्यार्थी का ही फायदा है, आप एक पूरा इतना वास्ट सिलेबस साल में एक बार में पढ़ते हो और आप एग्जाम दे लेते हो। अब वही सिलेबस को हमने दो बार दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है
1: जी।
0: क्योंकि साल भर का जो सिलेबस है वो अब आपको 6-6 महीने सेमेस्टर में देने हैं, तो इससे क्या हो रहा है, आपके पास पढ़ने का वर्कलोड कम हो गया है, यानी कि जो पाठ्यक्रम जो सामग्री है वो आपकी आधी हो गई है एग्जाम में, आप उसको अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, उसको आप अच्छे से समझ पा रहे हैं और उसके अनुसार ही आप एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, एग्जाम दे पा रहे हैं। एक साथ इतना सारा वास्ट सिलेबस उसको हमने दो बार दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है ताकि वो एग्जाम दे सके। दूसरा ये है कि वो अब जो भी टॉपिक पढ़ेगा उसको वो डिटेल स्टडी करेगा, अच्छे से जानेगा क्या है, क्योंकि उसको अच्छी परसेंटेज बनानी है। और सिर्फ हम हमारा विश्वविद्यालय का जो ये ध्यान ये नहीं है कि सिर्फ परसेंटेज बनाया जाए, अच्छे अंक मिले, उसे आगे जाकर अन्य विश्वविद्यालयों से कॉम्पीट करना है। मान लीजिए उसने स्नातक जो है हमारे विश्वविद्यालय से कर दिया, अब उसे आगे के कोर्स के लिए दूसरे विश्वविद्यालय में जाना है, तो वहां पर वो कैसे कॉम्पीट करे। तो विद्यार्थियों के हित के लिए है ये, फायदा ये है कि आपने एग्जाम दिया, अभी तक जो आपका एनुअल स्कीम में जो एग्जाम होता था उसमें आपकी सप्लीमेंट्री आती थी या आप फेल हो जाते थे
1: जी।
0: इसमें फेल नहीं होगा बच्चा।
1: जी।
0: इसमें क्या है, ड्यू पेपर, यानी बच्चे ने अगर एक सेमेस्टर में एक पेपर में बैक आ गई, दो पेपर में बैक आ गई, वो अगले सेमेस्टर के साथ भी ये ड्यू पेपर दे लेगा
1: जी। कितने पेपर्स में अगर बैक आती है
0: वो मार्क्स या टोटल पर डिपेंड करता है उस चीज पर, अगर वो दो या तीन पेपर पर बैक आ गई उसके, तो वो नेक्स्ट सेमेस्टर में जाकर अब उन पेपर्स को क्लियर कर देता है। ऐसा नहीं कि उसे फेल कर दिया जाएगा या उसको सप्लीमेंट्री दे दी जाएगी
1: जी।
0: तो ये बच्चों के हित के लिए है, उनका साल नहीं बिगड़ेगा और वो तीन साल में ही ये पूरे 6 सेमेस्टर, अगर स्नातक लेवल की बात करें, स्नातकोत्तर लेवल की बात करें, तो 4 सेमेस्टर में वो अपनी डिग्री हासिल कर सकता है
1: जी। अर्धवार्षिक का अपना एक हिस्सा होता था पढ़ाई का और वार्षिक में पूरा उन्हें पढ़ना पड़ता था। यहाँ पर किस तरह से जब सेमेस्टर की हम बात करते हैं और फर्स्ट सेमेस्टर जब हो जाता है, उसके बाद जब सेकेंड सेमेस्टर होता है, तब उसमें क्या पढ़ाई के जो हिस्से होते हैं वो अलग अलग है?
0: आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम दे दिया फर्स्ट, वो पाठ्यक्रम सेकंड सेमेस्टर में बिल्कुल नहीं आएगा, आएगा तो उसके आगे का है।
1: पोर्शन डिफरेंट है,
0: पोर्शन बिल्कुल डिफरेंट है, सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट बना हुआ है। जैसे स्कूल में तो बच्चे ने हाफ ईयरली एग्जाम दिया और वही कंटेंट उसको एनुअल में दोबारा रिवाइज करना पड़ता था क्योंकि एग्जाम में आ सकता था
1: जी।
0: यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे तभी आगे के सेमेस्टर उसको समझ में आएंगे
1: जी। कुछ एक बात और होती है कि एक तो मार्क्स ओरिएंटेड स्टडी होती है, एक नॉलेज ओरिएंटेड स्टडी होती है। ये जो नई शिक्षा नीति है इसमें जो विद्यार्थी हैं उन्हें नॉलेज भी ग्रहण करने का अवसर मिलेगा, आप क्या कहते हैं?
0: नई शिक्षा नीति में एक बहुत अच्छी बात है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी जी का भी ये है मंतव्य कि स्किल बेस्ड पाठ्यक्रम हो। स्किल बेस्ड यानी कि कौशल विकास
1: जी।
0: कि आजकल जॉब की अपॉर्चुनिटीज कम है तो बच्चा खुद अपना स्किल पूरा सीख कर उसमें व्यवसायिक स्तर पर कौशल का विकास करके अपना खुद का व्यवसाय खोले।
1: खुद का व्यवसाय के लिए नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: बिल्कुल
1: जी।
0: तो इसके लिए आप देखिए स्नातक लेवल पर हमारे 3 साल का कोर्स होता है, तो हमारा 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर में हमारा तो मूल्य प्रवाह यानी वैल्यू एडेड कि किस तरह से आंतरिक जो हमारे जीवन के जो मूल्य हैं बच्चे को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए, और 6th सेमेस्टर में जो है वो हमारा स्किल डेवलपमेंट स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है। इसमें हर महाविद्यालय के पास में अलग अलग पाठ्यक्रम होंगे और बच्चे को जो है विद्यार्थी को जो है वो अपने हिसाब से उसमें चॉइस भरनी है। 2 क्रेडिट का कोर्स जो है कौशल विकास का उनको करना अनिवार्य होगा
1: जी। अब आपने ये बताया कि बच्चा इसमें फेल नहीं होगा, वो आगे वाले सेमेस्टर में पिछले वाले जो बैक मिलती है उस सेमेस्टर में वो अपीयर हो सकता है। अब इसमें ये भी है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्हें किसी वजह से अपनी पढ़ाई को ड्रॉप कर देना पड़ता है, ऐसे में अगर उन्हें गैप लेना हो तो ये किस तरह से प्रभावशाली रहेंगे?
0: देखिए ये बहुत ही अच्छी बात है नई शिक्षा नीति में कि मान लीजिए बच्चे ने एडमिशन लिया, विद्यार्थी ने ग्रेजुएशन कर रहा है वो स्नातक लेवल पर, फर्स्ट ईयर में उसने पढ़ाई कर ली पूरी, दोनों सेमेस्टर एग्जाम दे लिए, इस बीच में अगर वो छात्रा है और उसकी मैरिज हो जाती है तो वो चली गई, अब उसका 3-4 साल बाद है ना उसका मूड बनता है कि मुझे तो अपनी ये डिग्री वापस करनी है,
1: पूरी करनी है
0: तो जो 1 साल गया दोनों सेमेस्टर दिए, चाहे छात्र हो या छात्रा हो, उनका वो एक साल वेस्ट नहीं जाएगा, उसके लिए उनको सर्टिफिकेट

0: जाएगा। स्नातक लेवल पर अगर उन्होंने दो ईयर यानी चार सेमेस्टर पूरे किए तो उनको डिप्लोमा मिलेगा
1: जी।
0: और तीन साल पूरे कर लिए यानी छह सेमेस्टर दे दिए तो उनको डिग्री मिलेगी। तो एक साल करते हैं तो सर्टिफिकेट, दो साल करते हैं तो डिप्लोमा, और पूरा तीन साल करते हैं तो डिग्री। अब ये सर्टिफिकेट और ये डिप्लोमा यानी कि अगर बच्चा चार साल बाद दोबारा से अध्ययन करना चाहता है तो उसे वापस से फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ना पड़ेगा
1: जी।
0: उसके वो मार्क्स जो हैं, क्रेडिट नंबर जो हैं, वो सेव्ड हो गए। अब उसे आगे के ही ईयर की उसको अध्ययन करना होगा
1: जी। आपने चार साल का जिक्र किया गैप का, ये गैप कितना हो सकता है?
0: ऐसा कुछ नहीं है इस पर,
1: इस गैप की कोई लिमिटेशंस नहीं है जी। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी इसी तरह से है?
0: बिल्कुल है, वहां पर भी ड्यू पेपर है या आपने इतना, लेकिन उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन में चार सेमेस्टर है
1: जी।
0: वहां पर एक बेनिफिट ये है, अगर विद्यार्थी ने तीन साल का स्नातक लेवल का किया, एक साल वो एक्सटेंड कर रहा है जो कि हम कहते हैं ऑनर्स की डिग्री जो होती है, अगर वो ऑनर्स करता है तो उसे पीजी का एक साल ही करना होगा, उसे दो साल नहीं करना पड़ेगा। अभी इस फील्ड पर विश्वविद्यालय कार्य कर रही है कि किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट करें। अभी विद्यार्थी जो है चूंकि उनका ये सिक्स सेमेस्टर है तो आगे उस समय वो क्या सुविधा ले सकते हैं इस एनईपी का, उस पर विश्वविद्यालय अभी तक कार्य कर रही है इस चीज के लिए।
1: श्रोताओं, डॉक्टर जॉली भंडारी नई शिक्षा नीति पर विशेष जानकारी दे रहे हैं। आप उप कुल सचिव कोटा विश्वविद्यालय से हैं और आशा करते हैं कि ये जो जानकारियां हैं आप सभी के लिए बहुत कारगर सिद्ध होंगी, इसलिए आप इसे और ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर साहिबा, एक और बात आपने बताया कि गैप लिया जा सकता है
0: जी।
1: बालिकाओं की बात की, अगर उन्हें विवाह के बाद स्थान परिवर्तन उनका हो जाता है तो ऐसे में जब हम कोटा यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, अगर बालिकाएं किसी और यूनिवर्सिटी चली जाती हैं तो?
0: देखिए, अभी विश्वविद्यालय इस फील्ड में भी काम कर रही है, उनका जो क्रेडिट स्कोर है वो एक डिजी लॉकर यानी एबीसी, हम क्रेडिट सिस्टम की हम बात करें जो कि एनईपी का एक मेन अध्याय है इसमें, कि बच्चे का क्रेडिट जो है वो सेव्ड रहेगा एक सेंट्रलाइज सिस्टम में
1: जी।
0: तो डिजी लॉकर जो है एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, उसमें विद्यार्थी के क्रेडिट जो है वहां पर सेव्ड होंगे और सारे विश्वविद्यालय के अलग अलग विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उनके सब जगह जो क्रेडिट है वो वहाँ डिजी लॉकर में सेव्ड होंगे,
1: वो कंसोलिडेट रहते हैं,
0: वो कंसोलिडेट रहेंगे
1: जी।
0: अगर एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय से वो स्विच करना चाहते हैं तो अभी इसी तहत हमारी आगे की कार्यवाही चल रही है, लेकिन जो बेसिक है यानी डिजी लॉकर और वहाँ क्रेडिट स्कोर सेव करना, ये विश्वविद्यालय ने प्रारंभ कर दिया
1: जी। डॉक्टर साहिबा, आपने ये बताया कि नई शिक्षा नीति किसी वजह से शुरू हुई है और ये विद्यार्थियों के भविष्य के निर्माण की एक नई नीति है, इसमें किस तरह की समस्याएं आपको लग रहा है कि विद्यार्थी महसूस कर रहे हैं?
0: देखिए, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में ही कहा था, परिवर्तन
1: जी जी,
0: तो इस परिवर्तन को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हम चाहते हैं हमारे विद्यार्थी दूसरे विश्वविद्यालयों से कॉम्पीट करें, आगे उनको वैश्विक स्तर पर अपना स्थान पाना है, तो इसके लिए उनको अपना नॉलेज तो बढ़ानी है, नॉलेज गेन करना ही है, साल में दो बार उनको अध्ययन करना ही है।
1: हम ये चाहते हैं कि आप जब स्टूडियो में हैं आकाशवाणी के, तो बच्चों को पढ़ाई के लिए भी आप जरा प्रेरित करें, क्योंकि पढ़ने से ही भविष्य का निर्माण होगा।
0: ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, सिर्फ पढ़ना ही नहीं, कौशल विकास यानी आप पहले जानिए कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। आप पढ़ रहे हैं, साल में दो बार एग्जाम देना है, दो बार पढ़ना है, लेकिन एक और चीज है, स्किल बेस्ड आपका जो अध्ययन है वो होना चाहिए कौशल विकास का। तो पहले आप जानिए आपके अंदर क्या टैलेंट है, क्या हॉबी है, उस चीज को ही आप स्किल बेस्ड में, जो हमारा दो क्रेडिट का कोर्स है जो अभी आपको सिक्स सेमेस्टर में पढ़ना ही पड़ेगा, स्नातक स्तर के सिक्स सेमेस्टर छठे सेमेस्टर में दो क्रेडिट का स्किल बेस्ड कोर्स हर विद्यार्थी को पढ़ना अनिवार्य है, चाहे वो स्वयं पाठी हो चाहे वो नियमित विद्यार्थी हो। तो वो स्किल बेस्ड कोर्स आपको बहुत लिस्ट, आपको जब आप फॉर्म भरेंगे आपको कोर्सेज की लिस्ट मिलेगी वहां पर दो क्रेडिट की, ये स्किल बेस्ड में, तो इसमें आप देखिएगा कि आपका किसमें इंटरेस्ट है, क्या आपका टैलेंट है, आप उसको पढ़ेंगे तो उससे आपको एक नई दिशा मिलेगी कि नहीं मुझे इस फील्ड पर ही आगे जाना है
1: जी।
0: तो आप इसका विशेष ध्यान रखिएगा और देखिए इस परिवर्तन को तो आपको अपने जीवन में एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप, हम चाहते हैं आप बहुत आगे बढ़े, अन्य विश्वविद्यालयों के जो विद्यार्थी हैं उनको कॉम्पीट करें और एक बहुत नया मुकाम आप हासिल करें
1: जी। और अब संकायों की बात करें, विज्ञान वाणिज्य या फिर कला संकाय, उनके लिए इसमें किस तरह का परिवर्तन है या समान रूप से?
0: देखिए, सभी के लिए समान रूप से है। हाँ, जो प्रायोग

0: जैविक विषय है उस पे हम लोगों ने इंटरनल असेसमेंट जरूर किया हुआ है कि जैसे 30% इंटरनल असेसमेंट हो गया, 70% का आपका थ्योरी पेपर हो गया है प्रैक्टिकल के लिए, तो वो जो नियमित विद्यार्थी हैं उनको ये वाली चीज करनी पड़ेगी। वो उनके सिलेबस में जो है बाइफर्केशन, प्रैक्टिकल का क्या कंटेंट है, थ्योरी का क्या कंटेंट है, वो सिलेबस में दिया हुआ है। कोटा विश्वविद्यालय की जो साइट है uok.ac.in, उसमें स्टूडेंट्स कॉर्नर में आप जाएंगे तो वहां सिलेबस का टैब है, आप उस सिलेबस के टैब को खोलिए और उसमें आपको हर क्लास वाइज जो है आपको सिलेबस मिलेगा।
1: जी, आपने बताया कि अपने अपने रुचि के अनुसार विषय लें, और भी कोई ऐसी बातें हैं जो इस नई शिक्षा नीति में असर करती हैं कि किस तरह से विषयों का चयन करें?
0: जी बिल्कुल है, जैसे कि ये मैंने स्नातक लेवल पर 6 सेमेस्टर का बताया था, ऐसे स्नातकोत्तर में हम जाएं तो हमने वेबसाइट में वही सिलेबस में पूल ए और पूल बी करके कोर्सेज हैं, वो भी स्किल बेस्ड है। कहने का मतलब है अगर साइंस स्टूडेंट है और वो चाहता है मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट है, मुझे म्यूजिक का कोर्स पढ़ना है, तो वो म्यूजिक उस पूल में से म्यूजिक का कोर्स अडॉप्ट कर सकता है, ले सकता है, 2 क्रेडिट का होता है और वो पढ़ सकता है। यहाँ पर इस एनईपी में और विश्वविद्यालय ने भी उसको अडॉप्ट किया है कि कोई साइंस बच्चा आर्ट्स का कोर्स लेना चाहता है, कॉमर्स का बच्चा साइंस का कोई कोर्स पढ़ना चाहता है कि नहीं मुझे तो पॉल्यूशन की चीजों को जानना है, कैसे हम कंट्रोल करें, तो वो कॉमर्स का बच्चा उसको जान सकता है। यानी एक मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया है। मुझे पॉटरी में इंटरेस्ट है, मेरी हॉबी है और मैं पढ़ते पढ़ते वो हॉबी को भी पूरा करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ नहीं बढ़ सकता, या मैं उस पर कोई अपना व्यवसाय शुरू कर सकता हूँ क्या, तो वो 2 क्रेडिट का वो चुनकर और पढ़ सकता है और देख सकता है, अपना आकलन कर सकता है।
1: क्या बात है, नई शिक्षा नीति की ये विशेष बातें आपने बताई और ऐसा लगता नहीं कि विद्यार्थियों को यहाँ परेशान होना होगा, लेकिन फिर भी चलते चलते आप अपने श्रोताओं को, युवा श्रोताओं को कुछ सलाह देना चाहें?
0: मैं विद्यार्थियों को यही सलाह देना चाहूंगी कि देखिए ये आपका बहुत महत्वपूर्ण समय है
1: जी,
0: तो इसको आप बिल्कुल भी नहीं गंवाएं। किस तरह से आपको पढ़ना है, आप अपना सिलेबस लें, आप अपने सिलेबस के आधार पर कंटेंट लें, और जो भी आपके टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, सब बहुत क्वालिफाइड होते हैं कॉलेजेस में, विश्वविद्यालय में, आप उनके पास जाएं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। आपको घर बैठे अध्ययन करना बहुत मुश्किल होता है, आप अगर वहां कॉलेज में जाकर अध्ययन करेंगे तो आपकी दुविधाएं अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगी, आप नियमित रूप से महाविद्यालय जाएं, नियमित रूप से अगर आप विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं तो आप विश्वविद्यालय में जाएं, वहां पर आप पढ़ें, और अपने जो आपकी फैकल्टीज हैं उनसे आप जानें, उनकी क्लास को अटेंड करें, फिर आपके लिए बिल्कुल भी एक बर्डन नहीं होगा। और आप देखिएगा कि ये एनुअल प्रणाली जो थी हमारी एग्जाम की, जो अध्ययन की, उससे कहीं बेहतर और आप लोगों के हित के लिए ही है, आपको पता लगेगा।
1: जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी डॉक्टर जॉली भंडारी जी कि नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों के हित के लिए ही है।
0: बिल्कुल,
1: इस नई जानकारी का जो अनुभव है आपने युवा श्रोताओं के साथ साझा किया, आपका आकाशवाणी स्टूडियो आने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
0: मुझे ये मौका मिला कि हमारे युवा साथियों को, हमारे विद्यार्थियों के विकास के लिए मेरा कुछ योगदान यहाँ पर आकाशवाणी के माध्यम से हो पाया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी, तो युवा श्रोताओं, महसूस किया आपने कि पढ़ाई लिखाई के बारे में भी चंबल चैनल आपका सहयोगी है, तो अब दीजिए राजेश महावर को भी अनुमति, लेकिन सुनते रहिए कार्यक्रम युववाणी। नमस्कार
2: दोस्तों, अभी आपने सुनी कॉलेज पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली पर उप कुल सचिव कोटा विश्वविद्यालय डॉक्टर जॉली भंडारी से भेंट वार्ता। बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका युवाणी में। मैं हूँ आपके साथ खुशी
1: और मैं हूँ चेष्टा। दोस्तों, राजस्थान अपनी समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर और अद्भुत स्थापत्य कला के लिए पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध है।
0: और आज हम आपको राजस्थान के जैसलमेर शहर की एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर के बारे में बताएंगे जो अपनी भव्यता और सुंदरता के कारण हर किसी को आकर्षित करती है, और ये धरोहर है पटवों की हवेली।
1: जैसलमेर को स्वर्ण नगरी भी यानी कि गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, और यहाँ की पीले पत्थरों से बनी इमारतें सूर्य की रोशनी में सोने की तरह चमकती है, और इन्हीं शानदार इमारतों में पटवों की हवेली का नाम सबसे प्रमुख है। और दोस्तों, एक बात और बताऊं कि पटवों की हवेली केवल एक हवेली ही नहीं बल्कि पांच भव्य हवेलियों का समूह है, जिन्हें एक धनी व्यापारी गुमान चंद पटवा ने अपने पांच पुत्रों के लिए बनवाया था।
0: दोस्तों, गुमान चंद पटवा उस समय के प्रसिद्ध व्यापारी थे। उनकी समृद्धि और कला सबसे सुंदर उदाहरण जो है वो पटवों की हवेली है।
1: और दोस्तों, इस हवेली का निर्माण लगभग 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में शुरू हुआ था। इसे पूरा बनने में कई वर्षों का समय लगा, और इस समय उपलब्ध संसाधनों और तकनीकों के बावजूद इतनी भव्य इमारत का निर्माण वास्तव में एक आश्चर्यजनक चीज है।
0: बिल्कुल चेष्टा, जब कोई पर्यटक पहली बार इस हवेली को देखता है ना, तो उसकी नजर इसकी सुंदर नक्काशी पर टिक जाती है। हवेली की दीवारों, खिड़कियों और झरोखों पर की गई बारीक कारीगरी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है।
1: और पटवों की हवेली की वास्तुकला में राजस्थानी और मुगल शैली का सुंदर मिश्रण दिखाई देता है।
0: यहाँ के झरोखे विशेष रूप से प्रसिद्ध है। पुराने समय में महिलाएं इन झरोखों से बाहर के दृश्य देखा करती थी, जबकि बाहर के जो लोग हैं वो उन्हें देख नहीं पाते थे।
1: बिल्कुल। और दोस्तों, आज पटवों की हवेली केवल एक ऐतिहासिक इमारत ही नहीं बल्कि राजस्थान की कला, संस्कृति और इतिहास की एक जीवंत पहचान बन चुकी है।
0: दोस्तों, हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हमें अपने गौरवशाली अतीत से जोड़ती हैं। वे हमें ये समझने का अवसर देती हैं कि हमारे पूर्वज कला और स्थापत्य के क्षेत्र में कितने उन्नत थे।
1: बिल्कुल खुशी, और आज अगर जरूरत है तो वो इस चीज की है कि हम ऐसी इतिहास के से जुड़ी जो धरोहर है, हमारी ऐतिहासिक धरोहर का सम्मान करें और उनके संरक्षण में अपना योगदान दें, क्योंकि यदि हम आज अपने विरासत को सुरक्षित रखेंगे तभी आने वाली पीढ़ियां इसे देख सकेगी।
0: बिल्कुल चेष्टा, क्योंकि इतिहास केवल किताबों में नहीं मिलता बल्कि ऐसी ऐतिहासिक इमारतों में भी जीवित रूप से दिखाई देता है।
1: बिल्कुल। और दोस्तों, यदि आपको कभी जैसलमेर जाने का अवसर मिले तो पटवों की हवेली को अवश्य देखकर आएं।
0: दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और सुनाते हैं आपको एक और प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवाणी, जहां मैं हूं आपके साथ खुशी
1: और मैं हूं चेष्टा।
0: दोस्तों अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले सेगमेंट नॉलेज कॉर्नर की ओर और आज हम हमारे सेगमेंट नॉलेज कॉर्नर में बात करेंगे एक ऐसे महान हस्ती के बारे में जिन्होंने शिक्षा, न्याय, राजनीति और समाज सुधार के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। उनका नाम है हरविलास शारदा जी।
1: दोस्तों हरविलास शारदा जी का जन्म 3 जून 1867 को अजमेर में हुआ था। बचपन से ही उन्हें पढ़ने लिखने और सामाजिक विषयों के विशेष में बहुत ज्यादा रुचि थी। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और बाद में वो शिक्षक के रूप में अपना कार्य उन्होंने प्रारंभ किया था।
0: बिल्कुल, शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के कारण उन्हें एक उत्कृष्ट शिक्षाविद माना जाता है। उनका विश्वास था कि समाज की उन्नति का आधार शिक्षा है। उन्होंने युवाओं को शिक्षित और जागरूक बनाने के लिए निरंतर कार्य किया।
1: इसके बाद उन्होंने न्यायिक सेवा में प्रवेश किया और विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। अपनी ईमानदारी, निष्पक्षता और न्यायप्रियता के कारण वो एक सम्मानित न्यायाधीश बने।
0: दोस्तों लेकिन हरविलास शारदा जी केवल न्यायाधीश ही नहीं थे, वे एक सक्रिय राजनेता भी थे। वे केंद्रीय विधानसभा के सदस्य चुने गए और जनता के हितों से जुड़े अनेक मुद्दों को प्रभावशाली ढंग से उठाया।
1: और समाज सुधार के क्षेत्र में उनका सबसे बड़ा योगदान बाल विवाह जैसी कुरीति के विरोध संघर्ष था। उस समय समाज में कम उम्र में विवाह की प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलित थी, जिससे बच्चों का भविष्य बहुत प्रभावित होता था।
0: इसी समस्या को समाप्त करने के लिए उन्होंने एक महत्वपूर्ण कानून प्रस्तुत किया, जिसे बाद में शारदा अधिनियम, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 के नाम से जाना गया। इस कानून ने बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम रखा।
1: यही कारण है दोस्तों कि हरविलास शारदा जी को भारत के प्रमुख समाज सुधारकों में गिना जाता है। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक समानता के लिए भी आवाज उठाई थी।
0: दोस्तों साथ ही वे एक अच्छे लेखक और इतिहासकार भी थे। उन्होंने राजस्थान और भारत के इतिहास से संबंधित कई पुस्तकें लिखी, जिनसे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती रही है।
1: और दोस्तों हरविलास शारदा जी के जीवन से हमें ये सीखने को मिलता है कि यदि व्यक्ति में दृढ़ संकल्प और समाज के प्रति समर्पण हो तो वो

0: सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है।
1: शिक्षा, न्याय, राजनीति और समाज सुधार, हर क्षेत्र में शारदा जी का योगदान प्रेरणादायक है। हमें उनके आदर्शों को अपनाकर एक जागरूक और प्रगतिशील समाज के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए।

0: दोस्तों, अब हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के एक ऐसे महान साहित्यकार की जिन्होंने हिंदी भाषा और पत्रकारिता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बालकृष्ण भट्ट जी की।
1: बिल्कुल दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 3 जून 1844 को प्रयागराज में हुआ था। ये हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख हस्ती में से एक माने जाते हैं। इन्होंने अपने लेखन के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य किया था।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने चेष्टा। उस समय हिंदी भाषा को स्थापित करने और उसे सम्मान दिलाने के लिए अनेक साहित्यकार प्रयास कर रहे थे। बालकृष्ण भट्ट भी उन्हीं में से एक थे। वे सरल, प्रभावशाली और जन सामान्य की भाषा में लिखते थे, जिससे उनके विचार लोगों तक आसानी से पहुंचते थे।
1: दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट जी का नाम हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में भी बड़े सम्मान से लिया जाता है। इन्होंने प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका हिंदी प्रदीप का संपादन किया था। ये पत्रिका उस समय हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार प्रसार के एक महत्वपूर्ण माध्यम मानी जाती है।
0: जी हाँ दोस्तों, हिंदी प्रदीप के माध्यम से उन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय विषय पर लेख प्रकाशित किए। उनकी लेखनी में समाज सुधार और जन जागरण की भावना स्पष्ट दिखाई देती थी।
1: और दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट केवल पत्रकार ही नहीं थे, बल्कि एक कुशल निबंधकार भी थे। उन्होंने उनके निबंधों में एक गंभीर विषयों को भी सरल और रोचक दंड से प्रस्तुत किया था। उन्होंने समाज की कुरीतियां और अंधविश्वासों पर भी प्रहार किया था।
0: दोस्तों, उनकी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो सहज और स्वाभाविक थी। उन्होंने हिंदी गद्य को नई दिशा देने का कार्य किया, इसलिए उन्हें इस आधुनिक हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण निर्माताओं में से गिना जाता है।
1: इसी के साथ बालकृष्ण भट्ट जी का संबंध उस युग से था जिसे हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग कहा जाता था। इस युग में हिंदी भाषा, साहित्य और पत्रकारिता के विकास को नई गति मिली थी।
0: उन्होंने अपने लेखों और निबंधों के माध्यम से देशभक्ति, सामाजिक चेतना और नैतिक मूल्यों का संदेश दिया। उनका मानना था कि शिक्षा और साहित्य समाज के विकास के सबसे बड़े साधन हैं।
1: दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट जी के जीवन से हमें ये सीखने को मिलता है कि कलम में समाज को बदलने की अपार शक्ति होती है। यदि लेखन का उद्देश्य जन कल्याण हो तो वो लोगों के विचारों और जीवन दोनों को बहुत प्रभावित कर सकता है।
0: दोस्तों, आज भी उनके साहित्यिक और पत्रकारिता संबंधी योगदान को याद किया जाता है। हिंदी भाषा के विकास में उनकी भूमिका सदैव प्रेरणादायक रहेगी।

0: दोस्तों, पता ही नहीं चला कब 5 से 6 बज गई और अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का। तो दीजिए इजाजत अपनी दो रेडियो दोस्तों, मैं चेष्टा गौतम
1: और मैं खुशी।
0: नमस्कार।

अभी हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवानी FM 102 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। थोड़ी देर में हमारे श्रोता आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर दी एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बैनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथेन्द्र बोस को सौंपा गया है। इसमें ऋतव्रत बैनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है।

0: भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की भारतीय जोड़ी ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 6:05 हो रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब सुनते हैं फिल्म संगीत। आइए फिल्म संगीत का पहला नगमा श्रेया घोषाल की आवाज में सुनते हैं। फिल्म जब वी मेट मूवी से शब्द इरशाद कामिल के और संगीत प्रीतम का।

फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं आप श्रोताओं, सुरभि मेहता की आवाज अब तक पहुंच रही है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब सुनते हैं दलेर मेहंदी ऋचा शर्मा की आवाज में एक्शन रिप्ले का ये गाना, जिसमें शब्द है इरशाद कामिल के और संगीत दिया है प्रीतम ने।

0: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए। ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं चौपाल संबंधी कार्यक्रम सूचना। प्रिय श्रोताओं, आज दिनांक 3 जून 2026 को शाम 7 बजे से 7:30 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय होगा पशु स्वास्थ्य जांच हेतु सुविधाएं, जिसमें विशेषज्ञ होंगे डॉ. चंद्र प्रकाश मीणा, सहायक निदेशक क्षेत्रीय पशु रोग निदान केंद्र मोखापाड़ा कोटा। आप इस सजीव फोन इन कार्यक्रम में प्रसारण के दौरान विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर आप नोट कर सकते हैं 0744-294-1142। फिर से सुन लीजिए 0744-294-1142। प्रसारण समय आज बुधवार शाम 7 बजे से 7:30 बजे तक। यहां सूचना समाप्त होती है।

जावेद अली की आवाज में अभी आपने सुना दबंग 3 से खूबसूरत सा नगमा, जिसे लिखा था दनीश साबरी ने और संगीत दिया था साजिद वाजिद ने। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का अगला नगमा। शान महालक्ष्मी अय्यर साथियों की आवाज, शब्द जावेद के और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

rock and roll to the beat of the dough. Come on, shake your body, rock and roll. Rock and roll to the beat of the dough. Honey, honey, honey, honey, honey, man, it's on the road. श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत. ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है. श्रोताओं, थोड़ी देर में आप जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे. कृपया प्रतीक्षा करें.

0: आकाशवाणी का ये जयपुर अजमेर केंद्र है। अब से थोड़ी देर में श्रोता सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद जिले की चिट्ठी और उसके बाद राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और, आपका डीडी फ्री डिश।

0: अदबी दुनिया की अजीम शख्सियात और उनके कारनामों से आपको रूशनास कराना, हल्काए इल्म अदब की सरगर्मियों से हर वक्त बाखबर करना, मुशायरों के जरिए शोराए कराम के फिक्र फन की बुलंदियों को छूना।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेल कंपनियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की एक मुश्त बजटीय सहायता मंजूर की। भारत सौर ऊर्जा क्षमता में 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कल केरलम में प्रवेश के आसार, 15-20 दिनों में देश के विभिन्न स्थानों तक पहुंचने की संभावना। और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया की साइकिल को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील, इसे स्वस्थ सक्रिय और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली का प्रतीक बताया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर हवाई यात्रा को महंगी होने से बचाने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष एटीएफ को मंजूरी दे दी है। विमान ईंधन की कीमतों में आए भारी उछाल से इस क्षेत्र को बचाने के लिए ये फंड बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य संकट के समय उचित कीमत पर ईंधन की आपूर्ति करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इससे कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से विमानन क्षेत्र से जुड़े 77 लाख रोजगार सुरक्षित रहेंगे।
2: आज की जो वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण एटीएफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल उसका जो प्राइस बढ़ा है और उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है एविएशन सेक्टर पे, उसको मिटिगेट करने के लिए 10,000 करोड़ रुपीस का एक एटीएफ प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड क्रिएट किया गया।
3: फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। एटीएफ प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल एटीएफ प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
1: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को आधुनिक वाहनों में बदलने की योजना को भी मंजूरी दी है। ये योजना दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सहयोग से लागू की जाएगी। श्री वैष्णव ने कहा कि इससे प्रदूषण कम करने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली के मालवीय नगर में आज एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। वहीं घटना में 40 लोगों को सुरक्षित निकाला गया और इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि प्रभावितों को हर संभव सहायता दी जा रही है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की गई है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगजनी की इस घटना को बेहद दुखद बताया है। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। देश में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और परियोजनाओं को सशक्त करने के लिए आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन रखा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है, इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी भी कई जनजातीय वर्गों को सरकार की योजनाओं की जानकारी नहीं है। देश के हर गांव और हर व्यक्ति तक विकास पहुंचने के लिए जागरूकता जरूरी है। श्रीमती मुर्मू ने सभी एजेंसियों और हितधारकों से जनजातीय कल्याण से जुड़े हर बिंदु पर ध्यान देने को कहा।
4: आप सबको इस बात पर ध्यान केंद्रित करना है कि हर प्रोजेक्ट की फाइल और डॉक्यूमेंट का उद्देश्य

0: किसी मनुष्यों के सहायता करना है। सभी एजेंसीज और प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों को ये सोचना है कि प्रत्येक गर्भवती माँ को पर्याप्त पोषण मिले, प्रत्येक जनजातीय बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा मिले, प्रत्येक जनजातीय युवा को गरिमापूर्ण आजीविका प्राप्त हो और प्रत्येक जनजातीय परिवार कल्याण तथा विकास के कार्यक्रम से लाभान्वित हो।
1: भारत सौर ऊर्जा क्षमता में बढ़ोतरी कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बन गया है। देश ने सौर ऊर्जा क्षमता में 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत की स्थिति दुनिया भर में मजबूत हो रही है। श्री जोशी ने कहा कि देश में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन तेज गति से बढ़ रहा है, इससे ऊर्जा सुरक्षा सशक्त हो रही है। इधर राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के कोयला आधारित विद्युत गृहों ने 7171 मेगावाट बिजली उत्पादन कर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। प्रदेश की 7580 मेगावाट क्षमता की 23 इकाइयों ने कल ये उपलब्धि हासिल की। प्रदेश के 26 जिलों के दो ब्लॉक में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। 2027 तक प्रदेश के कृषि उपभोक्ताओं को दिन में बिजली देने की कवायद में अब चित्तौड़गढ़ और टोंक जिला भी शामिल हो गया है। ऊर्जा सचिव आरती डोगरा ने बताया कि वर्तमान में अजमेर डिस्कॉम के 13, जयपुर विद्युत वितरण निगम के 10 और जोधपुर निगम के 3 जिलों के दो ब्लॉक में दिन में बिजली मिल रही है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में तेज अंधड़, बरसात और ओलावृष्टि को लेकर चेतावनी जारी की है। 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज और 5 जिलों में येलो अलर्ट बताया गया है। साथ ही कई हिस्सों में तेज रफ्तार हवाएं भी चल सकती हैं। विभाग के अनुसार आंधी बारिश का ये सिलसिला 6 जून तक बना रह सकता है। इस दौरान हीट वेव से राहत का दौर बना रहेगा। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कल केरलम में प्रवेश के आसार हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि मॉनसून के अगले 15 से 20 दिनों में विभिन्न स्थानों पर पहुंचने की संभावना है।
2: वर्तमान में मानसून के केरल तट पर पहुंचने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। आगामी 24 घंटों में केरल में मानसून की दस्तक होने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई है। इसके अलावा लॉन्ग रेंज फोरकास्ट के अनुसार इस बार पूरे देश में सामान्य से 10% कम बारिश होने के लिए पूर्वानुमान जारी किया जा चुका है। वहीं राजस्थान के भी ज्यादातर भागों में इस वर्ष मानसून ऋतु के दौरान सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा मेघ गर्जन के साथ आंधी बारिश की गतिविधियां आगामी 4-5 दिन जारी रहने की संभावना है।
1: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज गृह विभाग की उच्च स्तरीय बैठक ली। मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस बैठक में श्री शर्मा ने पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग की ओर से अवैध मॉडिफिकेशन और काली फिल्म वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही नशे पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष निगरानी और सतर्कता बढ़ाने पर भी जोर दिया। राज्य सरकार सुशासन को मजबूत करने के लिए तकनीक और AI आधारित प्रणालियों के उपयोग पर जोर दे रही है। प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक केंद्रित बनाने में इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम IFMS 3.0 की अहम भूमिका है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर में आयोजित वेबिनार में वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाने की बात कही। उन्होंने साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि डिजिटल वित्तीय प्रणाली में डेटा सुरक्षा महत्वपूर्ण है, इसीलिए नियमित सुरक्षा ऑडिट के साथ ही साइबर खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। राज्य सरकार के एकीकृत डिजिटल प्रशासनिक प्लेटफॉर्म राजकाज ने प्रशासनिक कार्य प्रणाली को नई गति और दक्षता प्रदान की है। इससे शासन प्रक्रियाएं ज्यादा जवाबदेही और नागरिक केंद्रित हुई हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की ओर से विकसित इस प्लेटफॉर्म से 71 विभागों और 57,000 से अधिक कार्यालयों को जोड़ा जा चुका है। साथ ही राजकाज के जरिए अब तक 50 लाख से ज्यादा ई फाइलें सृजित की जा चुकी हैं।

0: विश्व साइकिल दिवस के मौके पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों से साइकिल को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने संदेश में श्री मांडविया ने कहा है कि साइकिल स्वस्थ, सक्रिय और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली की पहचान है, ये हमें फिट रखती है। उन्होंने कहा कि इसके इस्तेमाल से प्रदूषण में कमी आएगी, साथ ही पेट्रोल डीजल की भी बचत होगी। श्री मांडविया ने फिट इंडिया आंदोलन के तहत चलाए जा रहे संडे ऑन साइकिल अभियान से जुड़ने के लिए युवाओं की सराहना की।
1: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं, बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमें फिट रखती है, शरीर को ऊर्जावान बनाती है और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करती है। साइकिलिंग हमारी डेली हैबिट बननी चाहिए, क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है।
0: राज्य की ग्रामीण आबादी को अब घर बैठे बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी। सहकार से समृद्धि अभियान के तहत सहकारिता विभाग ने ये महत्वपूर्ण पहल की है। विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों, पैक्स और प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों के जरिए डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसके लिए नाबार्ड की सहायता से इन्हें माइक्रो एटीएम दिए जा रहे हैं। इससे खातों के बैलेंस, वित्तीय लेनदेन की जानकारी मिल सकेगी। वहीं समितियों के व्यवस्थापक ग्रामीणों के घर और कार्यस्थलों पर जाकर उनके खाते खोल सकेंगे और जमा संग्रहण भी कर सकेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेल कंपनियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की एक मुश्त बजटीय सहायता मंजूर की। भारत सौर ऊर्जा क्षमता में 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल केरलम में प्रवेश के आसार, 15 से 20 दिनों में देश के विभिन्न स्थानों तक पहुंचने की संभावना। और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया की साइकिल को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील, इसे स्वस्थ, सक्रिय और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली का प्रतीक बताया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सिद्धार्थ जैन से करौली जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका लेख बांके बिहारी शर्मा ने तैयार किया है। जिले में बीते महीने जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, रोजगार, स्वास्थ्य, कृषि, विधिक जागरूकता और जन कल्याण से जुड़े अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य सरकार द्वारा संचालित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 जिले की प्रमुख गतिविधियों का केंद्र रहा। अभियान का जिला स्तरीय शुभारंभ गंगा दशहरा के अवसर पर कैला देवी स्थित कालीसिल घाट से किया गया। इस अवसर पर जिला प्रभारी सचिव सहित जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, सामाजिक संगठन, विद्यार्थी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। सभी ने जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा का संकल्प लिया। अभियान के दौरान जिले भर में स्वच्छता, श्रमदान, पौधरोपण, जल स्रोतों की सफाई और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य अनुसूचित जाति वित्त और विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक ने कृषि विज्ञान केंद्र एकुरासी का निरीक्षण कर नवीन फार्म पौंड का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। उन्होंने किसानों से संवाद कर जल संरक्षण, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उनके करौली प्रवास के दौरान पर्यावरण चेतना, जन स्वास्थ्य और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साइकिल यात्रा भी आयोजित की गई। मई में पांचना बांध के पानी को गैर कमांड क्षेत्र की नहरों में छोड़ने का मुद्दा भी चर्चा में रहा। राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद सिंचाई विभाग द्वारा नहरों की सफाई का काम शुरू किया गया। कमांड क्षेत्र के किसानों ने पहले 39 गांवों तक सिंचाई जल पहुंचाने की मांग रखी, जबकि गैर कमांड क्षेत्र के किसान भी अपनी मांगों को लेकर सक्रिय रहे। प्रशासन पूरे घटनाक्रम की लगातार निगरानी करता रहा। कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग द्वारा जिला मुख्यालय स्थित डाइट परिसर में एक दिवसीय कैंपस प्लेसमेंट शिविर आयोजित किया गया। शिविर में लगभग 500 अभ्यर्थियों ने

0: लिया। इस दौरान निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों द्वारा 132 युवाओं का प्राथमिक चयन किया गया। शिविर में युवाओं को रोजगार, कौशल विकास और स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी दी गई। जिले में इन दिनों जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकान गणना का काम चल रहा है। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर प्रगणकों और पर्यवेक्षकों द्वारा किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया तथा गुणवत्तापूर्ण तथा त्रुटि रहित कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिले में राज्य सरकार का ग्राम रथ अभियान भी ग्रामीण क्षेत्रों में जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बना रहा। अभियान के माध्यम से किसानों और ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई, जिससे पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ मिलने के साथ उनकी आजीविका और जीवन स्तर में सकारात्मक सुधार देखने को मिला। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए करौली जिले ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस उपलब्धि पर नीति आयोग द्वारा जिले को 3 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। राशि के प्रभावी उपयोग और शिक्षा क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रताप सिंह मीणा ने जिला कारागृह तथा किशोर गृह का निरीक्षण किया। उन्होंने बंदियों एवं बालकों को उनके अधिकारों, निशुल्क विधिक सहायता योजनाओं तथा नालसा हेल्पलाइन की जानकारी प्रदान की। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले को तंबाकू मुक्त बनाने के उद्देश्य से तंबाकू नियंत्रण अभियान चलाया गया। सार्वजनिक स्थानों पर कार्रवाई के साथ साथ विद्यालयों और चिकित्सा संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। जनजाति गरिमा उत्सव के तहत जिले के चयनित ग्रामों में लाभार्थी सैचुरेशन शिविर आयोजित किए गए। शिविरों में विभिन्न विभागों द्वारा पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया तथा स्वास्थ्य परीक्षण जागरूकता गतिविधियां चलाई गई। करौली जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर रूपेश सिंझा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहले खास समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल तेल कंपनियां ने घरों और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान आसारों 10,000 करोड़ रुपया एक मुश्त बजटीय मदद मंजूर करी। भारत सौर ऊर्जा बूतामा 155 गीगावाट रो आंकड़ों पार करने दुनिया रो दूजो सबो मोटो बाजार बन्यो। दक्षिण पश्चिम मानसून रे काले केरलम माए आवण रा आसार। 15-20 दिन माए देशरा न्यारा न्यारा थोड़ा ताई पूगण री आस। और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया री साइकिल ने दैनिक जीवन रो हिस्सो बनावण री अरज। इनने स्वस्थ सक्रिय और पर्यावरण मुजब जीवन शैली रो प्रतीक बताया। समाचार रे साथ है मैं शंभु सिंह और अब समाचार विगतवार। केंद्र सरकार पश्चिम एशिया संकट ने ध्यान में रखता हवाई यात्रा ने महंगी होवणो बचावण सारो मूल्य स्थिरीकरण कोष ETF ने मंजूरी दे दी है। विमान ईंधन री कीमत में आया उछालू ई हल्का ने बचावण सारो ओ फंड बनायो जायला। इनरो मकसद आपदारी बगत वाजिब कीमत माथे ईंधन री सप्लाई करनो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री सदारत में आज भी कैबिनेट री मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसला माथे मोहर लागी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कैबिनेट रा फैसला री जानकारी देवता मीडिया ने बतायो के इनु कीपना ते बनाई राखण माए मदद मिलेला। वणा कयो के ई फैसलाऊ विमानन हल्काऊ जुड़िया 77 लाख रोजगार सुरक्षित वह सकेला।
2: आज की जो वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण ATF एविएशन टर्बाइन फ्यूल उसका जो प्राइस बढ़ा है और उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है एविएशन सेक्टर पे, उसको मिटिगेट करने के लिए 10,000 करोड़ रुपीस का एक ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड क्रिएट किया गया।
3: फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर

0: में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
1: मंत्रिमंडल दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी हल्का माए पुराना ट्रका और बसा ने आधुनिक वाहन माए बदलन री योजना ने मंजूरी दी है। आ योजना दिल्ली हरियाणा राजस्थान और उत्तर प्रदेश री मददू लागू करी जायला। श्री वैष्णव कहो के 2 साल री ई योजना रो मकसद प्रदूषण ने कम करने साफ परिवहन ने बढ़ावो देवनो है। नवी दिल्ली रा मालवीय नगर माए आज एक होटल माए आग लागण 21 लोगों री मौत हुएगी। वठे ही हादसा माए 40 लोगों ने हिफाजती बारे निकाली जा और इला सारू कनेरा अस्पताल माए भर्ती कराई जा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हादसा माथे गहरो दुख जतावता कहो के पीड़िता ने हर चाइज की मदद दी जावे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष मरण वाला रा परिवार ने 2-2 लाख रुपए री अनुग्रह रकम दी जायला। घायला ने 50,000 रुपए री मदद देवन रो ऐलान करी जो है। राज्यपाल हरिभा बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हादसा ने घनो दुखदायी बताया है, वरना हादसा में जान गवा देवन वाला रा परिवार जनारे प्रति गहरो शोक जतायो है। देश में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियां और परियोजनावां ने मजबूत करण सारो आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन वियो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इनरो उद्घाटन करियो। ई मौके राष्ट्रपति कहो के जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूपों घणो मजबूत है, इनने आगे बढ़ावण री कोशिश करी जावनी चाहिए। वणा कहो के अजे ही कई जनजातीय तबका ने सरकारी योजनावां री जानकारी नहीं है। देशरा हर गांव और हर मिनक ताई विकास पुगाउन सारू जाग जगावनो जरूरी है। श्रीमती मुर्मू सगली एजेंसियां और हितधारकाओं जनजातीय कल्याणों जुड़िया हर बिंदु माथे ध्यान देवण ने कहो।
2: आप सबको इस बात पर ध्यान केंद्रित करना है कि हर प्रोजेक्ट की फाइल और डॉक्यूमेंट का उद्देश्य किसी मनुष्यों के सहायता करना है। सभी एजेंसीज और प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों को ये सोचना है कि प्रत्येक गर्भवती माँ को पर्याप्त पोषण मिले, प्रत्येक जनजातीय बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा मिले, प्रत्येक जनजातीय युवा को गरिमापूर्ण आजीविका प्राप्त हो और प्रत्येक जनजातीय परिवार कल्याण तथा विकास के कार्यक्रम से लाभान्वित।
1: भारत सौर ऊर्जा भूतामाय बढ़वार करने दुनिया रो दूजो सब मोटो सौर ऊर्जा बाजार बन गयो है। देश सौर ऊर्जा भूतामाय 155 गीगावाट रो आंकड़ो पार कर लियो है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी कहो के रिन्यूएबल एनर्जी रा हल्का माय भारत रा हालात दुनिया भर माय मजबूत वैरिया है। श्री जोशी कहो के देश माय स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन तेज गतियों बदरियो है, इनो ऊर्जा हिफाजत मजबूत वैरी है। अठीने राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम रा कोयला आधारित विद्युत ग्रह 7,100 प्रदर्शन करो है। प्रदेश री 7,580 मेगावाट बूतारी 23 इकाइयां काले आ कामयाबी हासिल करी। प्रदेश रा 26 जिला रा 2-2 ब्लॉक माए काश्तकार ने दिन माए बिजली मुहैया कराई जावे। साल 2027 ताई प्रदेश रा खेती उपभोक्ता ने दिन माए बिजली देवण री कवायद माए अबे चित्तौड़गढ़ और टोंक जिला भेड़ा वे गया है। ऊर्जा सचिव आरती डोगरा बतायो के अबार अजमेर डिस्कॉम रा 14 माए 13, जयपुर विद्युत वितरण निगम रा 15 माए 10 और जोधपुर निगम रा 12 माए 3 जिला रा 2-2 ब्लॉक माए दिन माए बिजली मिल रही है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। मौसम महकमो प्रदेश रा कई हल्का माए तेज अंधड़ बिरखा और ओलापड़न सारू चेताया है। 5 जिला माय बिरखारो ऑरेंज और 5 जिला माय येलो अलर्ट बताई जो है। साथ ही कई हल्का माय तेज हवाई चाल सके। महकमा मुजब आंधी बिरखारो ओ सिलसिलो 6 जून तई बण्यो रह सके है। ई दौरान हीट वेवो आराम रो दौर बण्यो रह वेला। वठे भारत मौसम विज्ञान केंद्र IMD मुजब कालेऊ दक्षिण पश्चिम मानसून रे केरलम माए आवनरी आस बताई जी है। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो के मानसून रा आवता 15-20 दिना माए न्यारी न्यारी थोड़ा ताई पुगन री आस है।
3: वर्तमान में मानसून के केरल तट पर पहुंचने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। आगामी 24 घंटों में केरल में मानसून के दस्तक होने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई है। इसके अलावा लॉन्ग रेंज फोरकास्ट के अनुसार इस

0: पूरे देश में सामान्य से 10% कम बारिश होने के लिए पूर्वानुमान जारी किया जा चुका है। वहीं राजस्थान के भी ज्यादातर भागों में इस वर्ष मानसून ऋतु के दौरान सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा मेघ गर्जन के साथ आंधी बारिश की गतिविधियां आगामी 4-5 दिन जारी रहने की संभावना है।
1: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज गृह विभाग री आला दर्जा री मीटिंग ली। मुख्यमंत्री रहवास माते भी मीटिंग माए श्री शर्मा पुलिस प्रशासन और परिवहन महकमा कानियों गैर कानूनी मोडिफिकेशन और काली फिल्म वाला वाहना माथे कड़ी कार्रवाई रा निर्देश दिया। साथ ही नशा माते असरदार आंकस लगावन सारू सरहदी हल्का माए खास निगरानी और सावचेती बधावन माथे जोरी दियो। राज्य सरकार सुशासन ने मजबूत करण सारू तकनीक और एआई आधारित प्रणालियां ने काम माए लेवन माथे जोर दियो। प्रदेश रा माली बंदोबस्त ने बत्तियों बत्ती साफ गोई जवाबदेह और नागरिक केंद्रित बनावन माए इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम IFMS 3.0 री खास भूमिका है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर माए विया वेबिनार माए रोकड़ प्रबंधन प्रणाली ने मजबूत बनावन री बात कही। वणा साइबर हिफाजत ने ठावी प्राथमिकता देवन रा निर्देश दिया। मुख्य सचिव कहो कि डिजिटल रोकड़ प्रणाली माए डेटा हिफाजत महताऊ है। ई कारण बरोबर हिफाजत ऑडिट रे साथी साइबर खतरा विश्व साइकिल दिवस रे मौके केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया लोगों साइकिल ने दैनिक जीवन रो हिस्सो बनावन री अर्ज करी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माथे आपरा संदेश माए श्री मांडविया कहो कि साइकिल स्वस्थ सक्रिय और पर्यावरण मुजब जीवन शैली री पहचान है और आपा ने फिट राखे है। वणा कहो कि इनना काम माए लेवणु प्रदूषण माए कमी आवेला। साथ ही पेट्रोल डीजल री बचत वेला श्री मांडविया फिट इंडिया आंदोलन रे तहत चलाया जा रिया संडे ऑन साइकिल अभियान नु जुड़न सारू नौजवाना री सराहना करी।
2: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमें फिट रखती है, शरीर को ऊर्जावान बनाती है और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करती है। साइकिलिंग हमारी डेली हैबिट बननी चाहिए क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता सुंदर और टिकाऊ माध्यम है।
1: विश्व साइकिल दिवस रे मौके प्रदेश माई कई छोड़ा साइकिल रैली राखी जी। करौली माई भी रैली री मार्फत बिना ईंधन वाला परिवहन रा साधन साइकिल ने चावो बनावन रो संदेश दी रिजियो। ई मौके हनुमानगढ़ माए साइकिल जागरूकता संगोष्ठी भी। रेलवे बोर्ड कोटाऊ उज्जैन रे बीचे पहली बार सीधी मेमू ट्रेन सेवा ने मंजूरी दे दी है। इनु राजस्थान और मध्य प्रदेश रे बीचे धार्मिक और कारोबारी संपर्क और मजबूत वेला। बोर्ड कोटा चौमहला मेमू ट्रेन रो पसारो उज्जैन तई करण री मंजूरी दी है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन बतायो कि आ रेल सेवा नुआ बगत माथे बरोबर चालती रहेला। कोटाऊ सवाना पूनी 6 बजे रवाना वेर दोपहर 12 बजे उज्जैन पुगेला। पाछा आवता दोपहर 12:30 बजे उज्जैन रवाना वेर सिंध्या 7 बजे कोटा पुगेला। चुनावी प्रक्रिया और अभियानारी वैश्विक सर्वोत्तम प्रथमा और नवाचारा माथे बतल सारू नई दिल्ली में आज अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुई हो। चुनाव आयोग कानियो वेरियो ओ 2 दिन रो इस सम्मेलन में जिला चुनाव एहलकार मतदाता पंजीकरण एहलकार शिक्षाविद शोधकर्ता और चुनावी साक्षरता क्लब रा सदस्य बेड़ा वेरिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बतायो कि सम्मेलन में भ्रम वाली सूचनावा दुष्प्रचार AI बनिया डीप फेक समेत दूजा मुद्दा माथे विचार करियो जावे। राज्य री ग्रामीण आबादी रो अबे घरां बैठ्या बैंकिंग सुविधा मिलेला। सहकार उ समृद्धि अभियान रे तहत सहकारिता महकमा अब महताऊ पहल करी है। महकमा रा शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा बतायो के ग्राम सेवा सहकारी समितियां पैक्स और प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियां रे मार्फत डोर स्टेप बैंकिंग सेवा ने पसारो दियो जावे है। अबे आखिर माए खास समाचार एक फेर सुन ले रहो। केंद्रीय मंत्रिमंडल तेल कंपनियां ने घरू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ाना सारू 10,000 करोड़ रुपया री एक मुस्त बजटीय मदद मंजूर करी। भारत सौर ऊर्जा बूंता में 155 गीगावाट रो आंकड़ो पार करने

0: न्यारो दूजो सबू मोटो बाजार बन्यो। दक्षिण पश्चिम मानसून रे काले केरलम माय आवणरा आसार अर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवियारी साइकिल ने दैनिक जीवन रो हिस्सो बनावण री अरज। साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो वियो। मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी माय प्रसारित करियो जायला। नमस्कार।
1: FM 102.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 7 बज चुके हैं। अब हमारे किसान बहन भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम चौपाल।

0: जानकारियां और लोक गीतां सु भरियो कार्यक्रम चौपाल न सुनवाला माका संदा कृषाण बन भाया कताई रामू भाई कैडी सु घणी घणी राम राम राम राम जी कृषाण बन भाया ओ राम राम। आजकल तावड़ो थोड़ो ढीलो पड़ो छे, बादला बीजा हो रहा है, छाटा छीट भी हो रहा है, ठंडी ठंडो बायरो भी जो लागू छे और दन में थोड़ी घनी उमस भी छी। तो कृषाण बन भाया आ मौसम बदल रही छे और उनके साथ साथ अब आप खेतों की तैयारी भी करनी छे। इनके साथ साथ खेतों के साथ देखो अपना डंडा डोर भी ला रही छे और खेती और पशुपालन तो एक दूसरा का पूरक छे, तो दुनिया को अपन ताई ध्यान रखनो छे। तो कृषाण बन भाई आज बुधवार छे और बुधवार के दिन आपनी जो चौपाल छे सजीव फोन इन पर आधारित रहे छे। और आज की जो चौपाल को विषय छे बहुत ही बढ़िया विषय छे। आज की जो चौपाल को आप विषय छे पशु स्वास्थ्य जांच हेतु सुविधाएं। तो भाई कसी कसी अपना डंडा डोरा की जाँचाओ छे, कसी कसी सुविधा छे, कब आप ती जाँच करानी चाहिए, जे जांच में कतरा लागे छे, किसू आपनो संपर्क करा, जांच आपने थाई किसे लेनी चाहिए और के दिन में पूछानी चाहिए, तो ये सब चीज़ें आपने थाई ध्यान होनी चाहिए क्योंकि आप पशुपालक चा। और जब देखो आप भी हारी बीमारी हो चे तो आपने जब जांच कराओ चा तो सारी बात सामने आ जाओ चे, भाई काई की कमी हो रही चे, खून की कमी हो रही चे, पानी की कमी हो रही चे, या बीमारी आई वह बीमारी आई, जब जा रहा हूँ बढ़िया इलाज हो चे। अच्छा कृषाण बन भाई आपना डंडा डोर को भी बढ़िया इलाज होगा जब आप वहाँ की बढ़िया जांच करवाऊंगा। तो आज ही विषय से संबंधित आपनी चौपाल में भावना आ चुका है। आप जो डॉक्टर चंद्र प्रकाश मीना उप निदेशक क्षेत्रीय रोग निदान केंद्र मोकापाड़ा कोटा में कार्यरत। तो डॉक्टर साहब आपको वहाँ की चौपाल में गुणो गुणो स्वागत है। राम राम साहब।
1: राम राम साहब।
0: कृषाण बन भाई ही विषय से संबंधित कोई भी आपको सवाल हो तो आप सीधा चौपाल में फोन कर सको छो। वही अपना जाने पहचाने टेलीफोन नंबर छे 0744-294-1142। तो डॉक्टर साहब आज साइकिल दिवस भी छे है ना
1: जी रामू भाई।
0: हाँ तो आपने ती साइकिल भी चलानी छे, जब भी तो आपने बढ़िया ही तंदुरुस्त रहेगा, स्वास्थ्य से भी मजबूत रहेगा, उषा ही अपन ताई जो जीवन की साइकिल भी जो जीवन सब चीजें आ गई अपनी खेती बाड़ी सब कुछ है ना पशुपालन, तो यहाँ को भी अपन ताई सही तरीका से चलाना चाहिए
1: जी रामू भाई।
0: हाँ तो अब डॉक्टर साहब बात ही आउचे के अपना जो डंडा डोर छे यहाँ की स्वास्थ्य की हर बीमारी हो जाओ चे, तो यहाँ के जो ये जाँच को जो काई महत्व छे जी भाई।
1: रामू भाई जाँच को डंडोरा में अतो महत्व छे, इंसान नाम में अपन जाओ दिखावा जाता है डॉक्टर साहब जांच लिखे छो में उनको बाद में पतो पड़े छे भाई मैं कई बीमारी छे और इलाज सटीक हो जाओ से।
0: हाँ।
1: तो जांच करावा सु वो समय भी बचे छे, इलाज में पैसा ही बचे छे पशु अपने पशुपालक भाई का। और सब जगह जांच सुविधा उपलब्ध छे हर जिला में।
0: अच्छा
1: हर जिला लेवल पे छे। और

0: गोबर की जांच करा जा मैं यहाँ पर, पेशाब अच्छा। की भी करा जा, दूध की भी करा जा, खून की भी करा जा। और कोई पशुपालक भाई अगर मुर्गी पालन करे चाहे तो वहाँ को पोस्टमार्टम भी कर बताओ चाहे भाई हमें कई बीमारी जो।
1: अरे वाह डॉक्टर साहब, यह तो बहुत अच्छी बात है बिल्कुल। और जैसे कोई आपने हारी बीमारी चाहे तुमको जैसे सैंपल कहाँ जा आपने भाई सैंपल ले जानी पड़े चाहे आपने था तो आपना जो पशुपालक भाई चाहे तो सैंपल ऊँ टाइम न कहीं बात को ध्यान ना कर भाई।
0: डामू भाई आपने बहुत अच्छो प्रश्न करे हो, सैंपल लेबा कर लेकर कुछ बहुत सैंपल ही सही होगा तो जांच भी सही होगी। तो इनके लिए आपनी जैसे दूध को तो खुद ही ला सके जब आपन पशुपालक भाई तो वो दूध ही इमें नहीं लेकर आओ जिनमें पहले से जीवाणु हो या कोई पुराना डिब्बा में लिया या बर्तन डिब्बी प्लास्टिक दौड़ लिया आपने उमन लाणु।
1: अच्छा
0: दूध की जाँच कर लेगा जैसे सिरिंज आओ सुई लगा बाकी प्लास्टिक की वही नई खोल कर उमा दूध लेके आवा तब उमा कहे वो जीवाणु रेत रह जो तो की जांच में सही जांच आओगी। तो एक तो दूध के लेके आए गोबर में कोई विशेष ध्यान रखनो, गोबर को तो अपनी एक 5 ग्राम गोबर बोर के बराबर गोबर थैले में लेकर आनो चे और उनका जांच हो जाओ चे। बाकी खून की जो जांच चे वो पशुपालक भाई न निकाल सके खून उनको पास में जो कंपाउंडर चे जो डॉक्टर चे उनसे संपर्क करनी पड़ेगा वो निकाल देवो खून।
1: अच्छा
0: और फिर वो पशुपालक की खुद ही जिला मुख्यालय पर पहुंचानी पड़ेगी वह।
1: अच्छा जैसे आपने अबार गोबर की बात करी डॉक्टर साहब तो गोबर मतलब ताजा या एक दिन पुराणो कैसे लेनी
0: अच्छा गोबर लेवा को तो जो, जो, जो गोबर कर रहे हो जानवर उन टाइम पर ले तो अच्छी बात ताजा गोबर मिल जाओ तो बहुत अच्छी बात है।
1: अच्छा
0: और नहीं मिले तो फिर जो जानवर जब कर लेकर उठा लेकर सका था अपन।
1: अच्छा तो वो आपने कतरा घंटा में प्रयोगशाला में पहुंचानी पड़ोगे जी भाई।
0: भाई गोबर में तो कोई ऐसी समस्या कोई ना वो पहले आज ले तो पहले खाली पहुंचा सके ऊँ दिन पहुंचा दे तो उनको बड़ा रिजल्ट आओ।
1: अच्छा
0: पर समस्या दूध के साथ जरूरी है, दूध तो अपनी ऊँ दिन पहुंचानी पड़ोगे और गर्मी से तो बर्फ में लार देनी पड़ोगो ना तो खराब हो जाओ असर दिन में कोई समस्या कोई ना।
1: अच्छा नरी बार देखो डॉक्टर साहब अपना दूर दराज का गांव छे
0: जी
1: तो वहां में कोई ऐसी कोई चिकित्सा इकाई छे जे जहां कोई डांडा डोर बीमार हो जाओ तो वहां कोई सुविधा पहुंचवा के लिए।
0: बिल्कुल 1962 छे सभी किसान भाई नोट कर ले 1962 पर कॉल करेगा तो वो वहां को जो मोबाइल यूनिट छे जो वहां गाड़ी में पहुंच जाओगी इलाज करवा कर लेकर।
1: अच्छा
0: सुविधा काफी समय से चल रही है।
1: यह तो बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब
0: जी। रामू भाई
1: घर बैठे अपने गाड़ी आ जाओ अपना जो बीमार पशु छो वहाँ की देख रेख हो जाओ वहाँ को स्वास्थ्य को लाभ वहाँ के तीन मिला। अब बात यह आवश्यक कि नरी बार खाए चे नरी सारी जो बीमारियां भी हो चे
0: जी रामू भाई
1: तो नरी बार अपना जो पशुपालक भाई लोग छे वहाँ के तीन मतलब कैसा पतो लागे भाई में यह बीमारी हो सके छे या इनकी आप जांच करा ला।
0: रामू भाई इमें कहें जे जो पशुपालक भाई उसे से माता बहन संभाले चे तो वो देख ली भाई जानवर का चारो पानी खा रहे हो ना खा रहे हो मुंडा पर मोती छे कोनो पर पोत पर और वह कहें के जे उनको नाक चाड़े ना चाड़ रहा तो उनकी जांच तो बता सके जे भाई जानवर बीमार छे।
1: अच्छा।
0: तो बाकी जैसे आप दूध छे थनारा रोग छे दूध में फटकड़ी आ रही छे पानी आ रही हो छे या और भी कहें के जो खून आ रही हो छे तो वो दूध निकलता है पतो पड़ जाओगे तो वो दूध लाकर बताओ ना आप ही उम्र लाकर पहुंचा सको जो ले।
1: अच्छा तो यानी घर पर भी आपने जो जैसे यो थनेला रोग नरो देख मामो मले छे नरा तो इनके ताई नजर को बिखद भाई नजर लागी है ना डॉक्टर साहब
0: जी।
1: तो यो छे एक रोग तो इनको आपने ताई जांच का माध्यम से पतो ला जाओ भाई यो थनेला रोग छे अरिका लक्षण भी आपने ताई ये छे भाई आप करया छे फदगड़े दी के बाल आ जाओ थोड़ो लाल लाल रंग को दूध हो जाओ। अच्छा तो क्या आप बताए जांच कराने को पूरा पक्को इलाज है
0: जी।
1: अच्छा बहुत बढ़िया बात है। और कभी आपना जो डांडा दौड़ है जो दुधारू पशु है या मैं देखो बांझपन और गर्भ न ठहर बाकी भी समस्या नरी पाई जाओ चे तो इनको कई कारण चाहे की कैसा जांच हो चुके
0: जी। रामू भाई ये बहुत बड़ो समस्या है पशुपालक के लेकर अगर वो जानवर ही बर्थ ब्याण हो तो वो एक तरह से जानवर मतों को नो को इनके लेकर सबसे बड़ो तुम 80% रोलतों को खान पान को चे अगर अपन सही खान पान देंगे वही बराबर दलो बांटो सब रख देंगे तो सही समय पर जाग माओगो हीट माओगो तो ज्ञापन हो जाओगे और फिर भी कोई समस्या जब बाज न हो रही हो तो मतलब बयान न पा रहे हो तो वो नजदीकी को जो

0: में संपर्क कर ले, वो ही चेक कर देख ले हाथ में बच्चादानी में हाथ डालकर, तो खुद चाहे पतो पड़ जाओ भाई बच्चादानी में कहीं प्रॉब्लम है।
1: अच्छा,
0: और फिर आभार आभार समय में तो यहाँ कोटा लेवल पर तो बड़ा अस्पताल में सोनोग्राफी सुविधा भी उपलब्ध हो वाली जी पल्ली बीच, अब वापस नया सारा शुरू हो वाली जी, कुछ दिनों से खराब हो गई जी।
1: अच्छा,
0: तो आप वहाँ को पता कर सके जा, पर जानवर लाभ गाँव सु और यहाँ लाभ वो असंभव सोच है।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: तो आपने तो वो जो डॉक्टर पशु कंपाउंडर है वहाँ जा रही, वो अधिकांश ये बता दीजिए भैया का ये बीमारी है।
1: अच्छा अच्छा, उनका लक्षण के आधार पर ही दवाई गोली।
0: जी हाँ,
1: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब यहाँ आपने एक छोटो सो अंतराल लगा, फिर अपनी बातचीत न जारी रखेंगे।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: करसान बन भयाओ एक बार फिर आपको जो चौपाल में स्वागत है। और आज की जो चौपाल जैसे जो फोन इन पर आधारित है और आज की चौपाल को जो विषय है पशु स्वास्थ्य जांच हेतु सुविधाएं। और आज आपने बीच में पावना है डॉक्टर चंद्र प्रकाश मीना जी। तो डॉक्टर साहब आपनी जो बातचीत चल रही थी कि भाई आपने ती जो डंडा डोरक ती जो अपने जांच करावा
3: जी,
2: तो वो मैं बहुत सारी बातों को जो अपने ती सावधानी रखनी चाहिए जी। अब बात यह हो जैसे कि अबारू वक्त हारी बीमारी होगी तो कोई सरकार की तरफ से आपने कोई यहाँ के लिए कोई मुफ्त में दवा भी छके कोई योजना छके इसी की जो दवाई गोड़ा बढ़िया निःशुल्क मिला
3: निःशुल्क दवा योजना चल रही है। और पशुपालक भाई वहाँ पर हॉस्पिटल में ले मिल संपर्क कर ले तो वहाँ पर यह दवा योजना निःशुल्क प्लस चल रही है काफी समय से चल रही है एक और तो वहाँ जाकर संपर्क कर सके जे जो दवाई वहाँ उपलब्ध है वो वहाँ से दे दे चे। कुछ दवा सी चीज जो नहीं मिल पाओ पूरी दवाया तो वहाँ का ताई वो बाजार से लिख दे चे।
2: अच्छा अच्छा। और नरी बार ये भी हो चाहे डॉक्टर साहब कोई भाई पशुपालक छा हो चाहे भाई मुँह तो मार गोड़ तो यह जो प्राइवेट ही लेप चे भाई यही जाँच करा लू
3: जी
2: तो नरी बार जांच करा ला जर मंगी भी हो जाओ तो कोई उम्र सरकार कान का सब्सिडी छूट उठ दे जाके फिर पशुपालक ताई
3: रामू भाई सरकार सब्सिडी छूट न दे और तो माँ का जो सरकारी लेब छे हर जिला में छे वहाँ तो मुफ्त में हो जाए सभी की जांच परंतु ऐसी कोई सब्सिडी की योजना कोई नहीं बिल्कुल भी।
2: अच्छा एक पशुपालक अपनी लाइन पे। हेलो
4: हेलो
2: राम राम साहब कहाँ से और कौन बोल रहे जो अजयता सु का नाम छो आपको
4: रामदेव
2: रामदेव जी सवाल पूछो चौपाल में
4: अजी आप चार महीना गैप हो गया दो पांच दिन थोड़ी बड़ी बड़ी रह जाए तारो कम कम खाओ जाए कहा है कोबी कोबी रह जाए।
2: अच्छा
3: जी आपने जो क्वेश्चन पूछो वो आभार गए मौसम भी खराब हो आपको आंधी चाली मौसम ठंडो रहो तो टाइम एक बार आपने कहा नजदीक में जो कंपाउंडर छे या डॉक्टर छे वहीं बुलानी पड़ेगा उसको गैप में कोई दिक्कत को है ना वो तो सर देखो असर जब जो आप बात कर रहे हैं ना वो साहब सु फिर भी आप कंपाउंडर साहब भी दिखा लेंगे तो आपको उनका इलाज हो जाओगे। आपका ताई का इंजे को दिखा नहीं पड़ेगा क्योंकि वो जो ना मौसम तो आज फिलहाल चेंज हो तो आप भी आज आंधी बांध ना बारिश को मौसम भी हो जाओ तो उनको असर ला रहे मारता है प्रथम दृष्टया तो और आप वही दिखा हुआ जब भी आप इलाज हो पाओगे
2: हाँ हाँ दिखा लीजिए आप तो सबसे बढ़िया रहोगे
3: हाँ कोई ना बिल्कुल भी कोई ना हाल फिलहाल आप है ना वैश्विक दिक्कत वाली बात कोई ना।
2: ठीक साहब आपने चौपाल में फोन करियो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद राम राम साहब।
4: राम राम भाई।
2: तो डॉक्टर साहब जैसे बता रहे जा भाई मौसम की भी अपना जो जानवर छो वहाँ पर प्रभाव पड़े छे
3: बिल्कुल
2: जैसे कि एकदम से ज्यादा छाटा छीट हो गयो बीज गयो या एकदम तांवड़ो ज्यादा हो गयो तो इको कतरो प्रभाव पड़े छे अपना जानवर पर
3: कुछ जानवर पर मौसम को तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़े छे।
2: अच्छा
3: अबार बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी जी तब भी जानवर कहें हाँ पड़ा जा वो वहां आप बार वहाँ को चाय दार व्यवस्था न कर पाऊंगा इतना
2: हाँ।
3: छोड़ देते ना तो वहाँ को गर्मी से लू से बचवा को भी उपाय अपनी वहाँ का जो ऊंचे बाड़ो कहीं भी वहाँ का टाट की बोरा लगा कर सके जा
2: हाँ।
3: और ऐसे बारिश की भी अपनी व्यवस्था कर सके जा
2: अच्छा।
3: अब ठंडो मौसम में हवा लगे तो वहाँ को भी अपने वहीं इंतजाम कोई पोलिथीन लगा कर या कहीं भी लगा करनी चाहिए और सीधो सीधो फर्क क्यों पड़ जाएगा अगर जानवर एक बार बीमार हो गयो तो दूध देवो कत्ते बंद कर दे तो
2: एक पशुपालक लाइन पे आपने हेलो हेलो हेलो आवाज आ रही है लागे जो वहां से आपनो संपर्क कट गयो हाँ तो आप बता रहे थे डॉक्टर साहब
3: मौसम को जो है ना प्रतिकूल है ना सदा सर्दी ऐसा मौसम में जानवर को बिल्कुल स्वास्थ्य बहुत ज्यादा फर्क पड़े जाए और वो उन्हें एक बार दूध बंद कर दो तो पशुपालक भाई तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गयो दूध ले पाला जाए अपन

0: और इलाज करावा जो अलग
1: तो ज्यादा तो प्रभाव तो जैसे एक तो अपना दुधारू दूध वाला जानवर छे और एक ज्ञापन जानवर छे यहाँ पर ज्यादा एकदम प्रभाव पड़े छे।
0: जी रामू भाई यहाँ पर बिल्कुल बहुत प्रभाव पड़े छे।
1: हाँ तो यहाँ को तो विशेष ही ध्यान रखना चाहिए,
0: विशेष ध्यान रखना चाहिए।
1: और अब जैसे अब देखो गर्मी के बाद अब छठा छीटो बाढ़ है तो नरी सारी अपना जो नंडा डोर छो में संक्रामक जो बीमारियां बढ़वा को खतरो रहे डॉक्टर साहब
0: जी।
1: तो इनकी जैसे ये जो एक महामारी की तरह फैले छे नरी बाढ़ तो जैसे की जांच और रोकथाम के कारण कोई विशेष इंतजाम करो जाओ जगह।
0: बिल्कुल रामू भाई विशेष इंतजाम करो जाओ जैसे बारिश पानी छाटा वाला है तो उसे पहले कहें बार उनका गलगोटो टीका लगाया जाओ से।
1: अच्छा
0: हर बार लगाओ से और आबार भी खुर पका मुंह पका अभियान चल रहे है हमारे भी लोग टीका लगा रहे तो यो साल में दो बार खुरपा मुंह पका अभियान चले छे पहले टीका लगा लेंगे तो बचाव उपचार छे बीमारियों को ऐसे गलगोटो से गलगोट बोले छे वो टीको लगा इलाज ना तो एक होया पाचे वो जानवर ठीक बहुत महसूस हो छे गलगोटू तो दोनों चीजों का तो आबार बारिश पहली टीका लगानी चाहिए जी ऐसे काम।
1: अच्छा एक शुरुआती लक्षण का दिखे जी भाई
0: गलगोटू का तो यहाँ तो पशुपालक भाई जाना चाहिए गला में सूजन हो जाओ।
1: अच्छा
0: उन्हीं को नाम से गलगोटू है ना गल डाटो रोग बोले
1: गला
0: गोड़ दे तो गड़ गड़ की आवाज आओ सांस ले जाओ और ना कहा छड़ो चाल भी करे।
1: अच्छा
0: ये उनको मेन लक्षण है
1: तो इनको प्राथमिक उपचार
0: को प्राथमिक बताया ना आप ही पशुपालक भाई हैं इनको तो टीको लगाओ टीको उपचार से और कोई इलाज।
1: अच्छा अच्छा हेलो
2: राम राम सा
1: राम राम सा कहाँ से और कौन बोल रहे हो?
2: राम डोलिया से बोल उमेश सिंह।
1: क्या नाम बताया आपना?
2: उमेश सिंह।
1: अच्छा उमेश सिंह जी क्या सवाल छे चौपाल में आपको? बहुत बढ़िया बात है साहब बहुत अच्छी बात है तो एक ताई आप ताई लाभ भी मिल रही होगो।
2: लाभ तो मिल रही थी क्या दवाया या किसी से तो वो जाओ जिसमें तो समाधान बन गया समाधान न हो रही माँ।
1: अच्छा
2: जैसे देख रही तो आ जाओ जब मैं फोन कराऊं तो कराऊं कह तो वो आओगे भैया आओगे नहीं माँ के यहाँ ग्राम डोले छोटा रुई और प्रदर्शन के तीर पे तीर लग।
1: अच्छा
2: अब वह बिया की एक बार वो जो एक दो दिन आओ ये कनाकुन कंपोटर लगाने के लिए पुनः इन्हें कह रहे अभी की शिकायत करा तो कहाँ करा मांगे दो चार बार दो तीन बीच में एक बार की वह बाबा ने भी फरी
1: डॉक्टर साहब बता रहे थे आप सुनो है ना बता रहे थे।
0: उमेश सिंह जी आपकी समस्या बहुत सही है क्योंकि अगर जानवर एक बार जाग में आ गए और वो आपन सही टाइम में बीन डल पाए हो तो आप रीतो रह गए तो आप नुकसान उठा लो तो यहीं के लिए तो कहीं जगह जैसे पहले तो आपके नजदीक जो कंपाउंडर साहब से डॉक्टर साहब से वहाँ जा भी डॉक्टर साहब शिकायत कर सको जो कि भाई या को माँ का कंपाउंडर कौन से कौन ना हो और टाइम पे खाना पाएगी यो माँ को सरकार को प्रयास भी है जानवर ब्रश ब्यावन न हो यानी ज्ञापन न कर पाऊँ तो बहुत बड़ी कमी है। और आप जैसे बात करे जाए अगर फिर भी आप लागे कि भाई माँ तो खान का शिकायत करवा चाहूँ जहाँ तो संपर्क पोर्टल पर शिकायत कर सको जो
2: इंजेक्शन वो लगा दूंगा इस चीज का जैसे मार तीन चार चीजें बाहर जा पाएगी तो द्वारी जे वगैरह तो सात साल में आप दो साल लो बागड़ी पड़ गई है।
0: उमेश सिंह जी आप सही कर रहे हो इनके लिए तो कोई वो ऐसा तो यो जो गर्भाधान करना करते हैं सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है परंतु फिर भी आप लागे भाई हमारी सुनो नो पारी तो यहाँ माँ का मौका पाड़ा में संयुक्त निदेशक बटे जे वहाँ पर आप बात भी कर सको जो भाई माँ का यो कंपाउंडर लागा जे ये ना आ रही टाइम पर तो आप वहाँ भी कर सको जो और उनको समाधान
2: तो दो गांव के मिले जो कॉलोन के मिले जो वहाँ बैठ बैठ के कोई ना वहाँ काम बैठो भाई ना बैठो अपना फोन करता है तो माँ के कर तो लगा तो
1: जरूर जरूर जरूर उमेश सिंह जी वो जरूर आओगा आप जो वहाँ का जो उच्च अधिकारी है वहाँ से संपर्क करके और वहाँ से बात करो भाई माँ के यहाँ सुविधा दो और माँ की सुविधा होनी चाहिए इनकी माँ के ताई तकलीफ ज्यादा है। ठीक है साहब आपने चौपाल में फोन करियो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद राम राम साहब।
2: राम राम साहब।
1: तो डॉक्टर साहब देखो पशुपालक भाइयों के सामना नरी सारी तरह तरह की समस्या हो
0: जाए
1: और वहाँ समस्या को वहाँ के ताई समाधान होनी चाहिए
0: बिल्कुल
1: जब जा रही देखो अपन पशुपालन सही तरीका से हो पाओ
0: जी।
1: तो अब जैसे कि आपने बात जांच की तो कर ली अब नरी बार कहें वो चाहे अपना पशुपालक भाई अबारू गर्मी को टर्म
0: जी
1: तो वहाँ के ताई

0: विशेष तौर से कशा को आहार विहार देनी चाहिए।
1: रामू भाई, मैं सबसे पहले तो आपको बताएं, जो किसान भाई है, अपना जो पशुपालक भाई है, वहाँ कहते हैं पहले तो गर्मी से बचाव को उपाय करने चाहिए पहले चीज तो, और दूसरे जहाँ तय पानी से समय पिलानी चाहिए, मतलब पानी बार बार पिलानी चाहिए जी। और बड़ी अच्छी बात आ जाएगा, कान का वहाँ का पानी को एक बर्तन पर पास ही रख दिया। अच्छा। वो जल्दी उनका आवश्यकता साहब पानी पी ले।
0: पानी की बात करेंगे आप, एक पशुपालक भाई है लाइन पर। हेलो
2: जी, वो लालचंद बोल रहा हूँ, ग्राम ग्राउंड से।
0: हाँ लालचंद जी, काई सवाल चाहिए आपको चौपाल में?
2: मैं आपको सवाल ये है कि बस का फूल कट रही है।
0: अच्छा, कतराक दना सु
2: और लोग मैं 10-15 दिन तो ही गया।
0: अच्छा, ज्ञापन जगह।
2: हाँ
0: ठीक है, डॉक्टर साहब बता रहे थे, आप सुनो।
1: को जो अगर ज्ञापन से फुल कट रहे तो आपने ही टाइम पर तो उनको सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे हम भाई आपने चारों पानी शाम टाइम कम खिलानी पड़ेगा, और वह जो बटे जहाँ भी समतल जगह बटे हुआ, ताकि उनको पाँचों फूल कटे वहाँ जोड़ना पड़े। और आबार नजदीकी ब्याह वाले हो महीना दो महीना में, तो वहाँ नजदीकी कंपाउंडर डॉक्टर साहब जाकर उनको एक वो जुगाड़ कर दीजिए, चुमली बांध दीजिए, वो इलाज कर सके जाए और ब्याह से पहले भी खोल दे जाए। पर आबार अशोक को इलाज को है ना, जो आपन दवाई खिलाता है वो फूल अंदर बैठ जाओ अशोक है ना वो।
0: अच्छा, तो एक तो आपने ताई जानवर जी का फूल कट जो ताई शियार की जगह में बटाना।
1: शियार में बटाना
0: बटाना। अच्छा अच्छा,
2: दूध बहुत चलेगा।
1: कोई आप बताए जी ना, वो क्या शायद उनको दवाई हो जाए, आप नजदीक वहाँ मिल लगा तो वो लड्डू बना आयुर्वेदिक दवा हो जाए वो खिला सकें जहाँ अपन, तो उसमें फर्क पड़ेगा। पर ये पूर्णतः अगर ब्याह बन जाए ना, तो तुम्हें को तो इलाज तो ब्याह बाद ही हो पूरे इलाज तो आवर, तो आपने सावधानी रखनी पड़ेगी।
0: उनको उठवा बढ़वा को ध्यान रखनी पड़ेगा।
1: बिल्कुल, उठवा ध्यान रखनी पड़ेगा।
2: हेलो,
0: हाँ जी बोलो।
2: दूसरी बात को है ना,
0: पहली तो आप ये जो रेडियो चाह रहे पाचे, या तो इन्हें बंद करो या थोड़ा दूर मलो आप इन्हें, फिर बात करो ताकि आपकी आवाज बढ़िया सुनाए माओ।
2: समस्या
1: दो महीने तो हाँ एक ही इलाज हो सके जाए। इमा आप ही कहें जेगा नजदीक हॉस्पिटल जानी पड़ेगा, वो डॉक्टर साहब से मिलनी पड़ेगा, और फिर वो उनका ताई आप बताएं दवा देगा, जो आवार बताई ना मैंने उनका ताई आयुर्वेदिक दवा जो है तो वह देनी पड़ेगी, आप नहीं खिलावा खिलानी पड़ेगी, तब वह काफी ताई ठीक हो जाओ। एक तो हो सके जाए। कोई पशु आहार तो बोले डॉक्टर साहब बोले भाई आपने संतुलित आहार खिलाना चाहिए आपने उनका ताई, उनका तो उन प्रोटीन भी मतलब कुल मिलाकर सब संतुलित होने चाहिए जी, दलो बाटो अच्छे खिलाऊंगा। पर आप है ना नजदीकी हॉस्पिटल जाकर वह दवाई लो, दवाई ले बस आपको तो जरूर ठीक हो जाओ। इनको तो दो महीना लिख गया आपको तो कोई दवाई नाम तो आप वहाँ जा रही संपर्क करनी पड़ो, नाम तो लिखो तो प्रोलोप केयर भी आओ जे प्रोलोप केयर जे उनको ना प्रोलेप से बोला जाए अपन बचुदानी निकले जी को, तो मेडिकल बाजार आप बात कर सको जो।
0: ठीक है साहब, आपने चौपाल में फोन करियो इकले के बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। डॉक्टर साहब, जैसे कि ये फूल की बात हो रही है, ये अंदरी समस्या देखभाल में मिले तो यू जो अपना जानवर के फूल खड़े जे इनके पास मूल कारण का है, काई वजह से ये समस्या हो
1: जी? रामू भाई, इनके पास मूल कारण ये हो जाए कि जानवर का शरीर में सूक्ष्म तत्वों की कमी हो जाओ।
0: अच्छा,
1: जैसे आप खेती बाड़ी में हो जाए कोई नाइट्रोजन फॉस्फोरस, जैसे हम कोई कैल्शियम कमी हो जाओ फॉस्फोरस कमी हो जाओ, तो उनकी जाँच पहले करा लेना अपन, शायद वो अच्छो ठीक हो सके, मतलब पहले से समस्या ना हुआ। और एक पशुपालक भाई के पास ही सुविधा है, वो तुरंत ही अच्छो दल बाटो खिलाओ संतुलित पशुहार खिलाओ, समस्या बहुत कम हो जाए।
0: बहुत बढ़िया। हेलो,
3: राम राम साहब।
0: राम राम साहब, राम राम।
3: हाँ, सरवन लाल योगी बोल रहे, तो मऊ मांग रोड से।
0: हाँ जी योगी जी, कहीं सवाल चाह आज आपको चौपाल
3: भाई? आपने देखो बड़ा जानवर की तो देखभाल कर ही लेना, लेकिन जो वहाँ का जो बछड़ा थे,
0: हाँ
3: तो आपने से बरसात को बार मौसम आओगे तो वहाँ मक्खी सी बीमारियां हो सके, वहाँ की आपने कहीं सावधानी रखनी पड़ी।
0: सही बात है। डॉक्टर साहब बता रहे जाते हैं।
1: बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा

0: सवाल पूछो और आबार आपने छोटा जो पड़ा पाड़ी जे यहाँ कहते हैं पहले तो पेड़ कड़े दवाई पिलानी चाहिए अपनी सबसे पहले तो या मेडिकल में मिल जाओगे हॉस्पिटल में फ्री मिल जाओ जे या पठारा ने पड़ जाओगे अपने पेट में कीड़ा पठारा जोखा ये पड़ जाओ तो यहाँ का पिलवा दवाई तो पहले पिलानी चाहिए अपनी। हाँ 15-20 दिन का होता है पिला दिया फिर हर महीना पिला दिया फिर 3 महीने पिला दिया ऐसा ये दवाई देनी देनी चाहिए पलो पलो काम तो करना चाहिए अपनी और 200 काम आप यहाँ गलगोटू बीमारी आ जाओ पड़ा पड़ा कर तो वो टीको भी आप लगनी चाहिए जी बारिश फली ना तो आया पाच फिर उनको इलाज हो ना और बाकी तो वगैरह आए कहीं कहे जैसे बचा रखा ना जो मौसम से भाई बारिश से तो बारिश से बचा रखा वहाँ मगर सीधो ठंड में ठंड न लग
1: ज्यादा गीला मन
0: ज्यादा गीला मन हो ये रखनी पड़ेगा ध्यान।
2: ठीक है साहब बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
1: बिल्कुल राम राम साहब आपका भी। और डॉक्टर साहब आपने एक छोटो सो यहाँ अंतराल लगा
3: हो गया इंतजाम।
4: किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है? ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए।
5: RBI कहता है
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
1: करसान मन भाई एक बार फिर आपको चौपाल में स्वागत है। और करसान मन भाई डॉक्टर साहब से अपनी बातचीत जारी है। तो डॉक्टर साहब समय कम है एक फोन आ रहे थे लेला चा। हेलो हेलो हेलो आवाज आ रही है ताकत ताई माँ की लागे जो आप संपर्क न हो पा रहे हो। तो डॉक्टर साहब जैसे कि वो बता रहे थे आबार वो अपना पशुपालक भाई ने फोन करी हो कुछ छोटा बछड़ा चाहिए या समस्या हो जाओ तो जैसे अंतर परजीवी भी हो चे तो यहाँ की भी कोई जांच हो चुके
0: अंतर परजीवी की जांच बिल्कुल हो चुके की जांच यही है कि आप उनको गोबर लेकर जाओ।
1: अच्छा
0: गोबर से पता चल रहा हो जब अंतर परजीवी का पहली बार बस बात खुद ही उनको जीव आ जाओ कुछ अंडा आवो तो ज्यादातर अंडा हो वहाँ का जाकर वहाँ यहाँ जाँच कर दे जा और तुरंत ही जाँच जाओ आधा घंटा में जाँच मिल जाओ अगर वो लेकर हो तो।
1: अच्छा अच्छा अब चौपाल में चलता चलता आप जो वहाँ का पशुपालक भाई लोग वहाँ का ताई सलाह का तौर पर कहीं का बुझाऊ
0: पशुपालक भाई का ताई एक ही मारी सलाह देव चाहो जो मैंने की एक रोग है ब्रुसेलोसिस गर्भपात बहुत बड़ी समस्या है। तो आपनो जो जानवर व्यापक नजदीक हो 7-8 महीना को उन टाइम पर बच्चों फेंक दे गर्भपात हो जाओ तो उनको विशेष ध्यान रखना चाहो अपनी क्योंकि ऊसु बीमारी आपना जो अपना पशुपालक भाई है जो संभाल वहाँ का होबा का संभावना रह जाए और वो बीमारी बाद वह खतरनाक बीमारी है। तो अपनी ऊसू बचा लेकर वो जो गर्भपात हो तो नजदीकी हॉस्पिटल में संपर्क करे और उनकी जाँच कराओ जानवर की भी कराओ और साथ में खुद संभाल वाला उनका मालिक भी कराओ।
1: अच्छा
0: एक मौके
1: दोनों की जांच हो वो जरूरी है मतलब
0: बिल्कुल राम भाई।
1: अच्छा तो यह तो देखो बीमारी गंभीर है तो सावधानी आपने ताई ज्यादा रखनी चाहिए
0: जी राम भाई।
1: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। डॉक्टर चंद्र प्रकाश मीना उपनिदेशक क्षेत्रीय रोग निदान केंद्र कोटा सु आप आया और पशु स्वास्थ्य जांच हेतु सुविधाएं का बारे में आपने वहां का पशुपालक भाई लोगों का जो भी प्रश्न छा वहां को सवाल को आपने समाधान करियो इनके लेकर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।
0: राम राम साहब। राम भाई धन्यवाद।
1: करसान बन भाई आओ अब चौपाल को भगत भी हो रही जो पूरो तो आपका साथी रामू भाई टाइम भी दुआ गया फिर मलंगा नया विषय के साथ नया भावना के साथ तो आज तो चला चा राम राम।

भाई बहन सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। आइए अब सुनते हैं लोक संगीत। लोक संगीत का पहला लोकगीत हम सुनने जा रहे हैं सुप्रिया दीपाली और सतीश देहरा की आवाज में।

श्रोताओं, लोक संगीत का आनंद ले रहे हैं आप। सुरभि मेहता की आवाज आप सभी तक पहुंच रही है। आइए अब अगले लोकगीत की तरफ चलते हैं और अब सुनवाते हैं आपको गुलाबो, संतोष, कंचन और साथियों की आवाज में एक और खूबसूरत सा लोकगीत।

श्रोताओं, लोक संगीत का आनंद ले रहे थे आप एफएम 102 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप पर आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। आइए श्रोताओं, घड़ी में 8 बज चुके हैं, अब सुनते हैं चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत में पहला नगमा आपकी तरफ अनपढ़ फिल्म का, लता मंगेशकर की आवाज़, शब्द राजा मेहंदी के और म्यूजिक दिया है मदन मोहन ने।

श्रोताओं, आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल और यहाँ पर आप आनंद ले रहे हैं चित्रपट संगीत का। चित्रपट संगीत के अगले नगमे की तरफ आइए आप सभी को ले चलते हैं। इज्जत मूवी का ये नगमा लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की आवाज, शब्द साहिर के और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए। ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।

आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं चित्रपट संगीत का अगला नगमा, करण अर्जुन फिल्म का, जिसमें आवाज दी है कुमार सानू, अलका याग्निक ने, शब्द इंद्रवीर के और संगीत राजेश रोशन का।

0: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल आपने ट्यून इन किया है, साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी आप सुन रहे हैं और चित्रपट संगीत का यहां आप आनंद ले रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे और सुनवाते हैं आपको चित्रपट संगीत का अगला नगमा। सोनू निगम अलका याग्निक की खूबसूरत आवाज में चलो इश्क लड़ाएं फिल्म से, जिसे शब्द दिए हैं समीर ने और संगीत से सजाया है हिमेश रेशमिया ने।

श्रोताओं, चित्रपट संगीत का आनंद ले रहे हैं आप। अगला गीत आप सुनेंगे सरस्वती चंद्र फिल्म का, जिसे गाया है मुकेश और लता मंगेशकर ने, शब्द दिए हैं इंद्रवीर ने और संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने। तो आइए एक और खूबसूरत सा नगमा आप सभी के कानों में, और जो आप सबका फेवरेट भी होगा, आइए साथ में मिलकर सुनते हैं।

श्रोताओं, आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल सुन रहे हैं आप, साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप पर आपने सुन रहे हैं। और अब आइए सुनते हैं अगला नगमा, हिमालय की गोद में फिल्म का मुकेश की आवाज, शब्द आनंद बख्शी के और संगीत कल्याण जी आनंद जी का, चांद सी महबूबा हो।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। अब आप थोड़ी ही देर में सुनेंगे समाचार संध्या दिल्ली से। कृपया प्रतीक्षा करें।

அருணா. मुख्य समाचार. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी. दिल्ली NCR क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली. पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया. कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली. दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत. पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की. मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी. और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे.

0: अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया है। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
2: ओडिशा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है फिशिंग हो, पान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से ओडिशा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
0: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: इनके टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बाकी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण

0: की ब्योरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटक नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोक भवन से विधानसौध पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बीआर अंबेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौध के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में एक महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
4: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको हो रही है।
3: वहीं आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
5: दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
3: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.

0: newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन ए आई आर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले दो दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंग फांग और यांग पो ह्यूआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कम्बोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
2: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 9 बज चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं फिल्म संगीत, जिसमें इस स्पेशल सेगमेंट में आज हमारे साथ हम बात करेंगे असद भोपाली जी के नगमे की। ये फिल्म संगीत का एक खास अंग है और इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया, असद भोपाली जिनके लिखे गीतों ने कभी प्यार का एहसास जगाया तो कभी कई सारी पुरानी यादों को भी ताज़ा किया और कभी होठों पर मुस्कान भी बिखेर दी। जी हाँ, आज के ये संगीत में महफिल सजी है गीतकार असद भोपाली साहब के नाम। तो अगले कुछ पलों तक हम सुनेंगे उनके लिखे हुए कुछ सदाबहार नगमे, उनसे जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प बातें करेंगे और याद करेंगे हिंदी सिनेमा के उस दौर को जब गीत सिर्फ सुने नहीं जाते थे, महसूस भी किए जाते थे। तो आइए पहले नगमे की तरफ बढ़ते हैं।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं आप। सुरभि मेहता की आवाज आप तक पहुंच रही है और आज हम बात कर रहे हैं असद भोपाली साहब की। और उनकी लेखनी की बात करें तो बखूबी उन्होंने हर एक गीतों को लिखा। सरलता के साथ साथ हर गीत में एक संदेश जरूर छुपा होता था। उन्होंने प्रेम के गीत ही नहीं लिखे बल्कि उन्होंने रिश्तों के बारे में, अपनत्व के बारे में और इंसानियत के बारे में भी कई सारे अपने शब्दों को पिरोया और एक गीत लिखा। उनके ऐसे ही खूबसूरत गीतों की झलक हम अपने अगले गीत में मिलने वाली है और एक ऐसा नगमा जो मोहब्बत और खुशियों की बात करता है। तो आइए अब चलते हैं अगले नगमे की तरफ जिसका नाम है प्यार बांटते चलो। हम सब उस्ताद हैं फिल्म से।

श्रोताओं, कुछ ऐसे गीत जो सिर्फ सुनाई नहीं देते बल्कि पूरे माहौल को ही बदल देते हैं। ढलती शाम, ठंडी हवा और अपनों का साथ, ऐसे ही खूबसूरत सारी फीलिंग्स को समेटे हुए अगला गीत आप तक पहुंच रहा है। असद भोपाली साहब के शब्दों और मधुर संगीत से सजा हुआ ये गीत, आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं आप। आज हम बात कर रहे हैं असद भोपाली जी की, तो चलिए कुछ दिलचस्प बातें उनके बारे में जान लेते हैं। असद भोपाली साहब का रिश्ता भोपाल से था और शायद इसी वजह से उनके नाम के साथ भोपाली जुड़ गया, लेकिन उनके गीतों ने सिर्फ एक शहर नहीं पूरे देश के दिलों में अपनी जगह बनाई है। और असद भोपाली जी उन गीतकारों में से थे जो मुश्किल शब्दों की बजाय आसान और दिल छूने वाले अल्फाज पर भरोसा करते थे। आप जितने भी उनके गीत देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने बहुत कम कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया है। और कई सारे दशक उन्होंने अपनी लेखनी से फिल्मी दुनिया में बिता लिए। और कहते हैं कि अच्छे गीत वही होते हैं जिन्हें सुनकर लगे कि ये हमारी ही कहानी बयां करते हैं। तो अगला नगमा चलिए आप सभी की ओर, हंसता हुआ नूरानी चेहरा।

0: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: शाम यूं ही हंसी नहीं लगती, कुछ यादें भी चुपके से शाम में आ ही जाती है। आइए सुरों की रोशनी में दिल की महफिल को सजाते हैं। अगला नगमा हम सुनेंगे मस्त कलंदर फिल्म का, तलत मोहम्मद आशा भोसले की आवाज में, शब्द असद भोपाली के और संगीत दिया है हंसराज बहल ने।

दिल की महफिल दिल की महफिल सजाने रोज़ आओ तो जाने मुलाकात।

प्यारे श्रोताओं, अब सुनते हैं एक सपेरा एक लुटेरा फिल्म से नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में, शब्द असद भोपाली के और संगीत उषा खन्ना का।

0: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल आपने ट्यून इन किया है और हम असद भोपाली के नगमों को सुन रहे हैं। वैसे श्रोताओं, आपने भी कभी महसूस किया है कि पुराने गीतों की बात ही कुछ अलग होती थी, उनमें एक अपनापन और एक सुकून सा मिलता था। और असद भोपाली साहब की कलम से निकले कुछ ऐसे गीत जो कि अपनी मिठास हमेशा बरकरार रखते हैं। और गाना लिखना शब्दों को जोड़ना ही नहीं होता, बल्कि हमारी फीलिंग्स को, भावनाओं को पिरोना होता है। और इसी कला में माहिर असद भोपाली जी और उनके ही नगमे आज हम सुन रहे हैं। आइए अगले नगमे की तरफ हम चलते हैं, फिल्म संगीत में। मैंने प्यार किया फिल्म का यह नगमा लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में, और शब्द असद भोपाली के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल आपने ट्यून इन किया है। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं, जिसमें हम आज एक कलाकार में बात कर रहे हैं, गीतकार असद भोपाली की। कई सारे नगमे आप सुन चुके हो और कई सारे नगमे और भी सुनना बाकी है। और जब दिल की बातों की बात आती है तो उनका एक लिखा हुआ गीत जिसका नाम है दिल की बातें, वो ज़रूर सुनना बनता है। क्योंकि कुछ बातें खामोश रहकर कह दी जाती है, कुछ मुस्कुरा कर कह दी जाती है और कुछ लोग उन्हें शब्दों में ढाल देते हैं। असद भोपाली साहब भी ऐसे ही गीतकार थे जिन्होंने दिल के जज्बातों को, जी हाँ, दिल के जज्बातों को बड़े खूबसूरत शब्द दिए। गीतों में मोहब्बत, तड़प और मुलाकात की खुशी भी मिलेगी और हाँ, जुदाई का दर्द भी। तो आइए दिल की बातों को साथ में मिलकर सुनते हैं।

आइए श्रोताओं अगले नगमे की तरफ चलते हैं। अगला नगमा आप सुनेंगे फिल्म बिन फेरे हम तेरे फिल्म का मोहम्मद रफी उषा खन्ना की आवाज में। गीतकार यहाँ पे उषा खन्ना जी और शब्द असद भोपाली के।

श्रोताओं, असद भोपाली साहब को बहुत सारे शानदार गीतों के लिए, लेखन के लिए कई सारे अवार्ड भी मिले, लेकिन एक अवार्ड उनकी एक फेमस फिल्म जिसके गाने बहुत फेमस भी हुए 1990 में, फिल्म मैंने प्यार किया के सुपरहिट गीत दिल दीवाना बिन सजना के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि अपने लंबे करियर में उन्हें ये बड़ी पहचान काफी देर से मिली, लेकिन उनके गीत तो उसे बहुत पहले ही लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुके थे। इसके नगमे मैंने प्यार किया के कई सारे नगमे हम सुन चुके हैं, आइए अब सुनते हैं टावर हाउस फिल्म का ये नगमा लता मंगेशकर की आवाज में, शब्द असद भोपाली के और संगीत रवि के।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत में, जिसमें आज हमने बात की असद भोपाली की और नगमे सुने FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने को है। थोड़ी ही देर में अब आप विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। माना कि बहुत हैं आप हसीन, दिल को ठुकराया करते हैं, लेकिन हम भी दिलवाले दुश्मन को

ले लगाया करते हैं। सामिन, हम में से बहुत लोग अपना जलवा बरकरार रखते हैं, और रखना भी चाहिए। इस जलवे को बरकरार रखिए बरखुरदार। फना निजामी कानपुरी फरमाते हैं, वो आंख क्या जो आरिज़ो रुख पर ठहर न जाए, वो आंख क्या जो आरिज़ो रुख पर ठहर न जाए, वो जलवा क्या जो दीदा हो दिल में उतर न जाए, वो जलवा क्या जो दीदा हो दिल में उतर न जाए।

शायरी में जलवा शब्द ज्यादातर हुस्न और इश्क से जुड़ा है, हालांकि शब्द अलग अलग जगहों पर अलग अलग ढंग से इस्तेमाल किए जाते हैं और अर्थ भी जुदा होते हैं, लेकिन हुस्न के जलवे तो मशहूर हैं। अमीर मिनाई फरमाते हैं, इलाही क्या कयामत है वो जब लेते हैं अंगड़ाई, इलाही क्या कयामत है वो जब लेते हैं अंगड़ाई, मेरे जख्मों के सब टांके अचानक टूट जाते हैं।

हुस्न का जलवा तो अच्छे अच्छों को घायल कर देता है। खुदा जाने आज उसका कैसा जलवा होगा, हुस्न होगा, नजाकत होगा और जमा होगा। वहीं जलील मानिकपुरी कहते हैं, मेरी आंखों से मेरी यार का जलवा देखो, चश्मे मजनू से बाहरे रुख ए लैला देखो। मेरी आंखों से मेरी यार का जलवा देखो, चश्मे मजनू से बाहरे रुख ए लैला देखो।

तभी तो अकबर इलाहाबादी कहते हैं कि किस किस अदा से तूने जलवा दिखा के मारा, किस किस अदा से तूने जलवा दिखा के मारा, आजाद हो चुके थे तूने बंधा बना के मारा।

इस अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है। हम न समझे तेरी नजरों का तकाजा क्या है, कभी पर्दा कभी जलवा ये तमाशा क्या है। सामिन, इश्क करने वालों के लिए अपनी महबूबा के हुस्न का जलवा बिल्कुल दवा जैसा होता है।

कभी कभी प्रेमी जितने बेकरार होते हैं अपने महबूब का जलवा देखने के लिए, उतना ही जलवा दिखाने वाला भी बेताब होता है। हाँ, तभी तो जौक साहब फरमाते हैं, इश्क का जौक के नजारा मुफ्त में बदनाम है, इश्क का जौक के नजारा मुफ्त में बदनाम है, हुस्न खुद बेताब है जलवा दिखाने के लिए।

जलवा था, जलवा है, जलवा रहेगा, लेकिन एक दिलजला आशिक खुदा से यही कहता है, कोई तो जलवा खुदा के वास्ते दीदार के काबिल दिखाई दे, कोई तो जलवा खुदा के वास्ते दीदार के काबिल दिखाई दे, संग दिल तो मिल चुके हैं हजारों, कोई अहले दिल तो दिखाई दे, कोई अहले दिल तो।

तुम सा नहीं था। काली जुल्फें उड़ते बादल गोरा चांद सा चेहरा, तेरा जलवा तौबा है

किसका सलाम लिखा है। तेरा महबूब बनेगा कोई किस्मत वाला, तेरा जलवा तौबा है तेरा जलवा, जब से देखा

0: हो रहना किसी के
1: क्या करना है दीदी,
0: और हो रहना किसी के
1: बन रहे तो याद करोगे समझे
0: समझे।

0: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आप थोड़ी देर में सुनेंगे दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री

0: रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा, एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ. जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: every aspect of their life has seen a transformation. As you said, roti kapda makan once, I remember. I think the way they eat, the way they live, the way they travel, their own lifestyles, just about everything has been impacted. And as we go forward, we would love to, you know, go in, deep dive into each of those aspects.
1: Absolutely. Mr. Tandon.
2: Modi sarkar ne jo sudhar karyakram liye pichle 12 saal mein, usme jo madhyam varg ki aarthik utthan mein bahut mahatvapurna bhumika nibhai hai. Tax mein chhoot, GST ka saralikaran, digital kranti, housing subsidy jaise bade sudharon se madhyam varg ki bachat badhi hai, unke paas jo disposable income badhi hai aur usse unka jeevan star bhi upar utha hai. Agar main kuch cheezon ki baat karu, jaise humne baat ki तो टैक्स में बड़ी राहत, मैं उसके भी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा. जीएसटी, रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया है और रेरा जैसे सुरक्षित घर का सपना लोगों का पूरा हुआ है पीएम आवास योजना के अंतर्गत. तो ऐसे कई कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान भारत की हम बात करें.

0: टैक्स में बड़ी राहत मिली, उसके अभी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। जीएसटी, रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया है, और रेरा जैसे सुरक्षित घर का सपना लोगों का पूरा हुआ है पीएम आवास योजना के अंतर्गत। तो ऐसे कई कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान भारत की हम बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, जनधन योजना की बात करें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें, सामाजिक सुरक्षा की बात करें, पीएम स्वनिधि योजनाओं की बात करें, तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो केवल मध्यम वर्ग को तो सहायक तो नहीं हो रही, लेकिन जो मध्यम वर्ग नहीं था उनको मध्यम वर्ग में लाने का जो काम किया,
1: जैसे भी शरद जी ने
0: बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि भारत में हम जैसे कहते थे कि गरीबी रेखा के नीचे इतने प्रतिशत लोग हैं, कितने लोगों को गरीबी रेखा से उठाकर मध्यम वर्ग में लाया गया, क्योंकि भारत में मध्यम वर्ग की आप 15-16 कैटेगरी बना सकते हैं, तो उन सब कैटेगरीज को लाभ हुआ है। और जिसकी जो पहचान है वो ये है कि आज लोगों के जेब में खर्च करने के लिए पैसा आ गया है।
1: आपने और शरद जी ने दोनों ने अभी जितनी एक जो सरकार की जितनी पहल थी इनिशिएटिव्स की उनकी बात की, और आप दोनों ने एक जो बात की उसी से बात आगे बढ़ाते हैं कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग थे उनको, गरीबी रेखा से नीचे लोगों को जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से उठाकर ऊपर लेकर आए हैं, तो देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ द मिडिल क्लास इन द लास्ट 12 इयर्स विद मोर देन 25 करोर पीपल exiting multi-dimensional poverty and entering the new middle class. How big an achievement do you think that is of the government, of the Modi government, Sharad ji?
2: I think it's a huge achievement, because 25 crore may be a very easy number to speak, yes, but this number itself may be more than Anubha, the population of many of the countries around the world. Aur dekhiye hua kya ke poverty index ki jo definition badla gaya. You know, we've changed the definition, because aap poverty ko pehle kaise define karte the, itne rupaye roz ka. आई थिंक नीति आयोग केम आउट विद अ वेरी न्यू एंड अ प्रॉमिसिंग डेफिनेशन कि आपका अगर जीवन का स्तर सुधर रहा है, यू नो, ऑन न्यूट्रिशन, ऑन हेल्थ, आपके पास घर नहीं है, टुमारो यू गेट अ हाउस, यू डोंट हैव अ वाटर कनेक्शन, नाउ यू हैव अ वाटर कनेक्शन, लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट द टॉयलेट्स व्हिच इज बीइंग, यू नो, सैनिटेशन हैज बीन वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर्स हार्ट, यू नो, जंगल में और खेतों में जाके, यू नो, टॉयलेट का इस्तेमाल करना या वहां पर इधर उधर बैठ के, महिलाओं के लिए खासकर बहुत, सो आई थिंक नाउ देर आर टॉयलेट्स एट, सो द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीड्स टू बी अंडरस्टूड अनुभव फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट नॉट दैट अ पर्सन हैज अ वेरी ह्यूज बैंक बैलेंस बट ही इज एबल टू अफोर्ड एंड लिव अ लाइफ स्टाइल विच एनी अदर नॉर्मल मिडिल क्लास लिव्स. सो आई थिंक दैट हैज बीन द पैराडाइम शिफ्ट इन द वे वी लुक एट पॉवर्टी, बिकॉज दोज पीपल are financially fine, they may be earning whatever they earn, but today they have facilities which are probably being enjoyed by some of the people who lead a more prosperous life.
1: The facilities that are very basic facilities. Absolutely. Which is everybody's right and which should they should get.
2: No, but the thing is that me and you can call them basic, but for them it was a luxury at one point of time, and today they feel that these were basic amenities which I was lacking, and it is thanks to the government schemes like Pradhan Mantri Awas Yojana. You know, the whole sanitation program which has been done. You know, Arbab, before you move forward, I would like to highlight that for me as an economic analyst, the biggest takeaway, because there's a long list. In fact, if we just named all the developmental and welfare schemes, I think the next half an hour may not be enough. So, biggest takeaway for me, because we are hardcore economic analysts, for me is the massive 100 lakh crore plus infrastructure spend. Because that is one, in economics we call it, Anubha, the trickle down effect. That has impact हर वर्ग को समाज के उसने फायदा पहुंचाया, और मिडिल क्लास तो उसमें आती आती, क्योंकि इससे नौकरियां बनी हैं, इससे लोगों की इनकम. और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं जो टंडन साहब मेरी बात से अग्री करेंगे कि मुझसे जब लोग पूछते हैं, क्योंकि होता क्या जब आपकी जिंदगी में ये सब घटनाएं घटती रहती है वेलफेयर स्कीम, तो यू टेक इट इन योर स्टेड, आपको लगता है ठीक है ये तो होना ही था भाई, ये तो मेरा हक है वगैरह वगैरह, ऐसे ख्याल आते हैं. पर बहुत अच्छा तरीका इसको देखने का क्या है, विच आई एम श्योर द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी वुड लाइक टू ड्वेल अपॉन एंड डीप डाइव, इज कि आप 2014 में जब ये सरकार आई थी 12 साल पहले, आप कहां खड़े थे? शायद लोगों की मेमोरी इतनी अच्छी ना हो, इट्स वेरी हार्ड टू रिमेम्बर के व्हाट आई यूज्ड टू अर्न, व्हाट वाज माय नेटवर्थ इन 2014, और आज आप कहां खड़े हैं. तो अगर आप दोनों को कंपेयर, क्योंकि हम तो कैसे देखते हैं, बहुत आसान तरीका है, आई थिंक मिस्टर टंडन वुड अग्री, इन 2014 वी वर अ $2 trillion इकोनॉमी, सो इन 67 ईयर्स फ्रॉम जीरो वी रीच 2 trillion, एंड इन द लास्ट 12 ईयर्स वी रीच 4 trillion. तो अगर इकोनॉमी डबल हुई है, तो इकोनॉमी तो हमको और आपको मिलाकर ही बनती है ना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय पीपल लाइक अस. सो आई थिंक दैट्स अ बेटर वे टू लुक एट इट, एंड दैट फॉर मी दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे.
1: अशोक जी, मध्यम वर्ग की, जैसे कि भी शरद जी ने भी हमारे डिस्कशन की शुरुआत में कहा कि तीन सबसे बड़ी चिंताएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, और इन तीनों के लिए ही जरूरी है रोजगार और नौकरी. तो पिछले बीते 12

0: सालों में भारत सरकार ने जो तेजी से बढ़ती युवा आबादी है देश की, उसके लिए नौकरी और खासकर स्वरोजगार के अवसरों को जो दिए हैं, उनको जो उसके लिए पहल शुरू की है, जो उसके लिए कार्यक्रम करे हैं, उन्हें आप कैसे देखते हैं? खासकर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, या नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इन सब योजनाओं का आबादी को नौकरी रोजगार या स्वरोजगार दिलाने में कितना बड़ा योगदान है?
1: मैं आपकी बात पर आने से पहले स्वास्थ्य की बात करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि समाज में स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना रोटी कपड़ा और मकान है, और उस दिशा में जो आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 22 करोड़ से अधिक नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए जैसे अभी बताया गया था, और आवास नल यानी पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक किफायती घर बनाए गए हैं, आपने रोटी कपड़ा मकान की बात की, वहीं जल जीवन मिशन के माध्यम से करोड़ों ग्रामीण और अर्ध शहरी घरों तक सीधे जल से साफ पानी पहुंचाया गया है, और जैसे अभी बात हो रही थी अब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं तो जीडीपी के दम पर, लेकिन इसमें एक राष्ट्र एक टैक्स यानी जीएसटी और ये जो इसमें जो सरलीकरण किया गया ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक सुधार था जिसने हमारे देश के बिखरे हुए टैक्स ढांचे को खत्म कर पूरे भारत को एक बाजार बना दिया। मैं अगर स्टार्टअप की बात करना चाहूँ तो हम देखते हैं कि इसके पीएलआई योजनाओं के सहयोग से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है
0: जी।
1: और जिससे इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में घरेलू जो इन्वेस्टमेंट है उसको बहुत बढ़ावा मिल रहा है। तो इस तरह से और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं।
0: शरद जी, मैं अपने अभी जैसे अशोक जी ने बात की स्वास्थ्य की, पर मैं वापस आऊंगी जो हम नौकरी की बात कर रहे थे उसमें उन्होंने और अशोक जी ने जो एक और बात करी स्टार्टअप जो इकोसिस्टम की, तो हम जब बात कर रहे थे कि जो सरकार की जो पहल थी, जो विभिन्न योजनाएं हैं, उनमें रोजगार मुहैया करवाने में, उनके लिए रोजगार क्रिएट करने में कितना बड़ा, और खासकर अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के जो के लिए जो उसको इंकरेज करने के लिए सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं उससे मिडिल क्लास की जो एस्पिरेशंस हैं उसको कितना प्रोत्साहन मिला है?
2: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा अनुभव। देखिए गवर्नमेंट यू नो एज एन एम्प्लॉयर सरकारी क्षेत्र में जितनी नौकरियां हैं अनुभव वो तो सरकार उतनी देगी। आप देखें प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है समय समय पर अपॉइंटमेंट लेटर्स प्रधानमंत्री जी खुद बांटते हैं।
0: बिल्कुल,
2: पर इसमें यह ध्यान रखना होगा दैट गवर्नमेंट कैन नॉट एम्प्लॉय एवरीबॉडी इन द कंट्री। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एन एनेबलिंग प्लेटफॉर्म वेयर इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। तो आपने स्टार्टअप का बात किया, आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन दैट। टुडे वी हैव स्टार्टअप इंडिया, जब शुरू किया गया था मुझे याद है 2016 की ये बात है, and I think a lot of people said that startup India, you know, people have been doing businesses here for times immemorial. So what is new? Yes, there was something new because startup focused on innovation, startup focused on new ideas, and that is where the youth of the country or the youth intellect of the country got activated. A lot of youngsters, and today just on startup India there are 2 lakh plus registered startups, and you know you will not believe that the employment provided by these startups today is 2.3 million plus people who've been employed. And government has created a startup fund
0: yes.
2: where, you know, because these startups look for funding and they've been looking at funding to private sources, these angel investors and so. Here, government became an angel.
0: Right.
2: And I think the whole setting up of incubation centers, setting up of those places where these startups can get trained, I think that has done magic to this country. And today, I'm telling you, when from being job seekers
0: yes.
2: to being job creators, when I talk to a cross-section of youth today, what they tell me is that yes, we want to work, not that, but we only want to work to gain experience. Once they gain experience, they want to be, you know, there is a flame burning inside every youth. Yes, I have to do something of my own. And I think this aspirational India is driving the growth of the country. You know, if 65% of our population, Anubha, is below 35 years of age, we are a very, very young country. And you know, for everybody to find employment, you know, may not be possible in
0: yes.
2: the times to come. So if you become job creators, you just don't employ yourself. You create jobs for so many people around you. And you know, we talk of Mudra Yojana. which was focused on women entrepreneurs, where government gives you a loan for up to a certain level, up to 10 lakh rupees, 5 lakh rupees, you borrow, you start. I've seen so many women entrepreneurs, you know, you'll be surprised, the participation of women in the mainstream economic activity in this country is not as high as men. We all know that. There's so many although I treat homemakers as a very, very active GDP.
0: In fact,
2: we did an analysis recently, which said that if the GDP of women homemakers, it's

0: in the pockets of people.
1: Financial inclusion?
0: Absolutely. You know, Jan Dhan Yojana, more than 56 crore accounts, and these were the people who probably thought that banks are always a dream for us. Yeah. You know, they used to keep their money, you know, under the mattresses and so on. So today, all that money is in the bank and a very substantial deposit is there. I think 25 lakh crore rupees every month, 300 lakh crore rupees of transactions happening in a year.
1: Yes.
0: I think this has been transformational, and a lot of countries around the world now want to emulate that
1: example.
0: So many countries have borrowed this fintech innovation from us and they want to go for it, from buying a roadside nariyal to probably making big payments at the hotels. Just about, I have a feeling, Anubha, as an economic analyst, that to my mind, this has added about a percentage point to GDP, which means just the UPI has facilitated our GDP in stepping up by about 100 basis points, which is a very, very significant value for that matter.
1: Ashok ji, aap kuch
2: kya? Main ye kehna chahta hoon ki ye Janadhan Aadhaar aur mobile, ye jo jam ki tikdi hai, isne bicholiyon ko khatam kar diya hai. और इसके साथ साथ जो 1600 से अधिक पुराने और ऑब्सोलीट कानून जिनको हम कहते हैं उनको खत्म किया गया है. सरकारी नौकरियां हो, निचले स्तर में इंटरव्यूज को खत्म किया गया है. दस्तावेजों के सेल्फ अटेस्टेशन को शुरू किया है. ये सब भ्रष्टाचार को भी समाप्त करते हैं और सबसे ज्यादा इसका लाभ जो है वो मध्यम वर्ग को हुआ.
1: जी, हम क्योंकि डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं और हम बात करें टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी बात करना बहुत जरूरी बन जाता है. पिछले 12 सालों में सरकार के विभिन्न प्रयासों के चलते लगभग 98% गांवों में 4G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है और तेज इंटरनेट के चलते ग्रामीण विकास में काफी तेजी आई है. उसे आप कैसे देखते हैं, और साथ ही साथ डेटा इतना सस्ता हुआ है पिछले 12 सालों में, और ये जो हमारी जिस तरह से तेज कनेक्टिविटी मिली है, इससे मध्यम वर्ग के विकास पर किस तरह का कितना प्रभाव पड़ा है?
0: जबरदस्त प्रभाव पड़ा है अनुभव. आपने ऐसा लगता है जैसे इस मध्यम वर्ग की जो दुखती रग थी उस पे हाथ रख दिया, बिकॉज दुनिया का सबसे सस्ता डेटा हमारे देश में है. और क्या कमाल इसने किया है कि इसने जो गांव और शहर के बीच में जो एक खाई हुआ करती
1: डिजिटल डिवाइड, जिसको
0: डिजिटल डिवाइड क्या लाइफस्टाइल डिवाइड था, बिकॉज दीस पीपल इन द विलेज अनुभव, दे नेवर यूज्ड टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द टाउन. टुडे व्हेन आई गो टू अ विलेज, आई फाइंड द थिंग्स दे यूज, द वे दे टॉक, व्हाट दे वेयर, द लाइफस्टाइल दे लीड, इट्स प्रीटी मच लाइक अ नॉर्मल टाउन सिटीजन. एंड देयर आर सो मेनी लर्निंग्स व्हिच आर हैपनिंग. प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली मेड एन अपील व्हिच सेड कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए. कैसे ये कोविड में हम करते, पढ़ाई लिखाई बंद हो जानी थी अगर ये कनेक्टिविटी नहीं होती. बच्चों का कोई नुकसान कोविड में नहीं हुआ. आज भी प्रधानमंत्री जी, हम अपने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए. क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि उसके पीछे इंटरनेट और डिजिटल कनेक्टिविटी की पावर आज है.
1: सरकार ने जो पिछले 12 सालों में
0: काम किया है,
1: हमें दिख
0: उसके आधार पर उन्होंने बोला, उनको पता है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा और लोग वैसे ही लाभ उठाते रहेंगे. सो आई थिंक दिस होल्ड और वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर फॉर दैट मैटर. मुझे ऐसे लोग मिलते हैं अनुभव, हु यूज्ड टू लिव इन से दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, आज वो कई पहाड़ों पर जाके रहते हैं और बहुत सुकून की जिंदगी जीते हैं, और शायद उनके एम्प्लॉयर को, उनके क्लाइंट्स को ये मालूम भी नहीं होता कि वो कहां बैठ के काम कर रहे हैं. दैट हैज बीन द मैजिक ऑफ डिजिटलाइजेशन.
1: अशोक जी, आप कुछ कहना?
2: नहीं, मैं इसमें सोशल सिक्योरिटी का एंगल जरूर लाना चाहता हूं, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और जो लेबर है, श्रमिक है, उनके लिए जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आई है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आई है और अटल पेंशन योजना आई है, ये ऐसी योजनाओं के आने से, और पीएम स्वनिधि योजना है, इसके जरिए स्ट्रीट वेंडर जो है, सड़क पर जो सामान लगाता है, रेड़ी खोमचा लगाता है, और उनको फिर से अपना काम करने के लिए कितनी आसान शर्तों पर जो है वो लोन दिया जा रहा है. तो इसी कड़ी में मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि 12 सालों में ये जो गुड गवर्नेंस का मंत्र दिया गया, सुशासन, और भारत के जो प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया गया है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये जो सिद्धांत पर चलते हुए सरकार ने ट्रांसपेरेंसी लाई है, स्पीड लाए हैं और टेक्नोलॉजी पर जो जोर दिया है, ये गुड गवर्नेंस भी अल्टीमेटली हम देखें तो मिडिल क्लास को ही इसका लाभ हो रहा है.
1: We have seen in the last 12 years since 2014 when NDA government under Prime Minister Modi, you know, came in power, we have seen that there's been a continuous focus on expanding and improving infrastructure. In fact, every year in budget, we've been seeing an increase in the allocation for infrastructure. So how has this improved the quality of life of the middle class and fast-tracked their economic prosperity?
0: Oh, it's done in a huge way, because we pick up anything. For example, highways. Any middle class family traveling from one town to another, 8 to 9 hours, Anubha, for a 200 kilometer distance was a normal earlier. Now you cover that distance in 2 hours and 2.5 hours. Look at the time saved. And if you're using your own vehicle to travel, look at the wear and tear that you save. And why forget metros? The way metro has been expanded, Anubha, over the last few years, I have stories of somebody in Delhi or Mumbai, you know, who used to spend 2 hours to reach the workplace, 2 hours to come back. Today, that journey happens in 25 minutes.

0: Look at the saving in fatigue which that commuter does. And Udaan, Hawaii chappal se Hawaii yatra tak.
1: Bilkul.
0: Well, a plane journey used to be a dream for people. Ke hum sari umar mein sochta tha, kab main Hawaii jahaj mein baithungi, baithunga. Aaj mujhe lagta hai, aap agar kisi bhi Hawaii yatra mein jaye, aapko ek aam aadmi usme dekhega. Ab wo aisi luxury nahi hai.
1: Bilkul.
0: Chote-chote airports ko banakar, unko connect kar dena. Aur chand minton mein ya ghante mein pahunch jana, jiske liye aap sari raat ki journey karte the. Aapko yaad hoga Rajdhani aur Shatabdi.
1: Bilkul.
0: Akeli trains hua karti thi, jo कि प्रीमियम बोली जाती थी, जल्दी पहुंचना है. आज वंदे भारत लेके आप कुछ घंटों में एक जगह से दूसरी जगह और ऐसे कंफर्ट में पहुंच रहे हैं, विच इज ऑफ इंटरनेशनल लेवल. द थिंग्स वी यूज्ड टू वॉच इंटरनेशनली, के इस ट्रेन में टीवी भी होता है, इसमें रिक्लाइनिंग सीट्स होती हैं, आज वो मुझे लगता है आम आदमी की पहुंच में. सो आई थिंक दिस गवर्नमेंट हैज ब्रॉट लग्जरी विच यूज्ड टू बी कॉल्ड अर्लियर एज अ कंफर्ट एंड नेसेसिटी टू द पीपल ऑफ द कंट्री.
1: एंड यू नो दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप जैसे बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इंप्रूवमेंट हुआ है, बी इट रोड्स, बी इट रेलवेज, बी इट यू नो एयरपोर्ट्स, जो एक्सपेंशन हुआ है, तो हमने देखा है कि हवाई यात्रा में जैसे भी आपने कहा कि बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है. वंदे भारत जैसे हमारे पास वर्ल्ड क्लास ट्रेन्स हैं, जहां 2014 में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, अब वो बढ़ के 160 हो चुके हैं, 225 तक. जो मेट्रो रेल का नेटवर्क है वो 26 शहरों में फैल चुका है. तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे हम कार्यक्रम के शुरू में हम बात कर रहे थे कि मध्यम वर्ग की चिंता होती थी रोटी कपड़ा मकान, पर अब जब उनकी ये बेसिक नेसेसिटीज काफी हद तक वो आराम से उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पूरी हो रही है, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ा है, इसको जो फैल रहा है तेजी से, इससे मध्यम वर्ग की जो आकांक्षाएं हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उस पर कितना असर पड़ेगा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे अशोक जी? पहले आपसे
2: इसके लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बुनियादी ढांचे हो रहे हैं, उसके लिए एक पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया, और इसीलिए एक सेक्टर में जो प्रगति हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो सब एक दूसरे को जानते हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, और उससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है और उसमें स्टार्टअप भी लगे हुए हैं. ये सब काम कोई सरकार अकेले नहीं कर रही है, चाहे वो हम सड़कों की बात करें या रेलवे की बात करें, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो हो रही है वो भी मिडिल क्लास को बहुत फायदा कर रही है. अब देखिए ना, जब रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा है तो हम देखें लाखों मजदूर उसमें काम करते हैं, तो ये कुल मिलाकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जीडीपी में, केवल हाईवेज और रोड 1% तो जीडीपी में वही बढ़ोतरी करते हैं. अगर आप सोचिए रेलवे को अगर ले लें और हम एयर ट्रैफिक वगैरह की बात करें, तो इस मामले में अगर देखें तो जो एक डेवलपिंग कंट्री के नाते भारत रहा है अब तक, उसकी पहचान है, वो अब बड़ी तेजी से डेवलप्ड कंट्री की ओर जा रहा है. इसलिए जो लक्ष्य रखा गया है कि हम 2047 तक हम विकसित भारत बनेंगे, उसकी ओर देश तेजी से बढ़ रहा है.
1: शरद जी, आप क्या कहेंगे? हम जब बात कर रहे थे एस्पिरेशंस की, आकांक्षाओं की, मध्यम वर्ग का जो पिछले 12 सालों में हमने देश में विकास देखा है, आर्थिक विकास देखा है, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन देखी है, हर तरह से जो हमारा देश प्रगति की राह पर एक बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है, उससे मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं पर कितना असर पड़ रहा है, और उनकी आकांक्षाएं जो पूरी हो रही है उससे देश की पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट पर कैसा असर पड़ रहा है?
0: आई थिंक द पॉइंट यू हैव रेज्ड अनुभव रिलेट्स टू विकसित भारत 2047, और अभी आपने जब बुनियादी ढांचे की बात करी तो उसमें हर एक रुपया जो बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाता है, ये एक आर्थिक सिद्धांत है, उसका 8 गुना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है. आपने कहीं सड़क बनाई, उसके आसपास अस्पताल आ जाएंगे, होटल्स आ जाएंगे, अपार्टमेंट्स आ जाएंगे, मॉल्स आ जाएंगे, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आ जाएंगे. देखिए, एक सड़क बनने से, और ये ऐसे मेरे पास अनेकों उदाहरण है देश के, अगर मैं कोई भी एक सड़क उठा लूं, तो मुझे लगता है कि ये जो विकसित भारत की यात्रा है पूरी, ये जो आपने एस्पिरेशनल इंडिया की बात करी, ये विकसित भारत की यात्रा में बहुत बड़ा कदम है. क्योंकि मुझे याद है एक फिल्म आई थी रोटी कपड़ा मकान, और अगर आप उस फिल्म को याद करें और आज उसको इस परिप्रेक्ष्य में देखें, ऐसा लगता है उस फिल्म को हम 300-400 साल पहले छोड़ के आ चुके हैं. क्योंकि जब लोग देखते हो कहते हैं ये भी जमाना था क्या, रोटी कपड़े मकान के बारे में सोचना पड़ता था. क्योंकि आज आप सोचते हैं कि आप हवाई जहाज में बैठ रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप वर्ल्ड क्लास हाईवे में ट्रैवल कर रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप एक इनोवेटिव स्टार्टअप चला रहे हैं. तो मुझे लगता है वी हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे अनुभव फ्रॉम वेयर वी वर.
1: यू नो, व्हेन वी टॉक अबाउट द मिडिल क्लास नाउ, वन सेगमेंट ऑफ द मिडिल क्लास दैट आई थिंक वी हैव टू टॉक अबाउट एंड वी शुड मेंशन इज द वुमेन. वुमेन यू नो आर द बैकबोन ऑफ एनी मिडिल क्लास फैमिली. व्हाट इन योर opinion in the last 12 years, the various schemes, the various initiatives that the Modi government has taken, how have they uplifted and empowered women, especially of the middle class women, which in turn, you know, have made the middle class much more prosperous? Ashok ji, aap batana chahiye.
2: Dekhiye, humne jitni bhi jan kalyan yojanaon ki baat ki hai, agar hum dekhenge to fayda to usse हर वर्ग को हुआ है, लेकिन विशेष तौर से महिलाओं और किसानों और युवाओं से जुड़े हुए जो हैं. अब आप देखिए, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, तो जो गरीब परिवारों की महिलाओं को धुएं से जो मुक्ति मिली और उससे स्वच्छ ईंधन की उपलब्धि हुई और मुफ्त एलपीजी भी, ये तो सीधा सीधा मैं कहूंगा महिलाओं

0: के ही कल्याण के लिए हुआ है। इसी तरह से हम जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें और सामाजिक सुरक्षा के लिए, तो मैंने पहले भी कहा है, तो महिलाओं के लिए आवास की योजना हमने बात की, टॉयलेट के बारे में बात की, तो ये सब योजना आयुष्मान भारत, ये योजना से भी जो 5 लाख का पक्का मुफ्त इलाज है, इसमें महिलाएं सबसे ज्यादा इनको भी लाभ हो रहा है। और सबसे बड़ी यही है कि जिसको हम वेमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, तो उसमें लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं, स्टार्टअप में बहुत महिलाएं हैं, तो हर क्षेत्र में महिलाएं जब सामने आ रही हैं और उनकी अगर स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे वेमेन सिक्योरिटी है, तो ये चीजें जब आज तसल्ली होगी तो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा बाहर आकर काम करेंगी और इन सब योजनाओं का लाभ उठाते हुए वो आज खुद भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू या अदरवाइज स्टार्टअप के थ्रू वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं।
1: जी अशरद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
2: आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट हैज बीन द थीम ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड महिला सशक्तिकरण जिसको हम कहते हैं, और महिलाएं चाहे उनकी एजुकेशन की बात हो, बिटिया की पढ़ाई की बात हो, बिटिया की सुरक्षा की बात हो, मुझे लगता है यहां से सारा का सारा ये जो उत्थान हुआ है वहां से निकल कर आया। एंड टुडे वुमेन, एज आई सेड अर्लियर, दे आर इन द मेनस्ट्रीम, द परसेंटेज ऑफ वुमेन हु आर इन्वॉल्वड इन द मेनस्ट्रीम दैट इज इंक्रीजिंग, एंड दिस इज अनुभव नॉट जस्ट हैपनिंग इन द टाउन। I find lot of women, as Mr. Tandon said, that you know, जो self-help groups हैं, वहाँ पर महिलाएं इकट्ठी होके कुछ business शुरू कर रही हैं। Ministry of Cooperative बन गई है, जहाँ से बहुत सारी cooperative societies के जरिए महिलाएं आगे आ रही हैं। और आप अगर देखें इसका result कहाँ दिख रहा है अनुभव, तो आप देखें कि जब भी results आते हैं किसी भी examination के, वहाँ महिला candidate सबसे आगे होती हैं। ये इस बात को बताता है कि सरकार ने महिला education को और महिलाओं के सशक्तिकरण को कितना seriously लिया है। और हमारी आधी आबादी है, तो मुझे लगता है कभी भी उनके साथ भेदभाव तो कभी भी जस्टिफाइड नहीं था, पर आज जो विभिन्न स्कीम्स की वजह से महिलाओं के हम स्कीम्स गिनवाएं तो बहुत लंबी लिस्ट है महिलाओं की स्कीम की, पर मुझे लगता है कि महिलाओं का मेन स्ट्रीम में आना, और अगर मैं एक जरूरी बात कहना चाहूंगा, आई थिंक यू विल बी एबल टू रिलेट, अगर महिला काम नहीं भी कर रही है, मान लीजिए वो कहीं कमाई नहीं करती है, तो घर बैठे बैठे प्रधानमंत्री आवास योजना के जो घर हैं, महिलाएं इस बात को मानेंगी पहले उनके नाम किए गए हैं।
1: बिल्कुल,
2: आप देखिए कि घर में अगर पुरुष, खाली पुरुष है तो अलग बात है, पर अगर महिला है तो घर बैठे बैठे महिला सशक्तिकरण हो रहा है। महिला अपने पति को कह सकती है, देखिए ये घर मेरे नाम है, मेरा भी इस घर में उतना ही योगदान है। और मैं समझता हूं उसने महिला को एक कॉन्फिडेंस दिया है। सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं महिलाओं के मामले में मानता हूं ये उनका कमाई के जरिए बनना, इन्होंने उज्ज्वला की बात करी, वो सब तो है ही है, पर मुझे लगता है महिलाओं में एक जो कॉन्फिडेंस आया है, और ये कॉन्फिडेंस आपको बताऊं सबसे ज्यादा मुझे कहां दिखा, जब प्रधानमंत्री जी ने महिला का पार्लियामेंट में बिल लाने की इस सरकार ने मुहिम छेड़ी, किसी वजह से वो नहीं पास हो पाया, पर सरकार की इंटेंट बताती है कि महिलाएं आधी आबादी नहीं है, महिलाएं ज्यादा शक्तिशाली आबादी भी हैं, ये प्रधानमंत्री जी की मंशा रही है।
1: आप दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि हम अब तक बात कर रहे थे कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल में जो उन्होंने कदम उठाए उसका मध्यम वक्त में कितना फर्क पड़ा, कितना असर पड़ा, बट व्हेन वी लुक एट यू नो इन द फ्यूचर, लेट्स लुक एट द इन द फ्यूचर, इन द नेक्स्ट डेकेड वेयर डू सी द इंडियन मिडिल क्लास, वेयर इट इज गोइंग टू बी, एंड हाउ मच ऑफ अ मेजर फैक्टर विल इट बी इन इंडियाज डेवलपमेंट? अशोक जी,
0: देखिए जब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो मिडिल क्लास भी हम मान रहे हैं कि उसका सबसे ज्यादा उनको फायदा हो रहा है, तो यही मिडिल क्लास देश को प्रगति की ओर भी ले जा रहा है, और यही मिडिल क्लास ही देश को आज हम देखते हैं तो खेलों के मैदान में जो हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा खिलाड़ी हमारे मिडिल क्लास हैं। पहले हम सोचते थे कई खेल ऐसे हैं जो बहुत अमीर लोगों के खेल हैं, आज जो है स्मॉल टाउन से क्रिकेटर्स आ रहे हैं, हॉकी के प्लेयर्स आ रहे हैं, रेसलर्स आ रहे हैं, यहाँ तक कि टेनिस के प्लेयर्स भी आ रहे हैं, तो ये सब जो विकास हो रहा है तो खेलों में हमें दिखाई दे रहा है, ऐसे ओलंपिक वगैरह ये देखें, तो ये सब मिडिल क्लास का ही आगे बढ़ना है, और इससे आगे चलकर मिडिल क्लास वो भी ये जो विकसित भारत का सपना है उसमें मुझे लगता है सबसे ज्यादा योगदान यही मिडिल क्लास देगा।
1: शरद जी, अशोक जी ने गरीब और अमीर का जो अंतर है वो बहुत कम होता जा रहा है।
2: देखिए जब भी कोई अर्थव्यवस्था विकास की ओर बढ़ती है, डेवलप की ओर बढ़ती है, तो वो खाई अपने आप भरती जाती है। मैं मिडिल क्लास को पर्सनली तीन हिस्सों में बांटता हूँ, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, तो मुझे लगता है इन तीनों को अगर हम मिला दें, आपका क्योंकि सवाल था कि हम भारत के विकास में इनका क्या योगदान रहेगा, मुझे लगता है लोअर मिडिल क्लास में आएगी, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में आएगी, और अपर मिडिल क्लास शायद अमीर बन जाए। द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज, if you take in the world of sports, you take in the world of innovation, you take in the world of space, you take in the world of anything, I think the biggest success stories are coming from middle class.
1: Mr. Ashok Tandon, Mr. Sharad Kohli, thank you so much for joining us in Akashwani's special series on 12 years of Modi government.
2: It was a pleasure.
0: Thank you.
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल सुधार, सुशासन और जन कल्याण से सशक्त होता मध्यम वर्ग। इसमें

0: में भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnstalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming middle-class lives through reform and welfare. Participants were Ashok Tandon, political analyst, and Sharad Kohli, economic analyst. Moderator was Anubha Rohatgi. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app News On Air. This program is also available on our YouTube channel News On Air Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
1: FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:45 हो रहे हैं। अब हमारी प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।